0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, गुजरा हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट दोबारा हमारी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। आपस के लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कीजिए, गुस्सा हसद और बुग्ध से दूर रहिए, हर किसी के साथ मोहब्बत प्यार और नर्म लहजे में गुफ्तगू कीजिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पाले। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो है अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: और अब आज के प्रोग्राम की खास बातें। आज हमने रोजाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी की जियारत के सिलसिले में मालूमात फराहम की और इन मुकद्दस मुकामात के एहतराम और फजीलत का जिक्र हुआ। इसके साथ आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिज्जतुल विदा की तैयारी, रवानगी और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों की शिरकत का जिक्र हुआ।
1: उम्मीद है आपको हमारा खुसूसी शो हज बैतुल्लाह अच्छा लगा होगा। इस शो से मैं आरजे महमूद खान, आरजे कबीर, आरजे तलहा और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी के साथ इजाजत चाहूंगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीन किराम, जिंदगी को मुअत्तर करने वाली रूह परवर सुन्नतों में एक अहम सुन्नत ये भी है कि लोगों के दरमियान सुलह कराना। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि ताल्लुकात का दीन भी सिखाता है। इंसानों के दरमियान मोहब्बत, अखुव्वत और भाईचारा कायम रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी मकसद के लिए इस्लाहे ज़ातुल बैन को सबसे अफजल अमाल में शुमार किया गया है। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उकबा

हाउस हेल्प, चाहे वो मेड हो, ड्राइवर हो या कोई और मदद करने वाला शख्स, वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम अपने फैमिली, अपने घर के फैमिली मेंबर्स की, रिलेटिव्स की, इन सब के कपड़े लाते हैं, इनका ख्याल करते हैं, इनकी कंफर्ट का ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर हम हमारी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं या जो हाउस हेल्प हैं उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। देखिए, हाउस हेल्प वो लोग हैं जो हमारे घर को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड बना रहे होते हैं। इसलिए उनके साथ काइंडनेस और कंपैशन दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ईद हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसका पैगाम भी यही है कि हम शेयरिंग और केयरिंग करें। जब हम अपने हाउस हेल्प को अपने खुशियों में शामिल करते हैं, उनके लिए नए कपड़े लाते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, उनके साथ एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा हमारा एटीट्यूड होता है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा रहती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी आना चाहिए। किसी से पोलाइटली बात करना, उसे इज्जत देना है, उनके काम की तारीफ करना बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इसका असर बड़ा गहरा होता है। कभी कभी सिर्फ एक थैंक यू कह देना या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कह देना किसी का दिन बना देता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों रिलक्टेंट हो जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमें दूसरों के वेलबींग का भी ख्याल रखना है। देखिए, हम समझते हैं कि हम सब के ऊपर लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन क्या वो स्ट्रेस और टेंशन हम इन लोगों पर निकाल रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हमें और आपको खुद को थोड़ी देर जो है वो बैठा के समझाने की जरूरत है। कई घरों में मैंने देखा है कि ऐसा भी माहौल होता है कि खुद तो फ्रेश और अच्छा खाना खाया जाता है, लेकिन हाउस हेल्प को खराब या शायद खराब होने वाला हो इस तरह

बात जो है वो नरमी से बात करना, चीखना चिल्लाना नहीं, गलतियां हर एक से होती हैं, नजरअंदाज करना, प्यार से समझाना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। अगर हम अपने हाउस हेल्प को भी अपने साथ बिठाकर खाने की टेबल पर साथ में खाना खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं, और ये इज्जत देने का जो एटीट्यूड है ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो भी इसे चाहके ना चाहके अडॉप्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है एम्पैथी, यानी दूसरे के जज्बात को भी समझना। सोचिए कि वो अपने घर वालों से दूर हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। अगर हम उनसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके हालात समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि उनके अकेलेपन को हम महसूस करके दूर कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें कहने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब हम किसी के साथ काइंडनेस से पेश आते हैं तो वो भी पॉजिटिव फील करता है और अपने काम में और ज्यादा डेडिकेशन लेकर आता है। इससे ना सिर्फ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि घर का एनवायरमेंट भी पीसफुल बन जाता है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने हाउस हेल्प के साथ मोहब्बत और रहमदिली से पेश आए तो ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाता है। रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस और पोलाइटली बात करना, ये हर एक इंसान का बुनियादी हक है, चाहे बड़ा हो या छोटा, शायद आपसे ताकतवर, शायद आपसे कमजोर, फाइनेंशियली आपसे स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली आपसे वीक। लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें हर इंसान की फंडामेंटल राइट है, और हमें और आपको उस शख्स को उस राइट से डिप्राइव रखने का कोई भी हक नहीं बनता। दोस्तों, याद रखिए कि असल खुशी जो है वो दूसरों की खुशी में तलाश करने में है। कोशिश कीजिए कि अपने असल सुकून को, अपने असल खुशी को दूसरों की खुशियों के साथ भी जोड़कर देखा जाए। आज मैं आपको सिर्फ यही इस थॉटफुल क्वेश्चन, इस थॉटफुल पॉइंट पर छोड़ रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। जब नेक्स्ट टाइम आपसे मेरी बात होगी तो मुझे बताइएगा कि कितना डीपली आप इस टॉपिक को सोच पाए, समझ पाए। कहने को वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी कोशिश है कि आज उस पॉइंट को लेकर आया जाए जिस पॉइंट को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं या फिर इस पर बात ही नहीं करना चाहते। इस टॉपिक को जब भी वक्त मिले, थोड़ी देर के लिए रात में सही, मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त या जब भी आपको मौका मिलता है, सोचिएगा।

0: पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता है तो कोशिश कल से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी सी कोशिश बड़ी तब्दीली लेकर आती है। मुझे नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पल्स ऑफ कुरान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरह अल इंशिकाक की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसान, बेशक तू अपने रब की तरफ से मुसलसल मेहनत और मुशक्कत के साथ बढ़ रहा है, फिर तू उससे जा मिलेगा। इस आयत का मरकजी मौजू इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी जद्दोजहद, दुनिया की आजमाइश और आखिरकार अल्लाह ताला से मुलाकात है। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ अंदाज से मुखातिब फरमाया है। कहीं या अय्युहल लजीना आमनु कहकर ईमान वालों को पुकारा, कहीं या बनी आदम कहकर औलादे आदम को याद दिलाया, और यहां या अय्युहल इंसानों कहकर पूरी इंसानियत से खिताब फरमाया। इसमें हर इंसान शामिल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, नेक हो या गुनाहगार, ताकतवर हो या कमजोर। ये खिताब हर उस शख्स के लिए है जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। इस एक जुमले में अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत, उसकी हैसियत और उसकी जिम्मेदारी को याद दिलाया है। इंसान दुनिया में खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, कभी अपनी दौलत पर फख्र करता है, कभी अपनी खूबसूरती पर, कभी अपने इल्म पर और कभी ताकत पर। लेकिन कुरान इंसान को उसकी असल हकीकत की तरफ वापस बुलाता है। अल्लाह ताला इंसान को ये पुकार के कहते हैं, एहसास दिलाते हैं कि तुम एक मखलूक हो, तुम्हारा एक रब है और तुम्हें एक दिन उसके सामने हाजिर होना है। ये खिताब मोहब्बत भी है और तंबीह भी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आवाज देकर अहम बात समझाती है, इसी तरह अल्लाह ताला इंसान को मुखातिब करके उसे जगा रहे हैं। इंसान दुनिया की मसरूफियत में इतना खो जाता है कि वो अपने मकसद जिंदगी को भूल जाता है। सुबह से रात तक वो रिज्क, तालीम, नौकरी, कारोबार, ताल्लुकात, ख्वाहिशात और दुनियावी कामयाबियों के पीछे भागता रहता है, मगर ये नहीं सोचता कि आखिर ये सब क्यों है, जिंदगी का अंजाम क्या है, मौत के बाद क्या होगा। यह आयत इंसान को झंझोड़ती है कि ऐ इंसान, जरा रुक कर सोच, तू कौन है, कहां से आया है और कहां वापस जाना है। कुरान का अंदाज ये नहीं कि सिर्फ हुक्म दे, बल्कि पहले इंसान के दिल को मुतवज्जो करता है। या अय्युहल इंसान, इसमें बहुत अपनाइयत है। ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला अपने बंदे से बराहे रास्त बात कर रहे हो। यह एहसास इंसान के दिल में आजजी पैदा करता है। आज का इंसान टेक्नोलॉजी में

ये बहुत आगे निकल गया है। ऊंची इमारतें, जदीद मशीनें, मस्तूई जहानत और तेज रफ्तार सफर, इंसान को लगता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया है, मगर हकीकत यह है कि इंसान आज भी उतना ही कमजोर है जितना पहले था। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है, एक बीमारी इंसान को बिस्तर पिला सकती है, एक हादसा सारी ताकत खत्म कर सकता है, एक लम्हे में जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह ताला इंसान को याद दिला रहे हैं कि अपनी हकीकत ना भूलो। ये खिताब इसलिए भी अहम है क्योंकि इंसान अक्सर दूसरों की बात सुन तो लेता है मगर अल्लाह की बात सुनने से गाफिल रहता है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो बहुत लोग उसे सिर्फ तिलावत समझते हैं मगर हकीकत में ये अल्लाह का पैगाम है। जब अल्लाह फरमाते हैं ऐ इंसान, तो गोया वो हर शख्स को अलग अलग पुकार रहे हैं। सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत आपको नाम लेकर बुलाए तो आप फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं, तो फिर जब कायनात का खालिक इंसान को मुखातिब करे तो दिल में कैसा एहसास होना चाहिए। यही एहसास ईमान को मजबूत करता है। इस खिताब में इंसान की इज्जत भी पोशीदा है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार मखलूकात पर फजीलत दी, उसे अकल दी, सोच दी, एहसास दिए, जबान दी, इख्तियार दिया। फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं मगर इंसान को ये इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो अल्लाह की अताअत करे और चाहे तो नाफरमानी करे। यही इख्तियार इंसान को आजमाइश में डालता है। इंसान की जिंदगी दरअसल एक इम्तिहान है, इसीलिए अल्लाह ताला पहले इंसान को मुतवज्जो करते हैं ताकि वो आने वाली बात को संजीदगी से समझे। आज हम देखते हैं कि लोग अपनी शनाख्त मुख्तलिफ चीजों में तलाश करते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई अपनी कौमियत पे फख्र करता है, कोई अपनी शोहरत पर। लेकिन कुरान सबसे पहले इंसान को उसकी असल पहचान देता है, इंसान। ये पहचान इंसान को आजजी सिखाती है। हम सब इंसान हैं, हमारी जरूरतें एक जैसी हैं, हमारी कमजोरियां एक जैसी हैं और हमारा अंजाम भी एक जैसा है। हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हम बीमार होते हैं, हम गम महसूस करते हैं और एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना है। इस हकीकत को याद रखने वाला इंसान तकब्बुर से बच जाता है। इस खिताब में एक और खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों के बावजूद उसे अपनी रहमत से दूर नहीं किया। इंसान बार बार गलतियां करता है फिर भी अल्लाह उसे पुकार रहे हैं, गोया अभी भी वापसी का दरवाजा खुला है, अभी भी इंसान संभल सकता है, अभी भी तौबा कर सकता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। बाज लोग अपने गुनाहों की वजह से मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, मगर कुरान का अंदाज उम्मीद देता है। अल्लाह ताला इंसान को रद्द नहीं करते बल्कि उसे समझाते हैं, बुलाते हैं और सीधा रास्ता दिखाते हैं। या अय्युहल इंसान में यही पैगाम है कि इंसान अपने रब की तरफ वापस आ जाओ। ये खिताब हमें भी सिखाता है कि इंसान को दूसरों के साथ भी एहतराम से बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो सबसे बुलंद और अजीम है, वो भी इंसान को हिकमत और मोहब्बत से मुखातिब करते हैं, तो हमें भी अपने घर वालों, बच्चों, दोस्तों और दूसरों से नरम अंदाज में बात करनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि इस आयत का खास ही
انسان کو بیدار

करने के लिए काफी है। अगर इंसान सिर्फ इतना सोच ले कि मेरा रब मुझे पुकार रहा है, तो उसके दिल में तब्दीली आ सकती है। ये दुनिया आरजी है, मगर अल्लाह का पैगाम हमेशा के लिए है। आज भी कुरान इंसान को वही आवाज दे रहा है, ए इंसान, क्या हम इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं? आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक तुम मुसलसल मेहनत और मुशक्कत कर रहा है। ये अल्फाज इंसान की पूरी जिंदगी की हकीकत बयान करते हैं। दुनिया में आने के बाद इंसान की जिंदगी आराम का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल कोशिश, जद्दोजहद, मेहनत, थकन और आजमाइश का नाम है। हर इंसान किसी ना किसी बोझ, फिक्र, मकसद या जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। कादिख अरबी जबान का ऐसा लफ्ज है जिसमें सिर्फ आम मेहनत नहीं, बल्कि थका देने वाली मुसलसल कोशिश का मफहूम पाया जाता है। ऐसी मेहनत जिसमें इंसान अपनी ताकत लगा देता है। कभी जिस्मानी थकन होती है, कभी जहनी दबाव, कभी दिल के गम और कभी रूहानी आजमाइश। अल्लाह ताला इंसान को ये हकीकत बता रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी आसानी के लिए नहीं बनाई गई। यहाँ हर शख्स को किसी ना किसी शक्ल में मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा पैदा होता है तो रोना शुरू कर देता है, फिर बचपन में सीखने की मेहनत, जवानी में मुस्तकबिल की फिक्र, तालीम, नौकरी, शादी, घर, बच्चों की परवरिश, रिस्क की तलाश, बीमारियों का सामना, बुढ़ापा। जिंदगी का हर मरहला जद्दोजहद से भरा होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बेफिक्र हो। बाज लोग जाहिरी तौर पर बहुत खुशहाल नजर आते हैं, मगर उनके दिल में भी कई परेशानियां होती हैं। कोई दौलत के बावजूद सुकून नहीं पाता, कोई रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई बीमारी से, कोई तन्हाई से, कोई मुस्तकबिल के खौफ से। इंसान की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे आजमाइश में रखता है। यही दुनिया की हकीकत है। कुरान इंसान को उस हकीकत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करता है, ताकि वो मुश्किलात आने पर टूट ना जाए। आज बहुत से लोग इसलिए मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जिंदगी में हमेशा आसानी होनी चाहिए। जब मुश्किलात आती हैं तो शिकवा करने लगते हैं, अल्लाह से नाराज हो जाते हैं या नाउमीद हो जाते हैं। मगर कुरान पहले ही बता देता है कि ए इंसान, तू मेहनत और मुशक्कत के सफर में है। यानी अगर जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं, ये तो दुनिया की फितरत है। अंबिया अलैहि सलाम की जिंदगियां देखें तो वो भी आजमाइशों से भरी हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। ताइफ की तकलीफ, मक्का की मुखालफत, गुर्बत, भूख, अपने प्यारों की जुदाई, और ये सब इस बात की दलील है कि दुनिया आराम की जगह नहीं, बल्कि इम्तिहान की जगह है। इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में आजमाए गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल देखी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन का सामना किया। अगर अल्लाह के महबूब बंदे आजमाइशों से गुजरे तो आम इंसान कैसे बच सकते हैं? असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान को मुश्किलात का सामना ही ना करना पड़े, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान मुश्किलात में अपना ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा कायम रखे। जिंदगी की जद्दोजहद सिर्फ दुनियावी मामलात तक महदूद नहीं, बल्कि रूहानी जद्दोजहद भी बहुत बड़ी हकीकत है। नफ्स इंसान को गुनाहों की तरफ बुलाता है, शैतान बहकाता है, माहौल असरअंदाज होता है। ऐसे में नमाज कायम रखना, हलाल रिस्क कमाना, सच बोलना

सफर में है। कोई भी इंसान साकिन नहीं। वक्त गुजर रहा है, उम्र कम हो रही है और हर गुजरता दिन इंसान को उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जहां उसे अपने रब के सामने हाजिर होना है। इंसान आमतौर पर समझता है कि वो सिर्फ दुनिया के मकासद की तरफ बढ़ रहा है, कोई तालीम हासिल कर रहा है, कोई नौकरी के पीछे है, कोई कारोबार, दौलत, शोहरत या कामयाबी के ख्वाब देख रहा है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के गिर्द गुजार देता है, मगर कुरान इंसान को असल सफर याद दिलाता है। असल सफर अल्लाह की तरफ है। दुनिया में हम जहां भी जाएं, आखिरकार वापसी अल्लाह ही की तरफ है। इंसान चाहे ये हकीकत माने या ना माने, इससे भाग नहीं सकता। हर लम्हा इंसान अपनी आखिरी मंजिल की तरफ करीब जा रहा है। यही वजह है कि वक्त की बहुत अहमियत है। आज का दिन जो गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इंसान अक्सर सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी जवानी है, बाद में इबादत कर लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में बदल जाएंगे। मगर हकीकत यह है कि इंसान को नहीं मालूम कि उसके पास वक्त कितना बाकी है। कितने लोग सुबह घर से निकलते हैं मगर शाम तक वापस नहीं आते। कितने लोग बड़े मंसूबे बनाते हैं मगर जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है। इसीलिए कुरान इंसान को गफलत से जगाता है कि तुम एक सफर में हो और ये सफर मुसलसल जारी है। इस दुनिया की मिसाल एक रास्ते की तरह है। जैसे कोई मुसाफिर कुछ देर के लिए किसी जगह रुकता है फिर आगे बढ़ जाता है, इसी तरह इंसान की दुनियावी जिंदगी भी आरजी है। असल घर आखरत है, मगर अफसोस कि इंसान रास्ते को ही मंजिल समझ बैठता है। वो दुनिया की चीजों में इतना खो जाता है कि आखरत को भूल जाता है। घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत, ये सब वक्ती चीजें हैं। मौत के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। क्या आयत इंसान को अपनी तरजीहात दुरुस्त करने की दावत देती है। अगर इंसान को यकीन हो जाए कि वो अल्लाह की तरफ सफर कर रहा है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। फिर वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी करेगा। एक समझदार मुसाफिर हमेशा अपनी मंजिल को सामने रखता है। अगर किसी को लंबा सफर करना हो तो वो तैयारी करता है, सामान जमा करता है, रास्ता देखता है, खतरात से बचता है। तो फिर आखिरत के सफर के लिए तैयारी क्यों ना की जाए। ये सफर सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह का सफर भी है। इंसान हर दिन रूहानी तौर पर या तो अल्लाह के करीब हो रहा होता है या दूर। हर अमल इंसान को किसी ना किसी सिमत में ले जा रहा होता है। नमाज, तलावत, नेकी, सबर, सच्चाई, ये इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। जबकि गुनाह, जुल्म, झूठ, गुरूर और गफलत इंसान को अल्लाह से दूर ले जाते हैं। यानी इंसान रुक नहीं सकता, वो या तो ऊपर जा रहा है या नीचे। यही वजह है कि इस्लाम इंसान को हर वक्त अपना जायजा लेने की तालीम देता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो रही है? क्या मेरी अखलाक बेहतर हुए? क्या मेरा दिल नरम हुआ? क्या मेरी नमाज में बेहतरी आई? अगर इंसान ये सवाल खुद से पूछता रहे तो वो गफलत से बच जाता है। इस सफर की एक हकीकत ये भी है कि हर इंसान अकेला सफर कर रहा है। अगरचे दुनिया में हमारे साथ खानदान, दोस्त और अजीज होते हैं, मगर मौत के बाद इंसान अकेला अपने रब के सामने खड़ा।

फौरन सब कुछ ठीक हो जाए। अगर दुआ के बाद फौरन जवाब ना मिले तो मायूस होने लगता है। हालांकि अल्लाह बेहतर वक्त जानते हैं। कभी अल्लाह फौरन दुआ कबूल करते हैं, कभी कुछ देर बाद, और कभी आखिरत के लिए बेहतर अजर महफूज कर देते हैं। मोमिन हर हाल में अल्लाह पर एतमाद रखता है। ये आजमाइशें इंसानों के गुनाहों का कुफारा भी बनती हैं। एक बीमारी, एक गम, एक आंसू, एक परेशानी, अगर इंसान सब्र करे तो ये सब उसके लिए अजर का सबब बन सकते हैं। इस्लाम इंसान को ये एहसास देता है कि उसकी कोई तकलीफ बेमकसद नहीं। इंसान के हर गम को अल्लाह ताला जानते हैं। बाज़ औक़ात इंसान लोगों से अपना दर्द बयान नहीं कर पाता, लोग समझते नहीं या गलत समझते हैं, मगर अल्लाह इंसान के दिल की हर बात जानते हैं। इंसान रात के अंधेरे में खामोशी से रोए तब भी अल्लाह सुन रहे होते हैं। यह एहसास इंसान को ताकत देता है। दुनिया की आजमाइशें इंसान को आजजी भी सिखाती हैं। जब इंसान तकलीफ देखता है तो उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। वो समझता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। इसीलिए तकलीफ के वक्त इंसान को अल्लाह से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि और ज्यादा करीब हो जाना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। चाहे तकलीफ कितनी ही बड़ी क्यों ना लगे, एक दिन खत्म हो जाएगी। असल हमेशा की जिंदगी आखिरत की है। अगर इंसान दुनिया की आजमाइशों में सब्र कर ले तो आखिरत में हमेशा की राहत उसका इंतजार कर रही होगी। जन्नत में ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना खौफ, ना थकन, ना जुदाई। वहां हमेशा का सुकून होगा। यही उम्मीद मोमिन को मजबूत रखती है। दुनिया की तकलीफें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। अगर इंसान हर आजमाइश में अल्लाह की तरफ रुजू करे तो यही मुश्किलात उसके दर्जात बुलंद कर देती हैं। लिहाजा जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो ये याद रखना चाहिए, मेरा रब मुझे भूला नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा और अगर मैं सब्र करूंगा तो अल्लाह मेरे सब्र को जाया नहीं फरमाएंगे। बेशक तू अपने रब की तरफ मुसलसल मेहनत और मुशक्कत के साथ बढ़ रहा है। इंसान सिर्फ दुनियावी कामों में ही मेहनत नहीं करता, बल्कि अल्लाह की इबादत, नेकी और अपने नफ्स की इस्लाह के लिए भी उसे मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है। जन्नत आसानी से नहीं मिलती। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इंसान को अपने दिल, ख्वाहिशात, आदतों और जिंदगी के रास्तों को दुरुस्त करना पड़ता है। इबादत सिर्फ चंद अमाल का नाम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम है, और ये कोशिश हमेशा आसान नहीं होती। इंसान का नफ्स आराम चाहता है। वो चाहता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। शैतान भी इंसान को नेकी से रोकने की कोशिश करता है, कभी सुस्ती पैदा करता है, कभी गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, कभी इंसान को ये एहसास दिलाता है कि अभी बहुत वक्त है बाद में नेक बन जाना। इसीलिए इबादत एक जद्दोजहद है। फजर की नमाज के वक्त गर्म बिस्तर छोड़ना आसान नहीं, गुस्से के वक्त खामोश रहना आसान नहीं, किसी ने दिल दुखाया हो तो उसे माफ करना आसान नहीं, हराम कमाई छोड़कर हलाल रास्ता इख्तियार करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल महसूस होता है, मगर यही वो मेहनत है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। एक मोमिन की जिंदगी दरअसल अपने नफ्स के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद है, जिहाद है। जब इंसान अपने नफ्स को छोड़कर अल्लाह की रजा को तरजीह देता है तो वो अल्लाह के नजदीक महबूब बन जाता है। दुनिया कहती है दिल जो चाहे करो, मगर इस्लाम सिखाता है
वो

0: करो जो अल्लाह को पसंद हो। ये फर्क ही मोमिन की असल पहचान है। इबादत की मेहनत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल की भी होती है। बाज लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर दिल हाजिर नहीं होता। बाज लोग कुरान पढ़ते हैं मगर उस पर अमल मुश्किल लगता है। बाज लोग तौबा करना चाहते हैं मगर पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाते। ये सब रूहानी जद्दोजहद का हिस्सा है। अल्लाह ताला इंसान से फरिश्तों जैसी मासूमियत नहीं चाहते, इंसान से कोशिश मतलूब है। अगर इंसान बार बार गिरता है मगर फिर भी उठकर अल्लाह की तरफ वापस आता है तो यही अल्लाह को पसंद है। शैतान इंसान को गुनाह के बाद मायूस करना चाहता है, कहता है तुम बहुत गुनाहगार हो, अब तुम्हें माफी कैसे मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देते हैं। इसीलिए इबादत की राह में सबसे अहम चीज मुस्तकिल मिजाजी है। बाज लोग जज्बात में आकर चंद दिन बहुत इबादत करते हैं फिर छोड़ देते हैं, मगर इस्लाम इंसान को मुस्तकिल नेकी सिखाता है। थोड़ा अमल भी अगर मुसलसल हो तो अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है। मसलन रोज़ाना थोड़ा कुरान पढ़ना, वक्त पे नमाज अदा करना, वालदेन से अच्छा सलूक करना, ज़बान को झूठ और गीबत से बचाना, रोज़ाना कुछ देर अल्लाह को याद करना। ये छोटे अमाल आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को बदल देते हैं। इबादत इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जब इंसान सजदा करता है तो वो दुनिया के सामने नहीं बल्कि अपने रब के सामने झुकता है। यही सजदा इंसान के दिल से गुरूर निकालता है। नमाज इंसान को याद दिलाती है कि असल ताकत अल्लाह के पास है। इस तरह रोजा इंसान को सब्र सिखाता है। ज़कात इंसान को सखावत सिखाती है। कुरान दिल को नरम करता है। दुआ इंसान को अल्लाह के करीब करती है। यानी इबादत सिर्फ रस्म नहीं बल्कि इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाने का जरिया है। आज के दौर में नेकी पे कायम रहना बाज़ औक़ात और भी मुश्किल हो गया है। गुनाह आम हो गए हैं, बुराई को मामूली समझा जाने लगा है। सोशल मीडिया, गलत सोहबत और माहौल इंसान को आसानी से अल्लाह से दूर ले जाते हैं। ऐसे माहौल में अपने ईमान की हिफाजत करना भी एक बड़ी जद्दोजहद है। कभी इंसान अकेला महसूस करता है क्योंकि वो गलत कामों से बचना चाहता है, जबकि दूसरे लोग इन चीज़ों को आम समझते हैं। मगर मोमिन जानता है कि असल कामयाबी लोगों की तारीफ नहीं बल्कि अल्लाह की रजा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन पर कायम रहना हाथ में अंगारे पकड़ने जैसा होगा। इसका मतलब यही है कि बाज़ औक़ात नेकी की राह मुश्किल महसूस होगी मगर अल्लाह के यहाँ उसका अजर भी बहुत बड़ा हो। इबादत की मेहनत में सब्र बहुत ज़रूरी है। हर इंसान फौरन कामिल नहीं बनता, तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है। बाज़ लोग एक गुना छोड़ने में महीना या साल लगा देते हैं। बाज़ लोगों को नमाज की पाबंदी में वक्त लगता है। बाज़ लोग दिल की सख्ती से लड़ते रहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इंसान हार ना माने। इबादत की मेहनत का एक खूबसूरत पहलू यह है कि इंसान को सुकून देती है। रात की दुआ, सजदे के आंसू, कुरान की तलावत, अल्लाह से खामोश बातें, ये सब इंसान के दिल को ऐसी राहत देते हैं जो दुनिया की किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। इस्लाम दुनिया छोड़ने का नहीं कहता बल्कि दुनिया में रह के अल्लाह ताला के लिए मेहनत करने को कहता है। अगर इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से जो जद्दोजहद है उसको पॉजिटिव रखेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ यकीनन इसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा और हमारी असल ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: 107. Dil se desi.
1: Science can be fun. Nah, science will be fun. क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
2: दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।
3: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं। ईद के रंग हजार हैं, मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ। इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए। पेश है खास शो घर घर ईद। आपकी फरमाइश, आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुनाए। हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी, ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए। तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सर्वर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ FM 107 पर।
0: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
4: The radio station with more music. FM 107. दिल से देसी।

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

तो क़ियादत 2026 इसमें 122 ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम द नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम, और साथ में 44 यानी 44 ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इन लीडरशिप प्रोग्राम। इसमें अटेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स पहुँचे, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द ग्रेजुएट्स फॉर द फर्दर फ्यूचर। आई फील लाइक यार मैंने HR वाली लाइन मारी। अब कह रहे हैं कबीर भाई पिंक ट्रक फिर दिख गया, ये हो क्या रहा है? ये उसी सड़क पे समी भाई जो आपको ये पिंक रंग का ये ट्रक दिख रहा है, ये आप क्या दुआ पढ़ के निकलते हैं उसके लिए स्पेशली? एक तो घर से निकलने की दुआ और दूसरी पिंक ट्रक देखने की दुआ। मैं बता रहा हूँ मुझे गाड़ी दिखेगी आई एम फाइन विद इट, बट इफ आई सी अ पिंक ट्रक मैं हो सकता है इसके साइड में गाड़ी ले जाके साइड में मैं बोलूँ उससे ये कलर की चॉइस किसकी थी, मुझे ये जानना है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या है गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, हमने आपको ये पैगाम भेजा है, मुबारक हो आपको बकरीद का महीना, सबसे पहले हमने आपको ये पैगाम भेजा है, ईद मुबारक। ये कम कम भाई ने जो शेर भेजा है मुझे, वाह वाह वाह वाह वाह, सुन रहे क्या मतलब एलिट्रेशन देखिए वर्ड्स का, कह रहे हैं गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है मैं इसमें बढ़िया सा रैप बना सकता हूँ। पर मुबारक मेरे भाई आपको भी। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, ईद मुबारक इन एडवांस। अलीना स्वीट हार्ट, एग्जाम्स आर ओवर, एवरीथिंग इज चिल नाउ, सो ईद मुबारक एडवांस में आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार, इन्जॉय। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग ब्रदर अबू आकिब साहब, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। तब उस समय लिखती है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या स्टोरी थी कल की, स्पेस से लेकर जंगल एडवेंचर तक, फिर वुल्व्स और दोनों कॉस्मोनॉट्स का जिंदगी के लिए स्ट्रगल और द लास्ट रेस्क्यू, नेवर थॉट इट वुड मूव दिस वे एट द स्टार्ट, हैट्स ऑफ टू योर नरेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज एफर्ट्स, कीप एंटरटेनिंग, यू आर द बेस्ट RJ। अरे ये देखो बहन, ये जो आपने कह दिया है ना, मतलब आपको पता है इसका असर क्या पड़ता है, मेरी इम्पैक्ट मेरे मासूम से नाजुक से दिमाग पे, कह रही कि कल बच्ची की वैक्सीनेशन थी सो कुडंट लिसन। अरे बहन नो प्रॉब्लम, आई होप एवरीथिंग वेंट वेल एंड थैंक यू सो मच। मैं आपको बहना, ये देखो मैं ईद के 3 दिन भेज रहा हूँ, किधर गया दिल, कहाँ गए भाई, हाँ ये लो बहना एंड इन्जॉय आपको भी एडवांस में। एक मैसेज है, मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, अरे चैन क्यों नहीं ले रहे लोग भाई, बच्चों को अगले महीने फिर से शुरू है मिड टर्म एग्जाम्स। मुझे याद नहीं कि मेरे इतने रेगुलर एग्जाम्स हुए हैं, बट ठीक है होता होगा आज के ज़माने में। एक मैसेज है आयशा का, गुड मॉर्निंग कबीर अंकल, टुडे इज़ माय लास्ट डे ऑफ स्कूल, ईद मुबारक। लास्ट डे ऑफ स्कूल, छुट्टी है फिर बच्चे हैं, छुट्टी है फिर। एक मैसेज है अब्दुल सलाम साहब का, वालेकुम असलाम, क्या मैं कल सुबह 6 बजे घर जाऊँगा। अरे मुबारक हो भाई, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको मुबारक, मैं तो भूल ही गया इसलिए मैं एविएशन की स्टोरी नहीं सुना रहा अभी, क्योंकि बरबर की पब्लिक बाहर जा रही है। अच्छा मेरे सवाल को सुनिएगा ठीक है, बड़ा ही क्रिटिकल किस्म का सवाल है ये, बड़ा ही क्रिटिकल। मैं 3-4 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बड़ी ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री वो ऑफिस को लेके जो साइकोलॉजी होती है लोगों की उसके ऊपर है। तो उसमें दो लोगों का मेंशन है, दो किस्म के लोग होते हैं, वैसे तो बहुत किस्म के होते हैं मगर दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो ऑफिस कुछ भी नहीं ले जाते सिर्फ अपने आप को ले जाते हैं, ये मैं आ गया हूँ, दरबार के दरवाजे खोल दिए जाए। और फिर एक जनता होती है जो ऑफिस में जब आती है तो उनके साथ पूरा सामान होता है भाई, इट फील्स लाइक कि वो ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा लगता है अभी अटैची खोलेंगे उसमें से क्या क्या नहीं निकलेगा, हो सकता है टोपी में से खरगोश भी निकल आए। तो कुछ लोग बड़े ही प्रिपेयर्ड जाते हैं ऑफिस में, दे हैव देयर टिफिन, दे हैव देयर लैपटॉप का बैग, उसके अलावा बहुत कुछ और भी, स्नैक्स का पैकेट। मैं बड़ा ही मतलब इम्प्रेस हूँ, इतनी जो मेहनत की जाती है उसके साथ। और कुछ लोग होते हैं कुछ ले जाते मैं आ गया वो काफ़ी है। तो आप किन में से आते हैं, लाइक आपका आपका ऑफिस का कैसे है? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए स्पेशली मैं पूछने जा रहा हूँ, आप कौन सी कैटेगरी में, क्या आप भर भर के सामान ले जाते हैं, मतलब आपका क्या सीन रहता है, या आप सिर्फ चले जाते हैं कि मैं एजार जी मैं आ गया, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं पहले तो ये बताइएगा। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी है जो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में देखी, एंड एंड ऑफ द शो में वो डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा, बड़ी अमेजिंग है, फनी भी है, आपको मजा भी आएगा। बट बिफोर आई टेल यू दैट, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए आप ऑफिस की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वाली कैटेगरी जो कि मूवर्स एंड पैकर्स की तरह होती है कि सब कुछ मूव कर ले जाएंगे, वो अपना बहुत सारा भर के सामान लेके आते हैं और फिर भर के सामान वापस ले जाते हैं, या आप उनमें से कहते हैं जी मेरे को कोई लोड नहीं है ठीक है। एक मैसेज है, यस फ्रॉम टुमारो ईद हॉलीडे स्टार्ट, यस स्टिल संडे, अ वेरी लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट टुमारो,

अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये अब्दुल करीम करीम भाई ने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग। अच्छा एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, पहले शाहिद भाई को पढ़ दूँ। हाँ तो ये भाई कहते हैं, कबीर भाई मेरा नाम शहजाद है, मैं ऑफिस में पूरा पूरा सामान उठा के ले जाता हूँ, मेरे पास बॉटल भी होती है और मैं कहीं और से पानी भर के नहीं पीना चाहता, तो मैं सिपर भी ले जाता हूँ, मैं टिफ़िन भी ले जाता हूँ, और क्या है ये, मैं लैपटॉप बैग भी ले जाता हूँ, और ये सब कुछ सेटल डाउन करने के बाद एक कप चाय और उसके बाद काम शुरू होता है। क्या आप बैंक वैंक में हैं? मतलब आई एम रियली क्यूरियस टू नो, इतना सारा सामान, इतनी प्रिपेयर्डनेस, वेरी नाइस। पर ये अच्छी बात है, यू नो इट्स वेरी नाइस अगर इतनी तैयारी के साथ हम मार्केट में उतर रहे हैं। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, परवेज़ अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, ये कह रहे हैं हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड जी, हैप्पी वीकेंड। मैं ज़रा देख लूँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, सब चीज़ें यहाँ पर तो लग रही हैं। ओके सो यस, माई क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल, मुझे आप ऐ दसो जी कि आप जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आपकी क्या तैयारी होती है? लाइक यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि सब कुछ लेके जाऊंगा मैं, या आप उनमें से हैं कि ठीक है ना मैं आ गया काफ़ी है। दो किस्म के लोग हैं, मैं किसी को ही नहीं कह रहा, कोई एक्टिव नहीं है, ना ना ना वैसा कुछ भी नहीं है, और कुछ लोगों को ले जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, तो बात ही दूसरी है। बट देर आर पीपल जो फुल तैयारी के साथ मार्केट में उतरते हैं। हाँ? तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं मुझे जानना है। 666-22-107 एक भाई ने मैसेज किया है, ये कहते हैं कबीर भाई मैं उनमें से हूँ जो ऑफिस खुद पहुंच जाता हूँ, बहुत बड़ी बात है, मगर एक साल पहले मैं दूसरी कंपनी में था और वहाँ मैं सब कुछ ले जाया करता था, वहाँ मेरे पास लैपटॉप होता था, घर से मेरी बीवी टिफ़िन बना के देती थी और साथ में मेरे पास डेस्क को सजाने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ होता था। राइट नाउ मेरी डेस्क कन्फर्म नहीं है इसलिए मैं किधर भी बैठ जाता हूँ और उस वजह से मैं ज़्यादा सामान ले जाता नहीं हूँ, बट आई गेट द आइडिया। ओके ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जियो और जीने दो। डिम्पल मलिक नाम है आपका, डिम्पल जी पहली बार मैसेज किया, एक मैसेज आया है, परवेज भाई कह रहे हैं, परवेज भाई कह रहे हैं आई कैरी ओनली लैपटॉप बैग एंड सम स्नैक्स, वन ऑफ माई कलीग्स ही ब्रिंग्स ट्रॉली बैग एवरी डे टू द ऑफिस, आई डोंट नो वॉट ही कीप्स इन साइड। अरे अरे तो कभी आपकी ऐसी जिज्ञासा नहीं जागी परवेज भाई की, पूछ लिया जाए कि क्या है आपके इस ट्रॉली में, ट्रॉली बैग परवेज भाई? क्या मैंने सही पढ़ा, ट्रॉली बैग ला रहा है आपका एक कलीग, वो अटैची वटैची भर के ला रहा है, क्या चक्कर है भाई। एक मैसेज और, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एंड आपने नाम नहीं मेंशन किया, आई डोंट नो, इन्हें कहना है कि कबीर भाई मैं ऑफिस जब जाता हूं तो मेरे पास भी काफ़ी सामान होता है, मैं एक पूरा पैकेट भर के पॉपकॉर्न लेके जाता हूं अक्सर ऑन अ वीकेंड और उसके बाद ऑफिस में सबको बांट देता हूं, मेरी आदत ऐसी रही है कि मैं खाना वाना तैयार करके भी ऑफिस ले जाता हूं तो मैं सबके लिए ले जाता हूं। ये कौन सा ऑफिस है ये प्लीज़ मुझे बताएं, जहां आप खाना वाना तैयार कर भाई देख ले जा रहे हैं ऑफिस में। कौन कौन खाएगा बिरयानी के लिए हाथ खड़े करो। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, और ये सलीम अख्तर साहब ने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग सलीम भाई, देन डिम्पल जी गुड मॉर्निंग, आई थिंक हमारी पहली बार बात हो रही है क्या, डिम्पल जी से मेरी पहली मरतबा बात हो रही है। क्या लिखा है उन्होंने, मैं आपको सुनता नहीं था, अभी डेली सुनने लगा हूँ, बहुत मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, अच्छा दिन गुजर जाता है मेरा भाई, दिस इज़ लाइक अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। तो आप साइलेंटली सुन रहे थे डिम्पल भाई, साइलेंटली कोने में, थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव भाई, ये लो मैं आपको 3 दिल भेज रहा हूँ, मेरी तरफ से कबूल करो। वैसे आप हैं कहाँ से डिम्पल भाई ये बताइएगा, वैसे ये इट लुक्स लाइक अ कैबिन बैग, ये ऑफिस में आपको कैबिन बैग ला रहे हो कैबिन, परवेज भाई अब आपको पूछना पड़ेगा ये कैबिन बैग के अंदर क्या है भाई, ये ऐसे तो नहीं चलेगा, ऑफिस के अंदर आदमी कैबिन बैग लेके आ रहा है, क्या है उसके अंदर, आप मुझे नहीं पता कि आप क्यूरियस है कि नहीं, मुझे जानना है भाई। या तो आप उसको फोन पकड़ा देना, लो भाई इससे बात कर लो, कैबिन बैग ऑफिस में क्यों ला रहा कोई बंदा। एक मैसेज है, देखा परवेज भाई, तबस्सुम बहन भी इंटरेस्टेड है इसमें, कह रही है ट्रॉली बैग सो दैट ही कैन ट्रेवल व्हेनेवर ही वांट्स, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है ये, क्या चल क्या रहा है ये। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, ये मिस्टर मलिक, इन्होंने इतना ही नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, बिलाल भाई वालेकुम अस्सलाम, तो मिस्टर मलिक साहब कहते हैं कि कबीर भाई मेरे यहाँ दो फिलिपिनोज काम करते हैं, दे आर वेरी नीट एंड क्लीन और वो साथ में एक ट्रॉली बैग लेके आते हैं, तो आप हैरान मत होइए, उनका ट्रॉली बैग एक ब्लू है और एक ग्रे कलर का है, दोनों ट्रॉली बैग में कपड़े भी लेके आते

जाते हैं क्योंकि वो वहां से कहीं टेनिस खेलने के लिए जाते हैं. ओके वो लोग टिफिन भी लाते हैं और टिफिन भी अच्छा खासा बड़ा लाते हैं. उन्हें देख के लगता नहीं कि वो इतना खाते होंगे मगर वो अच्छा खासा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं. कह रहे हैं कि भाई वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, उनके दोनों हाथ भरे होते हैं. ये भाई ये मैं एक चीज मैं ऑनेस्टली बोलूं, ऑनेस्टली मैंने देखा भाई फिलिपिनोज ना बहुत एकदम मैनेज्ड चलते हैं भाई, एकदम सटीक. वो तरह नाक की सीध में भाग रहे हो, नाक की सीध में. अगर वो ला रहे हैं ना ट्रॉली व्रॉली ऑफिस में तो उसका कोई पर्पस होगा भाई, कोई रीजन होगा. ऐसा ना लाते हो एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आई ऑलवेज चेक माई सर्विस कार्ड वॉलेट एंड मोबाइल फोन. वेरी गुड. इतना ही है, इतना ही है. अपना भी इतने ही इच्छे मोहम्मद भाई. बस ये पंजन कार्ड होना चाहिए. वॉलेट भाई मैं रखता नहीं, 4.5 साल 5 साल हो गए वॉलेट ही नहीं रखा मैंने. तो आई डोंट कीप कैश. मैं बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी हूँ तो मुझे लगता नहीं है कैश. और मोबाइल फोन इतना ही है, मेरे तो वॉलेट भी नहीं है भाई. एक मैसेज, भाई मैं पाकिस्तान सियालकोट से हूँ और काम रासलफान में करता हूँ. अच्छा, ओके, वेरी नाइस. बड़ा अच्छा खासा लंबा सफ़र है मेरी जान, आपका तो बहुत अच्छा खासा लंबा सफ़र है निम्बल भाई. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग. हो सकता है उसमें कोरियन स्किन केयर किट रखी हो. अरे रे रे भाई, वो अच्छी बात है वो लौट के वापस नहीं आए. मैं वो डरा के चले गए मुझे. वो कह रहे हैं कोरियन किट तो नहीं है उसमें. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, बैग इसलिए लेते हैं कि क्या तो टिश्यू चाय शुगर पेपर जो भी सामान्य हो ऑफिस से लेकर जाया जा सके. ये आप तारीफ में कह रहे हैं उनकी क्या सीने में. ये एम ए इकबाल भाई कह रहे हैं एक मैसेज आया है. ये देखिए पोल खुलना शुरू हो चुकी है अब मेरे भाइयों और बहनों. एक मैसेज आया मेरे पास इफ्तकार भाई का, कह रहे हैं भाई हमारे ऑफिस में तो एक बंदा है वो आता है बैग लेके प्रॉपर, वो लगता है कि जैसे अभी सीधा जहाज में बोर्ड करने वाला. कह रहे हैं कि वो उल्टा कंपनी से चीनी वीनी भी लेकर जाता है. कई मरतबा वो कंपनी में चीनी लेके आता है, कई मरतबा चीनी लेके चला जाता है. ये चीनी का क्या रिश्ता है, इतनी शुगर खा रहा है क्या वो, क्या चक्कर है भाई. ये जिनके ऑफिस में बूफे हैं वो कहाँ गए. अरे जिनके कंपनी वाले बूफे वूफे करवा रहे हैं सवेरे सवेरे, कहाँ हो भाई आप लोग, तो ले जाते नहीं होंगे अटैची. मैं आपकी जगह होता मैं अटैची ले जाता, उसमें बूफे का सामान भर लेता भाई. तो जितने बूफे वाले हैं जरूर कॉल कीजिएगा मुझे, आई वुड लव टू नो. एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, नियाज भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरे ऑफिस में मैं ही हूँ वो जो बहुत कुछ ले जाता है. मेरे पास दो बैग्स होते हैं, एक लैपटॉप बैग और एक टिफिन बॉक्स. अच्छा, इसके अलावा मैं जो हूँ ऑफिस वालों के लिए स्नैक्स ले जाना पसंद करता हूँ, बिकॉज दे लाइक इट. मैं सब में स्नैक्स बांटता हूँ, ये रास्ते में मुझे जो भी मिलता है वो सब में बांटता हूँ. एंड आई लव डूइंग इट, आई बीन डूइंग इट सिंस 10 ईयर्स एंड ये मुझे अच्छा लगता है. अच्छी बात है यार, ये देख रहे शराफत की पुड़िया है सबके सब, माशाल्लाह. नियाज भाई ये तो बहुत बहुत ही नेकी वाला काम कर रहे हैं आप. भाई कह रहे रास्ते में मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं अपने ऑफिस वालों के लिए जाता हूँ. देख रहे हैं आप, और इन्हें देखो वॉलेट ले जाता हूँ, फोन ले जाता हूँ. ये एक कमाल की बात है. एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका. इन्होंने भी नाम नहीं मेंशन किया, इन्होंने लिखा है कि मेरे साथ एक फिलिपिनो भाई है मेरा, हम रोज़ ट्रेवल करते हैं और वो घर से तो खाली हाथ निकलता है लेकिन ऑफिस पहुँचते पहुँचते उसके पास बहुत सारा सामान हो जाता है. वो गाड़ी रुकवा रुकवा के सामान खरीद लेता है. ना आपने सही कहा, बहुत मैनेज्ड लोग हैं, राशन पानी का पूरा ख्याल रखते हैं. तो काश अगर वो फिलिपिनो भाई सुन पाते मेरी अब बात को, समझ पाते तो मैं उनसे कहता ये देसी आदमी, मैं बता रहा हूँ आपका फ़ायदा उठा रहा है ये आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको समझ आ रही है, कैसे समझाऊँ इन्हें. कोई फ़ायदा ही नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड दिस देसी गाय टेकिंग फायदा. अरे भाई साहब, एक मैसेज है, रुको, हॉलीडेज में स्टोरी सुनेंगे. नहीं भाई, हॉलीडेज में नो स्टोरी. अमन भाई आप सीधा जो स्टोरी आएगी वो 31 को आएगी मॉर्निंग में, एंड देन द रेस्ट ऑफ द मंथ्स. सो बेसिकली 31 को और फिर एक तारीख से, क्योंकि इवनिंग शो है, सो देन इवनिंग शो में पूरी तरह से होगी. सो या, बट ईद के चारों दिन पे फुल ऑन कॉन्टेस्ट है, उसमें बहुत सारे नाम है, पर कह रहे हैं सो जाऊंगा फिर.

0: अमन भाई नहीं, आपने रिपोर्ट देनी है अमन भाई, आपने रिपोर्ट देनी है मेरा भाई। ना ना ना ना ना ला ला ला ला ला कह रहे हैं पैसा टाइम में मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको, मुझे चाहिए मतलब इतना तो कर ही सकते हैं अमन भाई, एक दिन एक दिन। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ने मैसेज किया है कि भाई हमारा फिलिपिनो आपकी हिंदी समझता है। ठीक है, सो जो फिलिपिनो भाई आपके साथ अगर हिंदी समझते हैं भाई, ये जो देसी आदमी ना आपको हो रहा फ़ायदा उठाया जा रहा है आपका, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मज़े में चल रहे हैं ना, मेरा फिलिपिनो दोस्त रस्ते में सामान उठा के ले आता, मेरा ही फ़ायदा उठ जाता। एक और मैसेज है, कॉन्टेस्ट तभी खेलूँगा अगर पैसे टाइम में मिलेंगे। मैं कोई इधर डीलर बैठा हूँ ये कोई बात होती है। नहीं, इस बार मिल जाएगा भाई, वो अलग सीन था मेरी जान, वो बहुत ही अलग सीन था। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या है? सवाल बताता हूँ मैं। ओके, सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप किन में से हैं? एक होते हैं भाई पूरे सामान को मूव करने वाले, समझ रहे हैं आप, बेसिकली एक कोई ना कोई आपके ऑफिस में होगा जो सारा सामान पूरा भर के ले जाता है, उसके पास बैग्स होते हैं, उसके पास भर भर के सामान होता है, लैपटॉप बैग लो, टिफिन लो, ये लो वो लो, और कुछ लोग खाली हाथ आते हैं। मैं आ गया ना, काफ़ी है। तो आप कौन से कैटेगरी में, एंड आपके ऑफिस में कोई है जो भर भर के सामान लाता है? आपको लगता है भाई साहब क्या क्या है, कंधे पे बॉटल है, हाथ में अटैची है, ऐसा कोई है तो बताइएगा। अच्छी बात है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एक मैसेज है, भाई डिम्पल नाम ऐसे नहीं रखा हुआ है, मुझे असल में डिम्पल ही पड़ते हैं, थैंकफुली। भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं अगला क्लीशे सवाल यही पूछने वाला था, डिम्पल भाई मैं टेंशन में आ गया, तो मैंने कहा आपको ये डिम्पल मलिक जो नाम मिला है, ये आपका निकनेम है या आपको मिला हुआ है फॉर अ रीज़न? थैंकफुली भाई कह रहे हैं ऐसा नहीं रखा डिम्पल नाम मैंने, ठीक है, गालों में पड़ते हैं गड्ढे। भाई के क्यूट वाले, ठीक है, पोकी भाई है हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। अजय भाई ने मैसेज किया, अजय भाई कह रहे हैं कबीर भाई मेरे ऑफिस में मुझे छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही हैं, जब मैं इस ऑफिस में नया नया आया था, मैं नाम नहीं ले सकता ऑफिस का, सो प्लीज़ मुझे पुश मत कीजिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा। ये कह रहे हैं मेरे ऑफिस में दो तीन लोग हैं जो भर भर के सामान लाते हैं और मुझे उन्हें देख के लगता है कि मैं स्कूल में आ गया हूँ, मुझे टिफ़िन ख़रीदने का मन करता है। मैं बता रहा हूँ ना, ये सिचुएशन पता क्या है, कुछ लोग ऑफिस में जब टिफ़िन लेके आते हैं घर का, और बहुत ही कमाल का टिफ़िन होता है उनका, मतलब आपको लगता है यार मैं भी टिफ़िन ख़रीद लूँ क्या, तो ये जो स्कूल वाली फीलिंग है ये ऑफिस में आ जाती है कई मरतबा। जो लोग घर का प्रॉपर खाना लेके आते हैं उनको मेरा सलाम। तो एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप ऑफिस में क्या लेके? मैं कुछ नहीं लेके आता भाई, मैं अपने आप को लेके आता हूँ। फ़ोन लेके आता हूँ और चाय का थर्मस लेके आता हूँ, जो भी मिसिंग है, पता नहीं मैंने कहाँ रख के छूट गया है मुझसे, सो वो भी भूल गया हूँ मैं, बट यू गेट द आइडिया राइट। सो खादिम भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सुबह सुबह खूबसूरत आवाज़ सुन के एनर्जी मिलती है, अरे अरे क्या बात है। एक मैसेज, आई टेक माई जिम बैग As I usually go to gym directly from office, though I prefer to go empty-handed. अलग ही स्वैग है उसका, है ना? ये स्वैग किसका है? जिम बैग नहीं जाना, वैसे मुझे लगता है शिव भाई ये अलग ही आपका हो जाए ना, रौला बनता होगा एकदम, जिम बैग के साथ आदमी ऑफिस में आ रहा है, ये भाई शिव क्या हाल है? पर खाली हाथ पहुँचने का भी रौला है, पर आई थिंक वो जो लोग सामान भर भर के ले आते हैं ना उन्हें लोग सीरियसली लेते हैं। ये भी एक फैक्टर है ना जाने क्यों। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: खादिम
1: कबीर भाई कैसे हैं
0: आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार, आप सुनाइए खादिम भाई।
1: सब ठीक है, खैरियत जी, माशाल्लाह। आज तो आपने एक ऐसी बात छेड़ी है कि मैं कभी ऐसा होता है ना कि ड्यूटी कभी सुबह से शाम तक जब भी रहती है कंटिन्यू, तो पहले ब्रेक होती थी, अभी ब्रेक नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो वो शिफ्ट में मैं जब भी जाता था तो हर कोई मुझसे पूछता खाने के लिए, मैं बोला यार प्लीज हम 14 घंटे रोजा रख सकते हैं तो 8 घंटे नहीं खा, अगर कुछ ना खाए तो कुछ
0: हो जाएगा,
1: मुश्किल तो नहीं है? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो मैं बिल्कुल आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं। हाँ एक ये होता है कि

0: जो भी था बहरहाल उस टाइम में सिर्फ एक बनाना और साथ में कुछ और ऐसे या एप्पल या दूसरा चीज लेके जाता था, खजूर ले।
1: तो अभी कुछ नहीं आता है, मतलब आपको तो बनाना आता है खादिम भाई, मतलब कमाल है।
0: मुझे बनाना भी आता है, मुझे सब कुछ बना सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कभी अपने साथ खाने की चीज कभी नहीं लेके गया।
1: क्यों?
0: ड्यूटी पे।
1: क्यों मतलब?
0: अच्छा ही नहीं लगता मुझे।
1: अच्छा नहीं लगता?
0: अच्छा नहीं लगता
1: मुझे। अगर मुझे खाना अच्छा बनाना आता होता तो मैं देख बांध के ले जाता, बताया आपको। आता नहीं है।
0: शुक्र है कि आपको आता नहीं है, और आप नहीं तो आप देख उठा के उधर स्टूडियो में लेके जाते थे।
1: मैं तो लेके आता स्टूडियो भाई साहब, मतलब अगर मुझे खाना बनाना आता ना तो मैं तो अंधी मचाता हूँ मार्केट में। तो वो
0: अच्छा माशाल्लाह नहीं, वो ये तो ऐसे कहने की बात है, तो ये मुझे मालूम है कि आप भी छोड़ो, बोले छोड़ो यार फोन उठा के लेके जाएगा, बस छोड़ो यार। फिर बाद में आप स्टूडियो के अंदर हैं, उधर तो आपको वो जो आपके पीछे तो वो दो डोर बंद किए जाते हैं, और बाहर खाना रखा हुआ और कोई और आके उठा लिया, तो फिर ना उधर माइक छोड़ सकते हैं,
1: मुझे
0: ना कोई ना माइक छोड़ सकते हैं, ना आवाज दे सकते
1: हैं। एक ही आदमी पे शक है जो खा सकता है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं लेना, वो अगर सुन लेगा ना फिर मेरे साथ लड़ेगा।
1: मैं तो कह दूं खादिम,
0: समझ गया
1: खादिम भाई, खादिम भाई ने बोला भाई, सरवर भाई का नाम मैंने नहीं बोला भाई साहब से।
0: और यार नाम तो ले दिया आपने।
1: मुझे सिर्फ सरवर भाई पे शक है किसी पर नहीं, तो मुझे लगता है कि वो
0: माशाल्लाह खाने के शौकीन भी, लेकिन माशाल्लाह बनाते भी अच्छा है ना।
1: अरे रे रे रे अरे खतरनाक बनाते हैं, खतरनाक
0: माशाल्लाह माशाल्लाह बनाते भी अच्छे और है शौकीन भी, खाते भी अच्छे।
1: हाँ ये तो है। नहीं पर
0: क्या नाम है उसका, फजील भाई का ड्यूटी ये शो फिर सुबह में होगा या
1: नहीं? फजील भाई का सुबह नहीं होगा, सुबह जो है हमारी महविश बहन और नाजिया बहन होंगी, दोनों सुबह महविश और नाजिया होंगी, शाम में मैं होऊंगा, दोपहर में सरोर भाई होंगे, और फजील साहब बीच में कहीं हैं मेरे ख्याल में 3 बजे का शो।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ
0: सही है। वो तो अक्सर अभी ये स्पोर्ट्स शो भी चलता है ना,
1: जी जी जी जी,
0: अमीन भाई के साथ,
1: जी जी जी,
0: वो भी आज खत्म होने वाला है।
1: जी जी जी, तो बड़ा
0: ठीक है। ओके बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, सब सुनने वालों का सलाम।
1: वालेकुम। देखो मेरे अंदर क्या है, एक अंदर एक शेफ छुपा हुआ है किसी कोने में, पर जब मैं अंडा ठीक से उबालना सीख जाऊंगा उसके बाद मैं इस बारे में बात करूंगा, अभी इस पे पूर्ण विराम लगा देते। एक मैसेज आया है, कुछ लोग जिनके लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए, अच्छा कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं, बात तो सही है। पर इससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे फायदा दे रही है। एक मैसेज है, आई विल मिस यू मॉर्निंग शो कबीर भाई, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू लिसन टू यू इन द इवनिंग टाइम रेगुलरली एंड मॉर्निंग टाइम, बिकॉज माय ऑफिस टाइम स्टार्ट्स एट 2:30 एंड एंड्स एट 3 PM, आई एम ऑलरेडी एट होम। परवेज भाई आई विल मिस यू टू मेरा भाई, बहुत सारा प्यार। नसीम साहब ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि खोजी। मैं हूं जी मिस्टर खोजी। एक मैसेज है, फॉर वुमेन इन वर्क प्लेस इज more like a fashion show, different bags every day, size, shape, color, whether there is something inside or not. For me personally, it's one bag every day, same one that fits essentials, because क्या है, one CBA, taking things out, switching bags every day. ये इकरा ने मैसेज किया है, इकरा कह रही हैं कि ऐसा है, ये हमारे यहाँ तो फैशन शो चलता है, कुछ जो ख़वातीन हैं वो बैग्स चेंज कर करके लाती हैं, आज ये आज को कल वो परसों वो थर्सों वो, लेकिन इकरा कह रही है मैं तो सिर्फ एक बैग लेके आती हूँ, उसी में निपटा देती हूँ मैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि ये कुछ ऑफिस में जहाँ पे ख्वातीन ऑफिस ज़्यादा होती हैं तो आपस में कंपटीशन चलता होगा ना, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज़ डोंट ब्लेम मी, पता चला मुझे ही कोट कर रहे हैं, कबीर ने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा था साहब, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है। पर एकरा जी थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। एंड देन एक और मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं अमन भाई, हैं आई पिक्ड योर टी बॉटल, आई लाइक इट सो मच, कह रहे हैं मैं आपके ऑफिस आया था, आपकी टी बॉटल नहीं है वो, ठीक है इज्जत से नाम लो, लाल थर्मस है वो, टी बॉटल, ज़्यादा फैंसी नहीं कर दिया आपने, देसी बनाओ उसको, थर्मस है थर्मस। कह रहे हैं ब्रो आई कैन कुक ऑल काइंड ऑफ डिशेज एंड माई मदर टॉट मी हाउ टू कुक ऑल द डिशेज इंक्लूडिंग द पंजाबी स्पेशल डिशेज, सरसों का साग एंड मक्के की रोटी, डन नॉर्मल डिशेज विच वी कैन ईट इन अ पंजाबी कल्चर इंडियन कल्चर, नॉट अ स्पेशल हाई फाई डिशेज, ओनली द नॉर्मल वंस। वाह वाह वाह वाह वाह, दिल दरिया है आपका। एक मैसेज है फरहत भाई का, कह रहे हैं जसर भाई, हैं

0: पूछा गया था आप क्यों लगाते थे, सरवर भाई ने ये भेजने को बोला था। हाँ ये कल मुझे भेजा क्या फरद भाई। एंड गुलेज भाई ने मैसेज किया, सलाम कबीर भाई, मैं उनमें से हूँ जो बस आ गया हूँ। कह रहे हैं उनमें से हूँ बस जो आ गया है, मेरे को कोई सामान नहीं है। एक वैसे मैं ऑफिस में सिर्फ लैपटॉप ले जाता हूँ। गुलेज भाई वेरी गुड वेरी गुड। एक मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं खातिमा, कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा खाते हैं जैसे पहली पहली बार या आखिरी बार खाते हैं। अगर आप मुझे शिमला मिर्च के साथ कुछ भी देंगे ऑफिस में तो मैं ऐसे ही खाऊंगा। तला भाई वालेकुम अस्सलाम। भाई तला कह रहे सवाल सुलभ है, सवाल सुलभ है। तला भाई मैं कह रहा हूँ कुछ ऑफिस में लोग होते हैं जो बिल्कुल सामान वामान लेके जाते हैं, प्रॉपर अटैच ही, लंच के अटैच ही, ये अटैच ही, लैपटॉप का बैग, ये वो, पानी की बोतल, मेरी अपनी पानी की बोतल है। तो कुछ लोग इतने पैक्ड होकर ऑफिस जाते हैं और कुछ लोग बगैर तैयारी को कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस आ गए, बहुत बड़ी बात है। एक मैसेज है, सॉरी ड्राइव का नेक्स्ट, क्या ड्राइव के नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट करना सही नहीं है, पर वॉइस से हिंदी और भी ख़तरनाक हो गया है वो लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया आपकी हिंदी से। एक मैसेज है, कबीर भाई सलाम, खाली हाथ आना इज़ गुड, जाने में आसानी होती है। क्या था, कह रहे खाली हाथ आना, वकास भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वकास भाई कह रहे हैं खाली आता हूँ, खाली जाओ, खाली हाथ आए थे खाली। अच्छा ये तो गाने हो गए, एक सेकंड कॉल आ रही है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं तला भाई बोल रही हूँ, तला भाई क्या हाल है, बढ़िया चल रहा है आपका? तला भाई ऐसी आवाज आ रही है कहीं गुफा वुफा में फंसे हुए हो, ऐसा लग रहा है मुझे
1: भाई। बस बड़े नाजुक सूरत है।
0: अच्छा नाजुक सूरत है, क्या हो गया?
1: अरे कुछ
0: तो तला भाई बताओ आपका क्या सीन रहता है, मतलब आपके ऑफिस में है कोई या फिर आप ही उनमें से बिल्कुल पैक्ड होके जाता है लाइक पूरा?
1: अरे भाई लड़ना करे पागल वागल होता काम करने जाते हैं हम, ये सब का पैक होके जाते
0: नहीं, कुछ लोग बड़ी तैयारी से जाते हैं सुबह से भाई, लोगों ने बताया क्या क्या ले जाते हैं
1: भाई। मैं बताऊँ आपको एक बात,
0: जी जी
1: फ्रेंडशिप नहीं हो लोग, लेकिन जो जितना पैक होके जाता है ना उतना बेकार होता है वो आपकी।
0: अरे बाप रे,
1: सीरियस बता रहा हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा
0: भाई। मैंने कुछ नहीं बोला है, दिस इज कोटेड बाय तला भाई।
1: हाँ भाई मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, इसने बोला तला भाई कॉल करो ये बोलना है।
0: अच्छा अच्छा हाँ तो फिर क्या क्या आपके ऑफिस में कोई है वैसे ले जाता है वैसे कोई?
1: आप ना भूले एआई का दौर है आज का।
0: अभी बनाऊंगा डीप फेक निकाल के फोटो, तला भाई ऐसी जगह छापूंगा ना फोटो, सब बता रहा हूँ भागते फिर पीछे उड़ रही होगी धूल। मुंडा साउथ उल्दा तो कुड़ी बटिंडे दी, ठीक है
1: कह रहे लोगों ने एसेंशियल बोलना शुरू कर दिया है, एमनेस्टी भी बोला इसको, कोई पता नहीं कोई पता नहीं।
0: हाँ
1: बोलो बोलो,
0: नहीं बोलो,
1: आने वाले वक्तों में ना इसको एमनेस्टी बोलना शुरू कर दे,
0: नहीं होगा होगा ये भी होगा, वो एसेंशियल बोलना कूल भी लगता है ना। आई हैव ऑल द एसेंशियल्स विद मी यार इन द बैग यार, आई हैव ऑल द एसेंशियल्स।
1: नहीं नहीं हमने हमारे मुंह से ना वो अब दबान में लकवा पड़ जाता है, सामान बोलते ना, सामान लेके जा रहा हूँ
0: सामान लेके, मैं अटैची लेके आया हूँ, मेरी अटैची में बहुत सारी चीजें, टी शर्ट बुशर्ट पड़ी है अंदर।
1: अब एसेंशियल कैसा है एसेंशियल,
0: बाद में आया वर्ड ये एसेंशियल, नहीं तो कौन बोलता था।
1: मैं अपने खाल खाल में रहता हूँ, खाल में रहो भाइयों, तो ये एसेंशियल क्या होता है?
0: तो आपने जो शुरुआत में बोला वो एक बार आप अगर आप दोहरा दे तो मजा आ जाएगा, क्या बोला आपने
1: भाई? कबीर ने बोला मुझे कि
0: कबीर ने बोला
1: करके भाई तला भाई कॉल करो और ये बोलो।
0: अच्छा अच्छा,
1: जितने भी लोग ये एसेंशियल्स लेके आते हैं ब्रीफकेस और अटैचमेंट लेके आते हैं ना वो इंतहा बेकार होते हैं।
0: अच्छा,
1: जो हल्का फुल्का अपना बैग एक लेके जाता है रेगुलर, वो काम के लोग होते हैं, उनको उनको एसेंशियल से कोई मतलब नहीं, काम के लोग होते
0: हैं। ये भाई तला भाई का नाम लिखो, तला भाई का नाम लिखो, आई नहीं उठवाना है, सिग्नल से उठवा लिया आपको, सिग्नल से उठवा लिया आपको, क्या कहाँ से उठवाए आपको बताओ,
1: चाहे मैं जहर चाहिए या क्या चाहिए, अदरक की जगह जहर पड़ जाएगा बता रहा हूँ।
0: अच्छा नहीं हो जाएगा फिर
1: तुम बोलते,
0: बहुत टाइम हो गया
1: तुम बोलते बोलो यार आज अदरक का स्वाद चेंज चेंज क्यों लग रहा है,
0: और फिर वो जो बच्चन साहब की तरह खीर निकलेगी। हाँ मैंने मैंने सुनी दोपहर में कॉल आपकी, इतनी इतनी तहजीब से आदमी, इतनी वो होता ना इतनी बेकार एक्टिंग कर रहा है, इतनी बेकार एक्टिंग दोपहर में जब कॉल करी थी आपने, इतनी

0: इतनी शरीफ वाली एक्टिंग, मैंने कहा भाई अगर मैं होता भी 10 रियल काट लेता।
1: बड़ा मुझे, अबे भाई तुम 15 काट चुके हो अपने।
0: अच्छा खुद ही काट लिए? मैं वही कहूँ, मतलब क्या बात हो रही है इतनी तहजीब से। मैंने रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा ली। अब मैंने कहा अरे अरे अरे ये कौन आदमी है, ये तो पूरा आसमान से उतरा है सीधा, क्या हो गया?
1: ये हु रेडी बंदे सवाल करे, ये हु है क्या, ये सुबह वाला हु है या ये कौन सा वाला है?
0: नहीं मुझे अब इंतजार रहता है, मैं जब बाकी शो सुनता हूँ तो मैं जज करता हूँ कि कौन किस शो में कैसे बात कर रहा है, तो उससे मुझे पैटर्न समझ में आता है।
1: जैसा देख वैसा देख
0: भाई। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो।
1: तुम्हारा बदतमीजी वाला शो है तो बदतमीज
0: मिलेगा। बहुत दिनों से मैंने झगड़ा वगड़ा किया भी नहीं है, मैं ऐसी खाली बैठा था, मेरा मन से कर रहा,
1: मजा नहीं आ रहा, वाकई कसम से मजा नहीं आ रहा,
0: मेरा बहुत मन कर रहा।
1: कोई एक तुम ना मसला है, बताऊं क्या, तुम टॉपिक घरेलू ला रहे हो आजकल ना,
0: अच्छा
1: ये मजा नहीं आ रहा।
0: क्या चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा मसाला चाहिए।
1: फेयरवेल है तुम्हारे, तुम जा रहे हो, जा बिल्कुल नहीं आओगे तो कुछ हो जाए।
0: हाँ तो 31 तारीख को चाहिए,
1: कोई ऐसा ऐसा चटपटा सा कोई टॉपिक हो जाए ना, वो जल हो गया।
0: ठीक है,
1: तन बदन में,
0: तन बदन में, ठीक है। तो मेरे आप भी सवाल कुछ मन में है ना, आपको तड़कता भड़कता इसमें आप और मैं बहस कर सके?
1: मेरा तो तुम्हें पता है फिर, मैंने दे दिया सवाल तो करना पड़ेगा।
0: अरे बिल्कुल, कैसे नहीं, कैसे नहीं, ये बताइए।
1: देख ले भाई हालत ले रहा, हालत आई शपथ कर।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं रिक्स उठाने को तैयार हूँ, रिक्स उठाऊंगा मैं।
1: पिरामिस बोल,
0: क्या बोलूं मैं, पिरामिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस।
1: 6 सितंबर को आएगा, बोल आएगा 6 सितंबर को।
0: ये छोटी अंगड़ी का प्रॉमिस है भाई साहब, आप एक बार ये बता दो मेरे को, भेजो भेजो
1: बस इंशाल्लाह ना, मैं आपको फिर निकालते हैं अपना चैट जीपीटी भी ना, अपना देती है उससे निकाल के देता हूँ।
0: हाँ,
1: तो भी ऐसे ऐसे आगे देता है।
0: हाँ,
1: यहाँ से कूदोगे तो कम लगेगी, उधर से कूदोगे तो ज्यादा लगेगी।
0: और एआई का जवाब देने का तरीका भी बड़ा कमाल का है, जब उसे कुछ बोलेगा अरे वाह साला बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है, मैं इंतजार में रहूंगा तला भाई, चौखट पकड़ाऊ मैं जया बच्चन की तरह, आप आ जाना। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है तला भाई, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो तला भाई के बाद जो है कुछ और मैसेजेस हैं। भाई FM 107 पे आपका शो मस्त लगता है, आवाज़ सुन के दिल बन जाता है, कभी दोहा में मिलने का मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के साथ इकबाल भाई ने मैसेज किया है। इकबाल भाई, मैं मेरी तरफ से 3 दिल आपको। दिल में जाए कबीर, फरद भाई कह रहे हैं कबीर भाई आपको सुबह में सुनने का अलग ही मज़ा है, लेकिन अब ये खुशी भी जाने वाली। भाई ये सब मुझे सुबह सुबह इमोशनल मैसेजेस क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? कह रहे हम कल जब नींद से उठे 9:30 हो गए थे इसलिए आज भेजा। फरद भाई व्हाट इज दिस। अमन भाई लिखते हैं आई टेक द लैपटॉप बैग, 1 टिफिन बैग एंड 1 बैग फुल ऑफ 2 चार्जर्स, 2 अच्छा ओके, 2 हेडफोन्स एंड 1 बड्स टू ओके एंड 1। अरे इतने सारे हेडफोन क्यों ले जा रहे हैं आप, इतने सारे हेडफोन क्यों ले गए, ये कोई वजह है? तो आप एक लैपटॉप बैग ले जा रहे हैं, टिफिन बैग ले जा रहे हैं, एक बस्ता भरा हुआ है 2 चार्जरों से। अरे भाई क्या हो क्या रहा। एक कॉल है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: मेरा नाम फैजान भाई, कैसे हैं?
2: मैं ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं?
0: कैसी चल रही इंजीनियरिंग भाई? अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो बढ़िया चल रहा है भाई, आप बताइए।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो आपका सवाल है ना,
0: हाँ
2: ये आप अपने साथ बैग लेके जाते हैं नहीं, तो मैं जब न्यू आया था कतर में तो उस टाइम मैं बैग लेके जाया करता था।
0: अच्छा
2: तो हमारी कंपनी ना बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी, नाम तो खैर नहीं लेना।
0: कितने प्यार से बताया, वो क्या है कंपनी थोड़ी टॉक्सिक थी। हाँ फिर
2: बहुत ही ज्यादा, मतलब जो है ना इतनी टॉक्सिक, मैं वो क्या बताऊँ, हर बंदा दूसरे के पीछे था, ऐसे कर रहे थे।
0: अच्छा
2: तो टी बॉय ने जान छोड़ता था, उसने आ जाना 9 बजे आता था और ऑफिस के अंदर, भाई क्या हाल है ठीक है। मैंने कहा ना क्या काम है तुम्हें, कोई काम नहीं, मैंने कहा चलो जाओ या फिर अपना, वो देखने आता था बंदा क्या कर रहा है।
0: अच्छा।
2: ऐसा माहौल था।
0: ओके।
2: तो जब शाम होती थी ना तो हमारे डायरेक्टर साहब थे वो भी पाकिस्तानी थे, उन्होंने पूरा ना पाकिस्तान का माहौल बनाया हुआ था, घर का माहौल बनाया।
0: अच्छा।
2: जिस तरह होते है ना अंकल आ जाएंगे तो जब तक मैं कहूंगा तो नहीं जाएगा कोई भी, और इस तरह करते हैं।
0: अच्छा।
2: वो ड्राइवर को बोलते थे कि भाई 5 बज जाएंगे ना तो तुमने नहीं आना, तुम अभी दूर चले जाओ, 3-2 किलोमीटर दूर ना गाड़ी को पार्क कर दो।
0: तो पूरा पिंड का माहौल बनाया हुआ भाई, तो
2: पूरा पूरा पिंड का माहौल जिस तरह चौधरी साहब। अब होता क्या था हमें हाँ।

0: भागने के लिए अगर कोई बंदा बैग लेके आ रहा था ना तो वो कहते थे कहाँ जा रहे हो भाई। अच्छा वो मैंने तुम्हें ये कहा था काम, ये कहा था वो कहा था, फिर वो चीज करके ना हमने ऐसा सबने बैग लाने छोड़ दिए।
1: अरे भाई।
0: और शाम का वक्त आता शाम का वक्त आता था तो एक आधी गाड़ी लेकर उसमें सब लोग बैठ के चार पांच लोग और हम जो है ना वहां से रफू चक्कर हो जाया करते थे अपने टाइम पे। 5 बजे छुट्टी होती थी, वो भी नहीं जा सकते थे
1: ओके।
0: तो उसके लिए फिर बैग छोड़ दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत ही खत्म होगी। फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तरक्की कर दी, फैमिली आ गई, फिर घर से नाश्ता करके आते थे, दोपहर घर चले जाते थे खाना खाने।
1: तो अभी अभी कुछ नहीं आते, अभी कुछ नहीं आते।
0: अभी तो मैं आया हूँ, क्या कहते हैं, 5 तारीख को वापस आया हूँ, वो फैमिली को छोड़ के आया हूँ ना पाकिस्तान जंग की वजह से, तो बेटी को भी छोड़ के आया हूँ।
1: अच्छा।
0: तो अभी जो है वो क्या कहते हैं, मसला था कि भाई अगर वार ठीक हो जाएगी, मतलब ये सीज़फ़ायर हो जाता है तो मैं ले आऊंगा दोबारा। अभी मैं सिर्फ अंडे बॉयल करके लेके आता हूँ चार, और उसके अलावा कुछ भी नहीं।
1: शाबाश चीते शाबाश।
0: तो वो खा लेता हूँ बस ऑफिस बैठ के, बाकी बस गुजारा हो जाता है, फिर शाम को
1: ये पिक्चर, ये पिक्चर की जो एंडिंग करी है आपने मुझे ना बहुत कसम से कुछ भारी सी बात होने वाली है। मैं दो अंडे ले जाता हूँ बस फिलहाल।
0: सही है, चार
1: चार, वेरी गुड। सॉरी गिनती कर, गिनती कर।
0: मैं सुन रहा था कि आपका शो चेंज हो रहा है, आप जा रहे हैं मॉर्निंग से।
1: जी भाई, जी भाई,
0: फिर एक शेर हो जाए आपके।
1: अरे बिल्कुल भाई, तैयार हूँ मैं, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। इरशाद, हाँ।
0: शिद्दत और भी शदीद होती जा रही है, आपसे मोहब्बत भी मजीद होती जा रही है। दिल तो था पहले ही आपका दीवाना कबीर भाई, अब तो रो भी आपकी मुरीद होती जा रही।
1: अरे यार, तो कहाँ कहाँ से लाते हो यार फैजान भाई, किधर ये सामने कौन सी कॉपी खुल जाती है आपकी, ये फॉरेन सिचुएशन के हिसाब से निकल के बाहर आता, ये कौन सा टैलेंट है फैजान भाई?
0: कोई भी मौसम होता है ना, मौसम बारिश या जिस दिन मेरी तबीयत काफी फ्रेश हो, ऑटोमेटिकली हर लफ्ज के ऊपर मेरे से शेर निकलते हैं।
1: क्या बात है, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, बट यू वेरी क्विक, ये मैंने देखा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है फैजान भाई, कीप इट अप यार। क्या बात है, घर पे निकलते हैं शेर आपके या घर पे बिल्ली निकलती है, क्या रहता है?
0: नहीं नहीं, घर पे निकलते थे शेर। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई ना तो शादी से पहले मैंने अपनी वाइफ को कहा था कि मैं आपको ना एक बात कहूंगा जब हमारा निकाह हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो कहती हैं क्या, फिर जब वो निकाह के बाद जब मैंने उनका फर्स्ट टाइम हाथ पकड़ा ना वहाँ पे स्टेज पे, तो लेके जाने के लिए, तो फिर मैंने उनको एक शेर कहा था कि हाथ क्या आता है किसी का हाथ में मेरे, सभी हालात मेरे हाथ में आ जाते हैं।
1: अरे रे रे, आज ही, तो आज ही, हाँ, फिर
0: इस पे ना बहुत ज्यादा खुश हो गई थी वो। पहला पहले दिन था उनका, तो मैंने कहा चलो कोई बात।
1: बहुत सारे कुंवारे आज ही शादी करने निकले हैं शेर के चक्कर में, क्योंकि फैजान भाई लिख के दो, आज ही मैं निकाह पढ़ने जा रहा हूँ। अरे भाई, ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी क्विक थिंकर, थैंक यू सो मच इंजीनियर फैजान साहब, बहुत अच्छा लगता है इस बात करें, जजाकल्ला मेरे भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो ये आखिरी का शेर जो है मिल गया है, जिन लोगों को निकलना है निकाह के लिए बता दीजिएगा। एक मैसेज है भाई, मस्ट डिस्कस विद टीम, भाई मस्ट डिस्कस विद टीम। ओके, ये आपने जो मैसेज किया अभी मैं सुनता हूँ। जसविंदर पाजी कहते ने कबीर जी गाना, क्या गाना तैयार भाई, गाना चलूगा 7 बजे के बाद। एक मैसेज है खादिम भाई का, डिस्टर्ब मी आई एम फ्री है। हो क्या रहा है लोगों को सुबह सुबह। कमाल उद्दीन शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम, फिर एक कॉल आ रही है, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम।
2: मॉर्निंग कबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
2: अमन बोल रहा हूँ जी।
1: मैं समझ गया भाजी, मैं समझ गया, बताओ क्या कहना चाहते हो?
2: हाँ जी, कैसे हैं जी?
1: मैं जी बस वही हड्डी वही खा ले, आप सुनाए।
2: अच्छा, मैं फैजान भाई को पूछना चाहता हूँ, आपने किस किस के हालात हाथ में पकड़े हैं?
1: अरे पेशे से इंजीनियर हूँ, ठीक है, मुझे मत सिखाओ।
2: वो भी सिविल, किसी का हाथ मेरे हाथ में आ जाता है, हाँ, तो उनके हालात मेरे हाथ में आ जाते हैं। क्या बात है, मैं सोच रहा हूँ किस किस के हालात पकड़े हैं आपने।
1: देखा आपने शेर पढ़ने का तरीका, आप और मैं शेर पढ़ते तो लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, छेड़ रहा है लगता है। कितने प्यार से पढ़ के गए वो।
2: फैजान भाई बहुत अच्छे आप प्रेपरेशन करते हो, बहुत बढ़िया है,
1: तैयार आदमी, तैयार आदमी है पूरा
2: जी। कबीर भाई स्टोरी रेडी करते हैं, फैजान भाई शेर रेडी करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल भाई, दवाई बजा रखे जी। तो तमन भाई, तो आपको क्या रहता है भाई, इतने हेडफोन क्यों ले जा रहे हैं ऑफिस में आप, व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
2: हाँ मैंने इसीलिए आपको कॉल किया था। हाँ

0: मेरे पास दो फोन है, सबके पास यूजुअली दो ही फोन होते हैं, कंपनी का और घर का।
1: अच्छा,
0: मेरे पास घर का ही है दो फोन
1: तो ये इतना समा क्यों बांधा आपने

0: चेंज कर लो मन भाई
1: जी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा, मतलब इस टाइम ये मेरा बर्थडे है June 27 को, मैं नया फोन लूंगा, अपने आपको गिफ्ट करूंगा 17 प्रो।
0: तोहफा मैंने खुद को दिया है। अच्छा,
1: मैं हर साल अपने आप को कोई ना कोई तोहफा देता ही हूँ, क्योंकि कोई नहीं देता है।
0: अरे कोई हालात जो है आपके हाथ में लेने को तैयार नहीं, ये समझ में आ रहा है।
1: क्योंकि परिवार में मैं ही हूँ, अपने सब मेंबरों के लिए और अपने आप के लिए भी मैं ही हूँ इधर।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अमन भाई, फिर ये दो हेडफोन का क्या चक्कर है, मतलब ये फोन की वजह से दो हेडफोन जा रहे हैं ऑफिस में?
1: नहीं, एक हेडफोन सी टाइप है, दूसरा हेडफोन जैक टाइप है। जो MI का हेडफोन है वो जैक है, जो सैमसंग का है वो सी टाइप है।
0: अच्छा, ओके।
1: हाँ जी, जब घर पे बात करनी होती है तो सी टाइप है, और जो दूसरा वायरलेस हेडफोन है, किसी को मालूम ना पड़े कि मैं गाने सुन रहा हूँ, तो हाँ। वो लगा के मैं तो लगा के बैठा रहता हूँ।
0: एक पतले पिन के चार्जर वाला भी ले ही लो, जब सब कुछ ले ही लिया तो एक पतले पिन वाला भी ले लो, क्या बोलते हो?
1: पतले पिन वाला चार्जर का जमाना तो गया, अरे हो गया।
0: आप इतना स्टॉक रखा हुआ है आपने, तो वो भी ले लो, क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं, आपने
1: सैमसंग का वायरलेस चार्जर है।
0: अच्छा,
1: उसको रखो, चार्ज होता रहता है।
0: और ये सारा सामान आप लेके जाते हैं, इसके अलावा कुछ टिफिन विफिन कुछ लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते?
1: हाँ जी, घर का खाना बना के टिफिन वगैरह, मतलब दो होते हैं, यानी एक में राइस होते हैं, समटाइम्स राइस मैं डेली नहीं खाता, दूसरे में सब्जी।
0: कितनी रोटी आज?
1: रोटियां 4।
0: ओहो, क्या बात है, वो निकी निकी रोटियां क्यूट सी या फिर थोड़ी सी बड़ी?
1: नहीं, रोटियां, हाँ, निकी निकी पतली वाली रोटियां होती हैं।
0: ओए ओए, बड़ी क्यूट रोटियां। तो आप बनाते हैं, कोई मिल रहा है आपको, घर से मिल रहा है ये सब?
1: नहीं, समटाइम्स रेडीमेड लेके आता हूँ, अगर छुट्टी रहेगी तो पराठे बनते हैं बस, आलू के, गोभी के, मतलब सोच लेना पहले, मूली के बस।
0: यहाँ जिस बात को मत छेड़िए मेरी, आलू मत जाओ, ठीक है? अभी शो चल रहा है मेरा, मैं हिल भी नहीं सकता हूँ।
1: मैं तो बनाता हूँ। आलू के पराठे बनाता हूँ छुट्टी में, हर छुट्टी में। अभी ईद की छुट्टी है, वो प्लान कर रहा हूँ।
0: बस अमन, बस ये आलू के पराठे का जिक्र नहीं सुबह सुबह 9 बजे से पहले।
1: कुकिंग के बारे में बात कर रहे थे आप?
0: हाँ हाँ, कुकिंग के बारे में। आप तो सब बना लेते
1: हैं। जैसे मम्मी बनाते थे घर में, तो मुझे आदत होती थी उनके साथ हेल्प करना।
0: हाँ जी,
1: तो उन्होंने काफी कुछ सिखाया मुझे, मतलब कुकिंग मोस्टली मम्मी ने ही सिखाई है, बाकी जैसे इधर मोस्टली मतलब कुकिंग करता था अकेला।
0: हाँ, हाँ।
1: और यूट्यूब से भी काफी कुछ सीखा।
0: वेरी नाइस, अच्छी बात है। हमारी अम्मा तो कहती थी निकल जा किचन से, तो वो वाला सही था। वेरी गुड।
1: बर्तन तोड़ देते हो गया।
0: जी, मैंने अपने पेट पे चाय भी गिराई है, तो मेरे अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है। यस, मेरे अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, अपरंपार है।
1: ओह माय गॉड,
0: तो इसलिए मुझे
1: नुकसान तो नहीं हुआ चाय गिरने से?
0: नहीं, तो एक नुकसान का लेवल 1 बताया है मैंने आपको। नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं मोटी चमड़ी हूँ, बाकी उसके बाद
1: लेवल 1
0: है जी। मुझे अंडा उबालना तक अलाउड नहीं है, तो मैं उस मयार पे जा चुका हूँ जहाँ पे इतना भी भरोसा नहीं करते घर वाले मुझ पे, समझ रहे हैं आप?
1: अच्छा, आप पानी उबलना रखते होंगे पैन में, नीचे झुकते होंगे कुछ उठाने के लिए, पैन के हैंडल पे हाथ बजता होगा, पूरा पानी आपके सर पे।
0: ये जो आपने आइडिया दिया है अच्छा आइडिया है,
1: आप वो वाले कुक है, मुझे समझ में आ गया। अगर आप आएंगे तो आपको किचन में जाना अलाउड नहीं है, मेरी किचन में तो जाना ही नहीं है।
0: भाई मेरे अंदर एक शेफ है, ठीक है? एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा अमन भाई, मैं आने तो दो मार्केट में।
1: ओह माय गॉड,
0: हां ठीक है अमन भाई।
1: सही है कबीर भाई, थैंक यू सो मच, अभी जा रहा हूँ ऑफिस।
0: एक ओके मेरे भाई,
1: सॉरी, ईद हॉलीडेज में नहीं आएंगे?
0: ईद हॉलीडेज में नहीं है भाई, उसमें कॉन्टेस्ट है।
1: ठीक है, मैंने बोला आपको पहले ही, मैं सो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा।
0: ठीक है भाई,
1: रिपोर्टिंग क्या देनी है आपको छुट्टी में? जानी चलेगा ना उसमें? हाँ, चलेगा पूरा?
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई,
1: आप आएंगे वैसे उसमें ईद की हॉलीडेज?
0: मैं ईद में आऊंगा ना भाई, 4 दिन शाम को 5 बजे।
1: बट स्टोरी नहीं रहेगी। चलिए ठीक है कबीर भाई, थैंक यू सो मच,
0: ओके
1: भाई, हैव अ नाइस डे,
0: टेक केयर। तो जिंगल चलाने का वक्त है, और घड़ी में हो रहे हैं 7:02। आप भी मेरा साथ दो प्लीज, साथ देते रहो। ये चीज आपको याद आएगी, मॉर्निंग बता रहा हूं मैं, ऐसे टूस के भाव टूस के। गुड मॉर्निंग।

0: FM 107. Time check.
1: चिक मैं गुड मॉर्निंग दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे 73 बाय द क्लॉक 7:02 में बोल चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं पूछ रहा था, देखो दो किस्म की जनता आती है ऑफिस में, ठीक है। एक जनता होती है जिसके पास सारा सामान होता है, वो लगता है कि अभी ट्रेन में चढ़ने जा रहा है उनके पास अटैची होगी, टिफिन होगा, लैपटॉप बैग होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर एक आदमी आपको या इंसान या कोई भी आदमी, इंसानी की बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक शख्स ऐसा होगा जो कि खाली हाथ आ रहा होगा। यही दो किस्म के लोग ऑफिस में काम करते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? देखिए दोनों ही कैटेगरीज अपने आप में कमाल की है। जो बहुत सारा सामान लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ भाई काबिल तारीफ है, क्योंकि इतना ज़्यादा थक नहीं रह सकता। एक चीज़ है, अगर मैं खाना बनाना जानता तो भाई साहब मैं डेली फैंसी फैंसी टिफिन लाता, वो बड़े वाले क्यूट से टम्बलर, वो तो प्यारे प्यारे से, गर्मा गर्म रोटी अंदर से निकलती। बट दैट इज़ माई ओन प्रॉब्लम। आप क्या कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप भर भर के सामान लेने वालों में से, कि लैपटॉप बैग भी आ रहा है, एक और बैग आ रहा है, एक और बैग आ रहा है, टिफिन भी आ रहा है, या फिर आप खाली हाथ ऑफिस जाते हैं? बहरीन से मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग बहन, कैसी तैयारी चल रही है ईद की? एक मैसेज आया है, क्या है, मेरी स्पेशलिटी देसी आलू पालक। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है तो देखने में। बेगम मायके गई हैं, अच्छा ओहो यार, अच्छा खाना बना ले तो कामरान भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, मुझे तो अलाउड ही नहीं है भरोसा ही नहीं है किसी को। एक मैसेज है, ऑफिस जाते वक्त लैपटॉप बैग तो है लेके जाता हूँ, भूल जाता हूँ रैंडमली, मोबाइल वॉलेट वॉच पेन ही उसके बहुत टाइम हो गया। मैं पता, मैं पेन सिर्फ जानबूझ के लगा लेता हूँ कभी कभी, ये दिखाने के लिए कि देखो, देख रहे हो यही आदमी है भरोसे लायक। पता नहीं एक अजीब सा भरोसा सामने वाले को हो जाता है अगर पेन वेन आपने शर्ट पर लगा रखा है तो। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अपने पास तो एक ही फ़ोन है, ये कौन सी कंपनी है जो दो दो फ़ोन देती है भाई देती है भाई देती है। अस्सलाम वालेकुम नौमी भाई, आप भी जाग जाओ, कह रहे भाई से पूछें मीठे में क्या लेके जाते हैं ये तो पूछा ही नहीं। अमन भाई मीठे में क्या लेके जाते हैं ज़रा बताएं भाई, रोटी तो पूछ ली मैंने। सुदीप्त सर ने मैसेज किया, सुदीप्त सर कहते हैं, कबीर भाई गुड मॉर्निंग, आपका शो इवनिंग में होगा तो फिर हमारी दूरी बढ़ जाएगी। अरे नहीं सुदीप्त सर, ऐसे कैसे, आई विल डिस्टर्ब यू। देखते हैं, ऑफिस में लैपटॉप और छोटा सा ब्रेकफास्ट का डब्बा, पानी की बॉटल हर समय। बट आई हैड सीन माई नेबर्स इन मुंबई एंड सम कलीग्स कैरिंग ब्रेकफास्ट 5-course लंच का डब्बा कभी कभी टाइम पास के लिए। ये कौन से लोग हैं जो इतना सामान कैरी करके जा रहे हैं? मुंबई वालों की चीज़ माननी पड़ेगी, इन लोगों को लोकल ट्रेन में भी जाना हो तब भी भर भर के सामान ले जाएंगे, कैसे करते हो रे? एक और मैसेज आया, मुंबई वालों से तो इम्प्रेस हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, वखरा से तौखीर बट साहब ने, तौखीर भाई ने और तौफीक भाई दोनों ने मैसेज किया। शहजादा सलीम वालेकुम अस्सलाम, देन एक और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। एंड देन एक मैसेज है, व्हाट इज़ द टॉपिक, टॉपिक इज़ वेरी नाइस, टॉपिक इज़ ग्रेटर, ओके बता दें टॉपिक क्या। तो मैं पूछा था, ऑफिस में दो किस्म के लोग आते हैं राइट, जिनके एक होते हैं जो बहुत सारा सामान लेके मार्केट में उतरते हैं, दे हैव लैपटॉप बैग्स, ये वाला बैग, वो वाला बैग, टिफिन बॉक्स, हज़ारों चीज़ होती हैं और बहुत ही हर रोज़ वो ला पाते हैं, हर रोज़ ले जा पाते हैं, जैसे शिफ्टिंग चल रही है। बट कुछ लोग खाली हाथ आते हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में? एक मैसेज है, हमें हैदराबादी रोटी भी है, खाओ खाओ मेरे भाई, बिस्मिल्ला करो। इरफान भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप ऑल इज़ वेल। भाई मैं ब्रेकफास्ट सुबह करके जाता हूँ, हम तो क्या है खाली हाथ वाले हैं, शर्म आती है मुझे, बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लो नहीं मतलब आप ले जा सकते हैं, ऐसा कोई शर्म किस बात पर आ रही है इरफान भाई, मतलब मैं ये समझा नहीं, मुझे ये बताएं किस बात पे शर्म आ रही है आपको, मैं आपकी शर्म दूर कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मैं जी बढ़िया, तुसी दसो। एक मैसेज है जावेद भाई का, जावेद भाई वालेकुम सलाम।

मैं कहा जी हू हा जो हनी सिंह ने हर गाने के आखिरी में लगाना शुरू कर दिया है, ये भी कुछ अलग ही ट्रेंड है। चिड़िया उड़ी खेलनी है किसी को, मैं बहुत मजा आता है, काश काश रेडियो पे ये देख चिड़िया उड़ी खेलते, बड़ा मजा आता सही। आई एम लाइक अ प्रो प्रो मैक्स, समझ रहे हैं आप। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई को मैं सबसे पहले कॉल करूंगा, बहुत टाइम से इनको कॉल नहीं किया है मैंने, सो आई रियली वांटेड टू कॉल हिम। रुको मैं आपको कर रहा हूँ कॉल, ये गई मेरी कॉल। फिर अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। सलमान भाई मैसेज आया है, क्या लगा? एक बहुत प्यारा मैसेज है जुबेली अनीस भाई का। अनीस भाई कह रहे हैं सुबह सुबह झटका दे दिया आपको, मॉर्निंग सुनकर दिन बन जाता है। जामिया वाले अनीस भाई कह रहे हैं वास्ता लगाओ ताकि आप मॉर्निंग में रहो।

0: कह रहे वास्ता लगाओ मेरा वास्ता घर में नहीं चलता है, आप बात कर रहे कंपनी में, क्या बात है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आसिफ भाई, मैसेज कैसे भाई, कह रहे कैसे भाई, भाई मैं ऑफिस ही नहीं जाता, कह रहे मैं ऑफिस ही नहीं जाता, क्या बात कर रहे हैं आप मैं पूरे दिन ड्राइविंग करता हूँ, और रही बात काम पे कुछ ले जाने की, तो मैं रेडी होकर चला जाऊँ वो बहुत बड़ी बात है, और कुकिंग तो 10 में से 6.5, बड़ा आई हेट कुकिंग आई लव ईटिंग। बहुत ही क्लियर है आरिफ भाई, बहुत ही क्लियर हेडेड है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: मैं जी बढ़िया, आप सुनाओ।
1: बस बढ़िया है।
0: हाँ जी भाई,
1: पाजी पहले उड़ गई, दूजी उड़ गई, तीजी उड़ गई, रह गई कैडी पाजी, कैडी रह गई।
0: अरे ऐ मत पूछो पाजी, कैडी रह गई सानू
1: नहीं। अरे यार तो उड़ गई फिर रह गई कैडी पाजी
0: तावीर जी दसो कि मैं
1: और कबीर भाई क्या हाल, ठीक है?
0: बात जी बढ़िया बढ़िया। तो वीर जी फिर सुनिया तुसी सवाल?
1: हाँ सवाल मैं सुना, मैं तो खाली हाथ जाने वाला है, मैं तो खाने का डब्बा भी नहीं रखता,
0: खाना खुना कुछ नहीं?
1: नहीं कुछ नहीं, मैं क्या रास्ते में जिससे मिल जा उधर ही होटल ही खा रहे हैं बस, वही ठीक है।
0: तो नहीं था फिर जीवने के लिए कुछ तो चीज है ना, मतलब एटलीस्ट
1: तो रास्ते में ही कर लेते हैं कुछ
0: पाजी
1: सवेरे सवेरे चक देते हैं
0: सवेरे सवेरे चक देते जी आलू दे परोठे
1: सही बात
0: है। नहीं बढ़िया है, ये भी चलेगा। पर मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या चल रहा है अभी, मामला कैसा है मौसम बाहर का?
1: बढ़िया है एकदम, नॉर्मल है अभी तो, थोड़ा गर्मी तो तेज है लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ठीक है जी, आज मुझे लग रहा है कितने पंजाबियों ने मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझे मेरे पंजाबी कौम ने याद दिला दिया पराठा खाने के लिए, आज पराठा खाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वीर जी, इंस्पायर कीता जी, इंस्पायर। ओके थैंक यू सो मच मेरे भाई। ओके जी, तो आई लाइक दिस एटीट्यूड, यदि मैं सुबह ही चख लेता हूँ जी, सब कोई टेंशन ही नहीं है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आई कैरी 2 बैग्स, लैपटॉप बैग्स, लंच बैग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ब्रेक सैलेड लंच बॉक्स टम्बलर। भाई साहब ओके, there is only, this is only for 9 months, okay, remaining 3 months no breakfast also because family on vacation for 2 months, 1 month Ramadan, 1 month, itna zyada specific, mashallah Umar bhai, oh baap re baap bhai, bahut zyada managed hai aap, mashallah, ye itna detail mein to main bhi nahi ja sakta hu apne aaj ke din ko leke jitna aap pure saal bhar ka leke chale gaye, bahut badhiya। आलू दे मैं परांठे खाना आज, वो ना वो हरियाणा में कहते हैं ना परांठे, परांठे खाएंगे जी परांठे गुड़गांव में कहते हैं जी परांठे। प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बड़े भाई, क्या चल रहा है? एक मैसेज है, क्या है अपना नसीब और ऑफिस जाते हुए हाथ, ये क्या है? अच्छा एक मैसेज और आया है, ठीक है भाई, ये मैसेज क्या भाई ने, भाई कितने दिनों के लिए इवनिंग में जा रहे हो? वही 2-2.5 महीने के लिए, ऐसा लग रहा है गुफा उफा में जा रहा हूँ मैं अरे भाई इवनिंग आ जाऊँगा वापस, डोंट वरी इंशाल्लाह। देखो ये मत करो, मत करो, छेड़ो नहीं, ये अमन भाई जो है ये दही ते चा और अचार भी प्लीज़ फिर जी नो। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, दिल्ली वाले, एक सेकेंड, दिल्ली वाले क्या, दिल्ली वाले ऑलरेडी शेफ़ होते ही हैं ये जो दिल्ली वाले ऑलरेडी शेफ़ होते ही हैं, मुझे बीच में छोड़ दिया गया उज़ैर इकबाल साहब, दिल्ली वाले तो हम तो देखो, अब मैं आपको क्लियर बताऊं, अब मैं कह दूं क्या उज़ैर भाई आपकी इजाज़त तो बता दूं इनको, लड़ाई हो जाएगी फिर बताता हूं। तो देखो भाई हम दिल्ली वालों का टेस्ट ना हम थोड़े से नखरीले होते हैं, पर हमारे कहे हुए खाने जब आप खाएंगे जो हम रेकमेंड करते हैं, हमारे रेकमेंडेशन पर ध्यान दिया करो, हम लोगों के रिकमेंडेशन ना बहुत सॉलिड होते हैं, क्योंकि हमको अगर कुछ अच्छा लग गया तो वो बहुत ही बढ़िया है। एनीवे 666-22-107 एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसे हैं कमाल भाई,
2: क्या हाल है कबीर भाई?
0: बस बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह,
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है भाई।
0: जी भाई तो क्या चल रहा है
2: भाई? क्या सुनाऊं भाई, तो अभी सुनाने के लिए फोन किया था मतलब भाई कल एक दिन की अपने कहानी नहीं भेजा,
0: कल आपको कहानी नहीं मिली
2: भाई, जाने की वही तो बोल रहा हूँ, जाने की इतनी खुशी, आपने बोला भाई आपको सामने कहानी मिल जाएगी, आज दिन में ही नहीं मिली।
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे, ये मुझसे कैसे चूक हो गई भाई, अभी अभी मिलेगी, अभी के अभी, इसमें कोई वो नहीं।
2: वही तो कल मैंने जो है कहानी सुना, लेकिन उसके बाद ड्यूटी लग गई, आपको मैसेज नहीं किया।
0: अरे रे रे
2: भाई आपने जो है कहानी नहीं भेजा,
0: ये तो
2: देख लो, बोले भाई

0: हाँ। बात आपसे हुई थी सुबह के टाइम पे, तो आपने क्या बोला था सामने कहानी आपको मिल जाएगी,
1: मुझे लगा मैंने भेज दी। अच्छा अरे वो देखो अब वो हुआ क्या है कि मैंने जब भेजी है ना तो वो उसमें जो एरर आता है ना वो आया हुआ रखा हुआ है, आप देखो पहुंच गई आपके पास। तो और कमल भाई
0: बात वही है ना भाई कि जाने की सामने जाने की इतनी खुशी है आपकी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सेकंड में ड्यूटी करता था ना तो मुझे जो खुशी सामने मिलती थी वो सुबह नहीं मिलती थी, क्योंकि आपको भाई रात में जागना रहता है दिन में सोना रहता है, तो बोले जो है
1: नहीं अभी आदत खराब हो चुकी है,
0: आपको मिल नहीं रहा है,
1: अभी आदत खराब हो चुकी है भाई मुझे
0: भाई आदत कहाँ खराब होती है, तो आदत बिगड़ गई है आपकी सुबह की बाद में।
1: पर आप देख रहे हैं कमाल भाई लोग क्या क्या ले जा रहे हैं ऑफिस में, कितने सारे सामान ले जा रहे हैं ऑफिस में, मैं तो हैरान हूँ। एक मुंबई वाले भाई बोल रहे हैं कि वो लोकल ट्रेन से जाते हैं और तमाम सामान ले जाते हैं भाई, टिफिन विफिन डब्बा अब्बा सब ले जा रहे हैं, वो कैसे करते हैं आप मुंबई वाले?
0: हम तो बॉम्बे में भी रहे, मतलब जो है कभी जो है खाना घर से लेके ही नहीं गया।
1: अच्छा
0: मोबाइल की दुकान भी चलाता था उस टाइम पे भी कभी खाना नहीं लेके गया, जो है बाहर खाओ यार क्या है,
1: कभी नहीं लेके
0: खाना ही है
1: टिफिन
0: कभी नहीं।
1: अरे अच्छा
0: नहीं भाई खाली हाथ चलो, खाली हाथ आओ खाली हाथ जाओ,
1: खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे
0: हाँ।
1: अच्छा ठीक है, पर जो जो
0: और आपने बोला था भाई मैं मूवी भेजता हूँ आपको कि
1: हाँ वो उस दिन कौन सी कहानी सुनाई थी मैंने, कोई तो कहानी सुनाई थी ना, या मूवी की बात कर रहा था मैं कोई,
0: हाँ मूवी की बात।
1: हाँ ठीक है
0: कहानी तो भाई आपने जो है 1965 में जो है आसमान से जमीन से शेर भालू जंगल सब कुछ दिखा दिया भाई
1: कुछ नहीं छोड़ा मैंने, लोग कह रहे थे एविएशन
0: कुछ नहीं छोड़ा भाई अपने अरे उसमें सर्वाइवर था, एविएशन था,
1: सब कुछ था एक साथ, मिक्स था
0: सब कुछ तो था ही एक साथ सब कुछ था।
1: नहीं आज की स्टोरी पता कैसी है, आज की स्टोरी बिल्कुल आखिर तक सुननी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल आखिर में बहुत अजीब सी चीज़ है।
0: मैं भी आपको एक कोरियन मूवी भेज रहा हूँ देखिए, बड़ी जबरदस्त मूवी है।
1: ठीक है मुझे बताइए,
0: रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई।
1: अच्छा ऐसा क्या,
0: भेजो
1: डन डन,
0: हो सकता आपने देखा हो लेकिन हो सकता ना देखा हो।
1: ठीक है भेजो, आई वुड लव टू सी मेरा भाई।
0: ओके भाई
1: ठीक है कमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ओके जज़ाकअल्लाह। तो कमाल भाई की बात जो है, एक और मेरे पास मैसेज है, पहले कमाल भाई को मैसेज कर देता हूँ मैं, कमाल भाई का नंबर, कमाल की बात है किधर गया, हाँ ये रहा ओके। हाँ तो जी मैसेज किधर गए मैसेज, क्या है वो कोरियन वो भी हमें भी भेजें भाई, बताओ कोरियन अब मुझे भेजते हैं फिर मैं बताता हूँ। मैसेज सलाम गरीब भाई, आई एम गोइंग आउट, सेंड मी द स्टोरी, ओके नो प्रॉब्लम। आसिफ ने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग गरीब भाई, कैसा भाई? एकदम बढ़िया भाई, क्या रावस कह रहे, बस क्या भाई झूठ बोल रहा है, मुंबई के क्या धक्का धुक्की में भूख लगती है, तो धक्का धुक्की में भूख लगती है भाई, अपना टिफिन कैरी करा है लोकल ट्रेन में भाई ये क्या बात है। फिर अस्सलाम वालेकुम, this all started after marriage thanks to wife, but amazing Umar bhai, impressive. koi message mein sunao, wait brother, main kyun wait karu, acha okay wait kar rahe hain aap, main confuse ho gaya, kamal bhai bhej do korean kahani, beauty product mat bhejna hey, kabir bhai jungle wali story humko bhi bhejo, jungle wali story कल था मैं जंगल वाली थोड़ी थी, स्पेस वाली थी वो, चलो भेज दूंगा कोई टेंशन नहीं, यू विल गेट इट नॉट ए प्रॉब्लम। अभी तो एक गाना, एक सेकेंड को किधर गया, ओके तो मैं कह रहा था कि ऑफिस में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो बहुत भर भर के सामान लाते हैं, लैपटॉप बैग, फलाना बैग, ढिमकाना बैग और टिफिन और सब कुछ, ये जो कर पा रहे हैं ना उनको मेरा सलाम है। फिर एक आते हैं खाली हाथ हमारी तरह, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बनाएगा पर जाएगा नहीं समझे, वरना गब्बर आ जाएगा। अगर आपने रेडियो की वॉल्यूम कम करी तो कबीर आ जाएगा वरना गब्बर आ जाएगा। मैसेज करो, मैसेज

0: नाम से विलेन,
1: काम से हीरो। मैं क्या जी कहानी देखो, एक भाई ने मुझे मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, वीकेंड्स के बाद की स्टोरी भेजी नहीं। भाई आपका मैसेज नहीं आया होगा, वरना तो मैं सब भेज देता हूँ, तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा मुझे। वैसे आप कर चुके तो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। एक और मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आरिफ भाई। एक भाई कह रहे हैं कि भाई आपने सच में इमोशनल कर दिया मेरा, अब पारा चढ़ रहा है, मैं क्या मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, मैं शाम में नहीं सुन सकता आपको। अरे एक मैसेज और है कबीर भाई, वो ऑफिस बैग नहीं, डोरेमोन का पॉकेट है जिसमें कुछ ना कुछ मिलता है। ये जो आपने डोरेमोन भेजा है ये कुछ के कुछ हो रहा है भाई। एक कॉल आ रही है, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। फवाद भाई आए थे, कैसे मेरे भाई?
2: आप सुनाए सर, क्या हाल है?
1: एक तो आप भाई बोला करें, आप भाई बोला करें यार फवाद भाई, आपसे भाई वाली फीलिंग आती है। आप सर बोल के खत्म कर दे तो एकदम मेरी फीलिंग को दबा देते हो, दबा देते हो भाई आप। हाँ आप बोलो। मैं बस मैं तो छुट्टी, छुट्टी कौन सी छुट्टी, किसको मिली छुट्टी?
2: हमारी छुट्टी, आपकी छुट्टी, हमारी छुट्टी।
1: आपको मजे आ रहे होंगे बता के, है ना, किसी के दुख पे ऐसे पिन करने के लिए, है ना।
2: सर हम सोचते हैं हमें छुट्टी है, लेकिन फिर भी हमें कॉल आ जाती है कोई ना कोई।
1: अच्छा कॉम्पनसेट हो नहीं रहा अभी, ठीक है, चिढ़ा चुके आप।
2: कंपनी कहती है वरना वो रहा दरवाजा।
1: तो फवाद भाई आप क्या ले आते हैं ऑफिस में, लाइक आपके पास हाथ, आपके पास क्या क्या रहता है?
2: सर बाकी ये बात बड़ा अच्छी थी।
1: हाँ
2: वैसे टॉपिक हॉल से बकरा किस्तों पे या बकरा पैसों पे वो होना चाहिए था, लेकिन चले। टॉपिक ये है कि बैग, मैं हैरान हूँ कि हमारे ऑफिस में एक खातून आती है कि हाथ में चार बैग और एक कॉफी का कप होता है।
1: तो वो क्या मतलब रेलवे स्टेशन समझ के आती है, एयरपोर्ट समझ के आती है, क्या चल गया?
2: हम खुद हैरान है, हम पूछ नहीं सकते उनसे।
1: अच्छा तो चार बैग,
2: लेकिन हम हैरान है।
1: हाँ वो तो जाहिर सी बात है, तो चार हैंड बैग लेके आती है वो।
2: एक हैंड बैग होता है, पर्स जो होता है, एक लैपटॉप बैग होता है, एक बैग पैक पहना होता है और एक क्रॉस बैग होता है, और साथ में कॉफी कप होता है। और हम जब, मेरा ऑफिस भी ऐसी जगह पे है कि पार्किंग नजर आ रही होती है, हम बैठे देख रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ यार क्या हो गया है, हम एक लैपटॉप उठाते हैं साथ में, अगर एक चीज और उठानी पड़ जाए तो मुसीबत लगती है।
1: उनको बोल दिया करो मैडम वो आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगी। नहीं भाई ये तेरा सामान कैरी करने वालों को मेरा सलाम है, मतलब कुछ लोगों मैंने देखा है बाकायदा अपना कप, अपना सब कुछ लेके आते हैं वो लोग, इतना मैनेज। अरे बाप रे बाप, आप क्या ले आते हैं? भाई हम तो कागज के कप में पी रहे
2: कागज का कप
1: महंगा
2: हो गया सर, रिसाइकलिंग में चला गया।
1: एक्सक्यूज मी मिस्टर फवाद।

0: हाँ ये भी है, ये भी है। पर फादर आप क्या क्या ले जाते हो, मतलब क्या खास क्या रहता है?
1: मेरे पास एक लैपटॉप बैग है, ठीक है, उसके अलावा हाथ में मोबाइल और वॉलेट होता है, वही नहीं है मेरे, जो था बैग में डालना पड़ता है भाई। ठीक है, इसी
0: तो आलस है ये फवाद भाई, आलस है और कुछ नहीं है।
1: लिटरली दिल करता है कंपनी से बोले मतलब दो लैपटॉप दे दो, उसे कनेक्ट कर दो, एक घर पे रख लेंगे एक ऑफिस।
0: तो आपका मन नहीं करता टिफिन विफिन ले जाने का कि मैं थोड़ा सा घर भर का ले जाऊं खाना, ऐसे कुछ फीलिंग नहीं आती?
1: टिफिन लेके कभी कभार गए, ठीक है,
0: हाँ।
1: लेकिन पिछले 1-2 महीने से तो वैसे भी आपको पता है भाई क्रैश में चल रही
0: है। हाँ समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। दिल बहुत रखो,
1: 15 kg है माशाल्लाह से।
0: अच्छा 15 kg, तो आप पहचान में तो आ नहीं रहे होंगे अब।
1: कई लोग तो हैरान है ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं खाता।
0: अच्छा तो मुझे भी डराओ, मैं भी डरना चाहता हूँ, भेजो फोटो भाई, मुझे भी डरने का हक है फौज भाई।
1: आपको मिलके डराएंगे।
0: अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डरना चाहता
1: हूँ। खाने की टेबल पे बैठेंगे और आप बोलेंगे यार कुछ खा ले भाई।
0: अच्छा
1: बस पेट भर गया
0: भाई, क्या मॉडल शॉटल बनने का प्लान है कि क्या क्या हो गया, कहीं से कॉन्ट्रैक्ट आया है रैंप वॉक करने का, क्या बात हो गई फौज भाई।
1: एक और भाई ने बोला कि ये लगता है मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है।
0: मुझे मुझे अब आप मुझे बहुत इच्छा है देखने की, मैं देखना चाहता हूँ कि आदमी कौन से क्राइसिस से गुजर रहा है, वो मैं डिसाइड करूंगा। लेट मी सी, मिलके बताते हैं।
1: सर आपका भी तो मिड लाइफ है नहीं, अभी तो स्टार्टिंग लाइफ है।
0: देखिए मेरी मेरी तोंद के बारे में किसी ने कमेंट किया, मैं छोड़ूंगा नहीं फवाद भाई। आई एम वेरी इमोशनल विद माय तोंद। ओके
1: मुझे बॉडी शेमिंग आती नहीं है।
0: आती नहीं आपको? मैं कर दूंगा अपने आप ही, क्या टेंशन है, आप एंजॉय कर लेना।
1: अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता।
0: बट मैं देखना चाहूंगा फवाद भाई, अभी मुझे 15 kg तो बहुत ज्यादा हो गया यार। 15 kg क्या, ऐसा क्या कर रहे हो भाई?
1: ज्यादा बढ़ गया था ना इंजरी के बाद, 122 से ऊपर हो गया था।
0: अरे पर 15 kg कैसे गिराया, मतलब तवे पे बैठ गए थे, कैसे किया है, हाउ डिड दैट हैपन?
1: देखिए मैं हर रोज सिर्फ एक मील खाता हूँ, वो भी लाइट खाता हूँ।
0: अच्छा बस,
1: बाकी वाटर कॉफी और ग्रीन टी या चिया सीड्स
0: बस।
1: हाँ जी
0: भाई, मैं नो वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड्स, ठीक है फवाद भाई।
1: देख जिम करता हूँ एक
0: हाँ, और कुछ ही बता दो लिस्ट में, मुझे लगा इतने से काम चल जाएगा। और जिम भी करता हूँ, और
1: जिम बड़ी मुश्किल से जाता हूँ लेकिन चला जाता हूँ।
0: और भी कुछ है तो ऐड कर दो हमारे लिए, और मुश्किल पैदा कर दो। और क्या है, और क्या है,
1: और कुछ नहीं
0: सर। वाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया भर की टेंशन है।
0: ठीक है वो तो बहुत है, बाकी सब करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है फवाद भाई,
1: टेंशन बहुत जरूरी है। ये सामने एक गाड़ी में बकरा जा रहा है, वाह क्या माशाल्लाह।
0: अच्छा ओह नजारे दिख गए आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपको एडवांस
1: में इतना अच्छा लगता है ऑफिस जाते हुए। मैं कहता हूँ हमेशा छुट्टियों में ऑफिस होना चाहिए और ऑफिस कहते नॉर्मल डेज में बंद होना चाहिए। ऐसे कैसे है, दुआ इसमें से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं फ्राइडे की सुबह सवेरे है क्या।
0: हाँ अभी तो बकरे बकरे मई में मिलेगी, मई में हर जगह पे। लेकिन फवाद भाई शाम में पता नहीं आप सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, बट आपको एडवांस में ही मुबारक भाई हमारी तरफ से।
1: सर वैसे शाम को कितने बजे होगा शो?
0: 5 बजे से। नहीं नहीं भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे बताइएगा ठीक है।
1: लगता है कुछ हेड देनी पड़ेगी।
0: क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी?
1: जो न्यूज में हमारे ऑफिस के नाम आते हैं ना, आपको भी देना पड़ेगा।
0: डन डन डन। ये एक भाई ने मैसेज किया है आपके लिए, मैसेज किया है कि भाई डाइट चार्ट भेज दो फवाद भाई से लेके, डाइट चार्ट मांग रहे हैं आपका।
1: ठीक है
0: ठीक है ठीक है
1: ठीक है,
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो ये फैसल भाई कह रहे हैं भाई असल में ईद के बाद 2 महीनों यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो फिर मॉर्निंग नहीं उठना पड़ेगा, मैं इवनिंग शिफ्ट हो जाएगी। अभी भी इवनिंग शिफ्ट पर आप नहीं होना इवनिंग टाइम में, तो मैं एफएम ऑन नहीं करता हूँ, आपको सुनना अच्छा लगता है, आपको मैसेज करने के लिए कार साइड पार्क। भाई ये आपकी मोहब्बत है मेरे भाई, लेकिन 2 महीनों के बाद फिर मॉर्निंग शिफ्ट होगी, आप मॉर्निंग में आ जाओगे इंशाल्लाह। और डाइट चार्ट भाई इनसे ले लूँगा। एक मैसेज है नवेद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, फिलिपिनो ख्वातीन सबसे ज़्यादा सामान और बैग्स लाती हैं ऑफिस में। मैंने इनके साथ काम नहीं किया तो आई डोंट नो, बट सुना मैंने यही है। एक मैसेज है अमन भाई कह रहे हैं टिफिन आज नहीं ले गया, गला गया मेरा, हाँ तो टिफिन आज नहीं लेके आया, ऑफिस लंच पार्टी है ईद की। क्या बात है, आज तो भाई डीपी डीपी निकलेगी भाई।

रमेश यादव भाई वालेकुम सलाम, इधर मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, ओनली नाश्ता लेके आता हूँ आतिफ भाई, कह रहे ओनली नाश्ता में क्या है। आरिफ भाई लिखते हैं, कबीर भाई तुम्हारी आदत लग गई है मॉर्निंग में 27 से, तुम नहीं क्या होगा, हम गरीब होगा। FM 107 से गुजारिश है कि बंदे को मत हटाओ, बाकी सबको इधर उधर कर दो। ये टिपिकल मुंबई रिप्लाई था मेरा भाई, बहुत मोहब्बत भाई को, थैंक यू। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सो आप कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं, आज का जो किस्सा है बेसिकली आपको मेरे साथ लास्ट तक सुनना पड़ेगा, इसका लास्ट में मज़ा है सर, लास्ट में कुछ चीज़ें होती हैं जो टेस्ट बर्ड्स को धीरे धीरे लगती है, आप खाते रहते हैं लास्ट की बाइट इतनी ज़बरदस्त होती है, आप कहते हैं वाह मज़ा ही आ गया, तो वैसा ही है कुछ। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं कबीर मैं सिर्फ वॉलेट और मोबाइल और एक ड्राई फ्रूट वाला लड्डू, आई लड्डू है, क्या बात है, बड़े क्यूट है आप यूसुफ भाई, क्या बात है। और एक मेरे पास और मैसेज था, मैंने पढ़ा था, सॉरी भूल गया। हाँ लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है। भाई आपने कहा था मैं ड्राई फ्रूट वाले पराठे भी खा चुका हूँ, तो फिर भी बात याद नहीं रहती, आपकी वजह से आज लंच भी नहीं लेके आया, लेकिन अभी कहीं से ड्राई फ्रूट वाले पराठे भी नहीं मिल रहे। भाई मेरी वजह से क्यों नहीं लेके आया लंच, मैंने कौन सा टिफिन छीन लिया। ये इल्ज़ाम जज साहब बेबुनियाद है। मैं एक गाने के बाद आ रहा हूं और सीधा कहानी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। मोरनी बनके

Highway. शर्मी यादव. सुखी भाई का गाना यार तेरा 4x4 आ. मैं भी कहा जी स्टोरी शुरू कर रहा हूँ मैं. मेरी साइनेस वाली आवाज़ में स्टोरी सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा. नीजल वाली आवाज़ में भी अलग मज़ा है. ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ. ऑलराइट, आर वी ऑल सेट? स्टोरी के लिए तैयार? डॉट भेज दीजिएगा अगर आप जो है अभी ट्यून कर चुके हैं. सो ओके, सबसे पहले डिस्क्लेमर्स, कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं. कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है. इट्स अ रियल केस एंड इसके आखिर तक जब आप मेरे साथ चलेंगे तभी आपको इसका असली मजा आएगा. यू रेडी फॉर द जर्नी? रेडी? ओके चलो जी. आज के किस्से को सुनाने के लिए मुझे ज्यादा पास्ट में नहीं जाना पड़ेगा. ये ऑलमोस्ट ताजा तरीन ही समझिए क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. कहने को तो 8 साल हुए मगर ठीक है, नॉट दैट ओल्ड. तो आज के किस्से के लिए आपको ले चलता हूं साल 2018 में. जनवरी की 11 तारीख थी, अराउंड सुबह के 10 बज रहे थे और 55 साल का एक आदमी, 55 years old, रे राइट, रॉकलैंड कैलिफोर्निया से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर अपने वर्कशॉप के अंदर था. यह उसका खुद का वर्कशॉप था जहां वो कारपेंटरी का काम कर रहा था. पूरा सॉ डस्ट, वो जो लकड़ी के ऊपर वो घिसने की वजह से जो डस्ट होता है लकड़ी का, वो पूरा कवर हो चुका था. बट ही डिडंट केयर, उसको फर्क नहीं पड़ता. उसको अपने काम से बहुत मोहब्बत थी क्योंकि ये जो जॉब थी एज अ कारपेंटर, ही एब्सोल्यूटली लव्ड इट. उसे बहुत मजा आता था काम करने में. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉडस्ट है कि क्या है, नथिंग. इनफैक्ट रे के साथ एक और चीज थी. रे जो था अपनी लाइफ में ही बहुत खुश रहने की कोशिश करता. ही वाज रियली रियली हैप्पी. एक एक मोमेंट जीने वाला आदमी जो होता है ना, वो था रे राइट. मगर ऐसा हमेशा से नहीं था. रे राइट की जिंदगी हमेशा से इतनी खुशहाल या फिर यू कहें पॉजिटिव एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के साथ नहीं थी. 6 साल पहले उसकी जिंदगी कुछ और हुआ करती थी. 6 साल पहले रे राइट अपनी वाइफ से अलग हुआ था.

और ये जो जुदाई का गम था उसे इतना खा गया कि वो फिर होश में नहीं रहता था, दिन रात नशे में रहने लगा। एक दिन इतना ज्यादा हो गया कि वो गाड़ी चला रहा था, होश में नहीं था, और उस बेहोशी की हालत में उसने गाड़ी ठोक दी। और ये हेड ऑन कोलिजन था, सामने आने वाली गाड़ी से इसकी गाड़ी बिल्कुल हेड ऑन टकराई। रे राइड को तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामने जो गाड़ी थी उसमें जो लोग बैठे हुए थे उनको चोटें आई। रे को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और रे को सजा सुनाई गई 18 महीने की। सिर्फ 18 महीने की सजा नहीं, रे को इनफैक्ट कहा गया कि आपको एक अमाउंट देना है, और भारी भरकम अमाउंट था ये, विक्टिम्स को, सामने वाले लोगों को जिसमें आपने गाड़ी ठोकी है उनको देना होगा। तो ऑलरेडी ट्रेजेडी से गुजर रहा था वो, फिर ये भी किस्सा हो गया, तो पूरी तरह से वो डूब गया, कंप्लीट रॉक बॉटम। मगर रे राइट ने डिसाइड किया कि ये जो हुआ है उसकी जिंदगी में, ये उसकी पूरी जिंदगी नहीं है। एंड ही डिसाइडेड कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। और जब वो जेल से बाहर आया, जब प्रिजन से बाहर आया, तो उसने अपनी जिंदगी को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करना शुरू करी। सबसे पहले किसी भी किस्म के नशे से दूर हो गया, उसके बाद अपने भाई डीन के साथ रहने लगा, अपने दो बच्चों को टाइम देने लगा, उनके साथ वक्त बिताने लगा, और फिर एक रेंट पर वर्कशॉप ले लिया ताकि अपने पैशन को, जो उसका कारपेंट्री का पैशन था, उस पर काम कर सके और अपने आप को बिजी रख सके। उसने इसको नाम भी दिया रे राइट कारपेंट्री डिजाइन। रे ने जो चेंज किए थे, इसके साथ साथ उसने डिसाइड किया था कि वो खुश रहने की कोशिश इसलिए भी करेगा क्योंकि ये सब कुछ माइंडसेट है। दिमाग अगर खुश है तो दिल भी अलाइन हो ही जाएगा, ये सब कुछ माइंडसेट का मामला है। इतने सब कुछ ओवर द टॉप चेंजेस करने के बाद उसकी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा रोड़ा समझ लीजिए आया हुआ था। जब वो जेल से बाहर आया था, सबसे बड़ी सिचुएशन जो खराब थी, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी अभी भी, वो थी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन। ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी, वो कमा ही नहीं पा रहा था। उसका असर सिर्फ रे राइड पर नहीं, बाकियों की जिंदगी पर भी पड़ रहा था। बाकी मतलब वो लोग जिनकी गाड़ी से रे की गाड़ी टकराई थी, क्योंकि उनको सेटलमेंट पेमेंट भी करनी है। रे राइड की पूरी नियत है उनको देने की, लेकिन दे नहीं पा रहा है, और स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बट ही वॉज डिटर्मिंड कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और ये प्रॉब्लम्स एक ना एक दिन चली जाएंगी और सब कुछ वापस ट्रैक पे आ जाएगा। ही वॉज सो डिटर्मिंड कि मैं ये कर लूंगा। तो रे ने अपना काम और भी ज्यादा मेहनत से करना शुरू किया कि सब कुछ बदलेगा। बहरहाल इस दिन जब ये अपने कारपेंट्री या अपने वर्कशॉप में था और कारपेंट्री का काम कर रहा था, तो उसने एक चीज बनाई, दूसरी चीज के लिए बढ़ा, तो उसे ध्यान आया कि एक टूल है जो ट्रक में भूल के आ गया है। तो रे ने सारा सामान रखा, जो सॉट डस्ट था अपने हाथ से हटाया, और उसके बाद बाहर की तरफ ट्रक की तरफ बढ़ा। ये जो उसका वेयर हाउस था ना, वेयर हाउस जैसा बड़ा सा गेट था वर्कशॉप का, उसने वो खोला और दरवाजे के सामने पूरा डर्ट ड्राइव था, मतलब लिटरली कुछ नहीं, मिट्टी मिट्टी। ये दरअसल वर्कशॉप एक रूरल एरिया में था, ये आपको अपना इमेजिनेशन रन करना है। एक रूरल एरिया, बिल्कुल शहर से दूर, उसका सिर्फ एक ही पड़ोसी था, और ये जो पड़ोसी थी ये नेक्स्ट डोर ही रहती थी एक ट्रेलर में। दैट्स इट, कोई भी नहीं था आसपास। ट्रेलर में जो रहती थी उसका नाम था केटी, बस और कोई भी नहीं, सन्नाटा। पर रूरल एरिया में होने के बाद भी यहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। कभी केटी के दोस्त आ जाते थे, तो कभी क्लाइंट्स फॉर रे राइट। तो ये जगह थोड़ी बहुत लाइवली कभी कभार हो जाया करती थी, पर इस सुबह शांति थी। तो उसने गेट से बाहर निकला, टूल्स के लिए ट्रक की तरफ गया और अपने टूल्स निकाले, और टूल्स निकालने के बाद जा रहा था वापस वर्कशॉप की तरफ। इस वक्त लोग नहीं थे, शांति थी एकदम। तो वर्कशॉप की तरफ जब जा रहा था, तो रे को एकदम से कदमों की आवाज सुनाई दी अपने पीछे, इस डर्ट रोड में, मिट्टी

मिट्टी पे एकदम से कोई भागता आ रहा हो, वो आवाज उसे सुनाई दी। अब जरा दो दिन आगे बढ़ानी पड़ेगी मुझे यहां से कहानी। दो दिन बाद रे के बड़े भाई डीन जो थे वो रे के घर गए, घर से निकले, घर से वर्कशॉप गए और फिर वापस घर गए। वो दोनों जगह दो दो बार होकर आए मगर उन्हें रे नहीं मिला। डीन जो थे वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। दो दिन से उनके भाई ने उनसे बात नहीं करी थी और ये नामुमकिन था। ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने दोस्तों को ना बताए, ऐसा हो नहीं सकता कि अपने बच्चों को ना बताए, बिकॉज डीन हर बात मान सकता है, लेकिन वो जानता है कि रे बहुत ही रिस्पॉन्सिव बाप है। वो बच्चों को रिस्पॉन्ड भी करता है, उन्हें बताता भी है, और हो ही नहीं सकता कि अपने बच्चों को छोड़ के वो एकदम से गायब हो जाए। दिस इज वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर। डीन ने 48 घंटों में हर एक शख्स से बात करी, बार बार घर गया, बार बार वर्कशॉप गया, चक्कर काटे, लेकिन उसका भाई उसे नहीं मिल रहा था। वर्कशॉप के पास उसने एक और चीज नोटिस करी। वर्कशॉप पर जो ट्रक था रे राइट का, वो ट्रक भी गायब था। अब डीन के दिल में एक बड़े भाई होने के नाते डर थोड़ा सा ज्यादा भी था। उसके दिल में एक बात आ रही थी, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रे वापस जो है वो नशों में पड़ गया हो, कहीं वो शरीफ बनने की एक्टिंग तो नहीं कर रहा था भरोसा जीतने के लिए, फिर एकदम से वो गायब हो गया, अपना ट्रक उठा के चला गया हो, तो अपनी नर्व्स पे काबू ना कर पाया हो। और ये सारे ख्याल डीन के मन में आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से कुछ हुआ और वो सच में चला गया ट्रक लेके। और डीन जो थे वो समझने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे कि क्या मैटर हो सकता है। जितने खुद एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं उन्होंने कोशिश करी, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। और वो पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें यह भी डर था एक बड़ा भाई होने के नाते अगेन, कि अगर वो पुलिस के पास गए और अगर पुलिस ने रे को ढूंढ लिया और रे कुछ कर रहा होगा तो उनका भाई उन्हीं की वजह से फंस जाएगा। तो समझ रहे, बहुत ही अजीब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लाइक डीन चाहते हैं अपने भाई को ढूंढना, लेकिन क्या पता उनका भाई वापस किसी गड़बड़ में हो और वो गड़बड़ी का हिस्सा हो, और कहीं वो पुलिस उसे भेजने के लिए रिपोर्ट लिखवाए लेकिन पुलिस पकड़ ले, तो वो पुलिस को भी नहीं बता रहे थे। डीन जो थे वो बार बार तलाशी ले रहे थे, शायद कुछ हाथ लग जाए, शायद कुछ हाथ लग जाए। फिर एकदम से बड़ा ही अजीब सा उन्हें कुछ एहसास हुआ कि यार बड़ा घर में कुछ दिक्कत लग रही है। ये घर जब भी मैं वापस आता हूं चेक करने के लिए, घर की बाहर की सूरत हाल कुछ अलग होते हैं। तो इस बार जो थे डीन घर की तरफ गए, उनके हाथ में एक 9mm थी और वो आगे बढ़ रहे थे। वो अंदर की तरफ गए रे के घर पे, रे ऑब्वियसली गायब है, मिल नहीं रहा है। उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खिड़की से बाहर जा रहा है, जिसको जानते नहीं, वो दोनों को ही नहीं जानते। और फिर जब ये अपने ही भाई के अंदर, अपने भाई के घर के अंदर गए, तो उन्होंने देखा जो बंदा सोफे में बैठा हुआ है वो चिल्लाए, निकलो यहां से, निकलो निकलो, गेट आउट गेट आउट। और डीन ने उसे देख के बोला, है मैं जाऊं, हु आर यू? और जब इन्होंने पलट के बोला हु आर यू और सीधा गन तांदी, तो सामने वाला जो बंदा सोफे में बैठा हुआ था वो वहां से उठा, उसकी टोनी चेंज हो गई और वो फौरन वहां से भागा। एक घंटे बाद मौका वारदात पर रॉकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी पहुंची। वन स्टोरी बिल्डिंग के सामने गाड़ी में से उतरे एक ऑफिसर और उनकी तरफ भागता हुआ एक बंदा आया जिसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम था डीन, ऑफकोर्स रे राइट का भाई। उसने बताया कि सर मेरे भाई के घर में न जाने कुछ लोग आ गए थे, अनजान लोग, आई डोंट नो। एंड फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें बताना ही पड़ा कि उनका भाई जो है वो गायब है। और पुलिस को समझाया कि वो 48 घंटों में क्यों नहीं आए थे। एंड पुलिस ने इस बात को समझा, इट्स ऑल फाइन। और फिर पुलिस ने मौका वारदात से कुछ नोट्स लिए, शायद कुछ पता लग जाए। अंदर घर में कोई भी किसी किस्म का साइन नहीं दिखा। ऐसा लगा ही नहीं कि ये इंट्रूडर्स का कुछ लेना देना है रे राइट के गायब होने में। फिर ऑफिसर गाड़ी में अपने वापस गए,
निकल गए वहां से। दो इन्वेस्टिगेशन इस दिन लॉन्च की गई, एक इन्वेस्टिगेशन ये पता करने के लिए कि ये अनजान

लोग जो रे राइट के घर पे थे ये कौन थे, और दूसरी इन्वेस्टिगेशन रे को ढूंढने की कोशिश में, शायद दोनों एक साथ सॉल्व हो जाए। जब पता किया तो ये भी सामने आया कि 11 जनवरी के बाद जब रे गायब हुआ उसके अराउंड किसी ने उससे बात नहीं की थी। फिर तारीख आई 21 जनवरी की, बेसिकली 10 दिन बाद रे राइट के गायब हो जाने की, एक बड़ी लीड हाथ लगी। रे राइट का जो ट्रक गायब था वर्कशॉप से, वो ट्रक एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने मिला। ये एक लीड थी, ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी मगर इट वॉज इनफ। और फिर इसकी तलाशी शुरू हुई। रॉकलैंड पुलिस सार्जेंट जैक लुइस साहब जो थे अपनी डेस्क पे बैठे हुए थे और रे की केस फाइल को बार बार पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि करोड़ मरतबा पढ़ चुके हैं और पढ़ना चाहते हैं ताकि कोई मिस ना हो जाए। ट्रक के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा, ट्रक की बस नंबर प्लेट गायब थी, दैट्स इट। और अंदर सब कुछ तलाशी लेने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सार्जेंट लुइस जैसे अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। वो बार बार केस फाइल पढ़े थे, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं। फिर एकदम से एक ऑफिसर भागता हुआ आया उनकी तरफ, उनके कैबिन की तरफ, और उसके हाथ में कागज था। वो कागज को वेव करता हुआ आया और सार्जेंट लुइस की टेबल पे रखा और बोला, सर ये कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने रिपोर्ट दी है, सर ये रिपोर्ट को देखिए प्लीज। सार्जेंट ने रिपोर्ट उठाई और रिपोर्ट को उठा के जब देखा तो उसमें एक्सीडेंट के बारे में बताया गया था। ये एक्सीडेंट जनवरी के आखिर में हुआ था और ये क्रैश जो था वो साउथ ऑफ रॉकलैंड मतलब सैक्रामेंटो में हुआ था। एक वैन जो थी इस एक्सीडेंट में 120-130 की स्पीड पर जा रही थी और जो बंदा उस वैन को चला रहा था वो होश में नहीं था, और जब क्रैश हुआ तो वो जख्मी भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन। और जो शख्स ये वैन चला रहा था अभी वो सजा भुगत रहा है, और वो जो है बंदा उसका नाम है विक्टर ग्रे। नंबर प्लेट तो उसकी ही है उस वैन पे, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन स्टिकर्स की लिस्ट होती है ना, जो रजिस्ट्रेशन स्टिकर्स है उसकी कहानी अलग है। बेसिकली विक्टर नाम का बंदा जो ये वैन चला रहा था जिसके बारे में रिपोर्ट आई थी, उसने रजिस्ट्रेशन स्टिकर्स चुरा के अपने इस वैन पे लगाए थे। और जब पुलिस ने उन स्टिकर्स को देखा, उनकी जांच पड़ताल करी, तो पता लगा कि वो जो है वो रे राइट के हैं। अब मसला ये था कि लीड मिल रही है लेकिन रे राइट नहीं मिल रहा है, एक अनजान इंसान का कनेक्शन मिला है मगर अभी भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। कुछ भी करके फायदा उठाना पड़ेगा इस लीड का और कुछ करना पड़ेगा। तो सार्जेंट लुइस जो थे उन्होंने इस पूरे काम को एफबीआई को सौंप दिया और फिर विक्टर की जांच पड़ताल शुरू हुई। विक्टर ग्रे से बहुत कुछ पूछा गया मगर विक्टर रे कुछ बोलने को तैयार नहीं था और कुछ मिला भी नहीं। एक महीना और भी दिया और अगले महीने की 18 तारीख थी। लुइस और उनके ऑफिसर्स एक पार्किंग लॉट में थे कुछ और ऑफिसर्स के साथ में। सामने एफबीआई एजेंट जो थे वो सर्च कर रहे थे पूरी की पूरी वैन को, विक्टर ग्रे की जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इस वैन पर रे के स्टिकर्स थे इतना तो पता था, बाकी अंदर कार में रे का सामान भी मिला विच वॉज रियली रियली शॉकिंग। इसमें रे का चश्मा था जो टूटा हुआ था, रे का सेलफोन था जो टूटा हुआ था, उनका वॉलेट था और उसमें सब कुछ मौजूद था। एक हैट रखा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था रे राइट डिजाइन, यानी उनके वर्कशॉप का नाम। एक रेन जैकेट थी जो ब्लड से कवर्ड थी और पार्शली थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि जली हुई हो। हालांकि कोई बॉडी नहीं मिली थी, रे वॉज मिसिंग। एन इन्वेस्टिगेशन श्योर नहीं थे कि विक्टर ने ही उसकी जान ली है कि नहीं, पर कोई ऑब्वियस कनेक्शन दोनों में नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों एकदम अजनबी थे। जो आप सोच रहे हैं वही हुआ, विक्टर से बात करने की कोशिश में उसको बहुत ज्यादा इंटरोगेट किया गया लेकिन विक्टर बोलने को तैयार ही नहीं था। विक्टर ग्रे ने अपना मुंह नहीं खोला, उसको हर किस्म की ट्रीटमेंट दी गई लेकिन वो

कागज छुपा हुआ है फ्रंट पे, और टीम ने इशारा किया कि इधर उधर उधर उधर, और उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया, सबके सब इकट्ठा हो गए उस कागज को देखने के लिए, और मेन कंसोल के पास उन्हें ये छोटा सा कागज मिला, साथ में उन्हें एक फोन भी मिला। पूरी जांच पड़ताल करते करते करते करते सब कुछ पीस करते करते 5 महीने और बीत गए, एंड देन आया अक्टूबर का महीना, एक आफ्टरनून, और सब कुछ फॉलो करके सार्जेंट लुइस वो पहुंचे वर्कशॉप पे रे राइट के केस को पूरी तरह से तोड़ने के लिए। बट यहां से कहानी में मिर्च मसाला आना शुरू होगा। तो वो वर्कशॉप गए थे रे राइट के वर्कशॉप नहीं, वो दरअसल वर्कशॉप के साइड में जो पड़ोसन थी उसकी, वहां पे उसके ट्रेलर पे गए थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, अंदर से केटी जो रे की पड़ोसन थी वो बाहर आई और उनसे बातचीत करना शुरू करी। पहले तो केटी जो थी वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, ऑब्वियसली उन्होंने बोला ऑफिसर क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। फिर सर्जन लुइस ने जो केटी को बताया, उसके बाद केटी लिटरली वॉज हॉरिफाइड, वो कांपने लगी, और उनकी उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले केटी को भी ले गए और इंटेरोगेट किया, और बिना वक्त जाया किए इंटेरोगेशन में केटी ने सब कुछ बता दिया। तो हुआ दरअसल क्या, अब आप सुनिएगा, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ट्विस्टेड पार्ट ऑफ द स्टोरी, और यहीं पे मजा आया। सो रे जो था वो हमेशा, जब वो जेल से बाहर निकला था तो हमेशा से ठीक होना चाहता था, वो अपने आप को सुधारना चाहता था, नशों से दूर रहना चाहता था, फैमिली को टाइम देना चाहता था, ही डिड अ ग्रेट जॉब। मगर बावजूद इसके कि आप सब लोग उसे पसंद करने लगे थे, उसकी नीयत जो थी वो नजर नहीं आ रही थी एक काम को लेके। वो अपनी लाइफ तो ठीक कर रहा था मगर एक लाइफ पर उसका कोई ध्यान नहीं था, और वो था वो शख्स जिसकी गाड़ी रे ने ठोक दी थी, जिसकी गाड़ी से रे की गाड़ी टकराई थी। उस बंदे का नाम था बॉब मैनर, और बॉब जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि अभी उसकी एक टांग ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो जिंदगी भर के लिए उसे लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ेगा, और कोर्ट सेटलमेंट की जो पेमेंट्स थी वो रे कर नहीं रहा था, और इसलिए बॉब को बहुत गुस्सा आ रहा था। बॉब के दिल में आ रहा था लाइक हाउ डेयर यू मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद पेमेंट भी नहीं कर रहा है। एंड बॉब के दिल में ये लगातार आ रहा था कि नहीं नहीं नहीं, इसके लिए जेल काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। बॉब के लिए ये एक किस्म का ऑब्सेशन बन गया था कि वो रे का एड्रेस ढूंढना चाहता था, और बॉब मैनर कोई मामूली आदमी नहीं था जिसकी गाड़ी में गाड़ी ठुकी जाके रे की। बॉब मैनर एक बहुत ही वायलेंट क्रिमिनल रह चुका था। रे जब अपनी लाइफ को सुधार रहा था, बॉब उसकी तलाश में था, ढूंढ रहा था उसे बिल्कुल किसी भेड़िए के पैक की तरह, कि कहीं बस ये मिल जाए, कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो कहाँ रहता है, पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। पूरी टाइम वो गुस्से में रह रहा था। फिर हुआ एक बहुत ही वियर्ड इत्तफाक, बहुत ही अजीब इत्तफाक। बॉब मैनर जो तलाश में था रे को ढूंढने के लिए, बॉब एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा। वो लड़की कौन थी? वो लड़की निकली केटी, जो कि रे के वर्कशॉप के साइड में रहती थी, पड़ोसन थी उसकी टेक्निकली, एंड वो केटी के घर आता जाता रहता था। इत्तफाकन ऑन द 11th of January 2018, इस दिन उसने रे को आते हुए देखा ट्रक की तरफ, जब वो अपने टूल्स को उठा रहा था, और बॉब बहुत हैरान था। वो उतना ही गुस्से में था कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पर बॉब ने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, अब मुझे इसका पता लग गया है, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। बॉब ने क्या किया? बॉब ने इस बदले की फीलिंग के साथ, जज्बात के साथ कि इसने मेरी पेमेंट नहीं करी है, बॉब ने एक बंदा हायर किया। कौन बंदा? वो जो वैन वाला था, विक्टर ग्रे, क्योंकि बॉब अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। तो उसने विक्टर ग्रे को कहा कि भाई एक काम कर,
इसको

किडनैप करके ले गया रे राइट को। विक्टर ने ग्रे के लिए काम किया। फिर बीच में क्या हुआ पता नहीं, बिकॉज रे की कभी बॉडी नहीं मिल पाई, कुछ क्लियर नहीं है, मगर बॉब से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती सुनिएगा, दिस इज फनी एंड ट्रेजिक एट द सेम टाइम। बॉब को किस लिए गुस्सा था? बॉब को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि रे पेमेंट नहीं कर रहा था, राइट? अब बॉब ने हायर किया विक्टर को, विक्टर ने किडनैप कर लिया उसे, पर बॉब ने विक्टर को पेमेंट नहीं करी। अब जो है विक्टर को गुस्सा आ गया, जिस तरह से बॉब था वैसे ही विक्टर था। विक्टर भी कोई आम आदमी नहीं था, विक्टर वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी वायलेंट क्रिमिनल। उसे भी वैसे ही गुस्सा आया जैसे बॉब को रे पर आया था। और इस विक्टर ग्रे नाम के बंदे ने, जिसकी वैन से ये सब मिला, उसने बॉब को एक खत लिखा कि मेरे पैसे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। और उसने बाकायदा इसके, जो उसने लिखा, इसके फोटोज लिए और अपनी वैन के सेंटर कंसोल पे रख दिए। गुस्से में आके इसने क्या किया, नोबडी नोज। रे की बॉडी कभी नहीं मिली, पर उसने रे के ट्रक के स्टिकर्स चुरा लिए थे और खुद ही के वैन पे लगा लिए थे, ना जाने कौन सी बेवकूफी में। एन ये पकड़ा गया। तो बॉब बदला लेने निकला था रे से, क्योंकि उसे पेमेंट नहीं मिली थी। उसने जिसे हायर किया उसे कोई रकम नहीं दी, तो उसे भी गुस्सा आया बॉब पे। और ये जो चेन रिएक्शन था, इस बीच बहुत कुछ हुआ, बट वी स्टिल डोंट नो कि रे राइट कहाँ है। रे राइट की बॉडी कभी किसी को नहीं मिली है अभी तक। 8 साल हो चुके, यस 8 साल हो चुके, हिज बॉडी वाज नेवर फाउंड। बॉब और विक्टर दोनों को सजा सुनाई गई और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, एंड बोथ ऑफ देम आर इन प्रिजन राइट नाउ। अब इनको मॉरल्स ढूंढने हैं, इसमें बहुत कुछ है ढूंढने के लिए, बहुत कुछ है, बस आपके कान उसके लिए शार्प होने चाहिए। ऑल द बेस्ट। ये किस्सा कैसा लगा आप बता सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, डू लेट मी नो, 666-22-107। हाँ जी, मैसेज जरूर कीजिएगा। हाँ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: आज अस्सलाम वालेकुम, 8:08 हो चुके, 8:08। तो आज का जो किस्सा था अगर हमने सुना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आई होप आपको अच्छा लगा हो। और

सभी लगाओ बताइएगा। मैं अभी आसिफ भाई आपको भी कॉल करता हूँ, डोंट वरी, एक गाने के बाद। बट आपको कैसे भी लगाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो। ऐसी स्टोरीज ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एंड आपके मैसेजेस ही होते हैं जो राहत के साथ देते हैं कि हाँ भाई ठीक चल रहा है मामला। तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा 666-22-107 पर। मैं मिलता हूँ जी एक गाने के बाद, ठीक है। दलजीत

8:12 हो गए नहीं, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आज किस्से को लेकर आई नो इट वाज रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन माशाल्लाह क्या मैसेज आया आपके भाई, वाह भाई वाह भाई वाह। अरे भाई कह रहे भाई ग्रेट स्टोरी, मजा आ गया भाई, एक देसी स्टोरी भी सुना दो अपने यहाँ का। भाई मिल नहीं रही मुझे अपने यहाँ की देसी स्टोरी में, मौज नहीं आ रही। एक मैसेज है खादर अब्दुल्लादी भाई, लिखते हैं एक्सलेंट स्टोरी बट व्हाट अबाउट द इनविजिबल डेड मैन, कल्प्रिट ऑलवेज गिव्स अ क्लू टू फाइंड। नहीं मिला भाई 8 साल से कोई क्लू नहीं मिला, वन हैंड और द अदर दे विल गेट ट्रैप्ड, ट्रैप्ड है ऑलरेडी। एक मैसेज है आज नहीं सुना, मॉर्निंग ऑफिस में बिजी ड्यू टू लास्ट वर्क। ओहो एक मैसेज है गुड मॉर्निंग, स्टोरी वॉज गुड, थैंक यू सो मच नियाज भाई, पर बहुत अच्छा लगा स्टोरी सुन के। करीम भाई ने मैसेज किया है आपकी मेहनत को सलाम, वालेकुम सलाम मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेहनत को सलाम, मैंने वालेकुम सलाम बोल दिया ओके। जोयल भाई वालेकुम सलाम, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई। एक मैसेज है 27 तारीख को ईद के, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ मुझे बता दें जरा। हेलो भाजी आज की स्टोरी कंफ्यूज कर दिया, बॉब पे रिक्टर

0: स्टिकर्स है, अरे बाबा आज की स्टोरी थी। फिर जी मैंने जानबूझ के ऐसी कंफ्यूजिंग स्टोरी रखी थी आज। मैं से इस्लाम बेस्ट एंड बेस्ट, बहुत अच्छी कहानी थी, साथ में आवाज़ माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई, आसिफ भाई कॉल कर रहा हूँ अभी, एक सेकेंड रुक जाओ बस। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, यही चीज़ मिस करने वाला हूँ मैं, कहानी कहाँ से सुनूंगा मैं तो बस। तला भाई कह रहे हैं, आखिर कैसे कर लेते हो ये सब तुम? तला भाई ये बाएं हाथ का खेल है तला भाई, और तो क्या तारीफ करूँ, आप तो मेरा नेचर जानते ही हो। आसिफ भाई क्या कहेंगे, आसिफ भाई कॉल लगाओ वरना मैं पता नहीं ज़रा गुरूर में कुछ बोल बाल दूँ। एक सेकंड, मैं ज़रा कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल लग, अरे मैं आप ही को कॉल कर रहा हूँ, रोकिए एक सेकंड। हाँ मैं ये कॉल करने जा रहा हूँ सीधा आसिफ भाई को, एक सेकेंड किधर गया भाई, नंबर तो गलत नहीं डाल कर रहा हूँ, सॉरी यार, अगर रॉन्ग नंबर कहीं लगने जा रहा है तो रॉन्ग नंबर से ही बात कर लेंगे, कोई गाल नहीं। जरूर करें साहब, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई,
1: अस्सलाम वालेकुम भाई।
0: भाई क्या चल रहा है
1: भाई? रे तू एकदम लट गया,
0: लट गाड़ दी भाई, चढ़ा फाड़ दिया भाई साहब।
1: तेरे जैसे भाई होने तो फिकर किस बात की।
0: अरे भाई साहब बहुत धन्यवाद भाई, आपकी मेहरबानी है भाई।
1: भाई ईद मुबारक भाई एडवांस में, क्या पता भाई 27 को भाई महवीर जी को ईद मुबारक करनी पड़े भाई, तेरे को पहले कर दे रहा मॉर्निंग में।
0: 27 हाँ ओके, शाम को होगा, शाम को 27 को, शाम को शो है।
1: मगर मैं सुबह में भाई, हम लोग को आदत लग गई है भाई तेरी
0: भाई, क्या करने का भाई, अभी क्या करने का भाई।
1: मैं एक बात बोलता हूँ भाई, मतलब मेरे दिल की बात, मतलब जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते, कबीर भाई किधर है, कबीर भाई, कबीर भाई किधर है, ऐसा करने का। अभी क्या हम लोग को फिर अभी आदत लग गई है, अभी मतलब क्यों जा रहे भाई तुम?
0: भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं भाई, जो सरकार की वो होगी क्या कहते हैं ईमेल, वही फॉलो किया जाएगा, वैसा ही
1: होता है भाई, होता है। हम भी तुम्हारे जैसे ही भाई नॉर्मल आदमी है ना,
0: तो भाई नॉर्मल आदमी भाई, एकदम ज्यादा टेंशन लेते नहीं भाई, जिस तरफ दिखा दिया दिशा उस तरफ भाग गए, समझे।
1: बाकी मेरा सोचने का मतलब क्या, सबको इधर उधर कर दो, बाकी तुमको खिला रहे जगह से।
0: इनफैक्ट इस बार जो है सरोवर भाई अपनी जगह पर है, बाकी सब तितर बितर हो चुके हैं।
1: सरोवर भाई तो वैसे भी हिलने वाले नहीं है।
0: ये मैं आसिफ भाई, ये मैं बताऊंगा उन्हें, मैं कहूंगा ये आसिफ भाई है।
1: अरे भाई
0: ऐसे कैसे भाई, ये तो लफड़ा चाहिए भाई, बहुत टाइम से देखा नहीं मैंने दो लोग लड़ते हुए। मेरे को चाहिए भाई कुछ मसाला चाहिए
1: भाई। ये जो स्टोरी जो तुम सुनाए भाई,
0: जी भाई,
1: मतलब मैं तो इस कंफ्यूजन में था कि विक्टर को मारने वाला और कोई नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड होगी जिससे बेशुदा मोहब्बत करने लगा। फिर मगर सोचा कि पुलिस उसके पास तो गई है, मतलब ऐसा लगा था कि हम लोग अभी बस वकील के पास जाएंगे, जज के पास जाएंगे और इसका
0: मामला क्लोज।
1: मैं बाद में कंफ्यूज तो थोड़ा हुआ, बाकी बोला चलो अच्छा, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो
0: कुछ
1: होगा,
0: तो
1: बंदा बच गया होगा। बंदा बच गया होगा भाई, मतलब आखिर में मालूम पड़ा बेचारा चल दिया, बहुत अच्छा आदमी था भाई।
0: भाई देखो कहानी में कब तक बचाऊंगा मैं, कभी ना कभी तो टपकाना पड़ेगा ना भाई।
1: अरे नहीं मैं तो हर कहानी मतलब भाई विक्टोरी लोग की, मतलब बाहर लोगों की है, यही सीन होता है कि सुनने मिलता है भाई बच गया। थैंक गॉड भाई, भाई भाई बच गया, इतने हादसे होने के बाद भी बंदा बच गया।
0: नहीं अभी क्या होता, अभी क्या, वही वही वही तो मुझे एक दो लोग कह रहे ना देसी कहानी भी सुनाइए, तो देसी कहानी में क्या मसला है ना, देसी कहानी में है मसाला, पर ये इन गोरों की स्टोरी में जो मसाला होता है ना वो कुछ अलग ही है।
1: अलग ही होता है अभी। हाँ। जैसे कल भाई वो जो तुमने बताए थे स्टोरी, वो इतने भेड़ियों के बीच में भी बच। हाँ, हाँ। 2021 में उसकी मौत होती बेचारे की।
0: हाँ एग्जैक्टली, अब हमारे यहाँ थोड़ी ऐसा सीर हो सकता है, हमारे यहाँ कौन कौन से जंगल में गिरे कोई बच जाए,
1: हमारे वहां तो कुत्ते देख ले तो मर।
0: हमारे यहाँ के वुल्फ ज्यादा खतरनाक है, कुछ नहीं है हमारे के तो बकरे भी वायलेंट है।
1: और एक फनी जो स्टार्टिंग में फनी था भाई, वो बंदा एक्सीडेंट करता है। हाँ। उसको कुछ नहीं होता है भाई।
0: ये अक्सर देखा गया है जो ऐसा करता है उसको कुछ नहीं होता, सामने वाले को नुकसान हो जाता है, तो ये सिस्टम है।
1: नुकसान हो जाता है भाई। और बंदा बेचारा इतना अच्छा था, बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, चल दिया वो। गॉड ब्लेस हम।
0: दिल से नहीं निकली बात ही, कोई नहीं, अच्छा आदमी था, बहुत
1: भाई करनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, मालूम नहीं।

0: एफएम पे कौन सुन ले दिल से।
1: हाँ नहीं, ये तो है ठीक है।
0: और मेरे मतलब हमारे उधर ऐसा हुआ ना भाई, मतलब मुंबई में कैसा, अगर मैंने किसी गाड़ी ठोक दिया
1: हाँ,
0: तो हम लोग उसको बंदे को तो 18 महीने की जेल हुई ना भाई।
1: 18 महीने की
0: हमारे 18 महीने की जेल तो बहुत दूर की बात है।
1: 18 मिनट लगेंगे वहां पे खड़े खड़े।
0: 18 मिनट में चौकी में जाने का, चौकी में ले पट्टे ले धार ले लाठी ले चार बार में पैसा भर बार।
1: आज एक काम करते हैं, लेकिन जैसे रे जो था वो मिला नहीं, उसकी बॉडी नहीं मिली, तो आज सर्वर भाई को हम रे बोलेंगे।
0: अरे भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है भाई, वरना मैं तो फोन लगाओ, मैं तो दो दिन चार दिन से फोन ही नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। मैं
1: मैसेज करके आज मैं उनको, मतलब जितने भी लोग हैं भाई, कोई मैसेज कर सके तो मैसेज कर देना, आज को आज सरोवर भाई को सबके सब रे बोलेंगे, आज वो रे है।
0: उस दिन तुमने भाई वो बेचारे को मुल्तानी मिट्टी वाला सीन बोल दिया भाई, कल तुम यकीन नहीं मानेंगे, मैं एफएम ऑन किया हूँ 11 बजे, 11 o'clock को एफएम ऑन किया हूँ मैं, 1 बजे तक, 1 बजे मैं एफएम ऑफ कर दिया भाई, जो भी आ रहा भाई मुल्तानी मिट्टी है क्या शॉट है। मैं सडनली चुप हो गया, मैं बोला आसिफ इस बीच में तू अगर कुछ बोल गया ना तो बंदा वो कसम से सीट पे तो उठ के जाएगा कभी भाई को पकड़ने के लिए।
1: मैं आज उनको बोलना है कि रे भाई कहाँ हूँ आप, मिल नहीं रहे हो।
0: भाई
1: आज यही किया जाएगा, डेफिनेटली आज यही किया जाएगा। तो मेरी गुजारिश है जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन सुन रहे हैं, आज यही किया जाए, आज
0: भाई जोक जपाट, भाई जोक जपाट स्टोरी बहुत प्यारी थी, बनाने वाला उससे भी ज्यादा प्यारा था
1: भाई।
0: तो आप बेहद बेहद जरूरी है,
1: आप भी बेहद बेहद जरूरी है मेरे भाई।
0: लटकाड़ दिया भाई
1: मौसम बदल देंगे भाई, मौसम
0: पत्थर पर। और भाई एक छोटी सी बात
1: बोलो ना भाई।
0: भाई एक मतलब स्टार्टिंग में एक कॉलर को सुन रहा था मैं तुम्हारे, वो मतलब बोल रहा था कि मतलब मुंबई में भूख उगनी लगती है क्या।
1: हाँ वो कहते हैं वहाँ। क्या?
0: मैं सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बंदा भाई जो भी था मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मेरे घर वाले पैदा हुए, मेरे दादा उधर ही पैदा हुआ, मगर वो लोग बिना, हम लोग बिना खाए मुंबई में रहते ही नहीं है भाई।
1: सुबह से ही चाहिए है ना, मतलब सुबह से ही चाहिए,
0: सुबह मॉर्निंग में उठते पाव चाय, दोपहर में खाना, रात में डिनर, बाद में हम लोग को सुकून मिलता है भाई, वही ना, वहाँ पर तो इंसान भूखा मर जाएगा भाई अगर।
1: नहीं मैं वही हैरान हूँ कि मतलब जो लोकल ट्रेन में चढ़ जाते हैं आराम से, और कैसे इतना सामान लेके चढ़ जाते हैं यार, बड़ी बात है।
0: मैंने आपको बताया था ना भाई कि मुंबई लोकल ट्रेन में अगर किसी को मसाज की जरूरत हो, अगर सोच रहा हो कि भाई का मसाज कराए तो प्लीज भाई लोकल ट्रेन में चढ़ जाओ, हमारे बहुत फ्री की सेवा मिलेगी आप लोगों को।
1: हाँ ये तो बात है, अग्री, मेरी तो हिम्मत नहीं है, जो कर सकते हैं सब जरूर करें।
0: मेरा तजुर्बा है, अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा मौका मिले सर्वर भाई को, मैं अगर बोले सर्वर भाई चलते क्या, सर्वर भाई बोले किधर, मैंने भाई लोकल में, मैं तो सर्वर भाई को लोकल में घुसा दूंगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा।
1: नहीं फिर वो लोकल में सिर्फ एक ही आदमी सफर कर रहा होगा। नहीं पर आज तो कुछ किया जाएगा, आज इनको तंग किया जाएगा डेफिनेटली। ठीक है आसिफ
0: भाई, ओके भाई,
1: बहुत बहुत
0: प्यारा भाई अपना,
1: बहुत प्यार भाई, थैंक यू भाई,
0: लव यू भाई, टेक केयर,
1: लॉट्स ऑफ लव भाई, टेक केयर टेक केयर। अब भाई गांधी से भाई रिपीट कर क्या बोलना है सरोवर भाई को, आज बोलना है रे भाई आपका पता नहीं लगा कहाँ है आप, चूंकि रे गायब था ना उसकी बॉडी नहीं मिली इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: अरे नदीम भाई किधर, आपका पोस्टर उसे छपवाने वाला था, मिसिंग रिपोर्ट।
2: मैं तो बेटे की स्कूल बंद हो गई, तो आपको पता है सुबह में क्यों उठेंगे फिर।
1: कोई मतलब ही नहीं है। तो आज कौन से राइम और रीजन है उठने का?
2: आज बस आग खुल गई सारे साथ, तो मेरे को एक काम भी था बाहर का, मैंने बोला चलो एफएम चालू करके थोड़ा बाहर का काम कर लिया जाए।
1: हाँ क्या बात है, एकदम लाट साहब की तरह एकदम, आज मन नहीं
2: था टाइम। हाँ मतलब कर सकता था बाद में, लेकिन मैं बोला अभी कल शो मिस हो गया तो आज तो सुनना चाहिए।
1: अच्छा
2: यार ये थोड़ा हमारे जैसे ओवर थिंकर लोग का थोड़ा ख्याल किया करो, स्टोरी सुनाते हुए अभी पूरा पता पूरा हफ्ता दिन पता नहीं कितने दिन जाएंगे सोचते हुए कि कहाँ गया।
1: रे की टेंशन हो रही है ना, कहाँ किधर गया, गया कहाँ,
2: दिमाग में चलता ही रहेगा कि यार सुबह में साला स्टोरी सुना रे गया तो गया किधर,
1: रे किधर गया,
2: पूरा हफ्ता दिमाग में चलेगा।
1: ये तो है, पर नदीम भाई सुबह ना मैंने एक सवाल पूछा था, इंटरेस्टिंगली आपसे पूछ सकता हूँ भाई, एक मैं कह रहा था कि ऑफिस में कुछ लोग ना बहुत सारे बैग्स वगैरह ले जाते हैं और कुछ लोग खाली हाथ जाते हैं, तो आपको कैसे रहता है ऑफिस, कुछ सामान वामान लेके आते हैं लंच टिफिन वगैरह कुछ?
2: कसम से बोल रहा हूँ मैं है ना ऐसे, मतलब जब मैं ऑफिस जाता था नया नया ना जब इंडिया में, तो मेरी 1200 रुपए सैलरी थी जब मैंने स्टार्ट किया काम, तो टिफिन लेके जाने ना शर्म आती थी, ऐसा लगता गरीब लोग जा रहे थे, बाहर से खाना आएगा तो ऐसा लगता है थोड़ा

0: अमीर बंदा है, बाहर से मंगा के खा रहा है। तो ऐसी थिंकिंग थी पता है कि पता है एक बंदा था मेरे यहाँ पे भाई, वो हफ्ते में चार बार है ना शिमला मिर्च की सब्जी डालता था, शिमला मिर्च की सब्जी हफ्ते में चार दिन। और मेरे को शिमला मिर्ची मैं पिज्जा से भी निकाल के खाता हूँ।
1: अरे रे रे रे भाई, तो
0: हाँ अभी तो खा लेता हूँ, खैर मैं पहले नहीं, पहले बहुत नखरे थे खाने में, अब तो जो मिला वो खा लेते हैं अपना बंद करके। तो शिमला मिर्च की सब्जी, और मेरे मम्मी है ना वो आलू की सब्जी जब बनाते थे, फ्राई वाले आलू बोलते हैं हम, तो मैं वो टिफिन में लेके जाता था।
1: ओके,
0: तो अब मैं जब भी आलू लेके जाऊँ वो खा ले कि यार आपकी मम्मी आलू बहुत अच्छे बनाते, और खुद लाए शिमला मिर्च, अब मैं खा नहीं पाऊँ। तो अब तीन रोटी या चार रोटी में से अपन एक रोटी खा रहे हैं, हाँ। बाकी वो खा ले रहा,
1: हाँ।
0: तो मतलब हो जा रहा है कि भाई यार खाने मम्मी टिफिन पैक करके दे रहा, और अपनी सैलरी भी 1200, अपने पास पैसे नहीं रहे बाहर खाने को। तो मैं तो बहुत टिफिन लेके जाने भी शर्मा रहा है, हाथ में पकड़ के जब ट्रेन वेन में जाओ या कहीं जाओ, अभी आपको पता है
1: फीलिंग नहीं आ रही है, थोड़ा वो रिचनेस वाली फीलिंग नहीं आती होगी।
0: हाँ वो रिचनेस वाली, और अपन इतना हालत उधर खराब होती थी कि मैं तो पता है 1200 रुपया सैलरी थी, और आई थिंक 300 रुपए का तभी फर्स्ट क्लास का पास होता था, तो 300 तो सिर्फ ट्रेन के पास में चले जाते थे।
1: अभी अभी कितने का है, अभी कुछ आइडिया, अभी कितने का है फर्स्ट क्लास का पास?
0: बिल्कुल आइडिया नहीं, अभी तो टिकट ही साला मेरे को लगता है पहले 10 रुपए की जो मुंबरा से बॉम्बे की टिकट होती थी वो अभी मेरे ख्याल से डबल से भी ज्यादा हो गई है, अभी तो बहुत ज्यादा होगा।
1: अभी तो आपके भी नखरे हो गए हैं।
0: हाँ अभी मैं पता है मेरे को अभी अगर जैसे लोकल ट्रेन की सफर है, और मतलब सिर्फ गुजरात जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठ जाता हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ ओला करके जाता हूँ, मैं ट्रेन होता ही नहीं, अब तो चढ़ भी नहीं पाऊंगा, पहले तो फिर
1: भी नहीं पाऊंगा, आदत खराब हो जाती है कतर में, आदत खराब हो चुकी है।
0: और एक आध बार पता है जब नया नया आया था ना कतर, हाँ। तो रिटर्न पे अपन चढ़ गए थे एक दो बार ट्रेन में,
1: हाँ।
0: भाई फिर बाद में ऐसा चढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि नहीं नहीं यार थोड़ा पैसा जाएगा लेकिन सुकून से जाएंगे।
1: अब सुकून की तलाश में, ठीक है। तो नदीम, हाँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, काम हो गया आपका, अभी काम करने निकले?
0: मैं बस वापस जा, मैं बैठा था स्टोरी सुनने, आपको अच्छा। पता है फिर काम रुक जाते सारे।
1: नहीं वो अच्छा लगा मुझे भाई अपने कॉल करी,
0: अभी मैं निकला हूँ रे को ढूंढ दे, देखते हैं कब मिलता है।
1: रे को ढूंढो भाई, रे को ढूंढो, आपको मिले तो कॉल मी। ठीक है,
0: ओके भाई, और आज मंडे है मेरे को बताना अगर कुछ फ्री रहेंगे।
1: डन डन डन डन डन, इंशाल्लाह जरूर मेरे भाई, आपका तो नंबर है अपने पास, इंशाल्लाह। ओके मेरे भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो नदीम भाई के बाद कुछ और मैसेजेस हैं। भाई मुंबरा से बोलो भाई लोकल जोगेश्वरी में आओ, आज मुंबई वाले सारे घेर लिए। एक मैसेज, भाई हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अम्मी ने बचपन से आदत डाल दी भाई, बाकी तो अब बेगम की मेहरबानी है, अगर हम हम नहीं मूड ख़राब नहीं तो लंच मिल जाता है। हम भी भाई मिडिल क्लास से भाई एकदम मौज। जीशान भाई मेन मज़े ही मिडिल क्लास वालों के है, सच बात तो ये है, ज़्यादा रीस होने में मैंने देख लिया भाई कोई फ़ायदा नहीं है भाई। एक मज़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दन कह रहे हैं आज, हाँ आज सुनो भाई, सरवर भाई को आज बोलिएगा, रे कहाँ हो तुम, तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं। एक मैसेज है, एज यूजुअल आज मैं क्या गुंडे का गुंडे से टकराव हो गया आज की स्टोरी में, एज यूजुअल आज मेन पर्सन निकल लिया। फराज भाई कह रहे, फराज भाई करना पड़ता है, रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आरजे, मिस आउट टू रेस्टोरेंट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी, विच यू अ गुड डे। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। एक मैसेज जकी भाई का, जस्ट ट्यून्ड इन, हाउ इज एवरीथिंग जकी भाई, एकदम बड़ा चंगा मेरा भाई। भाई आपको सोने के लिए ड्यूटी का टाइम चेंज किया, लेकिन फिर भी अच्छा है, ड्यूटी ख़त्म आपका भी होगा मेरा भी होगा साथ में, करीम भाई। रमेश यादव भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देन गरीब इंसान नहीं, तला भाई आपका इंतजाम करेंगे भाई, इस बार तला भाई आपको बख्शेंगे नहीं क्या, नो बख्शिश। वैसे सरवर भाई को रे नहीं बोल सकते कबीर भाई, उनको कोई छुपा नहीं सकता। नहीं भाई आज रे बोलना पड़ेगा उनको, आज रे बोलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, हाय लियो, हाल है, हेलो हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी कमाल भाई, बताइए कमाल भाई।
2: भाई अच्छा बात नहीं है भाई,
1: अच्छा बात नहीं,
2: एक आदमी सुधरने का कोशिश कर रहा है। आप उसको गायब ही कर देते हो यार भाई।
1: मुझे भी नहीं पता,
2: पहले तो मार देते थे कम से कम, जो है
1: सुकून रहता था,
2: आज बोले गायब ही कर दो, ढूंढो। हाँ अब
1: पहले सुकून रहता था ना कि चलो निकल लिया,

0: हाँ वो भी वो आदमी को जो आदमी सुधरने की कोशिश कर रहा है, बताइए जो अपनी लाइफ बनाना चाहता है उसी को आपने गायब कर दिया।
1: बुरा लगता है कमल भाई, करना पड़ता है कहानी के लिए। पापी पेट का सवाल है। पर कैसे लगी आपको ओवरऑल कहानी? आई नो थोड़ी डिफिकल्ट थी, बीच में बहुत सारे नाम थे, बट
0: थोड़ी डिफिकल्ट थी हाँ, लेकिन कहानी अच्छी थी। और भाई कहानी अच्छी की बात नहीं है, आप जो सुनाते हैं ना, जो सुनाने का आपका तरीका है
1: जी।
0: आपने देखिए वहाँ पे जो है पीछे से एक आदमी दौड़ के आ रहा, उसके बाद उसको जो है अब कहानी आगे लेके चलेंगे।
1: हाँ।
0: रोक दिया वहाँ पे, भाई दौड़ के आया कौन था क्या था, रेत में आवाज आई, पीछे से आदमी बंदा भी गया, कहानी को दूसरे डायरेक्शन में लेके चले गए।
1: मुझे पता था ये चीज
0: मतलब ये
1: मैंने जानबूझ के किया, मैंने कहा आदमी सोचता रहेगा अरे उधर क्या हुआ उधर तो बताओ। बट इट वर्क था, बहुत अच्छा लगा मुझे
0: उसके। हाँ जब हाँ। जब उसका भाई ढूंढना शुरू किया तो मतलब जो है पीछे से आ रहा तो वही किडनैप किया होगा,
1: हाँ।
0: इतना तो समझ में आया।
1: पर लगा होगा ना कि निकल
0: लेकिन
1: लिया
0: फिर उसके घर, उसके ही घर में दो आदमी बैठे हुए हैं, आपने कहानी को ऐसे ऐसे जगह मोड़ दे दे के घुमाया है।
1: अब रे मिल भी नहीं रहा है कमल भाई, रे को ढूंढिए, हो सकता है किसी लोकल ट्रेन में खो
0: वही
1: गया।
0: तो भाई जैसे नहीं किसी को गोल गोल घुमा के छोड़ दिया जाए
1: हाँ।
0: तो आदमी खुद जो है चक्कर खा के गिर जाता, वैसी हालत आपने किया है। सब करने के बाद जो है रे को ही गायब कर दिया, बोले ढूंढो
1: ढूंढिए और
0: भाई
1: क्या,
0: तो ढूंढ रहा था, आप लोग भी ढूंढो, लिसनर भी ढूंढिए
1: भाई लॉन्ग वीकेंड है, रे को ढूंढिए, मिल जाए तो बता देना भाई।
0: मिल जाए तो।
1: ठीक है कमल भाई, भाई बहुत प्यार भाई आपको,
0: देखिए भेजा मैंने आपको।
1: डन डन डन, कौन सी भेजी, अभी भेजी क्या?
0: नहीं तभी भेज दिया था
1: अच्छा
0: भाई,
1: मैंने वो देखा
0: आपने
1: नहीं,
0: देखा ही
1: तो
0: नहीं।
1: अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ मैं, ठीक है अभी देखता हूँ,
0: देख लीजिए।
1: ठीक है मेरा भाई, ओके कमाल भाई,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।
1: ओके भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कमाल भाई के बाद एक और मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है, एक सेकंड पहले मैं एक कॉल उठा लेता हूँ उसके बाद मैं इसी तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है।
2: फोन तो मेरे मुझसे दूर नहीं है
1: अभी,
2: अब
1: ठीक है
2: तेरी भाई।
1: अभी अभी आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, अब क्लियर कट आ रही है जी, बताए।
2: बस मैं बस आप लोगों का भाई था, तोड़ने की कोशिश में कभी कभार आप लोगों की तरफ चल रही होती, बस भाई लोग है, कबीर भाई है और भाई लोग है, और बस कॉल चल रही है।
1: क्या करें, देखिए
2: कसूर कम कम ही सुनाई देते।
1: नहीं हमारे हमारे जो जितनी खवातीन सुनती हैं शो को उनमें से बहुत सारे मैसेजेस करती हैं, सुबह से ही मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। तबस्सुम बहन है, दो तीन और हैं, मैसेज आते हैं, इनफैक्ट बारेन से भी जुड़ी रहती हैं, नाजिश हैं, वो मैसेज करती हैं।
2: कम ही सुनने को मिलती है ना
1: जी जी, कॉलर्स तो हमारे सारे भाई लोग हैं। हमने पूरी वो बिठा रखी है, बत्ती जाने के बाद सारे लड़के बाहर आते गली में, चलो वही बात करते हैं। तो वैसा वाला सीन है जी।
2: खैर माशाल्लाह आपकी तो, आपके तो बहुत जो है ना, आपकी सिस्टम जो है, मुझे ये भी जहन में आता है कि आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, किस सेंस में आप समझ रही है।
1: अब
2: जो आपने ट्रेंड सेट किए हैं इंटरएक्टिव जो है थ्रू कॉल माशाल्लाह, डिस्कशन और बहुत से दूसरे प्रोग्राम जो है
1: जी,
2: बच्चों के प्रोग्राम, मेरे बच्चे कॉल करते हैं, बहुत इंटरएक्टिव हो गया है, कॉल के जरिए सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा ये थी, कहानी तो पहले भी होती थी SM107 पर, लेकिन जो रियलिस्टिक रियल लाइफ स्टोरीज जिस अंदाज में माशाल्लाह आप सुनाते हैं
1: मजा
2: ही आ जाता है।
1: थैंक यू, नहीं मैंने वही सोचा, मैंने कहा इसलिए फिर कहानी में फर्क पड़ेगा।
2: जो आपकी टाइमिंग होती है माशाल्लाह, आपकी चैलेंज की वजह से, इस मेहनत की वजह से आपके लिसनर्स जो है ना वो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। कभी भाई सुबह को है तो सब लोग सुबह को सुन रहे हैं, कभी भाई शाम में है तो सब लोग शाम में सुन रहे हैं।
1: ये तो ये देखिए ये मोहब्बत है, मैं तो मतलब आई फील सो ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सारे जिनसे बात भी होती तो मुझे अच्छा ये लगता है कि बात उस तरीके से नहीं होती कि फॉर्मेलिटी हो रही है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, तो वैसे बात होती तो बड़ा अच्छा लगता है। दैट इज वाई आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, आई थिंक इसलिए सब चीज़ें काम कर जाती हैं। पर आपका
2: आज की
1: बहुत शुक्रिया,
2: सुन तो नहीं पाई लेकिन उम्मीद है
1: नहीं, नहीं।
2: आपकी मेहनत और आपकी जो है ना वो जो आपकी सुनाने की माशाल्लाह सलाहियत है, ये भी एक अच्छा इंतजाम होगा और अच्छी रही होगी।
1: जज़ाकअल्लाह, नहीं आपने सुनी नहीं, मैं अगर आप मैसेज करेंगे तो जरूर भेजूंगा आपको, यू कैन लिसन टू इट, अच्छी लगेगी आपको, उम्मीद अच्छी लगेगी आपको स्टोरी।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज का टॉपिक चल रहा है ये ट्रेन के क्या जिक्र,
1: वो एक नहीं, वो ट्रेन का नहीं, वो जिक्र ये था, मैंने ये पूछा था, मैंने कहा देखो कुछ लोग ना ऑफिस में बहुत सारा सामान ले जाते हैं, कुछ लोग खाली हाथ जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि काफी बैग्स होते हैं, लैपटॉप बैग्स, टिफिन, ये वो सब लेके जाते हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में है ये पूछा, तो आपका क्या सीन रहता, लाइक हाउ आर यू इन
2: ऑफिस में ज्यादा सामान, मैंने जब भी कोई लाइफ में जॉब की है तो जॉब में अगर तो बंदा बैठ के काम करता है ना, तो मैंने एक्चुअली टीचिंग जॉब की जब भी किया तो उसमें तो घर में ज्यादा सामान, घर से ज्यादा सामान ले जाने वाली वही नहीं है।
1: अच्छा
2: मैं बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की

0: मतलब हर वक्त घर की भी हर चीज को ऑर्गेनाइज रखना, बच्चों को, आपको बच्चे आजकल जो है ना प्रैक्टिस पे हैं एग्जाम के लिए,
1: ओके,
0: तो मैं ज्यादा सामान साथ रखने की ले जाने की कायल ही नहीं हूँ,
1: मुझे ऐसा लग रहा है आपका मन, आपका मन तो है कि मैं ले जाऊं सामान भर भर के, ऐसा दिल तो करता है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है।
0: कौन सा कोई हम कार्गो से पाकिस्तान जा रहे हैं के लिए।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ मैं ही जाना चाह रहा था, तो इसमें पता लगा कुछ लोगों ने
0: बोला डेली बेसिस पे, हाँ डेली बेसिस पे जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे इतना सारा कचरा फैलाने की क्या जरूरत है, बस जरूरी जरूरी सामान वहाँ भी जरूरी जरूरी सामान
1: रखें।
0: मेरी दुखती रख पता क्या है, बंदों को खुद को ऑर्गेनाइज, जो जो ना एक ना वो माशाल्लाह से कोई ना वो होते हैं खुद को ऑर्गेनाइज रखने वाले बंदे, एक वो रेयर किस्म की क्रीचर्स होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन क्रीचर्स को ज्यादा से ज्यादा वो रेयर कैटेगरी में ले आए, इनके इस तरह का हिस्से का ये काम जो है ना खातिर इनको करना पड़ता है।
1: अच्छा भाई सुधर जाओ।
0: अब आप ये एक दुखी बीवी की फरियाद सुनेंगे, दुखी बहन की, दुखी अम्मा की, फिर ये आपकी समझ जो है ना वो,
1: इसके लिए मुझे अलग शो करना पड़ेगा, ये भी एक पोर्टल बनाना पड़ेगा मुझे।
0: तो बस यही कहना था कि सामान जो है वो आपको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, जो वहाँ पे भी आप लेके जाए तो बस
1: किसी ने भी मुझे लिखा ना एक्स्ट्रा सामान लेके जाओ, आपसे शिकायत कर दूंगा।
0: हाँ। और दूसरा ये कि इस्त्री करके अच्छे से हैंग करके सामान घर में रखा जा रहा है, फिर आप जल्दी जल्दी में जॉब के लिए निकलते हुए, काम के लिए निकलते हुए, सारा किया कराते पानी फेरने वाले हजरात को अल्लाह हदायत दे।
1: आमीन आमीन।
0: घर को साफ सुथरा रखा जा रहा है, और चाय पीते पीते चाय तेजी से फोन कॉल सुनने के चक्कर में तेजी से चाय के साथ या कॉफी के साथ मूव करते हुए फर्श पे गिराने वाले को अल्लाह हदायत दे।
1: आमीन आमीन आमीन।
0: कुछ यहाँ कुछ वहाँ, और जनाब और जनाब और क्या सुनाए आपको, जनाब नई नई सेटिंग होती है कंप्यूटर की, और उनके वायर कंप्यूटर की वायर जिस तरह से वो घर के डेकोरेशन और इंटीरियर को खराब कर रही होती है, क्या वो गेमिंग स्टेशन लग रहे हैं, क्या वो इस तरह ही मुझे सेटिंग बच्चों के लिए हो रही है, अपने लिए हो रही है, उसके बाद वो टेबल्स के पीछे से भी जो अजीबोगरीब किस्म के जो है,
1: ये जो आपने आज डांट लगाई है, आपको पता है ये डांट आपकी इतनी जनरल है, कितने लोगों के दिल पे लगी है, जाके सब अपने आप सामान समेट रहे होंगे अभी।
0: कितनी आवाज नहीं कि दिल की आवाज है, और कितने बंदों का अल्लाह भला, अल्लाह उनको हम समझ दे।
1: इस बार जो जुमे की तकरीर में मुझे लग
0: रही है कभी भाई घर को चमकाने उसकी हाँ। लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक इंटीरियर डेकोरेशन करने की कोशिश में बेगम हल्कान हो जा रही है, वो भी बगैर किसी मतलब कोई इंटीरियर डेकोरेटर को हम बंदा बुला नहीं रह सकता, तो वो अपनी सरकार पे, और जनाब एक वो तरह तरह के मॉडर्न आ रहे हैं अच्छे से वाईफाई के सिग्नल के लिए,
1: मैं टैप कर रहा हूं, मैं टैप कर रहा हूं, मैं हार मानता हूं,
0: सेटिंग हो रही है,
1: मैं हार मानता हूं,
0: सेटिंग हो रही है, और वो इतनी खूबसूरती के अंदर काली पीस हार जो नजर आ रही है आप बेगम उसको के चक्कर में
1: बस बस बहना बस बस बस इस पे शो होगा अलग से, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
0: ओके, ओके।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगता है,
1: जजाक अल्लाह बहन, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत अच्छा लगता है, और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्या भला
1: आपका
0: चलिए इसके लिए आपको तरक्की की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि आप समझ के होंगे किस तरह,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अपना ख्याल
0: रखिए,
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो एक मैसेज है क्या है, हम सबसे ऐसे बात नहीं की रे का फीवर। एक मैसेज है, बहन ने इनडायरेक्टली भाई बहुतों को डांट लगा दी, बहुतों को एक साथ। सब के सब अभी खौफ ज्यादा हुए बैठे हैं। नदीमा कह रहे हैं किसी का मैसेज पढ़ नहीं पड़ सकता, बताए सबके मैसेज किए। अच्छा मेरे घर से मैसेज है क्या, मेरा तो पूरा कैंटीन लगता है हर संडे को।

0: रिफिल करती हूँ फॉर द फुल वीक. जिसको भूख लगे वो सीधा सना को याद करे. टीएम ये बता रहा हूँ, ये हमारी घरवाली ये बता रही है सब. ये भी टेबल लगा लेती है पूरी तैयार, जिसको भी कुछ चाहिए पीनट्स खाने पीनट्स. एक मैं समझ गया, ये बहन की बात कभी मेरे माइंड में आ जाती है, भाइयों का रेडियो चल रहा है. अरे अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई मेरे भाई.
0: वाह प्रिंस भाई क्या हाल है.
1: वही हड्डी वही खाले, बचे कुछ चार बाल है, अब क्या बताएं.
0: अभी डांट पड़ी है इतनी जोर से प्रिंस भाई, इतनी जोर से डांट पड़ी है सबको, समझ रहे हैं आप.
1: सुन नहीं पाया.
0: अच्छा अरे बच गए आप. अभी सबको डांट पड़ी है बहुत जबरदस्त वाली. बहन ने कहा कि ये जो जितने लोग हैं उन्होंने कहा कि ये लड़कों का वो लगता है मंडली बैठी हुई है सुबह सुबह. भाईचारा ऑन टॉप.
1: यू आर अ डिटेक्टिव.
0: यस शेरलॉक होम्स. तो प्रिंस भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपका तो अलग ही माहौल है, पर फिर भी आप क्या ले जाना मतलब पसंद करते हैं, लाइक ऑफिस जॉब में आपका ऐसा है कि कुछ कैरी करते हैं आप स्पेशली टिफिन वगैरह? आपको तो जरूरत नहीं पड़ती टिफिन कैरी करने की.
1: नहीं भाई, नथिंग
0: नथिंग एट ऑल.
1: वो भी बड़ी क्या कहते हैं मिन्नतों से हमारी अहलिया जो है वो हाथ में एक बैग पकड़ाती हैं, जो मेरे साथ ही जॉब करती हैं, तो उसमें ताकि मैं अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स रख सकूं, यानी मोबाइल वैलेट दोनों फोन शान मुतनकल या क्या कहते हैं यार उसको शान मुतनकल, तो वो जो होता है चार्ज फोन में खत्म हो जाए तो फिर लगाने के लिए.
0: ओके ओके
1: पावर बैंक.
0: पावर बैंक. ओके मुझे भी कन्फ्यूज कर दिया आपने, मैंने कहा है मुझे क्यों नहीं पता ये चीज. अच्छा
1: नहीं यार मैंने मिस कर दिया यार, बहुत ही अच्छा वाला
0: अभी
1: सीक्वेंस यार.
0: नहीं अभी आज डांट पड़ी है आपको ये सुननी. मैं वो रिकॉर्डिंग
1: बोलो ना बोलो. बहन ने क्या बताया?
0: उन्होंने ये बोला कि सबको डांट पड़ी है कि उन्होंने बोला कि जो भी मर्द है उन्हें हिदायत दे अल्लाह मियां, जो चीजों को संभाल के नहीं रखते ऑर्गेनाइज नहीं रहते उन सबको उन्होंने बोला.
1: बेंडर गई बेंडर गई.
0: दर्दा नहीं, हम आपके साथ हैं, हिम्मत रखिए हिम्मत रखिए.
1: अरे मेरी प्यारी बहन, हाँ. अगर हम चीजों को इधर उधर नहीं करेंगे, हाँ. तो आपकी वैल्यू कैसे पता चलेगी?
0: क्या क्या अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे क्या बात है आज. मैं तो भाई बीच में बैठा हूँ एज एन ऑडियंस, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बात कर रहे हैं आपस में. साफ सीधी बात प्रिंस भाई, अपना अपना देखो भाई.
1: भाई मैं मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं अगर हाँ. भाई तू लड़की होता ना
0: हाँ.
1: तो वल्लाही तेरे साथ में जीते रहते, सब आपस में लड़के मर जाते.
0: ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है?
1: मैंने भी यही पूछा था.
0: तो फिर क्या जवाब आया?
1: तुम जिस तरह लेना चाहो ले सकते हो.
0: ये कोई बात है. अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. वैसे प्रिंस भाई कहानी सुनी क्या आपने?
1: भाई जब वो मर रहा था ना तब हाँ. सुनी. जब मरने की अफवाह उड़ी थी तब सुनी.
0: ये अच्छा था, अच्छा था. ये 10 में 10 जवाब. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको भेजूंगा मैं आपको कहानी, फिर भी सुनिएगा.
1: हाँ जरूर जरूर भेज देना भाई. अब बहन को बोलना वो भी अपनी मंडली बनाए लड़कियों वाली, वो क्या कहते हैं उसको, कौन सी तो पार्टी कहते हैं यार,
0: किटी पार्टी,
1: बिल्ली पार्टी. हाँ सॉरी किटी पार्टी,
0: बिल्ली पार्टी. ये मैंने नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा है
1: भाई. अगर कसम से मुझे तुम्हें लड़वाना होता ना तो मैं तो सीधे सीधे बोल देता अभी ऑन एयर कि ये सारे मैसेजेस मुझे कबीर भाई ने किए थे, क्या कोई किस तरह से बोलना है.
0: अच्छा यही स्क्रिप्टिंग भेज रहा है मुझे ये संजय लीला भंसाली. यही है
1: स्क्रिप्ट राइटर, यही है.
0: यही है संजय लीला भंसाली.
1: अरे बड़े मजे आते हैं ऐसे करने में दोस्तों यारों के साथ में.
0: नहीं बट मुझे मैं प्रिंसिपल वही कह रहा था, मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि सुबह सुबह जो कम्फर्टनेस है या फिर कभी भी किसी भी शो में आओ जिस तरीके से बात करते हैं, चाहे वो भाईचारा ऑन टॉप ही सही, बट बहुत अच्छे से बात होती है, ऐसा लगता है कि बड़ा फैमिलियरिज्म है. वैसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ तब भी हमारी बात ऐसी हो रही है जैसे कि जानते एक दूसरे को. दैट इज द बेस्ट थिंग.
1: आप नहीं मिले हो, हम नहीं मिले हैं, वो एक बात अलग है. लेकिन रोज सुबह इंतजार तो इसी तरह से होता है कि किसी बस एक खास शख्सियत का इंतजार किया जाता है, बस उस तरह से आपका इंतजार करते हैं सारे लिसनर.
0: आपकी मोहब्बत है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई.
1: बेशक भाई आपके साथ में बहुत सारी मोहब्बत है.
0: थैंक यू.
1: और हम FM 107 के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस तरह के जेम्स अता फरमाए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार.
1: यू ऑल आर गुड माशाल्लाह.
0: थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, आपकी मोहब्बत भाई, बड़प्पन आपका. थैंक यू
1: भाई. लेकिन ये बहुत गलत है कि मर्दों की

0: मंडली बना रखी है, हम मंडली नहीं बनाते, हम बनाते हैं गैंग,
1: गैंग
0: हम बनाते हैं गैंग गर्दा उड़ाने के लिए।
1: हाँ, ये समझाना,
0: ये ऐसे बोलती तो लगता इज्जत कर रही है। मंडली क्या बात हुई यार, हम थोड़ी ना ढोल वगैरह बजाने वाले हैं।
1: ये मैं आपको भिड़वाऊंगा, अगली कॉल में कॉन्फ्रेंस लगाऊंगा, देखिएगा आप। कॉन्फ्रेंस कॉल लगा के छोड़ दूंगा, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं भाई साहब पूरा तैयारी के साथ बैठूंगा, चूल्हा वूल्हा ये साइड में लगा के बनाता रहूं, सुनता रहूं।
0: बढ़िया। कई बार ऐसे होता है लोग बिल्कुल एकदम ठंडी जगह बैठे रहते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनके कहाँ से यानी पता नहीं, अजीब से हम क्या कहते हैं, चुरके लगने लगते हैं।
1: हाँ।
0: तो ऐसा ना हो जाए।
1: नहीं, टेंशन मत लीजिए आप, मैं मैनेज कर लूंगा।
0: अरे बढ़िया मेरे भाई, ये भाई। हुई ना बात
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई कॉल करने के लिए, बहुत मोहब्बत
0: आपको, बहुत बहुत शुक्रिया भाई अपना वक्त देने के लिए, अपना खास ख्याल रखे
1: आप भी मेरा भाई,
0: क्योंकि आप
1: बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो प्रिंस भाई के बाद एक गाना और उसके बाद कतर की भी कुछ खबरें, बहुत मजा आ रहा है भाई। शुभ चेक्स 844। हाँ जी मैगा जी, वॉल्यूम 22 तक ले जाओ। सादिक भाई पढ़ता भी मैसेज है।

जी गुड मॉर्निंग 8:47 मैं तो जल्दी से न्यूज पढ़ दो जी न्यूज गुड मॉर्निंग तो मेजर जो खबरें हैं कतर में अभी बनी हुई हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ सबसे पहले तो ग्रेजुएट्स जो हैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिनके नंबर आ चुके हैं बहुत बढ़िया भाई 90% उनको मैं अलग से कंग्रेचुलेट करने के लिए एक अलग से पूरा शो करूंगा प्रॉपर। बट फिलहाल सबसे पहली जो खबर है FM 107 पर बाय द वे मैं दुहा वाला कबीर फॉर्मल इंट्रोडक्शन कतर लीडरशिप सेंटर QLC वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 13th क़यादत 2026 जिसमें 122 ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम और 44 ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इन लीडरशिप प्रोग्राम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द ग्रेजुएट्स। इसके अलावा जिनके बढ़िया बढ़िया नंबर आए हैं उन सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद।

0: मुबारकबाद। एंड इसके बाद जो खबर है वो है कल्चर विलेज फाउंडेशन कतारा की तरफ से। अगेन ईद सेलिब्रेशन, जो लोग पूछ रहे हैं ईद में किधर कहाँ जाना, भाई इधर ही फायरवर्क्स होने वाले, इधर ही सब कुछ है, और इधर ही अनाउंसमेंट आई कि ईद उल अदा की जो एंटरटेनमेंट और हेरिटेज इवेंट्स हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे की सारी एक्टिविटीज़ आपको कतारा में मिलेंगी अलग अलग जगहों पे। वंस यू एंटर कतारा सेक्शन, भाई साहब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होगा। एंड जो बीच वाला पार्ट है कतारा का स्पेशली, वहां पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा इन दिस हॉलीडे सीजन, पूरे चारों दिन। सो पूरा पैक्ड, जैम पैक्ड मामला है। टेक योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिलीज देयर एंड ऑब्वियसली आपको बहुत मजा आएगा। एक लास्ट में जरा एक कॉल लेता हूँ, किधर किधर किधर, एक सेकेंड रुको। मेरे पास दो दो कॉल्स आ रही हैं, एक सेकेंड मैं उठा रहा हूँ, लेकिन कॉल उठ क्यों नहीं रही है, हो क्या रहा है ये? जैस भाई मेरे ख्याल में आपका नंबर है, पता नहीं क्या हो क्या रहा है, मैं कॉल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कॉल कट रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उठी क्या कॉल? कॉल करके मेरी आंखों में एकदम से यू नो प्यास करने की वजह से आंसू आ गए। आपको भी आंसू आए क्या?
1: तो भाई क्या था, है? कौन थे ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? ये क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए बीच में आ गई?
0: इतनी डांट पड़ी ना, सबके सामान लपेट रहे, अभी अभी भी रखता हूँ मैडम, बस अभी रख रहा हूँ।
1: कौन था भाई, कौन था ये? इनकी मुझे ना स्पॉन्सरशिप मालूम करनी, कौन है इनका स्पॉन्सर?
0: नहीं देखो कुछ चीजों में तो डांट उन्होंने सही करी वैसे तो, आई एग्री टू सम एक्सटेंट।
1: आप चलो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी तो रोजी लगी हुई है, हमारी थोड़ी लगी हुई है, हम तो बोल सकते हैं।
0: नहीं भैया, नहीं भैया, भैया भैया प्लीज भैया।
1: तुमको
0: कसम है गाड़ी की स्टीयरिंग की तला। गाड़ी को हल्के हाथ में रखो मेरा भाई।
1: ये तो यार समझ गया, मतलब क्या बोलू, मतलब
0: बिना कहे जो ये बात हो रही है।
1: बहुत कुछ चल लिया दिमाग में, बहुत कुछ चल लिया, नहीं बोल नहीं पा रही है।
0: मैं नहीं, जो है गाड़ी को थोड़ा सा सर्विस लेन में रखना जरूरी है, समझ रहे
1: हो? ये विंगेजल बन गया, मैं भी गाड़ी गाड़ी विंगेजल वाली चल रही है, डीजल की मतलब समझो लोड हो गई है। उदय शेट्टी कंट्रोल चलाना नहीं,
0: उदय
1: कंट्रोल, उदय लोड हो गई है भाई, चलाना नहीं चलाना नहीं।
0: अरे बाप रे। वैसे तला भाई एक बात तो सही है कि ये तो वो जो पार्टी लगती है उन्होंने भाईचारा ऑन टॉप, तो ये तो सही है, इसमें क्या गलत बात है? अल्हम्दुलिल्लाह
1: यार, दीदी दीदी ना, मैं रे रे बनाना चाहता हूँ, दीदी
0: रे रे तो
1: दीदी को रे बनाना, बस
0: रे जो है
1: मैंने कहा रे बना दो, हाँ आज का रे जो है ना दीदी।
0: और
1: ये जो अरे रे किया ना इन्होंने हमारे साथ, अरे रे अरे अरे अरे अरे हो जाओ, अच्छा बोल, मतलब माशाल्लाह दीदी भाई, बोल भाई दीदी को ऑफर करो जॉब भाई, आ जाएगी।
0: एक आपके लिए मैसेज आया भाई, तो आपके लिए मैसेज आया, फरहत भाई कह रहे हैं कि तला भाई को से गुजारिश है कि आपके शाम के शो में भी आए। ये आपके लिए मैसेज आया फरहत भाई का।
1: भाई पैसा लगता है मेरी जान, पैसा दे दो मैं जहाँ बोलो आने को तैयार।
0: ये बिल्कुल
1: कहीं भी बुला लो, पैसा दे दो।
0: ये दो रियाल के चक्कर में नहीं मार रहे फरहत भाई, दो रियाल के चक्कर में, सिर्फ दो रियाल की बात है। नाइन के
1: नंबर आधी जल्दी दे देगा, मुझे तू क्या करेगा भाई।
0: अरे बाप रे, पर ठीक है अभी तो खैर इजाजत लेने वक्त भी आ गया है, 9 बजने वाले हैं तला भाई, तो बहुत मोहब्बत
1: तुम्हारे ऊपर तो मैं सरोवर पे बिठाऊंगा, तुमने जो आज करवाया ना हमारे।
0: नहीं बस आज
1: कपान टमलम करवाएंगे आज।
0: बैकग्राउंड में आहट का साउंड,
1: अरे बड़े अच्छे हुआ करते थे, एक हिचकी से पहले ही चले गए,
0: एक हिचकी, अरे बड़े अच्छे थे, पता नहीं कहाँ गए।
1: अरे 31 तक तो रुकते, 31 से पहले ही चले गए।
0: अरे भाई, लेकिन आज आज सरोवर भाई को रे बोलना है, इस बात का ध्यान रखे।
1: नहीं नहीं, सरोवर भाई को मैं रे एंथनी बोलूंगा,
0: रे एंथनी, ये सही है। ठीक है तला भाई, तो मुझे अभी इजाजत दें, आप भी 9 बजने वाले इंशाल्लाह।
1: चलो भाई,
0: ओके मेरे भाई, ख्याल रखिए,
1: आग के साथ पाँच दो, चलो तुम निकल लो।
0: चलो भाई ठीक है, अल्लाह
1: हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ मेरे भी जाने का वक्त हो गया, आपसे ज्यादा चाहूंगा इंशाल्लाह, अब आपसे मुलाकात होगी शाम में, बट परसों अराफा के ऑब्वियसली बाद में, सो 27 तारीख को शाम में मिलते हैं, हाउसफुल ईद में। अभी 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, एंड सरोवर भाई को आज क्या बोलना है?

0: रे, और ये भी बोल दीजिएगा रे कहाँ हो भाई, मिल नहीं रहे. दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं.
1: Masalama.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का पहला मुफसल नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने इलाकाई और बैनुल अक्वामी रहनुमाओं के साथ मुश्तरिका टेलीफोनिक राब्ता किया। साहिब सुमो अमीर ने जम्हूरिया रवांडा के सदर के साथ कल दीवाने अमीरी में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम और वजीर खारजा ने मुमलिकते सऊदी अरब के वजीर खारजा और रियासत कुवैत के वजीर खारजा के साथ अलहदा अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईद उल अज़हा के मौके पर दीवानी अमीरी की जानिब से ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है जो 26 मई से शुरू होकर 30 मई तक ख़त्म होंगी। और अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ किसी माहदे में जल्दबाजी नहीं करेगा और जब तक कोई हतमी माहदा तय या तस्दीक और दस्तखत नहीं हो जाता ईरान की बंदिश मुकम्मल तौर पर मुअसर और नाफिजुल अमल रहेगी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समाप्त कीजिए मुफस्सल नशरिया।

0: ट्वेंटी क्रिकेट में राजस्थान ने मुंबई को 30 रन से हराकर फाइनल फोर में जगह बना ली। इससे कबल बेंगलोर, गुजरात और हैदराबाद की टीमें पहले ही अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में इतवार को एस्टन विला ने मैनचेस्टर सिटी को 1-2 में 2 से शिकस्त दी और ये पेप ग्वार्डियोला का मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर के तौर पर आखिरी मैच था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम को इतवार को रेलिगेशन का सामना करना पड़ा, जिसके साथ उनका इंग्लैंड के टॉप डिवीजन में 14 साल का सफर खत्म हुआ, जबकि टॉटनहम हॉटस्पर ने करीबन आधी सदी बाद मुमकिन रेलिगेशन से बचने में कामयाबी हासिल कर ली। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1-2 में 2 की जीत के साथ प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाई और चैंपियंस के तौर पर अपने पहले मैच की सेलिब्रेशन भी की। और स्पैनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में वैलेंसिया ने इतवार को चैंपियन क्लब बार्सिलोना को 1-3 में 3 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: साहिब सुमो अमीर ने इलाकाई और बैन अल-अक़वामी रहनुमाओं के साथ मुश्तरिका टेलीफोनिक राब्ता किया। साहिब सुमो अमीर ने जम्हूरिया रवांडा के सदर के साथ कल दीवानी अमीरी में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम वजीर खारजा ने ममलिकत सऊदी अरब के वजीर खारजा और रियासत कुवैत के वजीर खारजा के साथ अलहदा अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगु की। ईद उल अज़हा के मौके पर दीवानी अमीरी की जानिब से ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जो 26 मई से शुरू होकर 30 मई तक ख़त्म होगी। और अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ किसी माहदे में जल्दबाजी नहीं करेगा और जब तक कोई हतमी माहदा तय या तस्दीक और दस्तखत नहीं हो जाता, ईरान की बंदिश मुकम्मल तौर पर मुअसर और नाफिजुल अमल रहेगी। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफसल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माबू नूर और न्यूज़ स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा, इंतखाब आलम और इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन किराम, आज हम आपके साथ जो दुआ शेयर करने वाले हैं, इस दुआ को हम तीन बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो दुआ का पहला हिस्सा जिसमें अल्लाह की अजमत का तारुफ है, दूसरा हिस्सा अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन, और दुआ के तीसरे हिस्से में काफ़ी एक अहम तलब है, एक दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त के लिए जो मुकद्दमा है अल्लाह की अजमत का तारुफ, अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन, और इस दुआ को जिस तरह शुरू किया गया है तो ये इससे पता लगता है कि जो हाजत या ख़ास एक तलब के लिए ये दुआ पढ़ी जाती है उस हाजत के लिए ये दुआ काफ़ी अहम है। तो ज़रूर अगर इस तरह के हाजात आपके भी हैं तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़िए। और ये कौन सी हाजत है, कौन सी हाजत की ख़ास एक दुआ है, ये आपको पता चलेगा। आप ज़रा सुनिए हमारे साथ दुआ के आखिरी जुमले तक, इंशाल्लाह सारी चीज़ें वाज़ हो जाएंगी बिइज़्निल्लाहि ताला। तो चलें दुआ शुरू करते हैं। इब्तदाही में इस दुआ की, जैसे कि हमने पहले बताया, पहले हिस्से में अल्लाह की अज़मत का तारुफ और अल्लाह की रुबूबियत का ऐलान हो रहा है। اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم। اے اللہ, تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے, یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ, میں اس ذات سے, میں تجھ سے اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ فالق الحب والنوا, تو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے, یعنی جو سخت مردہ اور بند چیز سے زندگی نکال دے, ارے وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, وہ میری بند قسمت بھی کھول دے سکتا ہے۔ اگر اللہ بیج کو پھاڑ سکتا ہے اور اس سے پودے اگا سکتا ہے تو میری حاجات کے گرا بھی ضرور کھول سکتا ہے۔ اور وہ کون سی خاص حاجت ہے, طلب ہے جس پر اس

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, मस्जिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए

0: हालातों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
2: कभी शाम को काम खत्म करने के बाद जब हम चेयर से उठते हैं तब ऐसा लगता है ना कि बॉडी बोल रही हो बस अब हो गया, अब और काम नहीं हो पाएगा। नेक एकदम स्टिफ हो जाती है, लोअर बैक कंप्लेन मोड में चला जाता है, शोल्डर्स बड़े हैवी लगने लगते हैं जैसे कि पूरा काम उन्होंने किया हो। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेस्क जॉब और बॉडी पेन के बारे में। दोनों का काफ़ी गहरा रिश्ता है। जब आप किसी को कहोगे कि बस ऑफिस में बैठ के काम करना होता है तो लोगों को बड़ा ही ईजी लगेगा, अरे बैठ के काम करना है, AC में, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं, इधर उधर दौड़ा भागी नहीं करना है। बट नहीं, हमारी बॉडी के लिए ये लाइफस्टाइल ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है क्योंकि हम घंटों तक के एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं। नेक स्क्रीन की तरफ झुकी होती है, शोल्डर्स फॉरवर्ड होते हैं, बैक थोड़ी सी राउंडेड होती है और बॉडी मूवमेंट के लिए बनी ही नहीं है, जैसे कि फ्रीज हो चुकी है ऐसा लगता है। इसलिए डेस्क जॉब के साथ नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट स्टिफनेस और शोल्डर टाइटनेस बड़ा ही कॉमन हो जाता है। पर अक्सर हम इस पेन को नॉर्मल है, जॉब ऐसी होती है, ये नाम दे देते हैं, बट ये पेन नॉर्मल नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है मतलब ये सिग्नल है, ये वो सिग्नल है जो कह रहा है कि मुझे थोड़ा मूवमेंट चाहिए। गुड न्यूज ये है कि डेस्क जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हैबिट्स को थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले पोस्चर, स्क्रीन अगर आई लेवल पे हो, फीट फ्लैट हो ऑन द फ्लोर, बैक सपोर्टेड हो तो बॉडी पे प्रेशर कम होता है। दूसरी चीज, मूवमेंट ब्रेक्स लीजिए, हर 30 से 35 मिनट पे थोड़ा उठ के स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को, थोड़ा चल ले। बॉडी के लिए ये एकदम मैजिक के समान काम करता है, जैसे कि अगर आपने नेक रोल्स किए, शोल्डर श्रग्स, स्पाइन स्ट्रेच, तो ये सिर्फ एक दो मिनट का ही टाइम लेते हैं पर इसका इफेक्ट पूरे दिन का होता है। और हाँ, वाटर ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हाइड्रेशन मसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है और स्टिफनेस कम करता है। डेस्क जॉब का एक और हिडन इशू है एंड दैट इज मेंटल फटीग। कॉन्स्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर माइंड को थका देता है जो बॉडी टेंशन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसलिए कभी कभी स्क्रीन से थोड़ा दूर रहना, आंखों को रेस्ट देना और डीप ब्रीथ लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन कि अगर आप लगातार फोन चलाते रहेंगे या लैपटॉप यूज करते रहेंगे, एक पॉइंट पे वो भी हैंग हो जाएगा। तो इमेजिन हमारी बॉडी कितनी सेंसिटिव होती होगी अगर हम बैक टू बैक काम करते रहेंगे। इसलिए कॉन्स्टेंट ब्रेक्स लेते रहिए। बॉडी को थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है, थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए होती है। और जब आप बॉडी को बीच बीच में मूव करने देते हो ना तो आपकी बॉडी भी आपके साथ कोऑपरेट करती है। तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, काम के साथ साथ अपनी बॉडी को भी जॉब पर रखिए, क्योंकि जब बॉडी कंफर्टेबल होती है तो फोकस बेटर होता है, एनर्जी स्टेबल होती है और काम भी थोड़ा ईजी लगता है। इसलिए याद रखिए, डेस्क जॉब फिक्स्ड हो सकती है पर पेन को परमानेंट बनने की जरूरत नहीं है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 प्रेजेंट्स Your Health Matter with RJ Shruti.
3: आप सुन रहे हैं FM 107.
0: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक नौजवान क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम है नाहिद राणा। जी हाँ दोस्तों, नाहिद राणा यही बॉलर है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को पहले टेस्ट में जीत दिलाने में मदद की और ये टेस्ट मैच जो है मीरपुर में खेला गया था। पाकिस्तान के सेकेंड इनिंग्स में नाहिद राणा ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए एंड दैट इज सो क्रिटिकल इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस टेस्ट मैच। बताता चलूं कि दुनिया भर में अगर तेज रफ्तार बॉलर्स की बात किया जाए तो नाहिद राणा इज वन ऑफ देम। यंग एज में ही नाहिद राणा ने अपनी स्पीड और एग्रेशन से क्रिकेट एक्सपर्ट्स को काफी मुतासिर किया। उनकी बॉलिंग अक्सर 145 किलोमीटर फी घंटा के करीब देखी गई है जो कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नाहिद राणा ने शानदार परफॉर्मेंस देकर सबकी तवज्जो हासिल की। उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को अपनी पेस और बाउंस से काफी परेशान किया। नाहिद राणा की फर्स्ट बॉलिंग ने मैच में बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाने में अहम किरदार अदा किया और आगे जाकर बांग्लादेश विंस दिस टेस्ट मैच विच इज अ

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। स्कैमर फेक इमरजेंसी क्रिएट करता है, रिलेटिव फ्रेंड या बॉस बन के बोलता है कि वो मुसीबत में है और तुरंत पैसा मांगता है। इमोशन इतना स्ट्रांग होता है कि वेरिफिकेशन का वक्त ही नहीं मिलता और आप जो भी पैसे मांग रहे होते हैं वो दे देते हैं और फिर ना तो कोई बॉस होता है ना कोई रिलेटिव होता है, सिर्फ आपके पैसे निकल जाते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन या इमरजेंसी हो तो एक रूल याद रखें, कॉल कट करो, दूसरे नंबर से कंफर्म करो और पेमेंट जल्दबाजी में कभी मत करना। इसी डर का वो फायदा उठाते हैं। डर के मोमेंट में डिसीजन स्लो रखना।
1: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत बहुत खुशामदीद। आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर हाजिर हूं एक ऐसा शो जो सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, बल्कि जिंदगी को फाइनेंशियली स्मार्ट तरीके से जीने का हुनर भी सिखाता है। शो का नाम है मनी नेविगेटर, जहां हम मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को सिंपल, प्रैक्टिकल एंड एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ताकि आप अपनी इनकम को सिर्फ खर्च ना करें भाई, बल्कि उसे कंट्रोल भी करें। अच्छा, क्योंकि मामला पता है क्या है, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन पैसा संभालना बाबू उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और खासकर कतर जैसी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में, जहाँ सैलरी आती भी बहुत फास्ट है और जाती तो पर लगा कर है। भाई कभी कभी मेरी तरह आपको भी ग्रोसरी के बिल सरप्राइज करते होंगे, कभी ऑनलाइन शॉपिंग का लिमिटेड टाइम ऑफर दिल हिलाकर रख देता है, और कभी दोस्तों का मैसेज आता है कि भाई ब्रो बस एक कप कॉफी भी नहीं चलते है ना, और वो एक कॉफी कब डिनर और डिजर्ट तक पहुंच जाती है हमें तो पता ही नहीं चलता। लेकिन भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम लाइफ एंजॉय करना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मनी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस लेना होता है। अच्छा, आज की दुनिया में अगर देखें ना, तो फाइनेंशियली अवेयर होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना मोबाइल का पासवर्ड या वाईफाई कनेक्शन होना। क्योंकि अगर आप अपने पैसों को डायरेक्शन नहीं देंगे ना, तो पैसा खुद ही किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए मनी नेविगेटर का मिशन है कि हम आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक सिंपल और प्रैक्टिकल जर्नी पर लेकर चले। साथियों देखें, इनकम को समझना, बजटिंग सीखना, सेविंग का इम्पोर्टेंस, फ्यूचर प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और

इम्पॉर्टेंट, उन फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचना जो आम लोग रोजाना अनोइंगली करते रहते हैं। हम कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग या फाइनेंस की लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह आधा दर्जन लोगों को वो बात समझ में नहीं आएगी, जबकि मैंने खुद फाइनेंस पढ़ा हुआ है भाई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोली जाए तो भाई वो वैसे ही सही लगती हैं। ये बात होगी रियल लाइफ की, रियल लोगों की और उन सिचुएशंस की जिनसे हम सब के सब गुजरते हैं। तो भाई नॉर्मल होकर बात करते हैं ना। अच्छा, कभी आपने ये नोटिस किया है कि सैलरी आने के बाद पहले दिन या पहले दो दिन या चले ज्यादा एक हफ्ता इंसान खुद को ना वो बिलियनियर फील कर रहा होता है। ओ भाई क्या शशके, मेरे पास तो पैसा है भाई, नोट है मेरे पास नोट। दिमाग में फौरन ये ख्याल आता है भाई इस मंथ तो मैं सेविंग भी करूंगा, जिम मेंबरशिप भी रिन्यू कराऊंगा और हेल्दी लाइफस्टाइल भी आज से स्टार्ट करूंगा अभी से। लेकिन फिर रियलिटी चेक आता है, एक फ्यूल रिफिल हो जाता है, थोड़ी बहुत ग्रोसरी की ट्रिप्स हो जाती हैं और हमारे वो जो फूड ऑर्डर्स होते हैं डिलीवरी के या किसी की बर्थडे हमारे सर पे खड़ी होती है और महीने के एंड तक हमारा कार्ड यानी कि हमारा बैंक कार्ड या हमारी जेब जो है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे जैसे उसने कोई इमोशनल डैमेज फेस किया हो। और फिर हम ये सोचते हैं कि यार सैलरी कम है भाई, सैलरी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती ना तो क्या ही शशके होते मेरे। लेकिन कई बार प्रॉब्लम सैलरी की नहीं होती, प्लानिंग की होती है, क्योंकि अगर इनकम अच्छी हो लेकिन स्पेंडिंग अनकंट्रोल्ड हो तो भाई फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता, नेवर। और हाँ, अगर प्लानिंग स्मार्ट हो तो एवरेज इनकम में भी ना इंसान सिक्योर और स्टेबल फील कर सकता है। साथियों, आज का हमारा एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑनेस्टली बहुत रिलेटेबल भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरे घर का हिस्सा बन चुकी है। पता है क्या चीज है? लोन्स, ईएमआईज और डेट्स का प्रेशर। आज का टॉपिक है लोन्स एंड ईएमआईज ट्रैप, हाउ टू पे ऑफ डेट्स फास्टर एंड स्केप इट स्मार्टली। अच्छा, और बिलीव मी ये सिर्फ फाइनेंशियल टॉपिक नहीं है, ये मेंटल पीस का टॉपिक है, क्योंकि लोन शुरू में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इतनी सी तो मंथली हमारी इंस्टॉलमेंट कट रही है, क्या ही कुछ हो जाएगा, इजी अप्रूवल्स हो जाते हैं तो हमें ऐसी बड़ी बड़ी इजी लग रही होती है हमें। इंस्टेंट प्रोसेसिंग जो हो जाती है उसकी, जीरो डाउन पेमेंट होती है और उस वक्त लगता है कि बस भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई, जो उस वक्त दिमाग में चल रहा था ना बस वो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी सी जो ईएमआई मंथली स्ट्रेस बन जाती है ना, सैलरी आने से पहले ही पैसा डिवाइड हो चुका होता है, कार लोन अलग, पर्सनल लोन अलग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट अलग और होम लोन वो भी अलग। तो बंदा लिटरली कैलेंडर नहीं ईएमआई डेट्स याद रखता है और फिर जिंदगी का फोकस गोल से हटकर किस चीज की भाग दौड़ में लग जाता है, सिर्फ पेमेंट्स पर लग जाता है। आपने कभी ये लाइन सुनी है? वो लोग कहते हैं ना, पीपल बाय थिंग्स दे डोंट नीड विद मनी दे डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट इवन लाइक। थोड़ी फनी लगती है ये बात, लेकिन ये रियलिटी है, किसी ने बड़ी सोच समझ के लिखी है। सोशल मीडिया ने हमें एक स्ट्रेंज प्रेशर में डाल दिया है, पता है, हर किसी को लग्जरी लाइफ चाहिए, लेटेस्ट फोन चाहिए, ब्रांडेड एसेसरीज चाहिए, फैंसी डिनर्स चाहिए, शाइनी कार चाहिए, परफेक्ट वेकेशंस चाहिए, और कभी कभी हम अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी भूल कर सिर्फ वो जो एक फैंसी सा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं ना, हम ना वही उसी में लग जाते हैं हम। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है असली लग्जरी क्या है? मुझे ऐसा लगता है असली लग्जरी है मेंटल पीस, फाइनेंशियल फ्रीडम, महीने के एंड पर पैनिक ना होना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से डर ना लगना और रात को सुकून से सोना बिना इस टेंशन के कि कल ईएमआई डिडक्ट होनी है। साथियों, आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों से समझेंगे कि लोन ट्रैप होता क्या है बाबू, इंटरेस्ट का गेम कैसे काम करता है आखिर, ईएमआई जल्दी खत्म करने के स्मार्ट मेथड्स क्या हैं, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और कैसे आप आहिस्ता आहिस्ता डेट फ्री लाइफ की तरफ मूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हम बोरिंग फाइनेंशियल लेक्चर नहीं देने वाले, ना ना ना, बिल्कुल कैजुअल, इजी और रिलेटेबल स्टाइल में, क्योंकि भाई हमने जो ना मसले का हल निकालना है, यहाँ पे कोई थीसिस कोई क्लासेस नहीं लिखनी, हमने किसी को देनी नहीं क्लासेस, हमने मसले का हल निकालना है। अच्छा, हम कतर की एवरीडे लाइफ

डिस्कस करें ना, तो क्योंकि हर मुल्क का फाइनेंशियल लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, यहाँ एक्सपेक्ट लाइफ का प्रेशर अलग होता है. लोग फैमिली सपोर्ट भेजते हैं, स्कूल फीस मैनेज करते हैं, रेंट और ट्रांसपोर्ट का बजट हैंडल करते हैं और फ्यूचर सिक्योर करने की टेंशन के साथ वो चलते रहते हैं. इसीलिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है. और हाँ, याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन हर स्मार्ट डिसीजन, हर छोटी सेविंग और हर कंट्रोल्ड एक्सपेंस आपको एक बेटर फ्यूचर के करीब जरूर ले जाता है. अच्छा, तो अगर बात करें तो अगर आप कभी सैलरी के बाद कंफ्यूज हुए हैं, अगर आपने कभी सोचा है कि भाई पैसा ये जाता कहाँ है, आखिर कमा कमा के मैं थक गया हूँ, ये पैसा जा कहाँ आ रहा है, अगर आप ईएमआई से प्रेशर फील करते हैं या सिर्फ फाइनेंशियली स्मार्टर बनना चाहते हैं, देन स्टे ट्यून्ड विद मी ना, बिकॉज टुडेज एपिसोड माइट जेन्युइनली चेंज द वे यू थिंक अबाउट मनी. मैं हूं सफा, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन एफएम 107, जहां हम मनी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं भाई. और अब वक्त हो गया है हमारे मूव ऑन करने का टुडेज मनी क्वेश्चन पे. तो भाई, आज का सवाल है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. अगर आपको 5000 रियाल एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ बताओ. लोन पे ऑफ, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या शॉपिंग, क्या करोगे, सोचो और मुझे बताओ. चलो, सोचने का थोड़ा बहुत टाइम देती हूँ. साथियों, आज का सवाल सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, आई ओपनिंग भी है. और ऑनेस्टली ये उन सवालों में से एक है जो हर सैलरी अर्नर को कभी ना कभी जरूर सोचने चाहिए. जरा सोचिए ना, अगर आप एक लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, मान लीजिए 20 से 25 साल का, तो एंड में आप ज्यादा क्या पे करते हैं, ओरिजिनल लोन अमाउंट या इंटरेस्ट? ज्यादातर लोग फौरन से ये कह देते हैं कि भाई ऑफ कोर्स लोन अमाउंट, लेकिन रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है, डिफरेंट है. कई केसेस में ऐसा होता है कि आदमी जितना पैसा बोरो करता है उससे ऑलमोस्ट डबल अमाउंट रीपे कर देता है. और शॉकिंग बात पता है क्या है, एक्स्ट्रा पैसा एक्चुअल चीज पर नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट पर चला जाता है. मतलब अगर किसी ने घर के लिए लोन लिया है तो भाई पॉसिबल है कि घर की एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा अमाउंट बैंक को वापस जाए. और ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म ईएमआईज का गेम स्लो होता है और इंटरेस्ट साइलेंटली आपकी पॉकेट को ड्रेन करता चला जाता है. और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है, इंसान को तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता, उस वक्त सिर्फ ये लाइन सुनाई देती है कि भाई सिर्फ इतनी सी मंथली इंस्टॉलमेंट है. जब हमें लोन बेचा जाता है तो ये कहता है ना, भाई सिर्फ इतनी सी मंथली इंस्टॉलमेंट है. और फिर आहिस्ता आहिस्ता सैलरी का एक हिस्सा परमानेंटली किसी और को जा रहा होता है. कभी कार ईएमआई, कभी क्रेडिट कार्ड बिल्स, कभी पर्सनल लोन, और कभी बाय नाउ पे लेटर का ट्रैप. और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहां इंसान काम अपने ड्रीम्स के लिए कम और रीपेमेंट्स के लिए ज्यादा कर रहा होता है. इसीलिए आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि हम सिर्फ लोन्स की बात नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे. और हाँ, शो कंटिन्यू करने से पहले एक जरूरी रिमाइंडर, पता है क्या, आप हमसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं. भाई हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 Qatar. हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, अपने थॉट्स, क्वेश्चंस और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा. और अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या आप हमें डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं मैसेज 6622107 पर. और आज मैं आपसे ऑनेस्टली ये पूछ रही हूँ कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईएमआईज में चला जाता है. क्या आप फाइनेंशियली फ्री फील करते हैं या फाइनेंशियली स्टक फील करते हैं? क्योंकि यकीन मानिए, आपकी स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं होती, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस इस वक्त किसी और लिसनर की आंखें खोल दे और उसे बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर हेल्प कर दे. तो भाई हमारे साथ बंधे रहें, आप सुन रहे हैं एफएम 107 पर मनी नेविगेटर विद सफा. तो साथियों चलिए आगे चलते हैं और चलिए आज के मेन सेगमेंट की तरफ चलते हैं. एंड बिलीव मी, अगर आपने कभी लोन लिया है या लेने का सोच रहे हैं या फ्यूचर में आप लेने वाले हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि भाई देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग लोन्स लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग लोन्स को प्रॉपरली समझते ही नहीं है.
और जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो ना साथियों, तो पता है क्या होता है, ईएमआईज सिर्फ मंथली पेमेंट्स नहीं रहते, वो मंथली स्ट्रेस बन जाते हैं। तो आज हम फाइनेंस की बोरिंग डिक्शनरी नहीं खोलेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि रियल लाइफस्टाइल में कैसे समझा जाए इस चीज को, ताकि हर लिसनर इजीली रिलेट कर सके। अच्छा, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, ठीक है? वी हैव टू कम टू द बेसिक्स। जब भी आप लोन लेते हैं, पांच चीजें हमेशा गेम में होती ही होती हैं, और अगर ये पांच चीजें आपको समझ में आ जाएं, तो आप कभी भी ब्लाइंडली लोन नहीं लेंगे। सबसे पहली चीज होती है प्रिंसिपल अमाउंट। ये वो एक्चुअल पैसा होता है जो आप बोरो कर रहे हैं, ले रहे हैं बैंक से। अगर आपने बैंक से तकरीबन कह लें 200,000 कतरी रियाल लिए, तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। सिंपल, सीधी सी बात, नो कंफ्यूजन, ओके। देखें, असली ड्रामा उसके बाद स्टार्ट होता है, पता है क्या? इंटरेस्ट। हाँ, यस, वही वर्ड जिससे हम सब घबराते हैं। ये वो चीज है जो क्वाइटली आपके वॉलेट को कार्डियो वर्कआउट करवा देती है, करवाती रहती है जब तक लोन चलता है। लोग समझते हैं कि भाई इंटरेस्ट सिर्फ एक एक्स्ट्रा फी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। इंटरेस्ट असल में टाइम की प्राइस होती है। जितना टाइम आप रीपे करने में लगाएंगे, उतना ज्यादा पैसा आप बैंक को एक्स्ट्रा देंगे। मतलब बैंक बेसिकली ये कहता है कि ठीक है भाई, पैसा भी ले जाओ, लेकिन आराम से वापस करो, यही होता है ना। और उस आराम की प्राइस इंटरेस्ट की फॉर्म में पे करो, समझ में आई बात? और इसीलिए लॉन्ग टर्म लोन्स डेंजरस हो जाते हैं। अब आती है वो चीज जो हर सैलरीड पर्सन की जिंदगी का परमानेंट कैरेक्टर बन चुकी है, ईएमआई, यानी के इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, नाम बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सूट वूट पहना हुआ कोई सामने खड़ा हो, लेकिन असल में ये वो मंथली रिमाइंडर है जो सैलरी आते ही कहता है कि भाई हेलो, हाउ आर यू, खाना खा के जाना, मैं फिर से आ गया हूँ, तो भाई सेटलमेंट करो। हर मंथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते रहते हैं, और यहाँ सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन पैदा होता है। लोग ये समझते हैं कि ईएमआई इक्वल स्प्लिट होती है, हाफ इंटरेस्ट हाफ लोन पेमेंट, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, इससे बिल्कुल उल्टी है। लोन के स्टार्टिंग ईयर्स में आपकी ईएमआई का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट में चला जाता है, और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत स्लोली रिड्यूस होता है। मतलब आपको ये लग रहा होता है कि भाई यार, मैं तो रेगुलरली पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन लोन क्वाइटली कॉर्नर में बैठा हुआ होता है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर आता है सबसे डेंजरस एलिमेंट, टेनर, यानी लोन ड्यूरेशन। और साथियों, ये वही जगह है जहां लोग इमोशनल डैमेज फेस करते हैं। बैंक्स लोन्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाती हैं आपको पता है? देखें, सिंपल बात है, ईएमआई कम कर दो, टेनर लंबा कर दो, और बंदा फौरन रिलैक्स, सिर्फ इतनी सी तो ईएमआई है, परफेक्ट, मेरे लिए तो परफेक्ट है, मैं तो कर लूंगा। लेकिन जो चीज हाईलाइट नहीं होती वो ये है कि लॉन्ग टेनर्स का मतलब होता है मैसिव इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया होता तो शायद प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन फ्रीडम जल्दी मिल जाती। और अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन उठाया है ना, तो ईएमआई कंफर्टेबल लगती है सुनने में, लेकिन आप सालों तक के लिए फाइनेंशियली टाइड रहते हैं। यानी शॉर्ट पेन या लॉन्ग पेन, चॉइस टेक्निकली आपकी होती है भाई। अब आती है एक पावरफुल चीज जो कि है रीपेमेंट या फॉरक्लोजर। और ऑनेस्टली ये आपका फाइनेंशियल सुपर हीरो है। अच्छा, जितनी जल्दी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट बच जाता है आपका। देखिए, कई लोग बोनस आने पर ना शॉपिंग कर देते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, खरीदारी कर लेते हैं, लेटेस्ट फोन ले लिया, फैंसी वॉच ले ली, वीकेंड गेट अवे कर लिया। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग क्या करते हैं आपको पता है? लोन को चुकाते हैं, लोन को क्लोज करते हैं एक्स्ट्रा पैसे से, क्योंकि उन्हें पता होता है भाई आज की एक्स्ट्रा पेमेंट कल को हमें उन हजारों रियाल से बचा सकती है। और अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है डेट टू इनकम रेशियो। देखें, फैंसी नाम है मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये बताता है कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा लोन और कितना हिस्सा डेट में जा रहा है। देखिए, अगर आपकी इनकम कह लें कि 30-40% इनकम का सिर्फ ईएमआईज में जाता रहता है, तो ऑनेस्टली आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं हैं, आप फाइनेंशियली प्रेशर्ड हैं। और ये प्रेशर ना आपका सिर्फ आपके बैंक अकाउंट पर नहीं होता, मेंटल हेल्थ पर भी होता है भाई। इसीलिए कई लोग
सैलरी अच्छी होने के बावजूद भी स्ट्रेस रहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और गहराई में गोता लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है द ईएमआई ट्रैप। और हाँ, ये वही पार्ट है जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल मिसअंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? भाई, लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं रेगुलर ईएमआई पे कर रहा हूँ तो मेरा लोन स्टेडिली

होता जाएगा. लेकिन रियलिटी पता है क्या है, रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है. लोन के अर्ली ईयर्स में आपकी ईएमआई का 70-80% सिर्फ इंटरेस्ट होता है. चलिए एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा. देखें, आपने 200,000 कतरियाल का लोन उठाया, ठीक है, 8% इंटरेस्ट रेट था, ओके, 20 ईयर्स का टेनर था, ईएमआई मैनेजेबल लगती है, आप खुश हो जाते हैं, भाई क्या इजी पैसा मिला है मुझे, मैं तो लोन से खुश हो गया हूं. लेकिन पहले साल में ना आप जो पेमेंट कर रहे होते हैं ना, उसका मेजर पार्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है. मतलब 12 महीने तक रेगुलर ईएमआई देने के बाद भी लोन बेयरली रिड्यूस हुआ होता है. और फिर एक दिन आप अपनी मोबाइल ऐप ओपन करके शॉक रह जाते हैं, क्या मैंने इतना सारा पे कर दिया फिर भी अमाउंट ऑलमोस्ट सेम टू सेम है. तो भाई इसके ऊपर पता है क्या कहूंगी, वेलकम टू द ईएमआई रियलिटी. और यही वो फ्रस्ट्रेशन मोमेंट होता है जहां लोग इमोशनली ड्रेन फील करने लगते हैं. उन्हें लगता है कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्यों फील नहीं हो रही. पता है क्यों? बिकॉज मोस्टली आप लोन नहीं इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं. और कतर में ये इशू और भी ज्यादा विजिबल है क्योंकि यहाँ सैलरीज स्टेबल होती हैं, लोन इजीली अवेलेबल होते हैं, बैंक्स क्विकली अप्रूवल्स दे देते हैं और लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस नेचुरली हाई होती हैं. आप दोहा मूव करते हैं, जरा सोचिए ना, आप दोहा मूव करते हैं, इनकम इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस आता है और फिर शुरू होता है, एक अच्छी कार तो होनी चाहिए, फर्नीचर भी अपग्रेड होना चाहिए, बस एक पर्सनल लोन और मैनेज हो जाए तो क्या ही बात होगी. और आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर सैलरी पहले ही कमिटेड हो चुकी होती है. चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक रियल लाइफ स्टाइल एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है. मान लीजिए फैसल है, फैसल दोहा में काम करता है और उसकी सैलरी कितनी कर लें भाई, 14,000 कर लो, ओके, साउंड्स डिसेंट राइट, 14,000 नॉर्मल सैलरी. लेकिन कार लोन ईएमआई कितनी हुई उसकी, 2,800 कतरियाल, यानी कि 2,800 कतरियाल. पर्सनल लोन ईएमआई उसकी कितने हो गए, 1,800 कतरियाल, यानी कि 1,800 कतरियाल. टोटल क्या हुआ, 4,600 कतरियाल, ओके. और ये सिर्फ लोन्स हैं. अब ऐड करें रेंट, ग्रोसरीज, फ्यूल, फैमिली रीमेंटेनेंस, स्कूल एक्सपेंसेस, सोशल लाइफ, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, महीने के एंड तक क्या बचा. अकाउंट कहता है भाई ट्राई नेक्स्ट मंथ अगेन, अभी आपका मतलूबा नंबर फिलहाल अकाउंट खाली है, अगले महीने आना, सॉरी. और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, फैसल कोई गरीब बंदा नहीं है, वो फाइनेंशियली ट्रैप्ड है. असल में डिफरेंस समझिए ना, ईएमआई ट्रैप्ड एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है. पहले लोन मैनेजेबल लगता है, फिर लाइफस्टाइल उसके गिर्द एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, सेविंग्स रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं और फिर बंदा एक और लोन ले लेता है. कहता है भाई अभी तो फिलहाल के झंझट से निकलूँ ना मैं. और सडनली इंसान अपनी प्रेजेंट सैलरी से ज़्यादा अपने फ्यूचर सैलरी को स्पेंड कर चुका होता है. और साथियों, बैंक्स लॉन्ग टेनर लोन्स को पसंद क्यों करते हैं, आपने कभी ये सोचा है? सिंपल सी बात है, जितना लंबा टेनर उतना ज्यादा इंटरेस्ट. और कस्टमर्स क्या सोचते हैं पता है, कस्टमर्स को ये दिमाग में आ रहा होता है ईएमआई लो है तो सेफ है. लेकिन रियलिटी कुछ और है भाई, लो ईएमआई का मतलब अक्सर ये होता है कि हायर टोटल कॉस्ट. तो आज का सिंपल सा सच याद रखिए, छोटी ईएमआई यानी कि स्मॉलर ईएमआई, बिगर लॉन्ग टर्म लॉस. और थोड़ी सी आप अगर लार्जर कर लें ईएमआई को तो आप कहेंगे फास्टर फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि असली लग्जरी एक्सपेंसिव कार में नहीं होती, असली लग्जरी होती है डेट फ्री सांस लेने में. देखिए इतनी देर में हमें ये बात तो समझ में आ गई साथियों कि ईएमआई ट्रैप कैसे काम करता है, इंटरेस्ट का गेम क्या है और कैसे इंसान आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियली स्टक फील करने लगता है. लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं जो कि है सॉल्यूशन, क्योंकि हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है भाई, बस उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है और थोड़ी सी ऑनेस्टी भी चाहिए होती है. एंड बिलीव मी, डेट से बाहर निकलना इम्पॉसिबल नहीं होता. हाँ, डिफिकल्ट जरूर होता है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता. अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखें, लोन खत्म करने का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट फ्री करना नहीं होता, मेंटल स्पेस फ्री करना भी होता है. क्योंकि जिस इंसान के सर पर कांस्टेंट डेट प्रेशर होता है ना, उसकी सैलरी सिर्फ नंबर्स नहीं रहती, उसकी टेंशन बन जाती है. सैलरी आने से पहले ही उसे ये बात पता होती है कि किस किस को

0: पैसा जाना है. ईएमआई अलग जाएगी, पैसा अलग जाना है, क्रेडिट कार्ड बिल अलग जाना है, रेंट अलग जाना है, और फिर इंसान खुद से ये पूछता है कि मेरे लिए क्या बच गया भाई. इसलिए स्मार्ट रीपेमेंट स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. देखें सबसे पावरफुल और सिंपल मेथड क्या है, मैं आपको बता देती हूँ. हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना, बस इतनी सी चीज है. क्या करना? हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना. सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन जाने इसका इम्पैक्ट मैसिव होता है. क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा ईएमआई देते हैं ना, तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट को हिट करती है, और जब प्रिंसिपल कम होता है ना, फ्यूचर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. यानी आप सिर्फ एक पेमेंट नहीं कर रहे होते, आप फ्यूचर का एक्स्ट्रा बर्डन हटा रहे होते हैं.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर.
0: अच्छा, मान लीजिए आपका लोन 20 से 25 साल का है. अगर आप कॉन्स्टेंटली हर साल एक ईएमआई पे कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो कई केसेस में लोन 4 से 5 साल पहले खत्म हो सकता है. मतलब जरा सोचिए, इयर्स ऑफ फ्रीडम भाई, इयर्स विदाउट ईएमआई स्ट्रेस. अच्छा, और फनी पार्ट ये है कि कई लोग एक एक्स्ट्रा ईएमआई देने के बजाय उस अमाउंट से लेटेस्ट फोन खरीद लेते हैं, जिसकी एक्साइटमेंट सिर्फ 3 दिन चलती है भाई, और फिर कवर कहीं और होता है, चार्जर कहीं और होता है, और मोबाइल कहीं और होता है. देखिए, हम इसके साथ अगर आगे बढ़ें तो दूसरी स्ट्रेटेजी है स्टेप अप ईएमआई मेथड. इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है. यूजुअली लोग ईएमआई को सेम रखते हैं, लेकिन अगर आप हर साल उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, इवन 5% इंक्रीज कर दें, तो लोन का ड्यूरेशन और टोटल इंटरेस्ट दोनों के दोनों ड्रामेटिकली रिड्यूस हो सकते हैं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पहले साल आपने तकरीबन कह लें कि 3000 कतरी रियाल ईएमआई आप देते हैं पहले साल. अगले साल इसे 3150 कर लें, फिर 3300 कर लें. आपको सडन प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि सैलरी भी टाइम के साथ साथ यूजुअली इम्प्रूव होती जाती है. लेकिन लोन जो होता है ना, वो आपका क्वाइटली फास्टली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. यानी आप लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉय किए बगैर फाइनेंशियली स्मार्टर मूव कर रहे होते हैं. और यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियलिटी आती है, जब सैलरी इंक्रीज होती है ना, तो ज्यादातर लोग पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, बिगर टीवी, बिगर फोन, मोर डाइनिंग आउट. लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग सैलरी इंक्रीज को डेट रिडक्शन के लिए यूज करते हैं. डिफरेंस यही क्रिएट होता है. अच्छा, अब आते हैं टाइमिंग की बात पर, ठीक है. और फाइनेंस में कहा जाता है टाइमिंग लिटरली इज एवरीथिंग. अगर आप लोन के फर्स्ट पहले 3 से 5 साल में प्री पेमेंट करते हैं ना, तो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट सेव करते हैं. क्योंकि जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें बैंक मोस्टली इंटरेस्ट रिकवर कर रहा होता है. लेकिन अगर आप लेट स्टेज पर रीपेमेंट करते हैं, इम्पैक्ट कंपेरेटिवली कम होता है. मतलब ये अगर सिंपल लैंग्वेज बोला जाए, चले आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में अर्ली अटैक करो, इंटरेस्ट को सेटल होने का टाइम मत दो, वरना वो आपके वॉलेट में परमानेंट छेद बन जाता है. परमानेंटली वो टेंट लगाकर बैठ जाएगा आपके वॉलेट में. कतर में एक चीज बहुत कॉमन है, बहुत से लोग एनुअल बोनसेस रिसीव करते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स मिलते हैं, और उस वक्त इंसान इमोशनली एक्साइटेड हो जाता है. ओ माय गॉड, चलो सेलिब्रेशन बनती है, और फिर शॉपिंग मॉल की लाइट्स की तरफ या ऑनलाइन सेल नोटिफिकेशन की तरफ इंसान का डाइवर्जन हो जाता है. इंसान की फाइनेंशियल डिसिप्लिन को क्वाइटली किडनैप कर इस शॉपिंग मॉल की लाइट्स और हमारी ऑनलाइन सेल्स ले जाती हैं. लेकिन स्मार्ट मूव क्या होती है पता है? बोनस का एक मेजर पोर्शन लोन रिड्यूस करने में यूज कर देना. क्योंकि बोनस टेम्परेली हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन रिड्यूस डेट लॉन्ग टर्म पीस देते हैं भाई. और भाई ऑनेस्टली फाइनेंशियल पीस का कोई कंपैरिजन नहीं होता. वो फीलिंग ही अलग होती है जब आपको ये बात पता हो कि भाई आपकी सैलरी का एक ज्यादा हिस्सा आपके अपने पास रहने वाला है.

हिस्सा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल लोन्स अवॉइड की जाए, क्योंकि मल्टीपल ईएमआईज का मतलब होता है मल्टीपल स्ट्रेस पॉइंट्स। एक लोन मैनेजेबल होता है, दो लोन टेंशन बन जाते हैं, और तीन लोन इंसान को कैलकुलेटर या कोई बैंकिंग ऐप जो होती है ना उसके अंदर परमानेंटली एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है आपको। बस स्ट्रेटजी ये होती है कि एक लोन क्लियर करो फिर नेक्स्ट पर फोकस करो ना, वरना सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान सिर्फ रीपेमेंट्स मैनेज करने लगता है, फ्यूचर बिल्ड नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपनी रीपेमेंट्स बिल्ड कर रहा होता है। और अब आते हैं उस चीज पर जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का सबसे स्टाइलिश और डेंजरस ट्रैप है, पता है क्या चीज? प्लास्टिक मनी, मतलब क्रेडिट कार्ड। यस, वो मैजिकल प्लास्टिक कार्ड जो स्वाइप करते वक्त इंसान को मिलियनेयर सा फील हो रहा होता है, भाई क्या स्वैग है, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप करो, स्माइल करो, और उस वक्त बिल्कुल पेन फील ना करो। यही होता है ना, ऐसा एड जैसा फील हो रहा होता है ना, ना कैश काउंट करना, ना वॉलेट एम्प्टी फील करना, बस टैप अप्रूव, थैंक यू सर। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है बाबू। क्रेडिट कार्ड इजी मनी फील होता है, लेकिन रियलिटी में ये सबसे एक्सपेंसिव मनी होता है जो आप यूज करते हो। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल सिनेरियो इमेजिन करते हैं, ठीक है? आपकी सैलरी कितनी है? आपको सैलरी मिलती है 12,000 कतरी रियाल। मूड फ्रेश, फ्रेंड्स का मैसेज आता है, चलो भाई विलेजो चलते हैं या मॉल ऑफ कतर चलते हैं। आप गए, कॉफी पी, डिनर, शॉपिंग, शूज, परफ्यूम, मे बी एक शॉर्ट गेट अवे भी आपने बुक कर लिया, और हर जगह स्वाइप स्वाइप स्वाइप। उस वक्त सब मैनेजेबल लग रहा होता है भाई, इमोशन हाई पर होते हैं, क्योंकि एक्चुअल पैसा फिजिकली जाता हुआ फील नहीं हो रहा होता ना। फिर मंथ के एंड पर स्टेटमेंट आती है, 5,000 रियाल आउटस्टैंडिंग, 5,000 मतलब 5,000 कतरी रियाल आउटस्टैंडिंग। और यहाँ आता है वो डेंजरस मोमेंट, बैंक कहता है नो वरी सर, कोई बात नहीं, मिनिमम पेमेंट कर दें, मान लीजिए 250 कतरी रियाल, ये मिनिमम पेमेंट है मान लीजिए। और इंसान रिलीफ फील करता है, क्या कहता है, चलो चलो चलो बचत हो गई, 250 रियाल तो पे करना था, 5,000 थोड़ी पे किया है। नहीं साथियों, आप बचे नहीं हैं, आप ऑफिशियली सिस्टम में एंटर हो गए हैं, वो भी बिना टिकट खरीदे, क्योंकि अब इंटरेस्ट क्वाइटली काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये सिस्टम इसी तरह डिजाइन होता है कि आप लॉन्ग टर्म पे करते रहें। देखें, साइकोलॉजिकली भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, जब आप कैश यूज करते हैं तो आपको स्पेंडिंग का पेन इंस्टेंटली फील होता है, डेबिट कार्ड यूज करते हैं ना, जहां तक मुझे याद पड़ता है एनुअली ये अराउंड 12-20% का, या कभी कभी उससे भी ज्यादा बन जाता है। मतलब अगर आप पर 5,000 रियाल आउटस्टैंडिंग है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं, तो पॉसिबल है ना कि आप एंड में 7,000 या 8,000 रियाल या उससे भी ज्यादा पे कर दें। जरा सोचिए ना, 5,000 की शॉपिंग और रीपेमेंट ऑलमोस्ट डबल, ये होती है कन्वीनियंस की हिडन प्राइस। और ऑनेस्टली कदर का लाइफस्टाइल भी इस ट्रैप को इजी बना देता है। यहाँ इनकम अच्छी है, मैं मान रही हूँ, इनकम पे आपकी टैक्स नहीं होता, प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सेसिबल लगता है, और बैंक्स भाई वो तो सुपर फ्रेंडली है, इंस्टेंट कार्ड्स, हाई लिमिट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेसेस, डिस्काउंट्स, कैशबैक, सब कुछ ऐसे जैसे रिवॉर्ड जैसा फील हो रहा होता है। आप कहते हो भाई मैं कहीं का शहजादा लग रहा हूँ अपने आप को, लेकिन रियलिटी में हर रिवॉर्ड के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। चलिए एक मिसाल लेते हैं, एक बंदा अहमद नाम का, ठीक है, अहमद की स्टोरी समझ लेते हैं। अहमद दोहा में कॉर्पोरेट जॉब करता है, उसकी सैलरी कह लें कि 15,000 रियाल है, बैंक उसे 30,000 रियाल लिमिट, 30,000 कतरी रियाल की लिमिट क्रेडिट कार्ड पर दे देती है। स्टार्टिंग में तो वो रिस्पॉन्सिबली यूज करता है, फिर ईद शॉपिंग आती है, ट्रेवल टिकट्स आते हैं, डाइनिंग आउट आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आती है, और आहिस्ता आहिस्ता पता है क्या होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 रियाल तक पहुंच जाता है। आप देखें 20,000 रियाल उसके लिए भी फुल पेमेंट तो पॉसिबल नहीं है ना, तो अहमद क्या करता है, ए भाई मिनिमम में निपटा देता हूँ, मिनिमम पेमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है? और फिर क्वाइटली एक डेंजरस गेम शुरू होता है। उसकी करंट लाइफस्टाइल उसकी एक्चुअल सैलरी से नहीं बल्कि डेट से चलना शुरू हो जाती है, यानी फ्यूचर की इनकम पहले ही स्पेंड हो चुकी है। और सबसे बड़ा इल्यूजन क्या होता है, मिनिमम पेमेंट, सर यू कैन डू द मिनिमम पेमेंट, बैंक कहता है सर सिर्फ 5% पे कर दें, सर सिर्फ 5% आपका कार्ड चल पड़ेगा।

चुप की सर, और बंदा सोचता है मैनेज हो गया भाई, मैनेज हो गया भाई, 5% क्या कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ. लेकिन रियलिटी पता है क्या है, आप डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं कर रहे होते, आप मोस्टली इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं. मतलब ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे. इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी या कन्वीनियंस टूल की तरह रखते हैं, इनकम एक्सटेंशन की तरह नहीं रखते. और याद रखिए साथियों, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और सक्सेसफुल लाइफस्टाइल दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं. हर चमकती हुई चीज फाइनेंशियल सक्सेस नहीं होती. कभी कभी जिस इंसान की लाइफ आपको सोशल मीडिया पर बहुत लग्जरी लग रही होती है ना, वो अंदर से EMI प्रेशर में होता है. आपने कभी ये सोचा है कि रियल लाइफ सक्सेस आखिर होती क्या है? अच्छे अच्छों से पूछ लें, वो आपको एक ही जवाब देंगे, पीसफुल स्लीप, इमरजेंसी फंड, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, और वो फीलिंग कि अगर कल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएं तो पैनिक ना हो. क्योंकि एंड में फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आता, फ्रीडम स्मार्ट मनी डिसीजन से आता है. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो बहुत क्लासी और स्मार्ट लगती है भाई, लेकिन कई बार क्वाइटली फाइनेंशियल डैमेज कर रही होती है, रिवॉर्ड पॉइंट्स. क्या चीज? रिवॉर्ड पॉइंट्स, या अक्सर औकात लोग उसे कहते हैं कैशबैक, एयरलाइन माइल्स, लॉज एक्सेस, फ्री कॉफी वाउचर, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, यू अर्न पॉइंट्स. वही मैजिकल मैसेज जो इंसान को फील कराता है कि भाई उसने शॉपिंग नहीं इन्वेस्टमेंट की है. और ऑनेस्टली बैंक्स की मार्केटिंग इतनी स्मार्ट होती है कि इंसान को लगता है कि वो स्पेंड नहीं कर रहा, वो रिवॉर्ड कलेक्ट कर रहा है. लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, प्राइस पर पैसा बोरो कर रहे हैं, और सैडली कई लोग इमरजेंसी प्लान ना होने की वजह से इस ही ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं. इसलिए भाई इमरजेंसी फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपको एक्सपेंसिव बोरोइंग से बचाते हैं ना. और चलिए अब थोड़ा सा ऑनेस्टली और एक और बात कर लेते हैं. डेट सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज का नहीं होता, इमोशनल इशू पर भी होता है. ये सिर्फ नंबर्स का प्रेशर नहीं देता, ये माइंड और इमोशंस को भी अफेक्ट करता है. सोचिए ना, क्या क्या चीज फ्री में मिल रही है आपको? स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्लीप लॉस, मूड स्विंग्स, रिलेशनशिप स्ट्रेन, ये सब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से डेट के साथ अटैच होकर पूरी पूरी बारात लेकर साथ आ रहे होते हैं. कई लोग रात को सो नहीं पाते भाई, क्योंकि उनके दिमाग में कैलकुलेशंस चल रही होती हैं. सैलरी कब आएगी, कार्ड पेमेंट कैसे करूंगा, अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा. और कतर में बहुत से एक्सपेक्ट्स साइलेंटली इस प्रेशर से गुजरते हैं. बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, ऑफिस जा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, वीकेंड ब्रंचेस, फोटो अपलोड हो रही हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है. क्योंकि एक्सपेक्ट लाइफ का प्रेशर डिफरेंट होता है भाई, मैं मानती हूँ. यहाँ लोग सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे होते, फैमिली सपोर्ट, रीमेंटेंस, स्कूल फीस, फ्यूचर प्लानिंग, हर चीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रही होती है. और कभी कभी इंसान ना यहाँ पर सिर्फ इमेज मेंटेन करने के लिए भी बहुत अननेसेसरी स्पेंडिंग करता है. लेटेस्ट फोन ले लेता है, फैंसी रेस्टोरेंट जाना होता है, लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करना होता है. लेकिन सच यही है कि फाइनेंशियल पीस ज्यादा इम्प्रेसिव होती है भाई, कंपेयर टू फाइनेंशियल शो ऑफ. क्योंकि असली सक्सेस ब्रांडेड वॉलेट नहीं होता, असली सक्सेस वॉलेट के अंदर स्टेबिलिटी होती है. और अगर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखी जाए ना साथियों, तो वो ये है कि डेट लेना हमेशा बुरी बात नहीं होता, लेकिन डेट को कैजुअली ट्रीट करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है. अगर आप अवेयर हैं, प्लान्ड हैं, और रीपेमेंट स्ट्रेटेजी क्लियर है आपकी, तो आप कंट्रोल में हैं भाई. लेकिन अगर आप सिर्फ मैनेज हो जाएगा कि मोड पर चल रहे होते हैं ना, तो वार्निंग साइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रेड बत्ती आपके सर के ऊपर जल रही है. इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कार्ड स्वाइप करें ना, एक सेकंड रुक कर, सिर्फ एक सेकंड रुक कर ही सोचिएगा, मैं चीज अफोर्ड कर रहा हूँ या फ्यूचर इनकम बोरो कर रहा हूँ, ये जरूर सोचिएगा. चलिए साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का वक्त आ गया है. क्योंकि अब हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम तो हमने बहुत डिस्कस कर ली, हम मनी मूव्स के बारे में बात करेंगे, जो कि रियल लाइफ फाइनेंशियल बिहेवियर चेंजेस हैं, वो चेंजेस जो एक्चुअली जिंदगी बदल देते हैं. क्योंकि ऑनेस्टली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा सैलरी से नहीं आती, बहुत लोग हाई इनकम के बावजूद भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और बहुत लोग एवरेज इनकम में भी स्टेबल और पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं. डिफरेंस सिर्फ एक चीज क्रिएट करती है साथियों, वो है आपके मनी बिहेवियर. देखिए, बिलीव मी, पैसा इमोशंस के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होता है. कई लोग शॉपिंग स्ट्रेस में करते हैं, कई लोग सैडनेस में ऑनलाइन कार्ड्स फिल कर लेते हैं, कई लोग सैलरी आते ही मैं डिजर्व करता हूँ के मोड पर चले जाते हैं,
और फिर मंथ के एंड पर कैलकुलेटर और रिग्रेट दोनों एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं आपके साथ, वो भी बगैर आपके अपॉइंटमेंट के। इसीलिए आज हम थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल मूव डिस्कस करेंगे, ऐसे मूव्स या कह लें कि ऐसे मनी मूव्स जो आपको सिर्फ ईएमआई पेयर से फाइनेंशियली अवेयर इंसान बना सकते हैं अगर आप इन्हें समझ लें तो। सबसे पहला और पावरफुल मूव क्या है भाई, ये है माइंडसेट शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीख लें तो भाई हर चीज में गेम चेंज हो जाती है। यानी कि ये समझना कि आपका गोल ईएमआई मैनेज करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए लोन क्लोज करना। ये डिफरेंस बहुत छोटा सा लगता है लेकिन पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज कर कर रख देता है। लेकिन बहुत सारे लोग लोन लेते ही मेंटली सेटल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई बस ईएमआई मैनेजेबल होनी चाहिए बाकी सब खैर है, और फिर वो सालों तक कंफर्टेबल डेट लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान क्या सोचता है, मैं इसे जल्दी कैसे खत्म करूं भाई। एंड बिलीव मी, जब ये थिंकिंग चेंज होती है ना तो भाई हर फाइनेंशियल डिसीजन ऑटोमेटिकली स्मार्टर हो जाता है। फिर आप खुद से पूछते हैं क्या मुझे सच में ये एक्सपेंसिव अपग्रेड चाहिए, क्या ये ट्रिप अभी नेसेसरी है, क्या ये बोनस लोन क्लोज करने में यूज हो सकता है। यानी फोकस लाइफस्टाइल मेंटेन करने से शिफ्ट होकर फाइनेंशियल फ्रीडम पर आ जाता है। और भाई ऑनेस्टली फ्रीडम का फीलिंग लग्जरी शॉपिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इमेजिन कीजिए एक साइड पर एक्सपेंसिव डिनर हो, दूसरी साइड पर एक क्लोज्ड लोन। ऑनेस्टली बताएं सेकंड ऑप्शन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है ना। अच्छा इसके साथ अब एक और इम्पोर्टेंट इमोशनल हैबिट भी है, लोन पीरियड को लग्जरी फेज मत समझिए ना, ये डिसिप्लिन फेज होता है। अगर आप डेट रीपेमेंट जर्नी में हैं किसी, तो भाई हर अननेसेसरी इमोशनल स्पेंडिंग फ्यूचर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। यानी कि मतलब इमोशनल स्पेंडिंग बहुत कॉमन होती है, स्ट्रेस हुआ शॉपिंग कर ली, मूड ऑफ हुआ फूड डिलीवरी कर ली, वीकेंड बोरिंग हुई ऑनलाइन सेल के अंदर कार्ड भर ली, और फिर इंसान टेम्परेली बेटर फील करने लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली वर्स हो जाता है उसका। इसीलिए स्पेंडिंग और इमोशंस का कनेक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोरिंग लाइफ नहीं होती, इट मीन्स इंटेंशनल लाइफ। आप एंजॉय ज़रूर करें लेकिन अवेयरनेस के साथ करें ना। अच्छा अब स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रूल, नेवर पे ओनली मिनिमम। देखिए मिनिमम पेमेंट सिर्फ टेम्परेली रिलीफ देती है, लॉन्ग टर्म फ्रीडम नहीं देती। बहुत लोग मिनिमम पेमेंट को सॉल्यूशन समझते हैं लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ इंटरेस्ट साइकिल को एक्टिवेट रखता है। मतलब आप डेट को खत्म नहीं कर रहे, आप उसे सर्वाइव करवा रहे हैं और फिर मंथ्स क्वाइटली इयर्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। इसीलिए भाई फुल पेमेंट हैबिट डेवलप करो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फुल पेमेंट डिफिकल्ट लग रही है ना तो स्पेंडिंग लेवल ऑलरेडी वार्निंग साइन दे रहा है, उस साइन को देखो ना, रेड लाइट जल रही है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अवॉइड करें। कई लोगों को मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स स्टेटस सिंबल लगने लगते हैं, ये ट्रेवल कार्ड, ये कैशबैक कार्ड, ये शॉपिंग कार्ड। लेकिन मेंटली मल्टीपल कार्ड्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं, मल्टीपल ड्यू डेट्स हो जाती हैं, मल्टीपल बिल्स हो जाते हैं, मल्टीपल टेम्पटेशंस हो जाती हैं, और फिर इंसान एक कार्ड का बिल दूसरे कार्ड से मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। यानी फाइनेंशियल जगलिंग ऑफिशियली चल रही होती है ना। फाइनेंशियल सिंप्लिसिटी अंडररेटेड होती है, कम कार्ड्स।

सारा का सारा पैसा एक ही अकाउंट में होता है ना, तो ओवर स्पेंडिंग बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन जब सेविंग्स फिजिकली सेपरेट होती हैं, तो अननेसेसरी स्पेंडिंग साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट हो जाती है। एंड बिलीव मी, कभी कभी फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ सिस्टम डिजाइन का नाम नहीं होता। आप परफेक्ट नहीं होते, लेकिन आप स्मार्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। और साथियों, आज के एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था पता है? लोन्स एनिमीज नहीं होते, हर लोन बुरी चीज नहीं होता। कभी एजुकेशन लोन यूजफुल होता है, कभी बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्मार्ट होती है, कभी नेसेसरी परचेज जेन्युइनली रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये जो अनमैनेज्ड लोन्स होते हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन्स, इमोशन बेस्ड लोन्स, ये साइलेंट ट्रैप बन जाते हैं। और डेंजरस चीज ये है कि ये ट्रैप शोर मचाता हुआ नहीं आता, ना ना ना ना। स्लोली सेविंग्स खत्म होती हैं, स्लोली स्ट्रेस बिल्डअप होता है, स्लोली सैलरी का ओनरशिप कम हो जाता है, और फिर इंसान ये रियलाइज करता है कि भाई मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन पैसा मेरा अपना अपना फील नहीं हो रहा। इसीलिए याद रखिए, वेल्थ कंफर्टेबल डेट कैरी करने से बिल्ड नहीं होती। वेल्थ

0: एग्रेसिवली डेट एलिमिनेट करने से बिल्ड होती है. जितना जल्दी आप लोन क्लोज करते हैं उतनी जल्दी आपकी इनकम जेन्युइनली आपकी बन जाती है. और वही मोमेंट होता है जब रियल फाइनेंशियल लाइफ स्टार्ट होती है, जब सैलरी आती है और आपको सिर्फ बिल्स याद नहीं आते, जब फ्यूचर एक्साइटिंग लगता है स्ट्रेसफुल नहीं, जब इमरजेंसी का थॉट पैनिक क्रिएट नहीं करता, और जब आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं ना कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा होता है. तो साथियों, इसी पॉजिटिव और फाइनेंशियल स्मार्ट नोट के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर मनी नेविगेटर. याद रखिए, अपनी जिंदगी सिर्फ EMIs में मत गुजारिए, अपना फ्यूचर इंटरेस्ट को गिफ्ट मत कीजिए, और सिर्फ पैसा मत कमाइए, उसे समझिए, उसे कंट्रोल कीजिए और उसे अपने गोल्स के लिए काम पर लगाइए. क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना सिर्फ रिच होना नहीं होता, ये सिर्फ रिच लोगों का ऑप्शन नहीं है, डिसिप्लिन लोगों का रिजल्ट होता है. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे फाइनेंशियली फ्री. तो साथियों, अगले एपिसोड तक के लिए मुझे और हमारे साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: इस ईद दुनिया के रंग

0: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, they'll say this.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून एक्सप्रेस।
1: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। Right guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very very good morning. क्या हाल चाल है? उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे। सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं इस शो में जिसका नाम है आफ्टरनून एक्सप्रेस और पूरे 2 घंटे आपके साथ रहने वाले यानी 1 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। कल का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आज भी मुझे लगता है ऐसा टॉपिक है जो हर कोई उससे रिलेट करेगा। व्हाट डू यू से?
2: बिल्कुल सही, हर कोई रिलेट करेगा। कहानी घर घर की लेकर तो आती हैं स्मृति ईरानी। कौन थी?
1: स्मृति
2: ईरानी और नाजिया जी में ज्यादा फर्क तो है नहीं। कहानी घर घर की तो हमेशा होती है। नहीं भाई, वो माशाल्लाह से आपके सौदे पे हैं, मैं आपको वहां से मिला।
1: कहानी घर घर की पे मैं खुश हूँ क्योंकि उसमें थी नहीं स्मृति, इसीलिए तो।
2: अच्छा, वो नहीं, अरे वही तो नहीं यार, वो बुलाती थी
1: कभी सास भी कभी बहू।
2: अच्छा, ओ सॉरी सॉरी,
1: अल्लाह तेरा शुक्र है सही है, मतलब मैं साक्षी अगर हूं तो सही
2: हूं। आई एम सॉरी।
1: ये
2: चीज दर्शाती है मिस नाजिया कि मैं कितना दूर रहता हूँ सास बहू और साजिशों से।
1: सरवर मिर्जा ये दिखाती है कि यही कहानी आपके घर की है।
2: भाग रहे हैं उससे।
1: कल मैंने आपको बताया था ना, जैसे होते हैं लोग वैसे ही सोचते हैं,
2: जैसी करनी वैसी भरनी भी कह सकते हैं,
1: ये भी हो सकता है।
2: तो भाई हमारे साथ जुड़ जाइए, अब आफ्टरनून एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। 666-22-107 इज द नंबर, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, अपना हाल अहवाल बता सकते हैं और वॉइस नोट वगैरह भी भेज सकते हैं। साथ हम साथ आप हमसे कह भी सकते हैं अगर हम आपको कॉल बैक करें। अगर आप बिजी हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम आपको कॉल बैक भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और वहीं कॉल करने के लिए नंबर हमारा 443-443-7777 इज द नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और नाजिया जी ने इस वक्त लाइन ओपन कर दी है, तो आइए शुरुआत कर ही लेते हैं आज के पहले कॉलर से जिनसे आज का मुद्दा भी छेड़ देंगे।
1: राइट, हेलो।
4: हाँ जी,
2: हला हला, कैफल हाल गावा भाई, पहली कॉल के साथ आज
4: सर्वर भाई, स्मृति ईरानी और नाजिया रानी नजर ना लगे जी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: हाँ नहीं बिल्कुल। क्या हाल चाल है गावा भाई, कैसे हैं?
4: जी बढ़िया सर्वर भाई, सबसे पहले तो अपने बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड लिसनर जसविंदर सिंह काला जी, उनका है बर्थडे आज।
2: ओके ओके ओके।

0: भाई हमारी तरफ से भी
1: ढेरों
0: मुबारकबाद शाहजी के लिए, बड़े ही अच्छे बड़े ही पुराने हमारे लिसनर हैं जसविंदर सिंह साहब, वो हमारे साथ जुड़ते भी कम हैं एक्चुअली, सुनते तो हैं मगर उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि हमसे वो कनेक्ट हो जाएं किसी तरीके से, क्योंकि वो मशगूल होते हैं गालबन इस वक्त।
2: जी सर, एक्चुअली ड्राइविंग के टाइम में ना फिर दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा हो जाता है मसला उनका।
0: चलिए आपकी बात रोक कर यहाँ पर मेरी नाजिया और FM 107 की टीम की जानिब से उनके लिए

0: हाँ जी, तो सभी उन लोगों को हैप्पी बर्थडे जसविंदर सिंह के साथ साथ जिनका आज है, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां। गए के हैं
1: एक्चुअली
2: पता क्या है, देखिए अभी आपका और नाजिया जी का शो मेरे को लगता है पता नहीं कितने महीनों के बाद में आएगा, क्योंकि अभी तो ईद के आपके प्रोग्राम रेगुलर चलेंगे कल से,
1: राइट।
2: उसके बाद 1 तारीख से चेंज है ना शेड्यूल,
0: 1 तारीख से चेंज है, मगर 31 को आप लोगों को अल्लाह हाफिज करने हम लोग आएंगे
1: इंशाल्लाह।
0: तो इंशाल्लाह ताला उस दिन इस बात का हमने तायुन किया है कि 31 में आके और 2-3 एक दूसरे को घूसे लाते मार के और फिर आप लोगों से फाइनली अलविदा ले लेंगे।
2: एक्चुअली सरवर भाई बात पता क्या है यार
0: जी,
2: आप दोनों की सलामी बल्लेबाजी जोड़ी ने ना जो आफ्टरनून एक्सप्रेस में सर ताबड़तोड़ 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है ना सर, इस हिसाब से इस साल की ट्रॉफी पक्की आप दोनों के नाम है सर।
1: अल्लाह के लिए हम तक पहुंच जाए।
0: अच्छा लाए भाई, अच्छा लाए। ये आप लोगों की मोहब्बत है सभी लोगों की भाई,
1: और ये आपके बगैर तो कभी
0: पॉसिबल ही नहीं था ऑब्वियसली। किसको सुनाते तो आ रहे हैं हम लोग तकरीबन 15-16 साल से, मगर आप लोगों को सुनाना एक अलग मसला और मजा भी, दोनों ही चीजें।
1: और भरपूर पार्टिसिपेशन था लिसनर्स का लगातार, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात वाकई
2: जी। एक नाजिया जी पता क्या बात होती है, चलो लिसनर्स का तो रहेगा ही रहेगा आपके शो में, उसका रीजन ये है नाजिया जी, देखिए आप माइक पे एज एन आरजे इज ऑलरेडी हिट मीन सुपर हिट, बट अगर आप मैडम स्टेज पे भी होस्टिंग करते हो वो भी बहुत मैडम जबरदस्त होती है।
0: वाह वाह,
1: थैंक यू सो मच।
0: भाई नाजिया जी तो मैडम हर चीज में सबसे आगे ही रहती हैं, और स्टेज हो, स्टूडियो हो, पर्सनल जिंदगियां हो, लोगों की सवारने में लगी रहती हैं भाई। ये इनका बड़ा
2: जी, बिल्कुल सरवर भाई इन्होंने बिल्कुल, मैं पर्सनली बंदे को जानता हूँ जिसमें इन्होंने उसका भला किया है सर, मेरे को किसी ने बताया था। अच्छा? किसी बंदे को रोजी रोटी पे लगाना सरवर भाई बहुत बड़ी बात,
0: बिल्कुल
2: है,
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच
2: जी। और नाजिया जी को सरवर भाई जब आप इंटरव्यू लेते हुए देखोगे ना
0: जी,
2: विदाउट एनी स्क्रिप्ट
0: जी,
2: ही कैन पुट नेक्स्ट क्वेश्चन,
0: सही,
2: उसमें भी इनकी
0: कभी लेके जाती ही नहीं है स्क्रिप्ट, तो बिना स्क्रिप्ट के ही जाती है ये तो कारकर्दगी है इनकी,
1: कारकर्दगी
2: मेरे को भी लग रहा है सर,
0: कलाकारी है।
2: देखिए सरवर भाई एज एन आरजे
0: जी,
2: एज एन पॉडकास्टर
0: जी,
2: एज एन स्टेज पे होस्टिंग करने वाला ले लीजिए या इनका पर्सनल पार्ट ले लीजिए, शी इज सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड बिकॉज ऑफ हर टैलेंट।
0: बिल्कुल सही,
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हैं,
0: और ये पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, गावा भाई को कोई पेमेंट नहीं हुआ है इसका नाजिया की तरफ से, ये भी सब समझ ले।
1: नहीं, और ऑलवेज यू हैव बीन लाइक ऑलवेज ऑलवेज काइंड, तो मैं जितना भी आपको थैंक यू कहूं कम है, क्योंकि आप बहुत अच्छे शख्स हैं, इसलिए शायद यू लुक गुड इन अदर्स, ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है।
0: आपकी आंखें खूबसूरत हैं इसलिए आप खूबसूरती ही देखते हैं,
1: आप अच्छा ही देखते हैं लोगों में, ये बहुत बड़ी बात,
2: ये बात तो है सर, नजरिया
0: है ना,
2: बिल्कुल सर जी, बिल्कुल,
0: क्या बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल गावा भाई के क्या सवाल।
1: आज के जमाने में हम सब जो है काफी ऐसी लाइफ में जहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी देते हैं, कुछ बहुत नेगेटिव होते हैं, कुछ बहुत रूड मिलते हैं। इन ये लोग आपके वर्क प्लेस पे भी होंगे, घर पे भी हो सकते हैं, आपके सोशल सर्कल में भी होते हैं। आज हम पूछ ये रहे हैं जो डिफिकल्ट लोग हैं, जो मुश्किल लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, इसमें कंप्लेनर्स भी हैं, इसमें झूठ बोलने वाले भी हो सकते हैं, इसमें गुस्सा करने वाले लोग भी हो सकते हैं, जिनसे आप हमेशा झिझकते हो, घबराते हो बात करने में, तो ऐसे लोगों से हैंडल किया कैसे जाए।
2: एक्चुअली मैडम पता क्या है, सबसे पहले आप अगर फैमिली में ही देखोगे ना मैडम, अगर 5-6 बंदे हैं तो उनकी ही राय आपस में नहीं मिलती है मैडम, किसी का स्वभाव गुस्से वाला होता है, किसी का स्वभाव सॉफ्ट होता है, बस यही है मैडम। अगर आपने निपटना है सबसे पहले तो आप डायलॉग डिलीवरी करो जी।
1: अच्छा, ओके,
2: हाँ, बैठ के बात करो आमने सामने, कुछ ना कुछ तो मैडम मसला उसका नहीं निकलेगा। अगर मसला नहीं निकलता है मैडम, तो बस हर किसी मसले की एक ही की है भाई, सानू की,
1: ये बात भी सही है, बहुत अच्छा गाया इन्होंने सानू की।
0: सही, क्या बात है भाई। चलिए तो अच्छा, इसको मुख्तसर ऐसे करते हैं कि गाबा भाई का कहना है कि भाई ठीक है, तुम अपना देखो, हम अपना अपना हिसाब देखते हैं। आखिर में आके जब आप समझा नहीं सकते और डील नहीं कर सकते, ये भी ऐसे भी ठीक है। चलिए
2: सर्वर भाई जी, आप दोनों के लिए लास्ट में एक ही मेरी दुआ है, आप दोनों जो भी चीज मिलने वाली है दुनिया में, अगर उसकी ख्वाहिश करो ना सर, वो आपकी यादों में और सपनों में ना हो, हकीकत में आप दोनों
0: का। मेरा भाई कैसा, पैसा ही पैसा हमारी तरफ से गावा भाई को, पैसा ही पैसा
1: इनकी भी ख्वाहिश है अपनी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यार, मोहब्बत है,
1: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया गावा
2: भाई।
0: तो भाई ये थे गावा साहब हमारे साथ, और आइए अब प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज,
1: और अब से थोड़ी देर में आपकी कॉल्स भी लेंगे। तो हमें कॉल्स आ रही है, हमने क्वेश्चन बताया कि हाउ यू प्रेफर टू हैंडल विद डिफिकल्ट पीपल्स, अगर आपके लाइफ में कुछ डिफिकल्ट लोग होते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, जरूर हमें बताइए। 666-22-107 पर कॉल करने के लिए नंबर है 4-4-3-4-3-7-7।
0: फिलहाल एंजॉय कीजिए आतिफ असलम और अरमान मलिक एक साथ यहाँ पर समा बांधते हुए, कितना सोना।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और

के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम।

0: JK. एक और खूबसूरत गाना उनकी आवाज में. शायद ही कोई ऐसा गाना हो केके का जो किसी को पसंद ना आया हो. कोई भी ऐसा गाना नहीं है इनका. कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ना कोई याद केके के गानों से जरूर जुड़ी हुई है.
1: Right guys, welcome back. आप सुन रहे शो आफ्टरनून एक्सप्रेस. सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ 11:20 ऑन द क्लॉक. एंड यस, आज हम बात करके कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें कुछ डिफिकल्ट पीपल जो आपकी लाइफ में होते हैं. तो हमारे साथ यहाँ पर डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन एक लिसनर हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं. चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम शफीक है. आप कैसे हो?
1: ओह हाय शफी, हम लोग खैरियत से. उम्मीद करें आप भी खैरियत से होंगे.
2: जी जी, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप दोनों का. आप दोनों का जो जोश होता है शो में वो बहुत ही जबरदस्त होता है. बहुत एंजॉय करता हूँ मैं आप दोनों.
1: हमें ऐसा क्यों लग रहा है आज कहने को हमारा ये सेकंड लास्ट एपिसोड है.
0: सब विदाई कर रहे हैं हल्के हल्के. अभी रस्में अदा हो रही है ना. पहले मेहंदी है, मायू है, उपटन है, वहाँ पर रुखसती तक कहानी पहुँचेगी हल्के हल्के करके.
1: खाना रहेगी आपके? हाँ,
0: खाना भी है.
1: इसमें तो खाना होना चाहिए.
0: तो शफीक भाई, क्या हाल चाल है? कैसी हुई सुबह?
2: सुबह बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे ऑफिस में जो है स्टाफ बहुत कम है. ईद की छुट्टियों का जो है वो मौसम स्टार्ट हो गया है हमारे ऑफिस.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लगा दीजिए जल्दी से.
1: माशाल्लाह
2: माशाल्लाह माशाल्लाह.
0: सुन लिया अगर बॉस ने, आ जाओ शफीक भाई.
2: जी जी जी जी जी
0: जी जी.
2: हाँ, ये बात भी सही है. ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहिए कोई चीज.
0: हाँ देखिए, बिल्कुल. मैं बहुत बहुत ज्यादा पहले मैं नहीं लगाता था. तो अब देखिए, इंशाल्लाह ताला कल से मेरी लगातार मुलाकात होगी आपसे. कल सब छुट्टी पे हैं जबकि, मगर मैं यहाँ पे आपके साथ इंशाल्लाह मौजूद होऊंगा.
2: अच्छा, पर मुझे जानना ये सेकंड लास्ट शो क्यों है? मतलब ये शो बंद हो रहा है या छुट्टियों के बाद?
0: मैं बंद हो रहा हूँ. इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है नाजिया जी ने, तो अब कोई चारा ही नहीं बचा.
1: सर्वर मिर्जा, सेकंड लास्ट डे तो सच बोल लेते. अफसोस. मैं कम से कम कभी तो कहके वंस अपॉन अ टाइम, वंस इन अ गुड.
0: कोई सच्चा भी मिला था?
1: एक बार तो सच बोला था सर्वर भाई. और इनके साथ होंगी सफा, बट या मैं मूव कर रही हूँ मॉर्निंग शोज में.
0: सफा भी कहने के लिए होंगी क्योंकि सफा छुट्टी पे है फिलहाल. इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगी तो फिर हम दोनों एक साथ करेंगे. फिलहाल
1: मॉर्निंग में कहने के लिए हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं भी
0: थोड़ी वेकेशन का भी मामला है और स्विच

0: भी है, नया सीजन भी है, नया स्लॉट भी है, तो उसमें चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक्चुअली ये फैसला लिया गया है शफीक भाई।
1: बहुत बढ़िया, आप लोग तो जिस जहाँ पर भी फिट हो जाएंगे आप,
2: मतलब किसी शो में भी जाएंगे तो
1: आप लोग जबरदस्त आप शो को जान डाल देंगे शो में इंशाल्लाह।
0: ये आपकी
2: काइंड जी, बहुत शुक्रिया। और बस आपका प्यार इस तरह से अगर हमें मिलता रहा ना, तो आई एम श्योर हम दोनों ही अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे
0: इंशाल्लाह। तो शफीक भाई क्या कहते हैं, खतरनाक, डेंजरस और भी लफ्ज है मेरे पास, मैं यूज नहीं करना चाहता ऐसे आदमी से, कैसे
2: डेंजरस, लेट्स से डिफिकल्ट, हां
0: डिफिकल्ट ही रख लीजिए, चलिए कैसे डील करते हैं
1: डिफिकल्ट। देखिए उसमें दो तरीके के लोग होंगे, एक तो जिनसे जो आपको बहुत बॉदर करते हैं कि वो आदमी आपसे छूटे नहीं, या ऐसे लोग होंगे जो हमको ज्यादा परवाह नहीं है उसकी, अगर वो डिफिकल्ट है तो फिर हम उसको माँ सलाम बोल देंगे, भाई ठीक है इससे दूर रहो। पर अगर कोई करीबी है, अक्सर करीबी लोग ही होते हैं, जैसे मेरे केस में हमारे मेरे रिलेशन में मेरे फादर हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हम लोग को सब बच्चों को लगते हैं, पर हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो उनकी सारी डिफिकल्टीज को हम किसी न किसी तरह से सॉल्व करके उनको अपना बनाकर रखना, उनको उनकी बातें सुनना, बहुत टफ टाइम भी देते हैं पर हम फिर भी मैनेज करते हैं। और हमारे और भी रिलेशन में हैं जो मतलब रिलेटिव्स हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते, तो हमको मतलब मैनेज ऐसे करना है कि उनकी वो किसी भी तरह आपकी बात मानेंगे नहीं, आप कितना भी उनको एक्सप्लेन करो, अच्छे एग्जाम्पल्स दो, समझाओ, पर वो अपनी बात मनवा कर रहेंगे और आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में उनकी बात को मान के अपने आप को पीछे करके एक्सेप्ट, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी मैनेज करेंगे, तो इसी तरह से मैनेज करना है बस, उनको उनकी बातें सुनना है, उनके टेंट्रम झेलना है, उनके नखरे झेलना है, और बस ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये सिंपल वे है लाइफ को कैरी ऑन करना। और क्योंकि हम मतलब ये समझते हैं कि हमारे सारे रिलेशंस अल्लाह ने डिसाइड किए हैं, तो जो रिलेशंस हमारे सामने आए हैं ना वो अल्लाह की तरफ से हैं।
0: सही।
1: अब हमको जो जजा और सजा मिलेगी वो ज्यादा अखलाक के को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह देंगे। तो अगर हमारे साथ में ऐसा कोई रिलेशन है जो हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है और हमने उसको बर्दाश्त किया, तो अल्लाह से अल्लाह हमने कुछ तो इबादत तो नहीं की, पर ये जो सामने था हमने इसको इस तरह से झेला, इस तरह से बर्दाश्त किया,
0: शफीक भाई। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं?
1: बस यही है, बस मैं तो मतलब बहुत लेट समझा इस बात को कि हमारे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उनको बर्दाश्त करना जरूरी है, क्योंकि आदमी जो रिलेशन में होता है जैसे माँ है, बहन है, माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, यही है वो लोग जो मतलब आपको टेस्ट करेंगे, जैसे मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी जितने मरहले आए नबूवत के बाद वो सारे रिलेशन में थे, अबू सुफयान है, अब्बास, तो वो जितने रिलेशन में होते ना उनसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। और मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था या सुना था कि आदमी का सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो रिलेशन को मेंटेन करने में जो है ना होता है, कि कैसे वो मेंटेन करता है, कैसे मैनेज करता है। तोड़ना तो बहुत इजी है भाई, चल तो खली वली निकल भाई, निकल से बात नहीं करना है कुछ भी, मगर जोड़े रखना और अपने आप को छोटा बनाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है।
2: बहुत
0: क्या कहने भाई,
1: मैं भी फेल हो जाता।
2: बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत सच्चा, बहुत प्रैक्टिकल,
0: बहुत मोहब्बत, बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह ताला आगे भी तशरीफ लाइए, हम गेम भी खेलेंगे और 31 में भी हमसे मुलाकात जरूर कीजिए और आगे भी करते चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई हमारे
1: साथ।
0: ईद मुबारक मेरे भाई को, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। और फिलहाल के लिए अब एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक जाने से पहले ये बता दें कि भाई वापस आने के बाद आपकी कॉलों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इंशाल्लाह ताला गेम भी खेलने वाले हैं मैं और नदी, आज आपके साथ गेम कर देंगे। 666-22107 पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हाल अहवाल बता सकते हैं, हमारा हल भी पूछ सकते हैं भाई, क्यों नहीं। फिलहाल आफ्टरनून एक्सप्रेस पे 11:27 और ये बेहतरीन गाना आपके लिए, ख्वाबों में कोई आ रहा है, अलका याग्निक भी बता रही है, कुमार सानू भी कह रहे हैं, शायद याद आए आपको, पुरानी यादें, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

0: मिस मत कीजिए जश्ने ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: हज के दिन 9 दुल्हिज्जा सन 1447 हिजरी के मुताबिक 26 मई को एफएम 107 पर सुबह 8 बजे से 11 बजे आरजी सरवर मिर्जा के साथ होंगे एक मुअज्जत मेहमान हज की खुसूसी प्रोग्राम के लिए, और दोपहर 12 बजे सैफुर रहमान अपने मेहमान के साथ एफएम 107 के स्टूडियो में होंगे और सपहर 3 बजे तक हज का खुसूसी प्रोग्राम होस्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक दिन की नेमतों का हकदार बनाए।
2: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिर्द के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
3: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून
4: एक्सप्रेस, तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
5: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक,
4: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
6: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं Afternoon Express. सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
7: जी, सलाम अलैकुम।
0: हम सलाम रहमतुल्लाह जी, कौन है हमारे साथ?
7: करते पे हो यार सर्वर भाई, तुझे फोन नहीं चुकते पे हो यार।
6: रईस जी, रईस जी, क्या हाल चाल है रईस जी? आपकी खैरियत है?
7: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लगे रहे। हम बोले भाई हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितने बार आप लोग गाना चला दो, अपनी ब्रेक ले लो, हम बैठे हैं, बेले ही बैठे हैं।
0: अरे अल्लाह ताला
7: दे रहे, पे लगाते
0: रहेंगे,
6: हम तो खाली बैठे।
0: कैसे हैं रईस भाई?
6: तो कह सकते हैं हम आपके खाली वक्त के साथी।
7: एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके फिट होके बैठे हैं।
0: अजी हाँ,
7: आप थोड़ा कर लिया करो यार।
0: एक्सरसाइज करते ही फिट हो गए? यहाँ तो करे चले जा रहे, नहीं हो पा रहे, 18 साल हो गए।
6: आपने कब लिख के पेपर में?
7: बहुत फिट है,
0: ये बात
6: ये कह रहे हैं माशाल्लाह आप ज्यादा ही फिट।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है।
7: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एकदम
0: यार, ये तो देखिए
7: गंबू खुश हुआ आपकी पर्सनालिटी को देख के, माशाल्लाह
0: मोहब्बत है आपकी यार। रईस भाई, डिफिकल्ट पर्सन को कैसे आप हैंडल करते हैं? मुश्किल शख्सियत जो आपके साथ होती है,
7: करते हैं मुश्किल शख्सियत। पहले हमको ये परखना है कि वो हमारी बातों को कितना सीरियस ले रहा है, हमें ये देखना। खाली बस हम बुनाते जाए मजा नहीं है। हमारी बातों को वो कितना सीरियस लेके वो सुन रहा है, हमारे बातों को कितना वो समझ लो कि केयर कर रहा है। अगर ज्यादा नहीं कर रहा है तो उसको एक बार दो बार समझाओ।
0: अच्छा,
7: और खासकर जो अपने भाई जो अपने बच्चे हैं या वाइफ हो गई अपने शरीके हाथ, उनको तो भाई कैसा भी करके मना सकते हो तुम, अपने उस पे उनको मजबूर कर सकते, लेकिन दूसरों को तो मजबूर।
0: वो तो आपकी मजबूरी है, वो आप कैसे मजबूर करेंगे, ये तो आपकी मजबूरी है।
7: तो जी नहीं नहीं नहीं, आप दूसरे तरफ घुमा रहे हो बात को फिर। फंसाओ मत, मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका आपका जोर चलने वाला है वहीं पे ज्यादा जोर लगाओ।
0: मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ। आपका जोर चलेगा ही नहीं घर पे तो चलाएंगे कैसे रईस भाई?
7: हाँ ये तो बात है, ये तो बात है,
0: यही बात है,
7: ये तो बात है। नहीं नहीं, तकरीबन तकरीबन चल जाता है, थोड़ा मतलब कोशिश करें। अगर उस शुरू से
6: थोड़ा जोर लगाए तो जोर चली जाता
7: है, थोड़ा सा चले। अगर उसको शुरू से अगर आप अपने हिसाब से मेंटेन करके रखेंगे तो चलेगा। और शुरू में रस्सी को इतना ढीला दे दिए हो कि वो भागते भागते बहुत दूर निकल गया तो फिर नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ये भी बात है। अगर आप शुरू से ही मतलब

0: स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मैनेज करके रखोगे तो आपके बातों को थोड़ा सा लिया जाएगा सीरियस। और आप शुरू से मतलब अपनी पर्सनल फैमिली की बता रहा हूँ मैं, और जरूरत से ज्यादा अगर आप छोड़ दिए तो फिर वो आपके उसमें ये नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाले जो अपने रिलेटेड हैं उनको एक बार दो बार चार बार कोशिश करो समझाने के लिए। हालांकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, परखा भी है, कि वो पलट के पहले छोड़ देते हैं और वो धोखा खा के एक बार फिर पलट के आते हैं, आपसे मिलते हैं, यार तुमने सही बताया था यार। तो वहां तक के लिए जब एक बार दो बार तीन बार समझाने के बाद नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो उनको, फिर वो खुद ब खुद उनको समझ में आ जाएगा। हालांकि अपना निगेटिव नहीं रखो, पॉजिटिव ही रहो उनके साथ में हमेशा, ये कहने का मतलब है।
1: ज्यादातर अभी तक वैसे आपके साथ साथ लोगों ने ये कहा है कि छोड़ दो, जाने दो, ताकि जिंदगी में टेंशन ना रहे।
0: नहीं, जरूरत से ज्यादा फिर आप उनके पीछे तो फिर आपको टेंशन दे देंगे, फिर आपको टेंशन हो जाएगा।
1: देंगे नहीं तो टेंशन हो भी जाती है, जैसे आपने बताया ना, टेंशन
0: यार हम समझा रहे हैं सामने, और कोई जरूरी नहीं कि हमारे हम अगर कोई बात को अगर सामने वाले को ये कर रहे हैं तो सामने वाला भी मेरे बातों को बिल्कुल उसको करेक्ट ही करता होगा, नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ अब सीधा उसका उल्टा करते हैं, अगर समझाओ आप।
2: रईस, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमें और आपको, हम सबको ये बात जानना समझना जरूरी है कि हम किसी और का बिहेवियर कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? दूसरे का बिहेवियर तो आप कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि फौरन ही हम रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा टाइम ले। हर सिचुएशन जो है वो रिएक्ट कर जाने से खराब हो सकती है, जबकि चुप रह जाने से
1: वो कि भाई अच्छी पहले मुसलसल कोशिश हो और उसके बाद जब ना हो तो फिर थैंक यू वेरी मच।
2: पहले थोड़ा सा ऐसे लोग जो हमें पता है कि दीज आर लाइक लिटिल डिफिकल्ट का मतलब ये है कि पैसिव एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सा आ जाना या बहुत ज्यादा नेगेटिव है या बहुत ज्यादा कंप्लेनर्स हैं, तो इनको एक तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पहचान में आ जाता है कि चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे हमारा सोशल सर्किल हो, कौन कौन लोग ऐसे हैं।
1: सही।
2: उसके बाद हमें जो है अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है मैक्सिमम,
0: बहुत कंट्रोल करना पड़ता है बाद में, और खासकर अपने जो रिलेटेड मतलब होते हैं जैसे भाई हो गए, बहन या मतलब, और
1: या फिर कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए। ये भी तो बात है ना कि आप इतनी कुवत हो कि उसको मोड़ के सनी देवल बन जाए, मतलब।
2: लेकिन मुझे लगता है कि सर्वर कोई भी रिश्ता कंट्रोल करने से चलेगा नहीं, टूट जाएगा। थोड़ी देर तो वक्ती तौर पे तो कंट्रोल कर लोगे,
0: अपने जज्बात को अगर कंट्रोल करोगे
1: इज्जत नहीं होगी एक्चुअली दिलों में,
2: इज्जत नहीं होगी, हो सकता है बिल्कुल ही तबाह हो जाए कंट्रोल करने के चक्कर।
0: बहुत ज्यादा मतलब इसको मतलब तोड़ने की कोशिश करोगे, वो झुकता नहीं है वो, मतलब जैसे अपने यहाँ पे एक कहावत बांस है, वो तेज हवाओं के झोंके में वो झुक जाता है तो वो टूटता नहीं है कभी।
2: सही बात।
0: लेकिन अगर अगर अगर जो सख्त पेड़ होते हैं वो अक्सर वो मतलब दो टुकड़े हो जाते हैं जब तेज हवाओं के मतलब, तो वो अपने आप को अगर लचक रखोगे तो वो रिश्ता हो सकता है वो पलट के आप उसको, उसको उसको सामने वाले को मतलब रियलाइज हो कि यार सामने वाले बंदे ने जो बात मुझे समझाया था ये बात सही निकला, तो शायद है कि फिर वो आपकी इज्जत उसके नजर में और बढ़ जाए। और अगर आप जरूरत से ज्यादा फिर उसको ये करोगे तो शायद है कि फिर वो मजा नहीं रहेगा तो रिश्ता खराब हो जाता है
1: क्या
0: मेरे ख्याल से।
2: और एक चीज मैं और रईस जी आपसे कहना चाहूंगी, जो डिफिकल्ट लोग होते हैं ना वो उन्हें डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उन्हें सुन लो, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को लोग जो है रूड होने की वजह से या कंप्लेनर्स हैं या नेगेटिव हैं, लोग उन्हें सुनते ही नहीं है, और जब सुनते नहीं है तो इस तरह के उनके रिएक्शंस निकल के आते हैं। आप उन्हें कामली सुन लीजिए बस।
0: जी बिल्कुल, अगर हम अपनी ही बातों को घूम घूम के सारी तकरीर झाड़ते रहेंगे तो मजा नहीं है फिर उनकी उनकी भी बातों को भाई कहाँ तक नहीं, बिल्कुल उनकी उनकी बातों को भी सीरियस लो, फिर उसके बाद में एक एक पॉइंट पे उनको बताओ कि देखो बाबू या फला फला जो भी है कि मतलब जहाँ पे आप ये करना सोच रहे हैं यहाँ पे आपके लिए ये नुकसान है या आगे फ्यूचर में ये हो सकता है, अगर इस सीरियस से समझाने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहा तो फिर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए,
2: छोड़ दो उसे थोड़ी
0: देर, और हाँ उसकी बातों को सुन लो बिल्कुल, आपके बात से मैं 100% एग्री हूँ कि उसके सुनो, उसको भी मौका दो। और अगर खाली अपने ही लेक्चर जारी रखोगे तो फिर वो बहुत जल्दी मतलब बिखर जाएगा, वो बोलेगा यार तुम खाली अपने ही मनवाते हो, क्योंकि मेरे करीब
1: क्या ही कहने,
0: नाम नहीं लूंगा मैं,
1: अच्छा
0: बहुत से करीब के लोग थे उनको मैं ला के पकड़ के लाया कि मतलब चलो ले आते हैं यार घर पे फालतू गिरी कर रहा है यहाँ पे ले आते हैं सुधार देते हैं थोड़ा करके, लेकिन यहाँ पे आने के बावजूद जी हाँ फालतू फजूल इधर उधर टाइम पास करके आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करके घर पे अपना खुद भी

0: परेशान, घर वालों को भी परेशान।
1: सही।
0: तो बोले कि चलो यार इनको यहाँ पे ले आते हैं। लाने के बाद में थोड़ी देर समझाए, समझाने के बाद में वो बस वो आके यहाँ के फिर मालिक बन जाते हैं कि जो भी हूँ मैं हूँ। मैं बोला चलो ठीक है। फिर बाद में पलट के उनको रियलाइज होता है यार सही बात है, वो या फला भाई या मामू या जो भी खालू जो भी रिश्ता है, फिर वो कहते हैं कि यार आपने जो समझाया था यार सही समझाया था, अब मैं अपने आप को ये करूंगा। तो नरमी रखें थोड़ा सा, अब एक बैग ज्यादा सख्ती करेंगे तो फिर वो दराम मसला
1: सही।
0: थोड़ा सा ये ख्याल करें।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, बड़ी अच्छी बातें ऑलवेज करते ही हैं आप, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया भाई।
0: यार आपको मतलब हम सोच रहे हैं कि मतलब क्या क्या हो रहा है शेड्यूल आपका नेक्स्ट मंथ, आप बस बताएं थोड़ा सा टाइम टेबल, उसी हिसाब से हम अपना टाइम सेट करके रखेंगे। सरवर भाई से बात करके थोड़ा
2: सरवर भाई आपको मिलेंगे भाई, इसी टाइम मिलेंगे आप, बस याद रखिए टाइम क्या है।
0: इनाम हमारा बस बाकी है इंशाल्लाह, जिस दिन मिला उस दिन आएंगे आपसे मिलने जरूर।
1: नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मेल वगैरह आया हो, आपने चेक नहीं किया है, क्योंकि इनाम माशाल्लाह मुस्तकिल दिए जा रहे हैं।
0: नहीं मैंने कॉल मैंने मेल नंबर दिया नहीं था भाई, तो कॉल पे मुझे कॉल आया था ऑलरेडी, लेकिन मैं असल में उस दिन मैं नहीं अवेलेबल, आपसे बात किया था मैं उस दिन अवेलेबल नहीं हो पाया था। और शायद ड्यूटी के टाइम थोड़ा मुश्किल भी होता है भाई, क्योंकि हम लोग गाड़ी लेके कभी कहाँ पे कंपनी कौन सी कंपनी, हम लोग का बड़ी गाड़ियों का काम है तो कोई टाइम टेबल नहीं होता है, तो इसमें कहाँ पे कभी।
2: तो फिर भाई आप लेंगे कैसे, आप एक मेल डालो कि आपके बिहाफ पे कोई दूसरा करेक्ट कर ले। जैसे कुछ लोगों ने ऐसे मेल किया है,
0: मतलब ये इस पे व्हाट्सएप पे मेल अपना दे दें,
2: मेल आईडी हम आपको भेजते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे थोड़ा हमें हाई लिख के भेजिए तो हम आपको मेल आईडी भेजते हैं, वहाँ पर आपको एक मेल लिखना होगा प्रॉपर कि मैं किसी वजह से मैं नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूँ एंड मेरे बिहाफ पे ये शख्स कलेक्ट करेंगे।
0: अच्छा,
2: और उनकी आईडी
0: तो कैसे हो पाएगा मैम, ये मतलब कौन से नंबर पे आपसे, मतलब व्हाट्सएप
2: पे हम आपको जो है ना मेल आईडी, आपके पास कोई अकाउंट है जिससे आप मेल भेज सकते हैं?
0: जी बिल्कुल है, अकाउंट है, मतलब मेल भेजने के लिए हमारा अपना समझ लो कि जिस नंबर से बात कर रहे हैं इस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब मेरे पास दो तीन नंबर हैं।
1: चलिए ठीक है, तो आप हमें हाय भेजिए या लिख दीजिए मेल के लिए, मैं आपको मेल एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई,
0: इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे।
1: हाँ इसी नंबर पे, इसी नंबर पे, ताकि हम आपको ईमेल एड्रेस बता सके। बहुत बहुत शुक्रिया
2: भैया
1: थे रईस भाई हमारे साथ। अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। रिजवान भाई हमारे साथ, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। यूसुफ भाई आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग नादिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम आफ्टरनून एक्सप्रेस, दिल से देसी मंडे मॉर्निंग सबको विश करते हैं। कहते हैं मैं तो शायद अभी ऐसे लोगों को झेलने की आदत सी हो गई है। समटाइम आई इग्नोर, समटाइम्स आई लिसन एंड आई लीव, ऐसा ही मैनेज करता हूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे आमीन, यूसुफ भाई का कहना है। कहते हैं अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फराज भाई हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फराज भाई, हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, 27 तारीख को ईद है, दिमाग ने कहा चलो आप से ईद मुबारक कहकर, पर दिल ने कहा पहले नाजिया एंड सरवर से ईद की मुबारकबाद की शुरुआत करी जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर मोहम्मद साहब हैं हमारे साथ
2: जी, थैंक यू।
1: रमेश यादव हमारे साथ जुड़ते हुए, नाजिया जी और सरवर भाई गुड आफ्टरनून। चलिए ले लेते हैं, थोड़ी देर रह गई है। आसिफ भाई हमारे साथ कॉल पे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जैसे ही होता है हम कॉल करते हैं। यहाँ पर रईस भाई ने ओके टाइप कर दिया है, मैं अभी ब्रेक पे जा रहा हूँ और वापस आने के बाद आपसे मजीद बातचीत जारी रहेगी। और अभी तक जिनका इनाम नहीं आया, जैसे नाजिया ने बताया कि आप अपना कोई भी नॉमिनी बना सकते हैं और जो मेल है वो हम आपको भेज देंगे, उस पर आप मेल करके बता सकते हैं कि जो भी शख्स कलेक्ट करने आ रहा है उसकी आईडी वगैरह शेयर कर सकते हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए उदित नारायण और आशा भोसला की आवाज में अजनबी मुझको।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बजे हमारे 12 और आपके 12:02। It's the afternoon express.
3: Right guys, welcome back. A very good afternoon. आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस, सरवर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं। और देखिए, ईद की तैयारियां भी आपने स्टार्ट कर ही दी होंगी, हमें पूरी उम्मीद है।
2: वाह वाह
3: सर, मैं आप
2: मैंने अभी तक नहीं करी इसलिए मेरे ऊपर असर ज्यादा होगा।
3: वाह अच्छा,
2: यहां से निकलो तो कर पाऊं कुछ, घर जाता हूं वापस आ जाता हूं, कहां से करूं
3: इस आने जाने के बीच में जो है ना, कॉल पे कोऑर्डिनेट कीजिए आप अपनी सारी तैयारियां जो है,
2: क्या कहने भाई,
3: वो कोऑर्डिनेट कीजिए और कोऑर्डिनेटेड रखिए
2: इंशाल्लाह ताला।
3: इंशाल्लाह
2: तो उम्मीद है कि सबने अपनी तैयारी कर ली होंगी।
3: अगर आपने नहीं प्लान किया है तो कुछ ना कुछ आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको छुट्टी मिलती है तो, क्योंकि यहाँ पर कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि ईद उल अदा के मौके पर खास इवेंट्स जो है वो लाइनअप किए गए हैं जो अलखोर में होंगे। और ये अलखोर सिटी सेंटर मार्केट में खास इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा 28 मई को। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है और इस इवेंट के जो टाइमिंग्स हैं वो है शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। बेसिकली फैमिली इवेंट होगा और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो गिफ्ट हैम्पर्स भी जीत सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है जरूर जाइए।
2: तो मेरा खास ख्याल किया गया, इसका मतलब गिफ्ट हैम्पर्स मेरे लिए हैं क्या कहने
3: अगर जीतते हैं तो है,
2: अच्छा
3: ये भी रखा है क्राइटेरिया अगर आप हारे तो।
2: असल में हम बच्चों के लिए बहुत कुछ है आगे बहुत।
3: और यही नहीं, और भी है आपके लिए। देखिए, ईद उल अदा पे फैमिली फेस्टिवल नाम का ये फेस्टिवल जो है वो 97 बीच पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
2: वाह
3: ये खास आप
2: क्या कहने।
3: और ये फेस्टिवल जो है वो 28 और 29 मई को होगा।
2: ओके।
3: और ये 4 बजे स्टार्ट होगा और रात के 8 बजे तक जारी रहेगा। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं।
2: क्या हाँ, बात
3: ठीक है, अलखोर आपको जाना है 4 से 7, दो आपके पता चल गए। अब तीसरा इवेंट जो है वो मैं बताऊँ, मतलब वो इवेंट नहीं है लेकिन हाँ वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि
2: नादिया बीच में इवेंट बता दिया, आपके घर का माना है इंशाल्लाह ताला। इंतजार कर रहे हैं कि नादिया जी कब इनवाइट करेंगी।
3: सर मिर्जा कायदे से तो मुझे इस बार सबको इनवाइट कर लेना चाहिए, जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग मिलके मुझे इनवाइट
2: को इनवाइट कर ले भाई।
3: अच्छा एक एक्टिविटी में और बता दूं, वो कटारा में है।
2: अच्छा।
3: यहाँ पर अगर आपने सोचा कुछ भी नहीं है तो ये जरूर सोचिए और जाइएगा जरूर। ये है फायरवर्क डिस्प्ले जो रात के 8:30 बजे है। हाँ जी, तो कटारा में आप ये फायरवर्क देख सकते हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स भी रखे गए हैं विच इज कॉल्ड ईदिया
2: के नाम से।
3: तो फर्स्ट सेशन जो है जहाँ पे बच्चों को गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो है शाम

0: के 5:30 बजे और दूसरा सेशन जो है वो है रात के 8 बजे. तो इस तरह से ऑल टुगेदर आपके पास भरपूर मौका है, चाहे आप अल हो जाए, चाहे 974 बीच जाए या फिर कटारा जाए, हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ खास है और इवेंट्स जारी
1: है. और अगर सारी चीजों से आप दिल भर जाता है तो आप नाजिया के घर तशरीफ ले जाए, अच्छे से ईद मनाए, वहाँ पे कोरमा बिरयानी स्टू का लाभ उठाए.
0: नहीं, वहाँ पे कोरमा बिरयानी स्टू के अलावा दाल चावल सब्जी रोटी सब मिलेगी.
1: चलिए भाई, अगर आपका कुरमान बिरयानी खाते खाते दिल भर गया हो तो दाल चावल के लिए आप बना दिया गया.
0: अच्छा, वैसे होता है, लोग पसंद करते हैं ईद के दिनों में स्पेशली कुरबानी के बाद लोगों को दाल चावल.
1: चौथे दिन
0: मिर्जा आप 10वें दिन रखिए अपना अपनी बात.
1: तो भाई चौथे दिन आपकी ईद अच्छी रहे, उम्मीद यही है, क्योंकि चौथे दिन मैं और नाजिया आपके साथ होंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हां बिल्कुल,
0: पांचवें दिन
1: ओके. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रे एंथनी.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: और नाजिया बहन, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा.
0: क्या
1: नसीम भाई,
0: रे एंथनी नसीम भाई.
1: थैंक्स कहते हैं. रईस भाई को ईमेल पहुंच गया है. अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड नाजिया मैडम, इन एडवांस ईद मुबारक.
0: खैर मुबारक आपको भी.
1: कौन है हमारे साथ? मकसूद भाई हैं हमारे साथ. क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी ईद की मुबारकबाद कहते हैं. हाय
0: हाय
1: ओके, हमारी तरफ से भी नसीम भाई को हाय. रमेश भाई कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं ओ क्या बात है, रमेश भाई को आ गया है मैसेज. सरवर जी अभी कोई मैसेज नहीं आया है, मगर ये आया तो है. ये क्या भेज रहे हैं, आ तो गया है, कुछ और भी टाइप कर रहे हैं साथ में. खैर बताइएगा फिर क्या है. ओके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, क्या हाल है, और मैडम आप सुनाइए कैसी हैं. मोहम्मद कलीम, मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को सलाम. और
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: सुबह कबीर भाई का कह रहे थे कि सरवर भाई को पूछना है कि रे किधर है, कौन है रे, अभी कुछ नई लेके आ गए. खैर देखेंगे, ये भी जानेंगे.
0: इनकी अपनी अलिप बेटे से रे खराब भी
1: हाँ, हमारी नहीं निकल पा रही. नाजिया जी और सरवर जी, आप दोनों किस होटल में खाना पसंद करते हैं?
0: सरवर आप बताइए कहाँ आप खाना पसंद करते हैं. ये तो अक्सर किचन में ही खाना पसंद.
1: ये तो बताइए क्या खाना पसंद करते हैं, आपकी मुराद किस चीज से है?
0: ज्यादातर तो ये डांट खाना पसंद करते हैं.
1: हम कौन से होटल में क्या खा रहे हैं, ये भी तो बताइए साथ में. मैं अपनी बात कर रहा हूँ.
0: सरवर आप तो मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में पाए जाते हैं,
1: ये
0: बर्तन धोते हुए.
1: एग्जैक्टली काम कौन करेगा? हमारी तरफ से आप दोनों को दावत है. रमेश भाई कहते हैं क्या यार, रमेश भाई बड़पन का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर बता देना. चलो तय कर लो कहाँ आना, किस वक्त आना है, नो प्रॉब्लम. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
1: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
2: हैं
1: जैस भाई?
2: जी जी.
1: अरे अच्छा, ये वहां से आ रही है, अब समझा मैं जो मैसेजेस पढ़े मैंने. क्या बात है भाई, चलिए इसका भी कुछ खुलासा ही होगा. वैसे बता दिए, आप ही बता दिए क्या कुछ खास है इसके पीछे, कोई उन्होंने कहानी वानी सुनाई होगी, उसमें मेरा करेक्टर रख दिया होगा, मुझे एक करेक्टर बना के उन्होंने पेश कर दिया होगा. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है.
2: नहीं बस चल रहा है भाई, जो भी फोन लगा है ना बात करे तो बस सरवर भाई के सामने है.
1: अच्छा तो ये है क्या, ये तो बताइए साथ में.
0: आपके नाम को याद करवाने की कोशिश.
2: ये तो अब जो है ना इंशाल्लाह संडे में शाम को पता चलेगा भाई, रिजल्ट संडे में आएगा.
1: चलिए ठीक है, ऐसे भी ठीक है. तो जैस भाई आज बात कर रहे थे हम के आप मेरे जैसे मुश्किल शख्स के साथ कैसे डील करना पसंद करते हैं.
0: टॉक टू माय
2: भाई, इसमें सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है. अगर मैं गलत बोलूंगा तो लोगों को लगेगा गलत बोल रहे हैं, अगर सही बोलूंगा तो दूसरों को लगेगा सही भी बोल रहे हैं. इसलिए जो है ना टॉपिक पे हम बात ही नहीं करेंगे.
1: आ हा हा हा हा, बहुत बहुत बढ़िया. बिल्कुल मेरी वाली बात कर दी आपने, आप बिल्कुल मेरी वाली बात कर दी, बहुत बढ़िया. क्या ही कह रहे हैं भाई, चलिए ऐसे भी सही है. तो क्या तैयारियां हैं ईद की? अच्छा ये बताइए, ईद यही मना रहे हैं या घर जा रहे हैं?
2: नहीं घर नहीं जा रहे, इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे
1: इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानी करे. तो क्या तैयारियां हैं जैस भाई, तैयारी हो गई है?
0: मत बताइएगा
2: नहीं अभी तो तैयारी नहीं, कल होंगे इंशाल्लाह.
1: अच्छा कल होंगे,
2: निकलने करने का भी डिसाइड हुआ नहीं है किधर जाना है किधर नहीं.
1: क्या बात है, चलिए यार अल्लाह ताला खुशियां नसीब करे और ये ईद आप सभी लोगों की बहुत खूबसूरत बने, यादगार बने, सेहत तंदुरुस्ती के साथ सेफ्टी के साथ मनाई जाए इंशाल्लाह ताला.

0: बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहलन व सहलन। तो थे जैद भाई हमारे साथ, और वाकई यार ईद आ गई पता ही नहीं चलता बातों बातों पे, और
1: ऐसा लग रहा था जैसे आपके मुंह पे रखी हुई थी जबान पे, ईद आ गई,
0: क्या कहने, ईद आ गई, वो टेस्ट आ गया, वो स्वाद आ गया एक्चुअली।
1: ये सब तो छोड़िए, आपने किसी को इनवाइट किया
0: अभी तक? खुद अपने आपको ही नहीं कर पा रहा हूँ,
1: ये वही वाली बात होगी जैस भाई कह।
0: तो भाई देखिए, लोगों को लगता है कि ईद आ रही है, लग नहीं रहा,
1: लग गया है,
0: तो क्योंकि गाना भी ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पे भी कमल खान कह रहे हैं लगा लगा लगा लगा, इनको कुछ और लगा, इनको कुछ और लगा, अलका याग्निक को भी कुछ और लगा, अच्छा गाना, एंजॉय कीजिए आफ्टरनून एक्सप्रेस पे, सरवर और आदि आपके साथ, दिल से देती।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
2: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल। सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा। और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर।

चारों दिन सुबह होगी और भी खास खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियाँ। FM

0: Right guys, और यहाँ पर बात हो रही है रिश्ते निभाने की, and that too when you encounter somebody very difficult. कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में आते जरूर हैं जो वाकई में डिफिकल्ट होते हैं, उन्हें हैंडल करने में आपके होश उड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि इस शख्स को, सरवर मिर्जा को हैंडल करे तो करे कैसे कोई. तो देखिए एक चीज, जैसे हमने कहा आपसे पहले, तो हमने बताया कि कभी कभी होता है ना कि आदमी चाहता है कि लोग उसे सुने, एंड वी नो कि ही इज लाइक पैसिव अग्रेसिव पर्सन, एंग्री पर्सन एंड ऑल दैट, तो लोग उसे सुनना ही नहीं पसंद करते ना. तो थोड़ा सा कभी कभी किसी को सुन लेना उसकी अपने लिए भी एक सोल्यूशन हो जाता
1: और
0: है,
1: और शायद उनके लिए भी थोड़ी आसानी पैदा कर देता है, उनके दिल की जो एक गुबार जो है, होता है
0: exactly, वो निकल जाता है. एक चीज मैं और बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगी हर किसी से, कि हर बात को पर्सनल मत लो.
1: ओके,
0: देयर इज नथिंग पर्सनल. कई बार होता ऐसा है कि सिर्फ वो बात होती है आपके खिलाफ नहीं होती, कई दफा लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या स्ट्रेस की वजह से वैसा बिहेव कर रहे होते हैं, उनके जहन में कुछ और होता है. लेकिन हर चीज को पर्सनली ले लेने से होता क्या है कि आप ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, आप ज्यादा होते हैं. सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन इज जस्ट वॉक अवे, वहां से हट जाओ, चले जाओ. ऐसे लोगों में, मतलब ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा टाइम और स्पेस भी चाहिए, क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं दे रहा है, तो इसलिए भी उनका स्ट्रेस जो है सामने आ रहा होता है गुस्से के फॉर्म में, और हम कहते हैं कि वो ही और शी इज सच अ डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल, वो सिचुएशन उन्हें बना देती है.
1: सही,
0: बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं मैंने लाइफ में, फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी लाइफ में थ्रू आउट जो है वो डिप्राइव रहा, थ्रू आउट जो है उसके साथ डिस्कस्टिंग बिहेवियर रहा, या थ्रू आउट वो महरूमी का शिकार रहा, या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस स्ट्रगल्स इतने हैं, तो अब वो उसी तरह का पर्सन बन चुका है जो चिड़चिड़ा होता है, ओवर रिएक्टिव हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, टाइम्स शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता है. तो हम उसे जो है वो और लोगों के साथ कंपेयर भी करते हैं, तो इससे हम उसके उस गुस्से को और ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं. तो ये भी समझना जरूरी है कि देयर आर थिंग्स पर्सनल बट नॉट एवरीथिंग इज पर्सनल. तो हर चीज को अपने ऊपर लेकर उसको ऐसे सोचना, इसने मेरे साथ ये ऐसा टेढ़ा होके गया तो ये मुझे दिखा के गया, या यूं ऐसा करके पैर पटक के गया तो ये मुझे दिखाना चाहता था या चाहती थी, इट्स नॉट अ गुड थिंग. ये सारी चीजें जो है आपकी सिचुएशन को और वर्स
1: तो इस पे आप भाई अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा. देखिए डॉक्टर नाजिया ने किस तरह से अच्छी तरह आपको ये बात बताई है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो,
0: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अहलन व सहलन. अरे करीम भाई कहाँ थे?
2: सर सर
1: यार कहाँ थे?
2: तो बस अपने बहन भाई को मिस कर रहा था. मैंने कहा यार कोई टाइम तो मुझे मिले कि बात तो हो जाए यार.
1: तो कहाँ आप? खैरियत तो है वैसे इंशाल्लाह ताला, इतने दिनों से कहाँ गायब थे?
2: बिल्कुल दोहा जैसे कंट्री, कतर जैसे कंट्री, दोहा जैसे सिटी,
1: नहीं होगा
2: तो कहाँ होगा
1: माशाल्लाह.
2: बेशक
1: सर, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपके साथ कोई मतलब आप इतने दिनों से तशरीफ नहीं लाए तो बस फिकर हुई कि
2: मिस कर रहा था आप लोगों को, यकीनन मिस कर रहा था. बस थोड़ा सा ये टाइमिंग का थोड़ा मसला था मेरा, कोशिश तो मैं कर रहा था, लेकिन जब मुझे चांस मिलता था तो उसी टाइम में कोई साथ में होता था तो मैंने कहा चलो सुन लेते हैं क्या कर सकते हैं.
1: चलिए तो अच्छी बात है.
2: कभी कभी तो सुनने का मौका भी नहीं मिलता था क्योंकि रेडियो की आवाज बिल्कुल सुनो. तो अभी मौका मिला जी.
1: चलिए ये तो अच्छी बात है भाई.
0: फाइनली
2: भाई मैंने बहुत जबरदस्त बात अभी सीख ली है, जो अभी नाजिया बहन बता रही थी ना मेरे साथ. कभी कभी ये चीज होता है कि एक बात को लेना और उसको इस तरह, वाकई ये बात 100% हकीकत है, इस पे कोई शक नहीं है.
0: चलिए मुझे खुशी है कि आप इस चीज पे अमल करेंगे इंशाल्लाह. वैसे आज हम बात ही कर रहे हैं. जी बताइए.
2: मैं सुन रहा था आपको, मैंने मेरे दिल की बात बताई आपने. कभी हो जाता है ना ये मसला, हर इंसान के साथ होता है.
1: सही,
2: ये हर इंसान में एक चीज होती है ना वो अपनी, जिसे कोई ईगो कहता है, कोई अना कहता है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं करना था. तभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि लंबी दोस्ती के लिए दो चीजों को याद रखो. एक, अपने दोस्त के ऊपर थोड़ा तेज मत जाना.
1: अच्छा,
0: तेज मत
2: जाना. दूसरी बात, अगर वो एक बात आपको कहें उसको दिल पे मत लेना, जिस तरह नाजिया मैम ने अभी बात बता दी.
0: हर चीज पर्सनल
2: नहीं होती, आपकी दोस्ती बहुत लंबी चलेगी. तो ये बात जो है ना बहन भाई के बीच में भी हो सकता है, भाइयों के बीच में भी, माँ बेटे के बीच में, और मियाँ बीवी के बीच में, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोस्त हैं, ये वो चीजें हैं कि हर कोई इस चीज पर अमल करे सही। अगले पर तेज ना जाए और उस वो अगर आ जाए तो ये दिल पे ना ले, तो ये सवाल पैदा नहीं होता जो हमारे असाबा और रोंदावलन का जी कौल है ना, उसमें तो कोई शक भी नहीं है।
1: सही,
0: बिल्कुल सही, बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी बात।
1: सही, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है करीम भाई। जी जी
2: जी जी जी जी,
1: और क्या कहना चाहते
2: सर आप?
1: आप फरमाइए, कुछ कह रहे थे, मैंने बात काट दी आपकी। यही बात थी कि जो मुश्किल पर्सनैलिटी है या मुश्किल शख्सियत आपके साथ होती है कोई ना कोई, उससे आप कैसे डील करते हैं अपने होटल में, घर पे, रिश्तेदारों में, दोस्तों में?
2: सर डील करने में तो मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं जिधर भी होता हूँ लोग कहता है भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर पड़े नहीं है कॉन्फिडेंस, मैंने कहा भाई 20,000 बंदूक वाला सिर्फ मुझे भेज दो।
1: वाह,
2: मेरा पर्सनली एक तबीयत होता है ना, आप यकीन जाने, मैं यहाँ सोशल मीडिया रेडियो पे, शायद वो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे जिन लोगों के साथ मैं गया हूँ मसलू मसाइल में, वो कहते हैं यार वो 500 में बोलता है यार खुदा को मानो मुझे ऐसे जगह ले जाओ जहाँ पर 200-250 बंदे हो,
1: वाह,
2: ताकि उनको भी पता चले कि कौन आया है।
1: वाह,
2: तो क्या बात है? उस आगे पार्टी को नहीं देखता, वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कहाँ से भी हो, क्या है वो क्या नहीं, उस चीज को मैं नहीं देखता, मैं जाके खड़ा होकर वो अपना मुद्दा पेश करता हूँ वहाँ पे अपनी बात, भाई ये गलत है ये सच है।
1: सही,
2: तो मैं अपने आप में जब मैं अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे ऐसी जगह में जाना चाहिए जहाँ पे काफी सारा भीड़ हो और मैं वहाँ जाकर अपना वो बात कर सकूँ, तो मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह।
1: चलिए यार ये तो बहुत अच्छी बात
2: है कि आगे कौन है, तो वो मैं अपने एक हिसाब से डील करता हूँ कि वो भी खुश

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर, दिल से देसी।

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: Παθούρη. It's the Afternoon Express. Welcome back, अहलन वसहलन, खुश आमदीद, स्वागतम. और यहाँ पर अच्छे अच्छे गानों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ अब एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए. हेलो, सलाम अलैकुम.
1: हेलो.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू.
0: अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
2: आपका मेजबान
0: आसिफ भाई.
2: जी भाई, आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई.
0: हाँ यार, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो गई. 3-4 साल हो गए भाई, ऐसा कैसे?
2: बिल्कुल, मैं बोला अभी 2 साल.

0: तो हो गए, मतलब मुलाकात कर लेता हूँ, तो बोलेंगे भाई भूल क्या।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है भाई आसिफ भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कैसे हैं और कैसा रहा आज का दिन?
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मियों से एकदम जूझते हुए, खेलते हुए अपने घर पहुंचते हुए गाड़ी में बैठे।
1: गर्मी तो वाकई शुरू हो गई है, सबको ख्याल भी करना है कि भाई पानी वगैरह पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो आसिफ भाई क्या कहना है आज के मुद्दे के हवाले से, किस तरीके से डील करते हैं आप जो थोड़ी डिफिकल्ट पर्सनालिटी होती है, वो शख्स जो थोड़ा मुश्किल होता है जिसको हैंडल करना, आप कैसे हैंडल करते हैं?
0: अगर भाई मैं बहुत ये मतलब मैं 11 o'clock से मैं आपका शो सुन रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: और सबकी बातें सुनते हुए आया
1: हूँ,
0: ऐसा नहीं कि एक भी शख्स का मैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं सुना, सबका सुनते हुए आया हूँ मैं।
1: ओके।
0: तो मैं अपनी नजर से एक बात बोलता हूँ, मैं बहुत यानी इधर कतर में नहीं दुबई में जब मैं था तो मैं एक साथ में मैं एक किसी और को भी लेके आया था अपने साथ में काम के लिए, यहाँ चल तू भी उधर काम कर। वो आने के बाद ना इधर मतलब जैसी 2 महीना हुआ 3 महीना हुआ मैं उसको समझा रहा हूँ, भाई तू इधर काम कर, पैसे की बहुत जरूरत है, अपने अपने को घर में पैसा देना, ये करना, हर चीज से तू समझा रहा, नहीं समझ रहा है वो। तो उसके बाद में मैं क्या किया, 2 बार 4 बार 3 बार 5 बार समझाया, नहीं समझा तो 2 कान के इंच लगा के दिया।
1: ऐसे भी समझाया जा रहा?
0: जी बिल्कुल। अभी क्या नहीं समझती भाई पब्लिक समझती नहीं, पब्लिक एकदम मेरे चाले करती है, एकदम पागल चाले करती है, नहीं मेरे को यही काम करने का, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये नहीं, मतलब 2 कान के इंच लगा के तो समझ जाते हैं।
2: मुझे लगता है शुरू में सबको ही प्रॉब्लम आती है, चीजें एडजस्ट हो रही होती हैं, आप भी एडजस्ट होते हैं उस एनवायरनमेंट में, बस उस वक्त आप हिम्मत से अगर रुक गए टिक गए तो फिर आपके लिए आसान हो जाते हैं।
0: बिल्कुल नाजेबिन। और दूसरी बात ये, जब तक उसको समझाओ नहीं समझ रहा तो हम लोग की लैंग्वेज में एक ही बात बोलते हैं, चलते रहे फास्ट दिख मत आस पास। सिंपल एक ही बात बोलने का उसको, चलते रहे फास्ट दिख मत आस पास, कुछ फायदा नहीं तेरे को समझा के, एकदम हेड़ा है एकदम, मतलब पागल लोग को नहीं समझाओ तो अच्छा, अपन समझदार है। तो ये अपना है भाई के मतलब जितना इंसान को समझाओ वो समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो चलती का चांद ले, मालिक का नाम ले।
1: चलिए ये भी ठीक है, तो इनका भी कहना वही है नादिया, कि हर कोई अवॉइड ही करना चाहता है आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में,
0: पब्लिक
1: वक्त कम बचा है लोगों के पास शायद लगता है समझाने के लिए, पहले पूरी पूरी जिंदगी लोग लगा दिया करते थे एक दूसरे को समझाने सिखाने में, ताकि अपना अपने पास ही रहे और रूठे ना, मगर अब का मामला दूसरा है। क्या बात है भाई,
0: बिल्कुल भाई बिल्कुल, आज के टाइम की पब्लिक बहुत डेंजर है, पहले के टाइम की पब्लिक समझदार थी, हाँ भाई कोई समझा समझ जा रही है, अभी के टाइम की पब्लिक क्या है ना,
1: कोई समझने को तैयार
0: नहीं है, एक तो समझते दो लोग को।
1: चलिए साहब ये भी अच्छा।
0: दूसरी बात नाजिया बहन आपको हैप्पी जर्नी,
1: हैप्पी जर्नी नाजिया मैम।
2: थैंक यू जी, अभी नहीं, अभी तो मैं हूँ,
1: अभी थोड़े दिन, अभी से
0: क्या पता बहन कल हो ना,
1: कल हो ना, आप एक काम करिए अभी निकल लीजिए नाजिया जी, फ्लाइट पकड़िए, हैप्पी जर्नी मिस नाजिया।
2: मुझे तो लगता है सर्वर भाई मुझे ट्रेन में बैठा के पूरा कंफर्म करें भाई,
1: मेरे लिए कुछ कह रहे हैं, मेरे लिए भी कुछ कह रहे हैं,
2: अब मैं
1: जाऊँगा। हाँ
0: सरवर भाई, जैसा मैंने नाजिया बहन को बोला हैप्पी जर्नी, वैसा आपको तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आप तो छोड़े ही नहीं सीट को, सीट को आप पकड़ के रखेंगे, ये सीट हम नहीं छोड़ेंगे।
1: अच्छा है। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार आसिफ भाई, बड़ी अच्छी बातें आपकी एज यूजुअल।
0: आप दोनों को भाई मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक,
1: आपको भी ईद की
0: मुबारक,
2: आपको भी बहुत बहुत मुबारक,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: भाई आप लोगों से,
1: आपसे भी सर, आपसे भी, अपना ख्याल रखिए बहुत, थैंक यू,
2: अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। इट्स द आफ्टरनून
1: एक्सप्रेस, यहाँ पर कोई और हमारे साथ जुड़ते हुए, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरकातुहू, सरवर भाई और नाजिया जी को दिल से सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सैयद फैजल साहब हमारे साथ,
3: मैं फोन रख दे रहा हूँ,
1: अल्लाह हाफिज। अरे सुनिए तो सही, सुनिए जमील भाई यार,
2: सैयद
1: जमील यार, आपस वाले को ही तो मतलब जरा परेशान किया जाता है जमील भाई।
3: नहीं भाई, हम आपको जब भी हमारे पास ना स्पेशल से स्पेशल डिश बनती है तो हम सरवर भाई को याद करते
1: हैं, उनके नाम को याद करके दुआ कर लेते, अल्लाह ताला उनका भी पेट भरे, आमीन, और खुद कह दी इधर सारी की सारी बिरयानी खुद उड़ा दी, हमें तेरे दुआओं में याद कर रहे
3: हैं। ऐसा जुलुम मत करो सरवर भाई, हैदराबाद से जब इतने चाहने वाले हैं आपके, आप ऐसा जुलुम करे तो कैसा सरवर भाई
1: यार, कहां
3: करो दिन प्रम हैदराबाद।
1: बेचारे खुद आ गए वहां तक, कह रहे तुम लोग तो बताओगे नहीं मैं अपना ला यार, छेड़ रहे थे अदर भाई आपको, आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम नहीं पहचाना होगा हमने?
2: 100%
3: नहीं नहीं मालूम है,
1: तो सही है मगर आपको ऐसा लगता है जज्बे को,
3: आपके जज्बे को मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं सर भाई।
1: यार अदर भाई कैसा,
2: मैं अदर भाई कह रहे हैं मैं आपके माशाल्लाह झूठ की कदर कर रहा हूं।
3: नादिया जी पहचान लिए,
1: नादिया जी पहचान लिए। अरे नहीं यार अदर भाई, यार नादिया बाजी तो कहती रहती हैं ऐसी बातें, आप तो यकीन करिए मेरी बात का यार, मुझे पता है आप हैं यार।
2: सरवर भाई झूठ मत बोलिए आप, आपको बिल्कुल भी नहीं पता था, इशारे से बीच में पूछा कौन है कौन,
1: बात तो सही है,
2: मैंने नहीं बताया।
1: आजकल चल रहा है ना,
3: बात तो सही है ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने।
1: नहीं नहीं अदर भाई कहाँ, एक तो यार आप कहाँ चले जाते हैं, एक एक हफ्ते बाद दस दस दिन बाद तशरीफ लाते हैं, कहाँ थे?
3: ज्यादा टाइम नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स के कॉल्स आते रहते।
1: अरे सर तो आप
3: बात कर लेना,
1: नाजिया जी प्रोग्राम से अल्लाह हाफिज करके जा रही हैं, सुबह की भागदौड़ संभालने
2: इंशाल्लाह
1: ताला खैर के साथ।
3: उनके मैं बोला चलो दो मिनट बात कर लेंगे बोल के, और वो समझाने की बात पे एक बात आई तो मैं बोला थोड़ा आपसे शेयर कर लेंगे।
1: जी जी प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज शेयर।
3: तो मेरे हमारे एक दोस्त साहब थे यहाँ पे खतर में, मैं उनको बुलाया ही मैं था,
1: ओके
3: जो भी उनको प्रोफेशन जो भी जॉब पे था उनको बुलाया मैं, लेकिन उनका जो है ना कुछ ऐसा, यानी उनके फैमिली में इतना प्रॉब्लम था, यानी ये बंदा अगर मेहनत करके अगर चार पैसे घर पे भेजेगा तो जो भी गुजारा चलना है चलना है।
1: ओके
3: भाई वैसी मेहनत से क्या करा वो मुसीबत देख के बंदे को, खैर कुछ भी करके अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का हुक्म था उनको इधर आना था, रिस्क नसीब में था वो इधर आ गए।
1: सही।
3: अब आने के बाद सरवर भाई 5-6 महीने हो गए, मालूम नहीं क्या है, एक हफ्ते से बंदा परेशान परेशान रह रहा, भाई मैं नहीं रहता मैं चले आता हूँ, भाई मैं नहीं रहता हूँ चले आता हूँ, बहुत मतलब मेरे को वो एकदम मेंटली टॉर्चर कर दे रहा था बंदा। तो मैं क्या बोला, मैं बोला देखो
1: मुझे क्योंकि कोई याद आ गया,
3: मैं बोला देखो अगर जाना है मैं बोला जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे को दुनिया में उसकी मर्जी से लेके आया और जब वक्त आएगा तो उसकी मर्जी से चलेगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो, ये अल्लाह ताला का हुकुम है, ये हम नहीं है ना कोई अपनी खुदी से लिखे सो है, मतलब एक चीज काम कर लो, मैं चुप चुप नहीं समझाता हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हारी परेशानी थी तुम्हारे को इधर बुला लेके लेके आए। अब दूसरी बात आप ये करो, जिस मेरा एक कहना मानो, अल्लाह उनके रसूल की बारगाह में नमाज पढ़ो, 2 रकअत सिर्फ नमाज पढ़ो और जो है ना सलातुल हजत की नमाज पढ़ो, उसके बाद आपके दिल में जो भी नमाज पढ़ने के बाद आपकी दिल में जो भी फिक्र आएगी, जाना है यकीन मानो आज की आज ही टिकट करा देंगे, नहीं जाना है बोल के अगर
1: काम
3: लिए तो फिर आप कतई नहीं जाना, ये चीज मतलब जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जाने के बाद उसको कैसा फिर उसके बाद सैक्रिफाइस करना कितना स्ट्रगल करना वो एक थोड़ा सोच लो, मतलब मुकद्दर में नसीब में जब जो होना है होता है, तवक्कल तो अल्लाह हस्बुल्लाह व निअमल वकील, तुम्हारे नसीब में अगर नहीं रहना है चले आना है, रहना है रहो, बस एक काम करो जाने से पहले सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ो, बाकी के नमाज ना को पढ़ो, मतलब 2 रकअत नमाज पढ़ो, जब अल्लाह का हुक्म अगर तुम्हारे को आ गया नहीं अगर जाना है बोल के सोच लिया तो नमाज पढ़ने के बावजूद भी वाला मैं खत्ता ही नहीं रखता हूँ, सामान मैं खुद रेडी करता हूँ, मैं खुद जो है ना स्पॉन्सर से बात करके छोड़ देता हूँ, नहीं जाना है बस आप जीत गए समझो बोल के मैं ये बात बोला था हमारे नादिया जी। तो बंदा नमाज पढ़ लिया, जब तक फिर मेरे को जॉब थोड़ी ड्यूटी थी तो मैं जो ना काम जो भी काम वगैरह कर ले क्या, 2 घंटे के बाद जब मैं आया हमारे सर्वर भाई तो जब रूम में आया बंदा एकदम सो गया था, जैसा वो उसको महसूस हुआ कि मैं आया तो एकदम नींद में सुट के गले लगा लिया, बोला भाई सर यकीन मानिए यानी मेरे को बस आज मैं नहीं जा रहा
1: हूँ भाई, उन्होंने आपकी बात सुनी आपका मशवरा लिया और आपने उनको अच्छा
3: मशवरा नहीं मेरा मशवरा नहीं लिए, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म माने, अल्लाह अगर उनके दिल में अगर रहम नहीं डालता अगर उनके दिल को दिमाग को ठंडा नहीं करता तो यकीनन चले आ रहे थे, शैतान की बात सुन ले रहे थे, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है सरवर भाई गल्फ में आना काम करना धूप सर्दी हर चीज बर्दाश्त करना हर किसी के लिए ये बस की बात नहीं है, हर कोई अपने इंडिया में खाली 40 डिग्री धूप रहे तो इंसान हैरान हो जाता है, या 50 को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है।
1: बेशक बेशक भाई क्या खूबसूरत बातें हैं जमील भाई, आपको पहले भी मिस किया इंशाल्लाह ताला अब आगे भी मुलाकात
3: होगी।
1: اوکے اظہر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. ان شاء اللہ تعالیٰ اب 31 تاریخ کو آپ سے ملاقات ہوگی اور اس درمیان عید کے پروگرام میں اور کل عرفہ کے پروگرام میں ان شاء اللہ صبح آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.
3: چھوٹے الفاظ جانے سے پہلے جی جی جی کے لیے سفر اگر جا رہے ہیں آج کل پرسوں جب بھی ہو تو سب سے پہلے اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے, اللہ سفر میں آسانی کرے. اللہ جو ہے نا بالخصوص ہماری گزارش ہے ہر کسی کے لیے دعائیں کرے کیونکہ سفر والوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. بس یہی گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اللہ کا سفر آسان کرے, حفظ امان میں جائیے انشاءاللہ.
1: آمین آمین. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی دعا کے لیے. شکریہ اظہر بھائی, تھینک یو سو مچ. بھائی یہاں پر رمیش بھائی ہمارے ساتھ جڑ گئے, اب ہم کال نہیں لے سکتے کیونکہ اب اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے. رمیش بھائی نے یہاں پر کچھ میسج, سرور جی نازیہ جی ہماری ای میل ہے اس پر میسج بھیج دیجئے گا.
2: اوکے
1: ٹیل می, کیونکہ جمعے کے دن میں پڑھوں گا. اچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟
2: السلام علیکم
1: سرور بھائی اور نازیہ سسٹر. ایک سیکنڈ نازیہ بس وہ بھی اعلان کر دیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں سرور بھائی اور نازیہ جی آپ؟ یہ خیر میسجز سے تو میں نے کہا یہ شیئر کر لوں. فراز بھائی, احمد بھائی ہمارے ساتھ اور یہاں پہ رئیس خان صاحب,
2: تھینک یو سو مچ. بس جاتے جاتے جیسے آج ہم ڈیفیکلٹ لوگوں کی بات کر رہے تھے, میں کہتی ہوں ہر انسان کی لائف میں ڈیفیکلٹ لوگ ہونے ہی چاہیے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز, وہ سب سے امپورٹنٹ لیسن ہمیں سکھاتے ہیں صبر کے, انڈرسٹینڈنگ کے اور سیلف کنٹرول کے.
1: صحیح.
2: انسان کو ہینڈل کرنا کبھی بھی ٹف نہیں ہے, اپنے آپ کو روک پانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہم دوسروں کے ریئیکشنز تو روک نہیں سکتے ہیں, خود کے ریئیکشنز پر ہمارا بھرپور کنٹرول ہے. تو بس کوشش کیجیے کہ ہر مشکل والی چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لیسن آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے. اس پازیٹیوٹی کے ساتھ جب چیزوں کا آپ ہینڈل کرتے ہو تو لائف آپ کی اور سامنے والے کی آسان ہو جاتی ہے. اور ہاں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ کہ منسٹری آف اوقاف نے جو ہے وہ 733 موس تیار کر دیے اور ساتھ ہی نماز جو ہے وہ صبح 5 بجے ہوگی.
1: بالکل صحیح. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل صبح اب آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی جہاں پر ہم عرفہ کا پروگرام کریں گے. yes. اور پھر عید کے دنوں میں آپ کی مجھ سے ملاقات امیتا کے ساتھ صبح 10 سے 12 ہوگی اور نازیہ کی ملاقات فضیل کے ساتھ 8 سے 10 کے درمیان ہوگی. اس کے علاوہ بھی مختلف شوز ہیں, انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فی الحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے, عید کی تیاریاں بہت ہی آرام سے سکون سے کیجیے اپنا خیال رکھتے ہوئے, اور ساتھ میں دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. اور دیکھتے اور سنتے رہیے FM 107
2: دل سے. Thank you.

0: ही है. और इस तरह आगे आखिरी और जो असल मकसद अमली हाजत की जो दुआ है वो है, उसका उसकी लाइन इस तरह है, इक़्दियान्नद्दीन, अल्लाह हमारा कर्ज अदा कर दे, वाग़निना मिनल फ़क्र, और हमें फ़क्र से बेनियाज कर दे. यानी कर्ज अदा करना, यहाँ पर पैसे के कर्ज तो ज़रूर हैं, इसी तरह लोगों के हकूक़, ज़िम्मेदारियाँ, वादे, जो सब कुछ यहाँ शामिल हैं, जो दरअसल हमारे ज़िम्मे कर्ज होते हैं, तो इन्हें पूरा करना, अदा करना ये लाजमी है. तो ये अल्लाह सुब्हान तआला से इसकी तौफीक मांगी जा रही है. और वाग़निना मिनल फ़क्र, और हमें फ़क्र से बेनियाज कर दे, यानी लोगों का मोहताज न बना, अपने सिवा किसी के आगे झुकने पर मजबूर न कर. सामिन कराम, ये दुआ हमें सिखाती है कि पहले अल्लाह को पहचानो, उस पर ईमान लाओ, उससे पनाह मांगो और अपनी हाजत रखो. इसी तरतीब को कहते हैं अदब दुआ. गोया इस दुआ में असल चीज़ें मांगी जा रही है कि अल्लाह, जिसके हाथ में पूरी कायनात है, उसी से मांग रहा हूँ कि वो मुझे कर्ज की जिल्लत से निकाल दे और फ़क्र की मोहताजी से बचा ले. इस तरह ये दुआ कर्ज में डूबे हुए इंसान की सबसे ताकतवर हथियार कह सकते हैं, यह दुआ है और दिल के सुकून की सबसे मुकम्मल दवा है. अल्लाह सुभान व तआला हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. इन्हीं पैगामात के साथ प्रोग्राम आज की दुआ के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तरह अशरफ जमान को दीजिए इजाजत. मअस्सलामा.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
2: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है. बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है. FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
3: कभी ऐसा होता है ना, पेट भरा होता है फिर भी कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, जैसे कि कुछ क्रंची हो जाए। वेल, मेरे साथ जनरली ऐसा होता है लंच डिनर ब्रेकफास्ट सबके बाद। फ्रिज में जाके मैं जरूर चेकआउट करती हूँ कि और क्या बचा है या क्या क्रंची खा सकती हूँ। वेल, क्या आप भी मेरे समान है? और बस वहीं से चिप्स बर्गर पिज्जा जिंदगी में एंट्री ले लेते हैं। वेल, आज हम बात कर रहे हैं जंक फूड एंड इट्स इफेक्ट्स की। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, जंक फूड कोई विलन नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब जंक फूड रूटीन बन जाता है। कभी कभी खाना एंजॉय करना बिल्कुल ठीक है, पर जब ये रोज की हैबिट बन जाए तो बॉडी धीरे धीरे रिएक्ट करने लगती है। जंक फूड टेस्ट बर्ड्स को बहुत जल्दी इम्प्रेस करते हैं। ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा शुगर, ज्यादा फैट, ये सब ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, पर ये प्लेजर काफी शॉर्ट लिव्ड होता है। थोड़ी देर बाद एनर्जी ड्रॉप होने लगती है, पेट हैवी लगने लगता है और फिर गिल्ट भी बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जंक खाने के बाद नींद आने लगती है या फोकस बिल्कुल कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जंक फूड बॉडी को कैलोरीज देता है, न्यूट्रिशन नहीं। बॉडी को विटामिंस, मिनरल्स, फाइबर्स चाहिए और ये प्रॉपर खाना खाने से मिलते हैं। जंक फूड में ये ऑलमोस्ट सब मिसिंग होता है। वेल, रेगुलर जंक फूड का असर सिर्फ वेट पर ही नहीं पड़ता, ये डाइजेशन को स्लो कर देता है, स्किन डल लगने लगते है, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जंक फूड का इफेक्ट मूड पर भी होता है। ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड एनर्जी को अनस्टेबल बना देते हैं, जिससे फटीग और भी ज्यादा बढ़ सकता है और आपको और ज्यादा इरिटेशन हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फेवरेट चीजें ही छोड़ दें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन का ज्यादा खाना घर का सिंपल और न्यूट्रिशियस रखते हो तो कभी कभी जंक बॉडी इजिली हैंडल कर लेती है। और अगर जंक की क्रेविंग हो तो क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी पर थोड़ा ध्यान दीजिए, रोज नहीं, हर टाइम नहीं। एक और स्मार्ट ट्रिक, जंक को रिप्लेस करो, एलिमिनेट मत करो। होममेड स्नैक्स, भुना चना, मखाना, फ्रूट्स, नट्स, ये सब क्रेविंग को हैंडल करने में हेल्प करता है। बॉडी जब प्रॉपरली नरिश होती है ना, तो जंक की क्रेविंग अपने आप कम होने लगती है। तो आज का एक ऑनेस्ट थॉट, जंक फूड से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उससे रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है। खाइए, एंजॉय कीजिए, पर समझ के, क्योंकि जब हम बॉडी को रेगुलरली अच्छा फ्यूल देते हैं तो वो भी हमें बेटर एनर्जी, बेटर मूड और बेटर हेल्थ के साथ रिप्लाई करती है। और इसीलिए जंक फूड कभी कभी सेल्फ केयर रोज एंड योर हेल्थ मैटर।
2: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

बांग्लादेश के एक नौजवान क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम है नाहिद राणा। जी हाँ दोस्तों, नाहिद राणा यही बॉलर है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को पहले टेस्ट में जीत दिलाने मदद की और ये टेस्ट मैच जो है मीरपुर में खेला गया था। पाकिस्तान के सेकेंड इनिंग्स में नाहिद राणा ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए एंड दैट इज सो क्रिटिकल इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस टेस्ट मैच। बताता चलूं कि दुनिया भर में अगर तेज रफ्तार बॉलर्स की बात किया जाए तो नाहिद राणा इज वन ऑफ देम। यंग एज में ही नाहिद राणा ने अपनी स्पीड और एग्रेशन से क्रिकेट एक्सपर्ट्स को काफ़ी मुतासिर किया। उनकी बॉलिंग अक्सर 145 किलोमीटर फी घंटा के करीब देखी गई है जो कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नाहिद राणा ने शानदार परफॉर्मेंस देकर सबकी तवज्जो हासिल की। उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को अपनी पेस और बाउंस से काफ़ी परेशान किया। नाहिद राणा की फर्स्ट बॉलिंग ने मैच में बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाने में अहम किरदार अदा किया और आगे जाकर बांग्लादेश विंस दिस टेस्ट मैच विच इज अ क्वाइट एन एस्टोनिशिंग रिकॉर्ड फॉर द बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। और देखा जाए तो पिछले 3 टेस्ट मैचेस मुसलसल बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने हासिल किया। 2024 सीरीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब पाकिस्तान में जाकर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को मान दी थी एंड सीरीज भी जीती थी एंड दैट वाज अ हिस्टोरिक टूर ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट टीम। क्रिकेट फैंस और एनालिस्ट ने नाहिद राणा के इस कॉन्फिडेंस और अटैकिंग अप्रोच की बहुत तारीफ की। नाहिद राणा को बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर स्टार तो हम मानते ही हैं और सबको ये कह रहा है कि हाँ ही इज़ अ रियल रियल बिग स्टार दैट इज़ कमिंग अप। कोचेस का कहना है कि अगर वो इसी तरह हार्डवर्क और डिसिप्लिन के साथ अपना परफॉर्मेंस देता रहा तो वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में शामिल हो सकता है। यंग क्रिकेटर्स के लिए नाहिद राणा एक मिसाल है कि डेडिकेशन और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्टार खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Dosto, देखिए ईद आने वाली है और आप लोगों ने अपने जहन में बहुत सारी प्लानिंग्स करनी स्टार्ट करती होंगी। कुछ लोगों ने जहनों में नहीं प्रैक्टिकल भी अपनी प्लानिंग स्टार्ट करती होगी। मैं कहूंगी कि एक शख्स ऐसा है जिस पर ईद के दौरान बड़ा लोड आता है। एक्चुअली एक नहीं, हम कह सकते हैं कि दो शख्स ऐसे हैं घर के जिन पर जो है ना ईद के दौरान बड़ा लोड आ जाता है। एक तो आप खुद हैं, मेरा मतलब है जो हमारी फीमेल मेंबर्स होती है ना, जो खातीन होती हैं उन पर लोड आता है, और दूसरे आपके हाउस हेल्प के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि आप अपने हाउस हेल्प के साथ क्या मोहब्बत और रहम दिली से पेश आते हैं, क्योंकि इंसानियत का असल रूप तो यही आपका नज़र आता है। देखिए ईद हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इंसान का सबसे खूबसूरत

द हाउस हेल्प, चाहे वो मेड हो, ड्राइवर हो या कोई और मदद करने वाला शख्स, वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम अपने फैमिली, अपने घर के फैमिली मेंबर्स की, रिलेटिव्स की, इन सब के कपड़े लाते हैं, इनका ख्याल करते हैं, इनकी कंफर्ट का ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर हम हमारी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं या जो हाउस हेल्प हैं उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। देखिए, हाउस हेल्प वो लोग हैं जो हमारे घर को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज बना रहे होते हैं। इसलिए उनके साथ काइंडनेस और कंपैशन दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ईद हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसका पैगाम भी यही है कि हम शेयरिंग और केयरिंग करें। जब हम अपने हाउस हेल्प को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, उनके लिए नए कपड़े लाते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, उनके साथ एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा हमारा एटीट्यूड होता है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा रहती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी आना चाहिए। किसी से पोलाइटली बात करना, उसे इज्जत देना है, उनके काम की तारीफ करना बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इसका असर बड़ा गहरा होता है। कभी कभी सिर्फ एक थैंक यू कह देना या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कह देना किसी का दिन बना देता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों रिलक्टेंट हो जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमें दूसरों के वेलबींग का भी ख्याल रखना है। देखिए, हम समझते हैं कि हम सब के ऊपर लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन क्या वो स्ट्रेस और टेंशन हम इन लोगों पर निकाल रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हमें और आपको खुद को थोड़ी देर जो है वो बैठा के समझाने की ज़रूरत है। कई घरों में मैंने देखा है कि ऐसा भी माहौल होता है कि खुद तो फ्रेश और अच्छा खाना खाया जाता है, लेकिन हाउस हेल्प को खराब या शायद खराब होने वाला हो, इस तरह का

वो नरमी से बात करना, चीखना चिल्लाना नहीं, गलतियां हर एक से होती हैं, नजरअंदाज करना, प्यार से समझाना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। अगर हम अपने हाउस हेल्प को भी अपने साथ बिठा कर खाने की टेबल पर साथ में खाना खिलाते हैं तो कहीं

भी इसे चाहके ना चाहके अडॉप्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है एम्पैथी, यानी दूसरे के जज्बात को भी समझना। सोचिए कि वो अपने घर वालों से दूर हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। अगर हम उनसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके हालात समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि उनके अकेलेपन को हम महसूस करके दूर कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें कहने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब हम किसी के साथ काइंडनेस से पेश आते हैं तो वो भी पॉजिटिव फील करता है और अपने काम में और ज्यादा डेडिकेशन लेकर आता है। इससे ना सिर्फ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि घर का एनवायरमेंट भी पीसफुल बन जाता है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने हाउस हेल्प के साथ मोहब्बत और रहमदिली से पेश आए तो ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाता है। रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस और पोलाइटली बात करना, ये हर एक इंसान का बुनियादी हक है, चाहे बड़ा हो या छोटा, शायद आपसे ताकतवर, शायद आपसे कमजोर, फाइनेंशियली आपसे स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली आपसे वीक। लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें हर इंसान की फंडामेंटल राइट है और हमें और आपको उस शख्स को उस राइट से डिप्राइव रखने का कोई भी हक नहीं बनता। दोस्तों, याद रखिए कि असल खुशी जो है वो दूसरों की खुशी में तलाश करने में है। कोशिश कीजिए कि अपने असल सुकून को, अपने असल खुशी को दूसरों की खुशियों के साथ भी जोड़कर देखा जाए। आज मैं आपको सिर्फ यही इस थॉटफुल क्वेश्चन, इस थॉटफुल पॉइंट पर छोड़ रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। जब नेक्स्ट टाइम आपसे मेरी बात होगी तो मुझे बताइएगा कि कितना डीपली आप इस टॉपिक को सोच पाए, समझ पाए। कहने को वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी कोशिश है कि आज उस पॉइंट को लेकर आया जाए जिस पॉइंट को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं या फिर इस पर बात ही नहीं करना चाहते। इस टॉपिक को जब भी वक्त मिले, थोड़ी देर के लिए रात में सही मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त या जब भी आपको मौका मिलता है, सोचिएगा कि जो आपसे जूनियर हैं, जो आपके मातहत हैं, उनके साथ आपका किस तरह का रवैया है। और अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है तो अपनी पीठ थपथपाइएगा, और अगर उतना पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता है तो कोशिश कल से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी सी कोशिश बड़ी तब्दीली लेकर आती है। मुझे नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी एफर अमीता और इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर
4: आप सुन रहे हैं
5: द सुपर किड्स

0: यस हमारे सुपर किड्स, क्या हाल चाल है? वेल जनाब, हाल चाल मुझे लगता है बड़े कमाल के हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आज 25th ऑफ मे है. कल से ईद हॉलीडेज बिगिन है, और कल भी मेरी कुछ बच्चों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो समर वेकेशंस भी शुरू हो गए, सो इट्स लाइक फुल ये हफ्ता छुट्टियों वाला है. तो छुट्टियों वाले हफ्ते में क्या करने वाले हो, क्या माहौल है, ईद की कितनी प्रिपरेशन की, ये सारी बातें आज हमारी होने वाली है सुपर किड्स शो पर. और अगर आप मुझे सुन रहे हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, आप हमें सीधा मैसेज करें 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, या फ़ोन भी मिला सकते हैं 443-443-77 पर. और आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे आपके टाइम और आपके स्पेस को लेकर. अभी हमारे साथ कोई जुड़ रहा है, आइए जरा इनसे बात कर ली जाए. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, कौन जुड़ा हमारे साथ? मासूमे. माशाल्लाह, हाउ आर यू? हाँ जी मासूमे, क्या कह रहे हो आप?
1: आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बड़ी मजे में हूँ, और आपकी आवाज सुन के तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ.
1: So,
0: oh, that's so sweet, Masume. You know, it's a very, very beautiful habit. आप जिसते प्यार से compliment देते हो ना, ये हर कोई नहीं कर पाता. So, it's always a pleasure talking to you. So, Masume, ये बता दो, अभी क्या चल रहा है? छुट्टी चल रही है, छुट्टी की प्लानिंग चल रही है, स्कूल से लौट रहे हो, क्या हो क्या रहा है?
1: अभी स्कूल से आ रही हूँ घर.
0: हाँ जी.
1: लेकिन कल से छुट्टी है.
0: अरे वाह, ये तो
1: था.
0: हाय हाय, मतलब अब तो फुल एक्साइटेड हो गए. हाँ जी, तो ये तो बता दो सबसे पहले, आज का दिन तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा गुजरा होगा, है ना?
1: बोल रहा आपको?
0: हाँ बताओ.
1: ईद मुबारक.
0: अरे आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक आपकी पूरी फैमिली को, क्या बात है. अच्छा मासूमे, अरे वाह, दैट्स सो स्वीट. ये तो बता दो कि अभी ईद की प्रिपरेशन हो गई आपकी? है?
1: केक बनाऊंगी.
0: केक बनाओगे? केक बुलाऊंगी, क्या बोल रहे हो?
1: बनाऊंगी.
0: केक बनाओगे? माशाल्लाह, आपको आता है केक बनाना?
1: आओ बाजी की थोड़ी मदद.
0: अच्छा, थोड़ी सी मदद कर लेती हैं. वेरी गुड वेरी गुड. तो क्या, कौन सा फ्लेवर बनाओगे?
1: स्ट्रॉबेरी.
0: ओए होए, स्ट्रॉबेरी पता है मुझे बहुत पसंद है. लेकिन सबको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं आती. हमारी कल बातें हो रही थी कुछ बच्चों से, उनका था कि नहीं मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद आती. खैर सबकी अपनी अपनी पसंद है.
1: हाँ, कोई बच्चे को मैंगो, हाँ कोई बच्चे को चॉकलेट.
0: हाँ जी, तो ठीक है, हम लोग स्ट्रॉबेरी वाले बच्चे हैं, है ना? अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया आप केक बनाओगे. और ईद जब आती है तो आप किस चीज का ज्यादा वेट करते हो? व्हाई आर सो एक्साइटेड?
1: मैं अपने दोस्त को कॉल करती हूं कभी कभी. ओह, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं अपनी दोस्त को कॉल कर रहा हूं, मैं कुछ प्लान करने जा
0: रही हूं. हां, तो ये दोस्त आपकी स्कूल में रहती है या फिर कंट्री के बाहर?
1: स्कूल में रहती है.
0: अच्छा, स्कूल
1: का
0: में.
1: नंबर है.
0: अच्छा अच्छा, तो आप उनको स्कूल के नंबर, ओके, आप वैसे कॉल करते हो. तो फिर आप उनसे मिलने की प्लानिंग बना रहे हो? साथ में ईद करेंगे, दैट इज रियली नाइस यार. तो फिर ईद, ईद में चलो ये तो हमें पता है कि अपनी दोस्त को कॉल करोगी, केक भी बनाओगी. कोई एक ऐसी चीज जिसको आपको लगता है कि भाई ईद अगर आई तो ये होना चाहिए, तो क्या हो सकता है?
1: कहीं बाहर जाना है.
0: ये हुई ना बात. बाहर जाना, तो अभी इसकी प्लानिंग हो रही होगी कि हो गई है? अच्छा जी. और ईद में जैसे कोई अंकल आंटी होते हैं, मामू होते हैं, चाचू होते हैं, ऐसा कोई है जिनसे आपको मिलने का हमेशा इंतजार रहता है? हाँ जी हाँ जी.
1: वो मेरे चाचा
0: है. वेरी गुड. तो आपको उनसे मिलके बड़ा मजा आता है?
1: जी.
0: एंड व्हाट अबाउट ईदी? ईदी सबसे ज्यादा कौन देता है? हाँ जी,
1: बाबा की फ्रेंड.
0: अच्छा, बाबा की फ्रेंड देते हैं. That is sweet. वैसे मेरे साथ ये होता था ना कि मेरी, मैंने बहुत पहले बताया हुआ है और कई बार इनफैक्ट मैंने जिक्र किया है, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी एक फ्रेंड थी शबाना, उनकी मम्मी से मुझे ईद पर हमेशा, चाहे ईद उल अदा हो या फिर ईद उल फितर हो, उसमें मुझे सिवैयाँ मिलती थी क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता था मीठा खाने में, एंड ईदी भी उनकी तरफ से हमेशा मिलती थी, तो वो मेरे पापा से भी ज़्यादा वही देती थी. सो यस, ये सीक्रेट देखो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, दैट इज सो स्वीट. तो आपको सिवैया खाना अच्छा लगता है?
1: और नॉर्मल डेज पर भी कभी कभी बनाती है, स्वीट रहता है इसलिए मुझे पसंद है.
0: ओह, तो आप कैसी वाली सिवैया खाती हो, लाइक दूध वाली या ड्राई वाली?
1: दूध वाली.
0: मैं भी दूध वाली. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा ये तो बताओ मासूमे, आज हम बात करने वाले ना अपना जो टाइम और स्पेस होता है ना, मतलब बच्चों के हिसाब से उनकी भी लिमिटेशन, उनकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपका कोई फ्रेंड बात कर रहा है तो आप थोड़ा बोर हो रहे हो, या फिर किसी बड़े ने आपसे बात की आप बोर हो रहे हो, तो फिर आप उस कॉन्वर्सेशन से कैसे हटते हो? आप क्या बोलते हो कि बस अभी बाद में बात करेंगे, या फिर आप बोलते हो कि, या फिर आप पूरी बातें सुन रहे होते हो, आप क्या करते हो?
1: पूरी बातें
0: सुनते. हाय, और बोर भी हो रहे होते हो तो भी सुन रहे होते हो?
1: नहीं, मैं कभी, अगर मुझे बाद में नहीं कर रहा तो सुन
0: ये बिल्कुल डिफरेंट बच्चा है, बट गुड गुड कि एटलीस्ट आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो. लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं बस ये जो बातें हो रही है मेरा दिल नहीं कर रहा सुनने का, कभी ऐसा कोई सीन आया? बहुत ही ऑनेस्ट चीज आपने बोली. तो आप इग्नोर करती हो, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि कुछ बोलते हो या चले जाते हो, क्या करते हो उस टाइम पे? हाउ यू इग्नोर?
1: मैं बोल रही हूँ नहीं करो.
0: बेसिकली मैम को बोल देते हैं. वेरी गुड मासूमे, आई रियली लाइक इट. एक्चुअली आज जब मैं ये टॉपिक ले रही थी कि हर बच्चे को ना, जैसे कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हैं, अक्सर मेरे साथ ये होता था कि मेरी एक आंटी थी, वो आती थी और हमेशा पूछती थी कौन सी क्लास, कौन सी क्लास, कौन सा एग्ज़ाम चल रहा है, और उस पर ना खूब सारी बातें करती थी. आई अंडरस्टैंड कि उनको भी जानना होता था, एंड मैं हमेशा उनको याद रखती हूँ क्योंकि वो बहुत बहुत सवाल पूछती थी. तो मुझे ना उस टाइम बनता नहीं था कि मैं कैसे उनको बोल के भाग जाऊँ कि बस आंटी मुझे अब नहीं बात करनी. सो ये सिचुएशंस ना हर बच्चे की, हर किसी की लाइफ में आती है. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज हम आपसे, आप लोगों से पूछें कि आप लोग क्या करते हो जब ऐसा कुछ होता है. तो दिस अ वेरी गुड थिंग यू सेड कि जस्ट इग्नोर इट, ठीक है? सो ये एक चीज़ है. सारे बच्चा पार्टी को हम कहेंगे कि अगर अगर अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन से परेशान हो रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि बस यार अब ये बात नहीं सुननी, या तो आप वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करें, और नहीं तो जैसा मासूमे ने कहा, जस्ट इग्नोर, क्योंकि आपका टाइम, आपका स्पेस बहुत ज़रूरी है. सो मासूमे, टेल मी समथिंग, यहाँ पर कुछ मज़े के पजल्स हैं, यू वॉन्ट टू प्ले? ओके, सो आपसे कुछ मैं सवाल पूछूंगी और एक मिनट का टाइम दूंगी, आपको ऑप्शंस भी दूंगी और फिर आप चूज करना जवाब. ओके ठीक है. तो मासूमे एक बार हमें अपनी एज बताओगे? 8 ईयर्स की है, माशाल्लाह. तो फिर तो आप ये सारे ही मेरे पजल सॉल्व कर सकते हैं. चले मैं आपसे पूछना शुरू करती हूँ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, टेल मी, what has to be broken before you can use it? Okay, your option A is a toy, option B an egg, option C is pencil.
1: Egg.
0: Okay.

0: Okay, very good. Second question. I am tall when I am young and short when I am old. I glow in the dark. What am I? Flashlight, candle, tree.
1: Second one.
0: Okay, kya bol rahe hain aap?
1: Second one,
0: candle. Okay, very good. Third one is, I am full of holes, but I can still hold lots of water. What am I? Save, sponge, ya phir net?
1: Sponge.
0: Okay, you did a good job. और सारे सवालों के आपने सही जवाब दिए. आपने 3 का स्कोर कर लिया है इन 1 मिनट, विच इज वेरी नाइस मासूमे. थैंक यू सो मच मासूमे. सो मासूमे, अब तो ईद हॉलीडेज हो जाएंगे, फिर आपकी मेरी मुलाकात अब होगी अगले संडे. तो इतने दिन तक आप मुझसे बात नहीं कर पाओगी. कोई मैसेज देना चाहोगी सबको और मुझे भी?
1: जी.
0: बताएं.
1: सब लोग अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो ईद हॉलीडे से.
0: oh.
1: और सब लोग को ईद मुबारक.
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच मासूमे. आपको भी खैर मुबारक. और मासूमे ने पूरे हमारे एंटायर सुपर किड्स को ईद मुबारक कहा है, तो उन सब की तरफ से भी आपको खैर मुबारक. ठीक है, एंड एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर ईद, और फिर अपन संडे को मिलते हैं मासूमे. ओके
1: ठीक है.
0: ओके, अल्लाह हाफिज. So that was मासूमे. बड़े प्यार से उन्होंने बातें की और बताया कि भाई ईद के लिए एक्साइटमेंट उनकी बरकरार है. अभी कोई और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए जरा इनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन आया हमारे पास?
2: हुदा.
0: हुदा आई है. हुदा कैसी है? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ. और बस आप लोग के कॉल आते हैं तो मेरे भी चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है. सो हुदा, बताए स्कूल से लौट रही है या घर आ चुकी है या क्या सीन है?
2: जा रही हूँ अभी घर को.
0: अच्छा, घर को जा रही है. सो आज का दिन तो मजेदार गुजरा होगा, कल से तो छुट्टियाँ हैं.
2: हाँ.
0: ओ भाई साहब, सो क्या क्या क्या सिचुएशन है, क्या तैयारियां है ईद की? हाँ, ईद की कोई? हाँ बताओ बताओ.
2: मैं तो बहुत ज्यादा शॉपिंग करने वाली
0: हूँ. ओहो. तो क्या क्या खरीदने वाले हो?
2: मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा चीजें खरीद रही हूँ.
0: आह, दैट्स स्वीट. तो आप घर डेकोरेट करना पसंद करते हैं?
2: हाँ.
0: ओके, सो कुछ कुछ बताओ, कैसे करते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा आइडिया अमिता को भी दे दो. हाँ.
2: मैं कभी कभी, लाइक पता है, हम कभी कभी पेपर से लैंप बनाते हैं.
0: हाँ. एंड
2: मैं कभी कभी लैंप.
0: हाँ, लैंप, समझ गई मैं, लैंप. हाँ, फिर
2: इसके बाद मैं कभी कभी जब भी मैं बोर होती हूँ, मैं ना पेपर से, लाइक मैं पेपर से वो फैन बनाते हैं ना.
0: हाँ,
2: उसको फोटो, तो उसको जब भी मैं बोर होती हूँ, मुझे गर्मी लगती है. हाँ. तो मैं मना के उसको करती हूँ मेरे फेस में.
0: अच्छा. ओके, और क्या करते हो? तो ईद में मुझे पता है आप लैम्प बनाते हो, उसके बाद आप कुछ ऐसे झालरे भी बनाते हो, फूल वगैरह बना के कुछ आर्ट बनाते हो, कुछ ऐसी चीजें करते हो, लाइट्स वगैरह. हाँ. तो अच्छा बताओ, जब आप शॉपिंग करने जाओगी तो आपके माइंड में सबसे ज्यादा कौन सी चीज डेकोरेशन की खरीदने की है? लाइक लाइट्स खरीदने की है या क्राफ्ट के आइटम्स, क्या दिमाग में चल रहा है?
2: दोनों.
0: हाँ. दोनों. That's so sweet, यार. तो मतलब ये बच्चा फुल ऑन अपना घर सजाने वाला है. सो गुड लक विद दैट. ओके, एंड मुझे बताओ हुदा कि अभी ईद में डेकोरेशन के अलावा और कौन सी चीज है यू लुक फॉरवर्ड कि हाँ भाई ईद आ रही है तो मुझे अब बस मजा आने वाला है बिकॉज मैं किसी खास से मिलने वाली हूँ, या फिर ईदी, या फिर नए स्टाइल में ड्रेसअप होना, क्या आपको बहुत अच्छा लगता है?
2: मुझे ईदी लेना पसंद है. और जैसे ईद में बहुत ज्यादा अच्छे से खाना बनाते हैं तो मम्मा को मैं हेल्प करती हूँ, और कभी कभी मम्मा को बोलती हूँ कि आप ये बना सकते क्या, ये बना सकते क्या.
0: वाओ वाओ,

0: तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस के ये आइडियाज आपको कैसे आते हैं?
1: कभी कभी मैं यूट्यूब पे देख ली थी, कभी कभी हम पहले बना सकते थे, कभी कभी मैं
0: जब ईद मौका आता ना ईद का, तो कौन सी चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है खाने में?
1: चिकन पॉकेट.
0: ओ चिकन पॉकेट, दैट इज नाइस. हाँ
1: हाँ, क्योंकि वो ब्रेड लेते हैं उसको अंदर से लेके उसको
0: जूनियर शेफ हमारे साथ है, सारी पूरी रेसिपी बता दिया आपने. अच्छा मैं क्योंकि चिकन नहीं खा पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं चिकन की जगह पनीर डाल लूंगी, ठीक है, एंड फिर मैं पनीर पॉकेट बना लूंगी, क्या बोलती हो, सही रहेगा ना? कोई नहीं कोई नहीं. अच्छा ये तो बता दो, ईदी सबसे ज्यादा कौन देता है आपको?
1: मेरे मामा, मेरे मम्मा और मेरे पापा.
0: ओ माशाल्लाह, दैट्स सो नाइस यार. सो अभी सबसे ज्यादा ईदी मिलने की रेडी हो चुकी है हमारी हुदा, है ना, अब यहाँ पर. अच्छा ईदी जब आपको मिल जाएगी, ईद जैसे अब खत्म हो रही है डे वन, तो सबसे पहली चीज जो आपका ईदी में आपको पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल किस चीज में करोगे?
1: मैं
0: क्या करेंगे, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई.
1: मैं वो मनी को सेव करूंगी.
0: अरे सेव करने वाला बच्चा है, चलें चलें, गुड लक, जरूर सेव करें. और मैं चाहती हूँ कि आपकी ईदी में ना और ज्यादा इजाफा हो, ये पैसे डबल ट्रिपल चौबल होते जाए, ठीक है? अच्छा हुदा, हम ना आज बात कर रहे हैं अपने टाइम और स्पेस की, और अक्सर बच्चा पार्टी के साथ यही होता है कि जब बड़ों के बीच फंस जाते हैं बातों में या फिर कभी दोस्तों के बीच, तो हम निकल नहीं पाते हैं ना, हमको एकदम से कहना होता है कि हम जा रहे हैं, हमको अब बात नहीं करनी या अब हो गया, तो वो हम कह नहीं पाते कई बार. तो ऐसी कोई सिचुएशन कभी हुई है आपके साथ? लाइक क्या हुई, थोड़ा बताओगे, कुछ याद आ रहा है? हुदा
1: मैं फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ, इसके बाद मुझे मगरिब में जाना रहता, लाइक घर के अंदर, क्योंकि मेरे अब्बू बोलते हैं कि मगरिब में शैतान आता है बाहर, तो आप नहीं खेल सकते. तो मैं शाम में जब आती है ना, अभी ना एक दिन मेरे फ्रेंड्स कुछ तो बोल रहे थे मुझे मैसेज, तो मैं बोल रही थी कि सॉरी गाइस आई हैव टू गो नाउ, बाय बोल के तो जाती हूँ घर को.
0: अच्छा तो आप बाय बोल देते हो, कोई फिर आपको रोकता नहीं है?
1: हाँ,
0: तो आपको क्या फील होता है, लाइक ऐसे बाय बोल के जाना, इट्स फाइन, इज इट गुड?
1: नहीं मुझे तो नहीं लगता, तो उनको सॉरी बोलती हूँ, आई कैन लिसन टू
0: टुमारो, आई विल. ओह दैट्स सो नाइस हुदा, आई एम रियली लाइक हैट्स ऑफ टू यू. मतलब आप ये जाहिर कर देते हो कि देखो भाई सॉरी अभी बात नहीं कर सकते हैं, अब मुझे जाना होगा. सो यू आर ऑल्सो कीपिंग देयर हार्ट, और आप अपने आप को यू नो एक अच्छे जगह पे भी रख रहे हो कि भाई देखो मुझे एक रूल को फॉलो करना है. दैट दिस ऑनेस्टी, आई टेल यू, ये सुपर किड्स हमको लाइफ में यही चाहिए होती है. सो हुदा यू आर रियली डूइंग अ गुड जॉब एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू.
1: थैंक यू.
0: यस सो हुदा, ये तो आपने अच्छा खासा मैसेज दे दिया हमारे सारे बच्चा पार्टी को. अब ये बता दो यहाँ पर क्विज खेलने वाले हो?
1: जी जरूर.
0: तो हम शुरुआत करेंगे आपसे, और आपकी थोड़ी एज हमें बताएंगे?
1: जी, 7 years.
0: 7 years का प्यारा बच्चा है हमारे साथ, ठीक है. तो हम थोड़े एनिमल वाले आपसे सवाल पूछ लेते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप जरूर इसको क्रैक कर पाएंगे. अभी तक हाईएस्ट स्कोर 3 का है. ओके ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई हैव अ लॉन्ग नेक एंड माई हेड इज इन द क्लाउड. आई हैव स्पॉट्स ऑल ओवर, व्हाट एम आई? योर ऑप्शंस, लेपर्ड, जिराफ, ऑस्ट्रिच.
1: जिराफ.
0: वेरी नाइस. सेकेंड वन, I am the only mammal that can truly fly. I sleep upside down. What am I? Bat, owl, butterfly.
1: Butterfly?
0: No, butterfly, no. Mammal. Mammal.
1: Bat.
0: Yes, exactly. Okay, another question. I have a big trunk but no suitcase.

0: I am the biggest animal on land. Hippo, rhino, elephant. Come on.
1: Elephant.
0: Absolutely right. I have black and white stripes and I look like a horse. What am I? Tiger, zebra, skunk.
1: Zebra.
0: Absolutely. और आपने 4 का स्कोर किया है. So congratulations. Now अभी का ये हाईएस्ट स्कोर है. So हुदा ये बता दो, अब जाने से पहले हम सबको क्या मैसेज दोगी, क्योंकि हफ्ते भर के बाद अब अपन मिलेंगे. यस बताए. हाँ हुदा.
1: Enjoy your holidays and Eid. And don't be sad in Eid. Always be happy.
0: That is so sweet and so adorable message. So Huda, thank you अपना time देने के लिए. आप भी ईद enjoy करना और जब कुछ recipe वगैरह बनाओ तो next time बताना कि आपने क्या क्या किया. ठीक है
1: जी, जरूर.
0: चलें, ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: That is really sweet. मतलब घर पर सजेशन देना मम्मा को नई नई डिशेस बनाने के लिए, नई नई डिशेस बनाना, और ये फेस्टिविटीज के टाइम पे यही सबसे मजे की चीज़ लगती है कि नहीं. सो बच्चा पार्टी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर. आई रिपीट द नंबर 443-443-77. या आप हमें मैसेज करें 666-22107 पर, 666-22107. एंड बताएं हमें अपने ईद के प्रेपरेशंस, बता सकते हैं कौन सी चीज़ आपको ईद में एक्साइट करती. यू कैन टॉक अबाउट दैट. प्लस आप हमें ये भी बताएं कि जब सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आती हैं कि आप थोड़ा बोर हो रहे हो या आपको लग रहा है आपका दिल नहीं लग रहा है, ऐसी बातों में फंस गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, कैसे उस कॉन्वर्सेशन से हटते हो. ठीक है, तो ये आपको हमें बताना है. 666-22107 हमारा नंबर है, इस पर भी आप हहमें मैसेज कर सकते हो. और कॉल इन नंबर 443-443-77. सो सुपर किड्स, टाइम है एक छोटे से ब्रेक का. सो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और अपनी बातों कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से दिल.

0: Yes, welcome once again, सारे सुपर किड्स. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. और अभी कौन सा सुपर किड है जो काफी लंबे इंतजार के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम. हाय स्वीट हार्ट, ये अमायरा की आवाज है क्या? बस पता चल जाता है, अमायरा इतने प्यार से जब अस्सलाम वालेकुम बोलती हैं तो हमें लगता है जानते हैं इस आवाज को. कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? आप हमारी वन ऑफ द रेगुलर लिसनर हैं, हर दिन आपके कॉल आते हैं. तो आप ये बता दें, अभी ईद की क्या तैयारी है? अमायरा थोड़ा सा तेज बोलिए. ओ साहब, शरारा आया हुआ है आपका, माशाल्लाह. तो क्या, कैसा शरारा है? हाँ जी, अच्छा. और क्या है, दूसरा क्या है?
1: मेरा भाई आ गया.
0: अरे वाह, तो ये तो बड़ी मजे की बात है. मेरे ख्याल से आपने बताया था आपके दो बड़े भाई हैं, राइट?
1: जी, तो दो,
0: अच्छा, उनमें से एक आए हैं और दूसरे भाई आने वाले हैं?
1: नहीं, दूसरा भाई पढ़ रहे
0: हैं. अच्छा, वो पढ़ रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगे. कोई नहीं, चलिए, एक भैया तो आ गए. और आपकी तो वेकेशन है. अब बताएं तो ये शरारे का रंग क्या है?
1: येलो और वाइट.
0: और उसमें क्या डिजाइन है कुछ, की प्लेन है? फ्लावर्स. अरे बाप रे, सो हमारा बड़ी ब्यूटीफुल लगने वाली है ईद में.
1: जी, मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी.
0: क्या बात है, ईद के पहले दिन. तो बिल्कुल, हमसे भी ना तस्वीरें वगैरह शेयर करना, ठीक है?
1: जी.
0: जब मैं ईद के बाद आऊंगी ना फिर से संडे को, तब मुझे बताना, है ना? और व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजना, बताना कि हाँ अमिता, देखो मैं ऐसे तैयार हुई थी. ठीक है, तो उसका लिंक भी आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना, ओके?
1: हाँ.
0: आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है ना? यहाँ पर है ना, 666-22107.
1: एक मिनट.
0: ओके, आप लिख लीजिए, ये हमारे FM का व्हाट्सएप नंबर है. ओके, कैन आई से? ओके, 666-22-107. तो अब आप इस पे
1: 66-22-107.
0: एब्सोल्युटली. तो आपने यही करना है कि आपने अपना लिंक वगैरह शेयर करना है हमसे, फिर डेफिनेटली मैं उसे लाइक करके फॉलो करूंगी. ओके,
1: मुझे क्वेश्चन है.
0: हाँ पूछो ना.
1: मेरा प्रोग्राम कब आएगा?
0: आपका प्रोग्राम आपको हम जरूर जल्दी से बता देंगे. मेरे ख्याल से आपका शो सफा के साथ हुआ है, है ना?
1: जी.
0: ठीक है, तो मैं
1: एकदम करेक्ट.
0: ठीक है, तो मैं सफा को बोलूंगी कि वो आपको मैसेज करके बताएं कि आपका प्रोग्राम कब आएगा. ठीक है,
1: तो फिर मैं भी आऊंगी देखने.
0: हाय हाय, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन भी पाएंगी रेडियो पर, और फिर आपका वीडियो अगर शूट है तो वो भी होगा, है कि नहीं?
1: हाँ.
0: अच्छा मायरा, ये तो बता दो, अभी तो सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती है?
1: हुँ?
0: सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है ईद पे आपको?
1: पापा.
0: पापा, हाय हाय.

0: बहुत सारी माशाल्लाह, ऐसी आपकी ईदी में एकदम वो कहते हैं ना बढ़ोतरी होती रहे। तो ये तो बताओ आपकी ईदी कैसे यूज करने वाले हो इस बार?
1: कुछ कुछ
0: और
1: क्या
0: और रे भाई साहब, वेरी गुड जी, तो बड़ी अच्छी चॉइस है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली कभी वो टाइम आएगा जब मैं आपके घर आऊंगी, फिर मैं आपकी स्टेशनरीज देखने वाली हूँ। तो आप स्टेशनरीज कैसे, मतलब डिजाइनर स्टेशनरीज की शौकीन है या प्लेन स्टेशनरी जैसे आती है? ओहो, तो क्या ज्यादा पसंद आता है?
1: मामा ने अमेज़न से वो मिले, वो मंगवाए थे।
0: हाँ,
1: क्या बिच्छी का जो पंचर से ना, वो शेप वाले पंच जैसे, उसको अगर पेपर पर पंच करेंगे ना तो बहुत क्यूट क्यूट शेप्स आएंगे।
0: तो ये जो शेप्स आते हैं इनको फिर आउटलाइन इनकी कलर करते हो आप?
1: जी
0: नहीं पता, छोड़ देती हूँ। अच्छा ये तो बता दो, देखो ईद में तो सब आपको ईदी दे रहे हैं, आपके लिए ड्रेसेस आ रही हैं, फिर आप ईद में क्या करते हो? आप अपने बड़ों को कैसे विश करते हो, या फिर उनके लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाते हो, कुछ करते हो इस तरह का?
1: मैंने कभी, मम्मा कहती है कि अम्मा कुछ वो ईद से रिलेटेड कुछ बना दो, तो मैं बना देती हूँ।
0: हाँ, दैट्स अ गुड वन। तो आप कैसे, मतलब ऐसे कार्ड्स बनाते हो, ओपन कार्ड्स, या फिर ऐसे बस एक ड्राइंग बना के, एक पेंटिंग या स्केच ऐसा कुछ बना देते हो, क्या करते क्या हो?
1: बस एक ड्राइंग बना देती हूँ।
0: और वो ड्राइंग फिर आप सबको गिफ्ट करते हो?
1: ना, हम लोग घर पे लगाते हैं, या तो कुछ ड्राइंग बना के हम देती हूँ।
0: That is nice कि अपनी बनाई हुई चीज़ आप घर पे डेकोरेट करते हो। So Amira, that's really lovely. अब तो यार पूरी छुट्टियाँ हैं, मतलब मैं तो कहूँगी कि फिर धूम मचा देना, खूब इंजॉय करना, खाना पीना सोना, क्या बोलते हो? अच्छा Amira सुनो, तो आज हम ना बात कर रहे थे, हमारा जो पर्सनल टाइम और स्पेस होता है ना, बच्चे इस चीज़ को कितना समझते हैं ये तो अभी हमें थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन कभी आती है कि जब कोई आपसे खूब बात कर रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि बस अब मन नहीं कर रहा बात करने का, या मुझे पढ़ना है, या मुझे सोना है, या अभी बस मतलब मुझे बात नहीं सुननी, ऐसा कभी सिचुएशन आई है? हाँ हाँ, अच्छा इस तरह नहीं हुआ है? अच्छा इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अच्छा तो जब कभी कभी ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि अभी मुझे बात नहीं सुननी, या फिर आप बाय बोल देते हो, आप क्या करते हो? अच्छा अभी कोई बुला रहा है? अच्छा अरबी क्लास है, ठीक है ठीक है, फिर आप अरबी क्लास पूरी कर लें, फिर मैं आपके साथ फिर बाद में गेम खेलती हूँ, ठीक है ना?
1: हाँ।
0: चलिए जाने से पहले कोई मैसेज देते जाएंगे?
1: हाँ,
0: हाँ बोल दो।
1: Be strong and healthy.
0: Okay, thank you and good luck for your classes.
1: Okay.
0: Okay, Allah Hafiz. तो ये थी Amira, उन्होंने कहा भाई बी स्ट्रॉन्ग हेल्दी, है ना? तो अभी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छा खाना ज़रूरी है, तो अच्छा खाना खाएं, फिर स्ट्रॉन्ग बने और फिर अपनी हेल्थ को एंजॉय करें। सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम Amira, एंड आई होप कि हमारे सारे लिसनर्स इनको सुन रहे हैं और ये बच्चे सच में ना अपनी बाउंड्रीज, अपने लिमिटेशंस भी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारी कुछ बच्चों से बात हुई तो बड़े प्यार से उन्होंने यू नो ऑनेस्टली बताया कि अगर वो किसी कॉन्वर्सेशन में कम्फर्टेबल नहीं है तो क्या करते हैं, बाय बोलते हैं, पर माजरत चाहते हैं, ये कह देते हैं कि भाई सॉरी बट हमें जाना होगा, एंड देन इग्नोर भी करते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप जितना ऑनेस्ट रहोगे ना अपने हर रिलेशन में, उतना आप अपने स्पेस और अपने टाइम और अपनी बाउंड्रीज को बचा पाओगे। सो यस बच्चा पार्टी, आप हमें कॉल करें 4434377 पर और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हमारी वापस से एंट्री होगी और अपनी बातों कंटिन्यू करेंगे, ईद सेलिब्रेशंस की क्या तैयारी है वो सब आप हमसे शेयर कर सकते हैं, नंबर 6662107 इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: फन म्यूजिक और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद
1: ईद मुबारक
2: और होगी आपकी रिक्वेस्ट फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज
0: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब तो मिस मत कीजिए जश्न ईद ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: महकती हुई सुबह घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार ईद की मिठास घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
3: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं ईद के रंग हजार हैं मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए पेश है खास शो घर घर ईद आपकी फरमाइश आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुना हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए तो हो जाइए तैयार सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद

Yes, welcome once again the Super Kiss Show पर. Well, मैं हूँ आपकी एफ और अमिता. और अभी बड़ी मजे मजे की बातें हो रही थी. हमारे सारे सुपर किड्स बता रहे थे कि भाई देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो स्पेस है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी कैसे बचाना है. वेल, अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं. कभी कुछ लोग होते हैं जिनकी स्टोरीज कभी ख़त्म ही नहीं हो रही होती हैं एंड यू फील लाइक कि यार बस करो, अब हमें जाना है. या फिर आप गेम खेल रहे होते हैं, कोई एक दोस्त होता है जो आपको गेम छोड़ कर जाने ही नहीं देना चाहता है कि नहीं भाई आपने नहीं जाना, आपको हमारे साथ खेलना है, एंड यू आर स्टिल टायर्ड. और या फिर घर में कोई आंटी आ गई होती है जो बार बार पूछ रही होती हैं एग्ज़ाम का क्या हुआ, एग्ज़ाम के मैथ्स बताओ, एग्ज़ाम के मार्क्स बताओ, मैथ्स का क्या सीन है. मतलब अगर मैं लिस्ट गिनाऊँ ना बच्चा पार्टी, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें लगता है कि भाई हमारा टाइम, हमारा स्पेस सब वेस्ट हो रहा है. हमको मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमको अपनी एनर्जी बचानी पड़ेगी, अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना पड़ेगा और अपना जो ये ऑकवर्ड जोन है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, यही आज का सवाल है. और हमारे बच्चा पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी दिए एंड लिटरली टोल्ड कि भाई हम तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या फिर हम इजीली उन्हें बाय करने की कोशिश करते हैं. सो इस बारे में हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे एंड डेफिनेटली देखते हैं कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे दूसरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कॉल नहीं किया एंड दे जस्ट वॉन्ट टू शेयर देयर व्यूज़, वो क्या सोचते हैं. वेल, जयान का मैसेज है, वो कहते हैं कि अमिता मेरे साथ अक्सर होता है कि ना मैं बातों में फंस जाता हूँ, स्पेशली मेरे घर के जितने भी एल्डर्स हैं उनकी, तो मैं क्या करता हूँ. मैं सिंपली बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है या फुटबॉल प्रैक्टिस पे जाना है एंड सॉरी बोल के निकल जाता हूँ. वाओ जयान, नॉट बैड. मेन पता क्या जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्ट रहो एंड दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी दायरे और अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखो. कि आपको समझ में आया कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. अच्छा, यहाँ पर मुझे हमद का मैसेज है और हमद कहते हैं कि अमिता मैं बोल देता हूँ कि मुझे ना दूध पीने जाना है, मम्मी बुला रही हैं, स्पेशली जब मेरे फ्रेंड्स मुझे घर नहीं जाने देते. हमद, ये ना आपकी जैसी सिचुएशन ना मेरी भी थी. जब मैं छोटी थी ना तो अक्सर ये होता था कि हम समर वेकेशंस में गेम खेल रहे होते थे और हमारा जो पूरा बच्चों का ग्रुप था वो जाने नहीं देता था बिकॉज यू नो एक कोई गेम चल रहा है बट यू आर टायर्ड क्योंकि बैक टू बैक गेम्स हो रहे हैं. तो मैं बोल देती थी कि मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं और वो करके मैं निकल जाती थी. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू सेव योर बाउंड्रीज एंड योर एनर्जी. अच्छा, आयशा क्या कहती है. आयशा इज सेइंग दैट कि मैं उनको सीधा बोलती हूँ कि मैं बाद में मिलती हूँ क्योंकि मुझे अपना होमवर्क करना है. ओके, सो दिस शोज कि हमारे जो बच्चा पार्टी है दे आर बीइंग नाइस, रूड नहीं है एंड गुड बाय भी कह रहे हैं. कई बार क्या होता है ना, आई लिटरली फील कि गुड बाय कहना आसान नहीं होता, बट इफ यू कैन डू दैट, अगर आप ना कहना सीख जाते हैं देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को ईजिली जी पाते हैं, है कि नहीं. अच्छा, अब उसके बाद यूसुफ का क्या कहना है. ही सेइंग कि अमिता मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी मैं स्ट्रेंजर्स से मिल लेता हूँ और कुछ स्ट्रेंजर्स मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मुझे हाय हेलो करना अच्छा लगता है, बट अगर कई बार वो ज़्यादा बात कर रहे होते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मम्मी अब ने मना किया है. यूसुफ, व्हाट वाज दैट. आप तो बिल्कुल अपने सेफ्टी गियर्स ऑन कर लेते हो. हाँ, वैसे मुझे लगता है कि जब आप किसी को नहीं जानते हो ना, सो मेक श्योर करो कि आप उनसे बात मत करो, बट अगर बात करनी पड़ जाए तो आप ये कोशिश करो कि आप किसी आसपास बड़े के साथ हो, यू नो, या फिर बात करने की कोशिश मत करो बिकॉज इट्स बेटर नॉट टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स. ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो जरूरत नहीं है, है कि नहीं. तो बच्चा पार्टी बता दो आप बेसिकली क्या सोचते हो कि जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो तब कैसे अपने आप को बचाते हो, हाउ यू वॉक ऑफ. ठीक है, तो ये जरूर आप मुझसे शेयर करें 6622107 पर, 6622107, या फिर फोन लगाए 4434377 पर. इनफैक्ट नेचर से भी ना हमको एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है, दैट इज यूकलिप्टस जो ट्री है वो भी क्या करता है कि जो उनकी ब्रांचेस होती है ना वो ऐसे ग्रो करता है अपने आप को, ऐसे

0: मतलब आगे बढ़ता है कि जो उसके नेबर्स के जितने भी ट्रीज हैं उनसे थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, ताकि उसकी ब्यूटी को कोई भी वो ना कर पाए, परेशान ना कर पाए, उसे ख़राब ना कर पाए. दिस इज़ वॉट एवरीबडी ट्राइज. सो हमें अपने बाउंड्रीज, अपने स्पेस पर ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है. और नेचर भी हमें यही एग्जाम्पल दे रहा है. एक सोचो, एक सिंपल सी बात है कि यूकलिप्टस जो ट्री है वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं. हाँ, वेल ऑन दिस नोट मैं कहूँगी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी बातें 666-22107 पर या फ़ोन मिलाए 443-443-77 पर. और अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं. बताएं कि हाउ यू सेव योर स्पेस. अभी हमारे साथ कोई जुड़ चुका है, आइए जरा इनसे बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ओ भाई साहब, हमारा फोन गूंज रहा है. कौन जुड़ा हमारे साथ?
1: जोहा.
0: हाय जोहा, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड.
0: सो नाइस. आई एम आल्सो गुड जोहा. इट्स सो नाइस टू हियर योर वॉइस. So Zoha, tell me, like school से अभी लौट आए हैं या फिर क्या सीन चल रहा है, या छुट्टियां ऑलरेडी ऑन हो चुकी है?
1: We are off.
0: You are off, like off from school?
1: Yes.
0: Oh, तो घर से सीधा कॉल आ रहा है. हाँ जी, तो कैसा गुजरा आज का दिन ये तो बता दो.
1: Good.
0: Good. और अब कल से छुट्टियां चालू है.
1: Yes.
0: So Zoha, what are your plans for Eid?
1: I don't have any plans yet.
0: Really? तो अभी तो हमें सारे बच्चों ने बताया कि वो क्या क्या करने वाले हैं. तो normally आप ईद में क्या करते हैं? What excites you about Eid? हाँ Zoha.
1: We go different places.
0: Uh-huh. And? और क्या करते हैं जोहा? डिफरेंट प्लेसेस मतलब फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं या फिर आउटिंग के लिए जाते हैं, क्या करते हैं?
1: आउटिंग.
0: ओहो, सो इज देयर एनी पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ आपको बड़ा मजा आता है या फिर रैंडमली कहीं चले जाते हैं? रैंडमली जाते हैं. ओके ओके. सो अभी कतर में कोई ऐसा स्पॉट है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि कटारा या फिर सुक वाकिफ या कॉर्निश? सुक वाकिफ. वेरी नाइस. तब ये बता दो कि ईद में ईदी सबसे ज्यादा कौन देता है? जोहा.
1: अम्मा.
0: जोहा इतना सोच सोच के बता रही है. जोहा क्या हुआ? ओके, सो मामा आपको ईदी देती है. ये तो बता दो, अभी ईदी जब मिलेगी आपको तो उसको सबसे पहले खर्च कैसे करोगे? सेव करोगे या फिर कोई स्पेशल चीज खरीदोगे, क्या करोगे?
1: सेव.
0: हम्म, तो आप ईदी कभी खर्च नहीं करते सोहा?
1: आई डू.
0: यू डू? सो लाइक किस चीज पर?
1: टॉयज.
0: That's so interesting. So, आपको किस तरह के टॉयज पसंद है जोहा?
1: डॉल्स.
0: यू आर लाइक मी. सो लाइक डॉल्स. अब तक डॉल्स हैं आपके पास? कितनी डॉल्स हैं ये बताओ. चलो ये सवाल गलत है, अब तक डॉल्स हैं क्या? कितनी डॉल्स हैं आपके पास?
1: आई हैव मैनी डॉल्स.
0: मैनी मतलब कितनी? 10, 20, 50?
1: Like 15.
0: Wow, that's a good number. Oof. तो ये dolls के साथ like आप इसे सजा के रख देते हो या फिर जब भी free हो तो खेलते भी उनके साथ?
1: I do play with them when I'm free.
0: अच्छा जोहा ये बताओ, वैसे हर लड़कियों के साथ ये होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता था. मेरे घर में 5 dolls थी, ठीक है, और उनमें से 3 के नाम मैंने रखे थे, ठीक है. So आप मुझे बताओ, आप भी अपने dolls के नाम रखते हो?
1: Yes.
0: Okay. So, can you share any of the names that you did actually, जो आपने बन रखे हैं उनके?
1: Okay, Safa.
0: Okay, Safa and एक ही नाम रखा है?
1: Snow White.
0: Snow White. Wow, that's nice. और
1: Sapanzar.
0: Sapanzar. वाओ दैट्स अ डिफरेंट नेम. और ये आपकी डॉल कैसी दिखती है स्पंजर?
1: पिंक है.
0: हाँ
1: विद अ पर्पल ड्रेस.
0: वाओ जोहा दैट्स सो सो नाइस. इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. सो स्पंजर आपकी ये तीसरी डॉल है. और भी कुछ नाम रखे हैं आपने जोहा?
1: अल्फा.
0: हाय हाय मुझे तो मजे आ रहे हैं. अल्फा ओके. और यस जोहा फिनिश. ओके ओके. सो ये तो आपने दो तीन नाम बताए, मतलब 15 डॉल में से दो तीन नाम आपने रख दिए हैं एंड यू लाइक इट राइट?
1: यस.
0: ओके दैट्स अ गुड वन. तो चले हम बस यही दुआ करते हैं कि और भी ढेर सारी डॉल्स आपकी लाइफ में आए एंड यू एंजॉय इन एवरी स्टेज. सो जोहा आपकी एज क्या है?
1: 9.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह. सो 9 ईयर्स की जोहा, आर यू रेडी टू प्ले सम पजल्स?
1: Yeah.
0: Okay, तो अभी तक का हाईएस्ट स्कोर जो हुआ है ना वो 4 का हुआ है. एंड मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आई विल गिव यू ऑप्शंस और आप उसे चूज करना, ठीक है? 1 मिनट का टाइम होगा.
1: ओके
0: ओके. सो हियर वी गो. ध्यान से सुने. व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स बैक डाउन एंड योर ऑप्शंस आर एयरप्लेन, योर एज, रॉकेट.
1: एज.
0: Your age, very good. Okay, second question. What gets wetter the more it dries? Sponge, towel, hair?
1: Towel.
0: Arre bhai saab, very good. Okay, next. What belongs to you but everyone else uses it more than you? Shoes, your name, toys?
1: Toys.
0: No, it's not toys. Listen to the question. What belongs to you but everyone else uses it more? Shoes, your name, toys.
1: Name.
0: Very nice. Okay, last. What gets bigger the more you take away from it? Pizza, hole, sandcastle.
1: Can you repeat the question?
0: Yes. What gets bigger the more you take away from it? Pizza, hole, sandcastle.
1: Hole.
0: Absolutely right. So you scored 4. So ye second highest hai and you did a good job. So ab ye bata do ki in Eid ki chuttiyon mein kya kya karoge? Abhi plan to nahi kiya but socha hai kuch kya karungi? Main soungi, khaungi, doston ke sath ghumungi, khelungi, ha?
1: I will go different places and play with my friends.
0: Okay, so good luck with that. And जब संडे को मिलोगी तो मुझे जरूर बताना कि आपने क्या क्या किया ईद के वेकेशंस में, ठीक है?
1: Where is Safa?
0: Safa is on leave, तो वो अभी छुट्टियों के बाद आएंगी. Okay, फिर आपकी उनसे मुलाकात होगी. Okay, I'll say your hello to her. Okay.
1: Okay.
0: Okay, Zoha. So before you leave,
1: can you talk to my sister?
0: Oh, sure. Why not? Baat karai. Hello.
2: Hello.
0: Hi, Zoha ki sister. Kya naam hai aapka?
2: Ilha.
0: Phir se batai. Dear, what is? Okay. So ye to bata do. Kaise ho? Kya chal raha hai?
2: ठीक
0: हो. क्या एज है आपकी? माशाल्लाह 6 ईयर का प्यारा बच्चा है. अच्छा ये तो बता दो, अभी ईद आने वाली है, कौन सबसे ज्यादा ईदी मिलेगी, किससे मिलेगी, कौन देता है आपको ईदी सबसे ज्यादा?
2: पापा
0: देते हैं. माशाल्लाह दैट्स सो नाइस. तो अभी ईदी को आप सेव करने वाले हो इस बार या खर्च करने वाले हो? सेव करोगे, ठीक है ठीक है. और फिर ईद की नई ड्रेस हो गई आपकी, खरीद ली? अरे भाई साहब, तो क्या पहनने वाले हो? शरारा पहनने वाले हो या सलवार कमीज पहनोगे, क्या पहनोगे? फ्रॉक पहनेगा बच्चा, वेरी नाइस. मैंने भी एक लॉन्ग फ्रॉक खरीदी है, ठीक है, तो मैं भी ईद में पहनूंगी. ओके
2: ओके.
0: अच्छा ये बताओ, हमारे साथ गेम खेलोगे, पजल्स खेलना है? ओके तो मैं इजी इजी क्वेश्चन रखती हूँ आपके लिए, आप पहचानना, ठीक है? ओके सो हियर वी गो. अब आप ध्यान से सुनो. ओके आई कैरी माय हाउस ऑन माय बैक एंड आई मूव वेरी स्लोली, व्हाट एम आई? आपके ऑप्शंस है स्नेल, क्रैब, बैकपैक. अरे भाई साहब, वेरी गुड. ओके अब आप बताएं, आई हैव 8 लेग्स एंड आई स्पिन अ वेब टू कैच माई डिनर, व्हाट एम आई? एंट, स्पाइडर, ऑक्टोपस?
2: स्पाइडर.
0: अरे वेरी गुड, वेरी गुड. ओके नाउ टेल मी, आई एम ब्लैक एंड व्हाइट, आई लिव इन द कोल्ड स्नो, व्हाट एम आई? No, zebra. Listen, listen. I am black and white. I live in the cold snow. But I am a bird that cannot fly. Your options: panda, penguin, polar bear.
2: Penguin.
0: Very good. Very good. तो आपने 3 का स्कोर किया है. You scored 3. Congratulations. So, tell me, अभी जाने से पहले कोई मैसेज दोगे आप हमारे लिसनर्स को?
2: Yes.
0: Okay, so please say.
2: Never give up.
0: Oh, mashallah, never give up. ईशा आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें. So definitely, अब कोई भी never give up वाले पॉइंट पे आएगा तो हमेशा सोचेगा कि हमको आगे बढ़ना है, तो never, never, never give up. ठीक है ना? ओके ठीक है, तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए. ईद मुबारक आपको एडवांस में, इंजॉय करना. ओके
2: ईद मुबारक टू यू.
0: टू यू टू. अल्लाह हाफिज. तो ये हमारे क्यूट क्यूट से लिसनर्स थे जिन्होंने अपने दिल की बात हमसे शेयर की. ईद में, ईदी जब मिलेगी तो क्या करना है, कैसे सेव करना है, वो सब उन्होंने सोचा. क्या बात, दैट्स सो स्वीट. वेल हमें ईदी मिलती थी तो हम क्या करते थे? आई रियली हैव टू थिंक अगेन. हम सीधा जाते थे शॉप में, बहुत सारी चॉकलेट्स, बिस्किट्स और नमकीन के छोटे छोटे पाउचेस आते थे, और सम टाइम दो समोसे होते हैं ना, वो खरीद के ले आते थे. मतलब हम अपनी ईद को ऐसे मनाते थे, जब ईदी मिली तो खाने में खर्चा होना चाहिए. हाँ, उसमें से थोड़े बहुत अगर पैसे बच गए तो लकी है. बट यस, ये सेलिब्रेशंस ऐसे हैं ना कि हमेशा यादें छोड़ जाते हैं. तो बच्चा पार्टी खुल के एंजॉय करो, अपनी ईदी को चाहे सेव करो चाहे स्पेंड करो, अपनों के साथ इंजॉय करो. सो भर भर के और सारी दुआएं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ मैसेजेस की तरफ रुख करेंगे. देखते हैं कि हमारे लिसनर्स हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं. सो आज का सवाल बड़ा सिंपल है, आपने बताना है कि जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में फंस जाते हैं, कोई ऐसी बातचीत जो आपको अनकंफर्टेबल करती है या आप बोर हो रहे होते हैं, तो आप उस सिचुएशन से कैसे बच के निकलते हैं. ठीक है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, या फिर आप हमें कॉल करें 4434377 पर. ठीक है, और अभी के लिए इंजॉय योर डे, स्टे ट्यून टू FM 107, इंजॉय करें अगला गाना.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद RJ महवेश खान, 7 से 9 बजे सुबह मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाएं खुशियाँ FM 107 के साथ, दिल से देसी।
2: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
3: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: हज के दिन 9 ज़ुल्हिज्जा सन 1447 हिजरी के मुताबिक 26 मई को FM 107 पर सुबह 8 बजे से 11 बजे RJ सरवर मिर्जा के साथ होंगे एक मौज्जत मेहमान हज के खुसूसी प्रोग्राम के लिए, और दोपहर 12 बजे सैफुर रहमान अपने मेहमान के साथ FM 107 के स्टूडियो में होंगे और सपहर 3 बजे तक हज का खुसूसी प्रोग्राम होस्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक दिन की नेमतों का हकदार बनाए।
5: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स।

सो यस हमारे सारे सुपर किड्स क्या हाल चाल है क्या हाल चाल है. हाँ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज द सुपर किड्स शो हमारा बड़ा कमाल कर रहा है अब तक, क्योंकि अब हमारा शो एकदम अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया. आई कैन सी कि हमारे जितने भी जूनियर लिसनर्स हैं, हमारे सुपर हीरोज हैं, सुपर किड्स हैं, उन्होंने बड़ी मजे की बातें कही कि भाई देखो अगर कहीं किसी कॉन्वर्सेशन में हम फंस गए, अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, या तो आपका दोस्त ही हो जो आपको खेलना छोड़ मतलब कह रहा हो कि भाई खेल छोड़ के नहीं जाना है, आपको हमारे साथ ही खेलना चाहे कुछ हो जाए,

एग्जॉस्टेड और आपको लग रहा है यार कैसे कैसे इस कॉन्वर्सेशन से बाहर निकला जाए, कैसे बाहर जाया जाए और उसको आप दिल भी ना दुखे, ये सिचुएशन हो सकती है, कोई बड़ा हमें सवालों की एकदम वो ना गुत्थी में उलझा देता है, देयर सो मेनी थिंग्स. एंड आई कुड सी कि हमें जब कॉल्स आए तो हमारे लिसनर्स ने बड़े मज़े के जवाब दिए कि भाई हम सॉरी बोल के निकल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं या फिर कोई भी बहाना कर देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ बहाना करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम धीरे धीरे ना कहना सीखें, यानी कि अपना टाइम, अपनी स्पेस, अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सेफ करें और अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखें. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना यार कि अगर हमने बातें करना शुरू की हैं और हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इट्स बेटर टू फुट डाउन. ठीक है, आप सीधा बोलो भाई नहीं हो पा रहा. वेल, कुछ मैसेजेस हैं उनकी तरफ सीधा हम रुख करते हैं. सो मुस्तफ़ा का कहना है कि भाई जब भी मेरा फ्रेंड मुझे परेशान करता है ना, जब मेरे को मतलब नहीं खेलना और ज़बरदस्ती खींच रहा होता है, तो मैं कह देता हूँ देखो यार मेरे को ना ड्राइंग करने जाना है, मुझे ना होमवर्क मिला हुआ है, आई हैव टू जस्ट गो, और फिर मैं निकल जाता हूँ. आई थिंक मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं अपनी कॉलोनी के जो बच्चों की, क्योंकि तभी ये कह रहे हैं कि मैं घर जा सकता हूँ. वरना स्कूल का बच्चा होगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा. अच्छा, नौरा का कहना है मैं सिंपली बोल देती हूँ कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, पर क्या है ना कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं निकल जाती हूँ. ये बच्चे बड़े स्मार्ट है भाई, सारे सोल्यूशन हमारे सामने आ रहे हैं. ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी बात है. कई बार हम ही फंस जाते हैं और हम कहते हैं कि हाय हम कैसे इस कॉन्वर्सेशन से बाहर निकलें, किसी का दिल ना दुखे, ना कैसे बोले. देखो ऐसे बोलना है. यहाँ पर अहमद का मैसेज है, कहते हैं कि जब कोई स्ट्रेंजर मुझसे रास्ता पूछता है ना, तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ. मैं सीधा बोल देता हूँ कि आप ना गार्ड अंकल से पूछ लें या वो जो अंकल है उनसे पूछ लें. मैं जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है कि भाई स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी. वैसे अहमद, आई शुड से कि आपकी मम ने गलत नहीं कहा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे स्ट्रेंजर्स खराब होते हैं, बट कई बार अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या. इसलिए बेटर जिन्हें आप नहीं जानते उनसे बात ना करें. एंड इज अ वेरी गुड वे कि बात नहीं करना है और सीधा उनको आगे बढ़ा देना है कि आप उनसे बात कर लें या गार्ड से बात कर लें. वेरी नाइस. यहाँ ज़ैनब का क्या कहना है, वो कहती है कि अगर पार्क में मैं जब जाती हूँ और मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती हूँ, तो मैं सीधा अपनी फैमिली की तरफ निकल जाती हूँ. मतलब जहाँ मुझे मेरे पापा मम्मा दिख रहे होते हैं, तो ये सीन होता है. क्योंकि कई बार बच्चे बहुत परेशान करते हैं और कभी कभी कोई स्ट्रेंजर भी मिल जाता है, तो मैं ना सीधा अपने मम्मी पापा की तरफ चले जाती हूँ. ज़ैनब, आई शुड से दिस इज़ अ वेरी वेरी कितना स्मार्ट मूव कि आपको जब अनकम्फर्टेबल फील हो एंड सडनली आपका दिमाग हिट करे कि नहीं भाई ये सिचुएशन सही नहीं, ये जगह सही नहीं है, बच्चे मुझे परेशान करने वाले हैं या फिर कुछ स्ट्रेंजर्स मुझसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं, इट्स ऑलवेज फर्स्ट थिंग टू गो टू योर फैमिली. मुझे लगता है कि जैसे आजकल कुछ बच्चे फ़ोन भी चलाना सीख गए हैं और जब कहीं बाहर जाते हैं उनके पास फ़ोन भी होते हैं. सो कोई 5 नंबर अपने इमरजेंसी लिस्ट में रखो जिन्हें आप सबसे पहले कॉल करके बात कर सको. ठीक है, सो ये भी एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी है ना. तो अगर सेफ्टी का ख्याल रखना है तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है. और हमेशा लुक फॉरवर्ड करें कि जो भी बंदा बड़ा हो, जो आपके पहचान का हो, और अगर कुछ थोड़ा फिशी लग रहा है कि आपको सही नहीं लग रहा है, अनकम्फर्टेबल लग रहा है, और अगर घर का कोई आसपास नहीं है, देन लुक फॉर समबडी जैसे कि गार्ड्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उन तक सीधा जाएं और अपनी बात पहुंचाएं कि भाई हम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं. ओके, अच्छा, अभी मुझे 7 का मैसेज है एंड ही सिंपली सेइंग कि मैं जब बच्चों के साथ खेल रहा होता हूँ, मुझे बच्चे खींच रहे होते हैं कि नहीं मतलब मत जाओ, खेलो खेलो खेलो, तब मैं बोल देता हूँ मम्मी बुला रही है, अगर लेट हो गया तो मम्मी मारेगी. ये भी सही है, मम्मी पापा का बहाना हमेशा काम करता है. सो बच्चा पार्टी, इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आपको अपना स्पेस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी बचाने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तब आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है और फिर किसी से आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी गट फीलिंग को हमेशा सुने. सो यस, हमारे सुपर के स्मार्ट किड्स, आज का जो हमारा एपिसोड था द सुपर के शो का, वो यहीं तक. एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आज आपने काफ़ी कुछ सीखा, आपने काफ़ी कुछ मुझसे शेयर भी किया. सो इट्स रियली लवली और ये शेयरिंग केयरिंग का सिलसिला चलता रहेगा. फिलहाल ईद हॉलीडेज सबके लिए शुरू हो चुके हैं और आप लोग तो आज से प्लानिंग कर रहे हो, हम भी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ईद में हम फिर मिलने वाले हैं, हमारे स्पेशल शोज होंगे और मैं आपकी A4 अमिता सुबह 10 बजे से मिलने वाली हूँ. आज

ड्राइवर के साथ, तो हम दोनों आपके लिए लेकर आ रहे हैं घर घर ईद. इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल शो जहां पर बहुत सारे एक्साइटमेंट से भरी बातें होंगी, गेम्स होंगे एंड आपके पास मौका होगा एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का. तो सुबह 10 बजे से घर घर ईद हमारा शो सुनना ना भूलें. और अभी क्या करना है, अभी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए, आपकी आर जमिता भी वहीं मिल जाएगी. और जाते जाते कुछ हिट गाने आपके नाम करते जा रहे हैं. सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, खाए पिए और खूब ऐश करें, ईद में इंजॉय करें और सीधा फिर संडे को हम सुपर के शो पर मिलेंगे. लेकिन ईद के दौरान कहाँ मिलेंगे, सुबह 10 बजे घर घर ईद पर. तो अभी ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Urdu Radio FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए। सब कुछ एक ही शो में, तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये खास शो किड्स स्टोरी, जहां हर हफ्ते एक ऐसे टॉपिक के साथ आते हैं जो हमारे और आपकी जिंदगी में रोजमर्रा में गुजरते हैं, जिससे हम और आप सीखते हैं, इवन बच्चे भी सीखते हैं। और ये तो है ही किड्स स्टोरी, यानी कि बच्चों की कहानी। खास तौर पे ये शो बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी सिचुएशन आती है, और अगर जब कहानी में वो सिचुएशन आए तो कहानी का बच्चा क्या करता है, और साथ ही साथ आप यानी कि आपके बच्चे क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही जैसे मैंने कई बार बात भी करी है कि इससे कम्युनिकेशन स्किल, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, वर्ड्स में पकड़ भी बहुत अच्छी होती है। और कहानी, ये कहानी किसको अच्छी नहीं लगती, ये कहानी सबको अच्छी लगती है, हमें और आपको। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ये कहानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि हमारी बॉन्डिंग भी बनती है इस कहानी के ज़रिए। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी सीखने को मिलता है इस कहानी के ज़रिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप जब कहानी सुनाते हैं तो बच्चा बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना लेता है, बच्चा समझदार बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है, और ये कहानी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम हर रोज़ की ज़िंदगी में जो गुजर रहा होता है उस तरह की सिचुएशन थोड़ी बोड़ी आती रहती है इस कहानियों में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम एक छोटे से लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ओलिवर, और इस कहानी का नाम है द इंजन ऑफ येट। वेल, शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
0: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए।
1: ये कहानी ओलिवर की है, और ओलिवर की कहानी में हीरो भी ओलिवर ही रहेगा। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम ओलिवर था, वो अपने गैराज में बैठकर एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। ओलिवर चाहता था कि उसका रोबोट, जिसका नाम उसने बोल्ट रखा था, होमवर्क लिखने में उसकी मदद करे। लेकिन हर बार जब ओलिवर बटन दबाता, बोल्ट सिर्फ गोल गोल घूमता और अजीब सी सीटी बजाता। ओलिवर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने स्क्रू ड्राइवर फेंक दिया और बोला, मुझसे यह नहीं होगा, मैं रोबोट बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। उसे लगा कि या तो आप पैदाइशी जीनियस होते हो या फिर आप कुछ नहीं सीख सकते। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग रोबोट्स के लिए बना ही नहीं है। वो उदास होकर वहां से जाने लगा और सोचा कि आज के बाद वो कभी कोई नई चीज ट्राई नहीं करेगा। उसने हार मान ली थी। लेकिन यहां पर एंट्री होती है प्रोफेसर पिवट की। अचानक गैराज की खिड़की से एक छोटा सा चमकता हुआ ड्रोन अंदर आया। उसके पीछे पीछे एक लंबा सा आदमी आया जिनका नाम था प्रोफेसर पिवट। प्रोफेसर ने बहुत बड़ा कोट पहना था जिसमें ढेर सारी पॉकेट्स थी। उन्होंने बोल्ट को देखा और मुस्कुराया। अरे वाह, ये रोबोट तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्रोफेसर ने कहा। ओलिवर ने मुंह बनाकर जवाब दिया, नहीं प्रोफेसर, ये बेकार है, मुझ में टैलेंट ही नहीं है। प्रोफेसर पिवट जोर से हंसे और कहा कि बेटा, टैलेंट तो सिर्फ शुरुआत ही होती है, असली चीज तो मेहनत और प्रैक्टिस है। क्या तुमने कभी ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सुना है, ऐसा प्रोफेसर पिवट ने कहा। ओलिवर ने सर हिलाया, नहीं। प्रोफेसर ने अपनी पॉकेट से एक पुराना मैप निकाला और बोला, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूं जहां तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है द पावर ऑफ येट की। प्रोफेसर ने ओलिवर को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिखाया। उस पर एक लफ्ज लिखा था येट, YET, कैपिटल लेटर में येट। प्रोफेसर ने समझाया, जब तुम कहते हो कि मुझे ये नहीं आता तो तुम अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हो, लेकिन जब तुम कहते हो कि मुझे ये अभी नहीं आता तो तुम एक उम्मीद जगाते हो। ओलिवर ने सोचा, मुझे रोबोट ठीक करना अभी नहीं आता, मगर मैं सीख सकता हूँ।

ऐसा हो सकता है? सवालों के अंदाज में ओलिवर ने पूछा। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल, हमारा दिमाग एक मसल की तरह होता है। जितना तुम मुश्किल काम करोगे, दिमाग उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। हर गलती तुम्हारे दिमाग को एक नया रास्ता दिखाती है। ओलिवर को थोड़ा हौसला प्रोफेसर की इन बातों से मिला जरूर। उसने बोर्ड की तरफ देखा और सोचा कि ये रोबोट शायद एक और बार कोशिश करनी चाहिए और ये रोबोट शायद चलेगा। प्रोफेसर ने पत्थर को हवा में घुमाया और गैराज गायब होने लगा। मैजिक एडवेंचर यहां से शुरू होता है दोस्तों। अचानक ओलिवर और प्रोफेसर एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां आसमान पर्पल था और पेड़ बिल्कुल वायर्स जैसे दिखते थे। प्रोफेसर ने कहा, यह है द वैली ऑफ ब्रेन पार। यहां वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हार नहीं मानते। ओलिवर ने देखा कि बोल्ट भी उनके साथ था, लेकिन अब बोल्ट जिंदा लग रहा था। बोल्ट ने एक हल्की सी सीटी बजाई। प्रोफेसर ने बताया कि उन्हें गोल्डन गियर ढूंढना है जो ओलिवर के रोबोट को ठीक कर देगा, और ओलिवर के रोबोट यानी कि बोल्ट को ठीक इतना कर देगा कि शायद ओलिवर के हिसाब से वो रोबोट चलने लग जाए और ओलिवर के होमवर्क को ये रोबोट बोल्ट काम करने लग जाए। लेकिन रास्ता मुश्किल था। ओलिवर थोड़ा डर गया, लेकिन प्रोफेसर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, डरो मत, हर गलती तुम्हें रास्ता बताएगी। बस ये याद रखना कि सीखना ही असली जीत है। उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया और शुरू हुआ द वॉल ऑफ आइकन। उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ गई, इतनी ऊंची कि आसमान को छू रही थी शायद वो दीवार। इतनी ऊंची कि वो दीवार मुकम्मल आंखों से दिख नहीं रही थी। उस दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं नहीं कर सकता। ओलिवर ने कहा, देखा प्रोफेसर, रास्ता बंद है। ये दीवार इतनी ऊंची है कि हम कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर ने कहा, ये दीवार पत्थर की नहीं बल्कि पुरानी सोच की बनी है। जब तक तुम बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, ये दीवार खड़ी रहेगी। इसे पार करने के लिए तुम्हें एक पजल सॉल्व करनी होगी। दीवार पर एक छोटा सा पैनल खुला जिसमें बहुत सारे उलझे हुए वायर्स थे, यानी कि तार थे। प्रोफेसर ने कहा, इन्हें सुलझाओ, इन उलझे हुए तार को यानी कि वायर को सुलझाओ, और हर बार तुम फेल होगे। बस ये सोचो कि तुमने क्या नया सीखा। ओलिवर ने डरते डरते तारों को हाथ लगाया। ओलिवर ने पहले लाल तार को नीचे से जोड़ने की कोशिश की, एक छोटा सा झटका लगा और तार वापस खुल गया। ओलिवर ने गुस्से में कहा, देखा, फिर से गलत। प्रोफेसर ने प्यार से समझाया इस जगह कि गुस्सा मत करो, चेक करो कि ये क्यों गलत है, तुमसे क्या गलती हो रही है, उसको सीखने की कोशिश करो। ओलिवर ने ध्यान से देखा और समझा कि स्विच उल्टा था। उसने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा ध्यान से। दूसरी बार भी नाकामयाबी मिली, लेकिन इस बार ओलिवर रोया नहीं, गुस्साया नहीं, झटका नहीं और हारा नहीं। उसने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये रास्ता काम नहीं करता, अब कुछ नया ट्राई करता हूं। जैसे ही उसने इन उलझे हुए तारों को अलग अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश करी, कई बार वो फेल हुआ और इतनी ऊंची दीवार में जो पैनल से निकले हुए वायर्स थे, जब कई बार कोशिश करी तो दीवार थोड़ी नरम हुई, कम नहीं हुई, वो दीवार छोटी नहीं हुई लेकिन नरम हुई। उसका दिमाग नए नए आइडियाज सोचने लगा। यह एहसास हुआ कि हर फेल होने पर वो कुछ नया जान रहा था जो उसे पहले नहीं पता था। फिर धीरे धीरे जब उसने उस वायर को सुलझाया तो देखा कि दीवार अब और भी ज्यादा नरम बन चुकी है। कई बार ओलिवर ने तारों को एक नए तरीके से जोड़ा, इस बार कोई झटका नहीं लगा और पैनल हरा हो गया। जैसे ही लाइट जली, वही बड़ी दीवार जो बहुत ऊंची थी, जो आसमानों तक छू रही थी, जिसपे लिखा था कि मैं नहीं कर सकता, वो बड़ी दीवार धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। और जो दीवार पर लिखा था कि मैं नहीं कर सकता, दीवार पर वो लिखावट बदलने लगी। और फिर उस दीवार पर वो लिखावट बदल कर लिखा था कि मैं सीख रहा हूं। ओलिवर बहुत खुश हुआ, प्रोफेसर, मैंने कर दिखाया, फाइनली। प्रोफेसर ने कहा कि तुमने सिर्फ पजल सॉल्व नहीं किया, तुमने अपने दिमाग की एक लिमिट को तोड़ दिया है। देखो, बोल्ट भी अब बेहतर फील कर रहा है। बोल्ट ने एक छोटी सी डांस स्टेप भी की। ओलिवर को समझ आया कि जब वो मेहनत करता है और हार नहीं मानता तो चीजें

बदलने लगती हैं। अब उनका रास्ता साफ था और वो जंगल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और वो पहुंचे जंगल में, द फॉरेस्ट ऑफ फीडबैक। वो एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पेड़ों के पत्ते उनके कानों को लग रहे थे और बड़े अलग से वो पत्ते थे भी। प्रोफेसर ने कहा, ये है फीडबैक फॉरेस्ट, यहां लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम कहां गलती कर रहे हो। अचानक एक पेड़ बोल पड़ा, ऑलिवर तुमने पहले स्क्रू ड्राइवर गलत पकड़ा था। ऑलिवर को बुरा लगा, उसे लगा कि पेड़ उसका मजाक उड़ा रहा है। मुझे कोई मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं, ऐसा ऑलिवर ने चिड़चिड़ाकर कहा। प्रोफेसर ने उसे वहीं रोका और बोला, बेटा दूसरों की एडवाइस सुनना बुरा नहीं होता, फीडबैक से हम जल्दी सीखते हैं। अगर कोई तुम्हें बताए कि तुम कैसे बेहतर बन सकते हो तो वो तुम्हारी इंसल्ट नहीं, तुम्हारी मदद कर रहा है। ऑलिवर ने गहरी सांस ली और उन पेड़ों की बात सुनने लगा। हेल्पफुल एडवाइस, उसको इन पेड़ों से एडवाइस मिल रही थी, वो भी हेल्पफुल। एक बड़े पुराने पेड़ ने कहा, अगर तुम बोल्ड के पहिए थोड़े ढीले कर दो तो वो गोल नहीं घूमेगा। ऑलिवर ने पहले सोचा कि नहीं मेरी मर्जी, लेकिन फिर उसने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सोचा। उसने बोल्ड के व्हील्स चेक किए और देखा कि पेड़ सही कह रहा था। उसने टूल्स निकाले और व्हील्स एडजस्ट कर दिए। जैसे ही उसने सुनना शुरू किया तो जंगल के रास्ते आसान होने लगे थे। ऑलिवर को समझ आया कि एक्सपर्ट बनने का मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं। उसने प्रोफेसर से कहा कि अब मुझे बुरा नहीं लगता, जब कोई मेरी गलती निकालता है तो मुझे सीखने की कोशिश या सीखने का मन करता है, क्योंकि वो मुझे बेहतर बनने में भी हेल्प कर रहे हैं। चलते चलते वो एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंचे। उस गड्ढे में बहुत सारे पुराने टूटे हुए खिलौने और आधे अधूरे प्रोजेक्ट पड़े थे। प्रोफेसर ने कहा, ये है मिस्टेक्स की खाई, लोग यहां अपनी गलतियों को देखकर डर जाते हैं और रुक जाते हैं। ऑलिवर ने नीचे देखा उस गड्ढे की तरफ, जहां पर अधूरे अधूरे लोगों के प्रोजेक्ट्स बने थे, पड़े थे। वहां उसे अपना पुराना रोबोट प्रोजेक्ट भी वहीं पर दिखा, जो उसने पिछले साल छोड़ दिया था। प्रोफेसर, यहां तो सिर्फ नाकामयाबी है, सबके अधूरे काम है, मेरा भी प्रोजेक्ट यहीं पर है, ऑलिवर ने दुख से कहा। लेकिन प्रोफेसर ने उसे सही जवाब दिया, नहीं ऑलिवर, ये नाकामयाब नहीं, ये प्रैक्टिस का ढेर है, इन्हीं गलतियों को सीढ़ी बनाकर हम ऊपर चढ़ेंगे। ऑलिवर ने सोचा, अगर मैं इन पुरानी गलतियों से सीखूं तो मैं गिरूंगा नहीं। उसने एक पुराना गियर उठाया और आगे बढ़ने का रास्ता बनाने लगा। गड्ढे से निकलकर ऑलिवर और प्रोफेसर एक बड़ी नदी के पास पहुंचे। पानी बहुत तेज बह रहा था। प्रोफेसर ने कहा, ये परसिस्टेंस की नदी है, इसे पार करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सब्र यानी कि पेशेंस भी चाहिए। ऑलिवर ने एक पुरानी नाव यानी कि बोट देखी जो टूटी हुई हालत में थी। उसने ये सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं। उसने मेहनत शुरू की, लेकिन पानी की लहरें बार बार उसके काम को खराब कर देती थी। ऑलिवर को थोड़ा गुस्सा जरूर आया, लेकिन उसने ये सोचा कि परसिस्टेंस का मतलब है बार बार कोशिश करना, जब तक काम हो ना जाए, जब तक आप तैयार हो के किसी काम को मुकम्मल न कर ले। और उसने हर बार पहले से बेहतर तरीके से लकड़ी को जोड़ा और बोल्ट ने भी अपने छोटी बाहों से ऑलिवर की मदद की। और ऑलिवर अब धीरे धीरे सीखने लग गया था कि बार बार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। और जब बोल्ट ने बोट को बनाने की कोशिश की या फिर थोड़ी मदद की, तो ऑलिवर को और भी ज्यादा हिम्मत मिली। प्रैक्टिस से परफेक्शन का सफर। दोस्तों, नाव बनाते वक्त ऑलिवर के हाथ में चोट भी लगी, और जब चोट लगी तो वो चिल्लाया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा ऑलिवर ने कहा। लेकिन फिर उसने देखा कि हर बार जब वो नाव का हिस्सा ठीक करता, वो पहले से ज्यादा मजबूत बनने लगती। प्रोफेसर ने कहा, देखो ऑलिवर, प्रैक्टिस से तुम्हारा दिमाग वायर्स को मजबूत कर रहा है। ऑलिवर ने हिम्मत नहीं हारी, उसने नाव को पानी में डाला।
इस बार नाव डूबी नहीं।

0: वो दोनों नाव में बैठ गए। ओलिवर ने चप्पू चलाना शुरू किया। उसके मसल्स थक रहे थे, वो भी थक रहा था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था बस थोड़ा और हम पहुंचने वाले हैं नदी के पार। नदी पार करते ही ओलिवर को महसूस हुआ कि मुश्किल काम करने में भी एक अलग मजा है। जब मुश्किल काम में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो उसका मजा बिल्कुल अलग है, उसका शौक बिल्कुल अलग है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। नदी के उस पार एक अंधेरी गुफा थी। बाहर लिखा था, यहां वही जाएं जो मुश्किल से ना डरते हो। लेकिन ओलिवर तो मुश्किल से बहुत डरता था। लेकिन दोस्तों, इस सफर ने ओलिवर के डर को कम कर दिया था। ओलिवर ने प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर ने सिर्फ एक इशारा किया, ओलिवर अंदर गया। गुफा के अंदर ढेर सारे रोबोट्स थे जो आधे अधूरे थे। एक आवाज गूंजी काफी दूर से, तुम यहां क्यों आए हो? ओलिवर ने डरते हुए कहा, मैं गोल्डन गियर ढूंढने आया हूं ताकि बोल्ट को ठीक कर सकूं। अंदर से फिर आवाज आई, गोल्डन गियर सिर्फ उसे मिलता है जो मुश्किल चैलेंजेस को एंजॉय करता है, क्या तुम तैयार हो? ओलिवर ने सीना तान कर यहां कहा, हां, चैलेंजेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। गुफा में अचानक रोशनी हो गई और रास्ता खुल गया। गुफा के बीच में एक बड़ा आईना था, लेकिन उसमें ओलिवर की शक्ल नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत दिख रही थी। ओलिवर ने देखा कि कैसे वो बचपन में चलना सीखते वक्त गिरा था और फिर खड़ा हुआ था। आईने ने दिखाया, इंटेलिजेंस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है जो आपको पैदाइशी मिलती हो, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो आप खुद बनाते हो। ओलिवर ने देखा कि जब उसने मैथ का सवाल सॉल्व करने के लिए मेहनत की थी, उसका दिमाग चमक रहा था। प्रोफेसर ने समझाया, तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा ये डर है कि तुम स्मार्ट नहीं दिखोगे अगर तुम फेल हो गए। गलती करना स्मार्ट होने की निशानी है। दोस्तों, ये कहानी सुन रहे हैं आप ओलिवर की, जो बहुत ही शानदार एक बच्चा था, लेकिन इन्वेंटर था। वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जिस रोबोट को बनाने के बाद उसके होमवर्क, यानी कि ओलिवर के होमवर्क, वो रोबोट खुद कर सके। लेकिन ओलिवर जब भी रोबोट को काम करने के लिए बोलता, यानी कि रोबोट का नाम जो बोल्ट था, उसको जब काम करने के लिए बोलता, तो बोल्ट सिर्फ गोल गोल घूमता। ऐसे में उसे हताशा मिली। लेकिन जब ओलिवर अपने गैराज में था, तो वो मिला प्रोफेसर पिविट से। प्रोफेसर उसको एक जर्नी पर लेकर गए और वहां पर उसने बहुत कुछ सीखा। इस कहानी में हम और भी बातें करेंगे। FM 107 पे आप सुन रहे हैं किड्स स्टोरी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे कि ओलिवर अपनी जिंदगी से क्या सीखा, अपने मिस्टेक से वो क्या सीखता है और कहां तक पहुंचता है। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आवर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और आप सुन रहे हैं किड्स स्टोरी, जहां पर एक बच्चा ओलिवर कोशिश करता है एक ऐसे रोबोट को बनाने की जिससे वो अपना होमवर्क करा सके, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। और जब जब वो रोबोट गलती करता या गोल गोल घूमने लगता होमवर्क करने के बजाय, तो ये हताश, यानी कि ओलिवर हताश हो जाता। और ओलिवर मिलता है प्रोफेसर पिविट से। प्रोफेसर से मिलने के बाद ओलिवर बहुत कुछ सीखता है कि कैसे लगातार काम करते रहना चाहिए, गलतियों के बाद भी सीखना होता है, गलतियां बार बार होने के बाद भी कोशिश बार बार करनी होती है और उसी से आप सीखते हैं। और फिर जब वो अपने एक आईने से मिलता है तो उसे वहां पर और भी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि गलती करना स्मार्ट होने की निशानी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ओलिवर की लाइफ में क्या कुछ होता है। आईने के पीछे एक आखिरी दरवाजा था, उस पर एक ऐसी पजल थी जो ओलिवर ने कभी नहीं देखी थी। उसमें नंबर्स और शेप्स ऐसे उलझे थे कि देखकर ही सर घूम जाए। ओलिवर ने एक पल के लिए सोचा, ये तो इम्पॉसिबल है।

0: मैं नहीं कर पाऊंगा। मगर फिर उसने अपना येट वाला पत्थर याद किया। ये इम्पॉसिबल नहीं है, बस मैंने इसे अभी तक सीखा नहीं है, उसने ऐसा सोचा। उसने पेपर और पेंसिल निकाली और ध्यान से पजल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। एक एक करके उसने हर पीस सॉल्व किए। प्रोफेसर चुपचाप खड़े मुस्कुराते रहे। ऑलिवर को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे मजा आ रहा था। जैसे ही आखिरी पीस सॉल्व हुआ, दरवाजा खुल गया। एक सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। वहां एक पेडेस्टल पर एक चमकता हुआ गोल्डन गियर रखा था। ऑलिवर ने दौड़कर उसे उठाया। मैंने ढूंढ लिया प्रोफेसर, खुशी से बोला ऑलिवर। अब बोल्ट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मैं उसे ऐसे डिजाइन कर सकता हूँ कि वो मेरा होमवर्क लिख दे। लेकिन जैसे ही उसने गियर को बोल्ट के पास लाया, गियर हवा में गायब हो गया और ऑलिवर के दिल के पास एक चमक पैदा हुई। ऑलिवर परेशान हो गया, गियर कहाँ गया? ये तो अभी यही था मेरे हाथों में। वो तो गायब हो गया, ऐसा प्रोफेसर ने कहा। ऑलिवर के सर पर हाथ रखा और कहा, गोल्डन गियर कोई फिजिकल चीज नहीं, वो तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट था, अब वो तुम्हारे अंदर है। और अब बैक टू रियलिटी का सफर। एकदम से सब कुछ घूमने लगा, पर्पल आसमान, जंगल के वो पेड़ ऊंचे ऊंचे और प्रोफेसर पिवेट, सब धुंधला हो गया। ऑलिवर ने आंखें बंद की और जब खोली तो वो अपने पुराने बिखरे हुए गैराज में था। बोल्ट उसके वर्क बेंच पर वैसे ही पड़ा था, बेजान और टूटा हुआ। लेकिन ऑलिवर अब बदल चुका था दोस्तों। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया और कहा, चलो बोल्ट, आज हम तुम्हें येट से यस तक ले चलते हैं। उसने पुरानी गलतियों को देखा और समझ गया कि कहां सुधार यानी कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दोस्तों, कहानी के आखिर में जब सूरज की वो सुनहरी किरणें गैराज में फैलती हैं, ऑलिवर अपने हाथों को देखता है जो ग्रीस और स्याही से भरे हैं। वो अब इन्हें किसी नाकाम लड़के के हाथ नहीं बल्कि अपनी स्कल्प्टर्स ऑफ डेस्टिनी के तौर पर देखता है। वो ग्रेट ओक के दरख्त की मिसाल समझ गया था। एक पेड़, एक दरख्त रातों रात ऊंचा नहीं होता बल्कि वो अंधेरी जमीन की सख्ती को चीर कर अपनी जड़ें यानी कि रूट्स मजबूत करता है और एक रुकावट को अपनी ताकत बना लेता है। अपने दिल में फोर्टिट्यूड और दिमाग में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज लिए ऑलिवर आखिरी बार स्विच ऑन करता है बोल्ट का। बोल्ट सिर्फ सीटी नहीं बजाता बल्कि कामयाबी का एक गीत गुनगुनाता है। ऑलिवर मुस्कुराता है ये जानते हुए कि रोबोट तो बन गया मगर उसके सीखने का सफर अभी शुरू हुआ है। वो गैराज जो कभी मैं नहीं कर सकता का जेल हुआ करता था, अब क्यूरियोसिटी की जगह बन चुका है जहां हर गलती सक्सेस पर पहुंचने के लिए सीढ़ी का एक स्टेप है और स्टेप बाय स्टेप ऑलिवर सक्सेस की तरफ बढ़ता है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत दोस्तों। ये खास स्टोरी थी ऑलिवर की, जहां पर ऑलिवर अपने रोबोट को तैयार करने की कोशिश करता लेकिन हर बार फेल होता। प्रोफेसर पिविट जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर थे, उनसे मुलाकात करता है। वो लेकर जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर पेड़ से, गड्ढों से और कई गुफाओं से वो कुछ सीखता है, नदियों से सीखता है और सीखते सीखते वो अपने रोबोट को बनाने में सक्सेस हो जाता है। और ये ही थी कहानी ऑलिवर के सक्सेस होने की। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे FM 107 पे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक नहीं सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
4: कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
3: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स।

Assalamualaikum. मैं सभा से डायलॉग चोरी कर रहा हूँ. बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी पूरी तरह से नहीं है पर ठीक है, दिल तो बच्चा है जी हर किसी का, तो बच्चा पार्टी. स्टूडेंट्स गाइड शो का नाम, बंदे का नाम दो हवाला कबीर. लेट्स बिगिन, क्योंकि आज आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट. और से सुनना, और से ठीक है. आज मैं पीछे वाली सीट पर नहीं बैठा हूँ गाड़ी की, मैं आज बिल्कुल साइड में बैठा हूँ आपकी, क्योंकि बहुत जरूरी बातें करनी है मुझे. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स गाइड, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे इतने टाइम से स्टूडेंट्स गाइड में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, और अब वक्त आ गया उस बारे में बात करने का जिस बारे में बात करने से मैं खुद थोड़ा सा कतराता हूँ, क्योंकि इट जस्ट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल. बट देन अगेन, हमेशा हमने शो में एक बात कही कि बच्चों को जो एक उम्र के बाद अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उन्हें बताएं कि घर की सिचुएशन क्या है, सो दैट दे गेज इट एंड अंडरस्टैंड कि आप उनसे क्या उम्मीदें लगाए बैठे. कई मरतबा यू इग्नोर देम ये बोल के कि अरे बच्चे हैं, टाइम आएगा, सीख जाएंगे, एंड देन बच्चे सीखते नहीं बिकॉज वो सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते. तो जितने स्टूडेंट्स मुझे आज सुन रहे हैं, मैं आज माँ बाप के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू उनसे बात नहीं करना चाहता. इन केस कोई स्टूडेंट, कोई कॉलेज स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, तो आज मैं सीधा आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है. आज डिस्कशन जो मैं करना चाहता हूँ वो है पैसों के बारे में, रियाल के बारे में, डॉलर्स के बारे में. आज बहुत महंगी महंगी बातें करेंगे भाई, हम सस्ती बात नहीं करने वाले आज. आज तो जहेज बना देंगे शो को. तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों ने बहुत बात की होगी और आपको बोर कर दिया होगा, बट हम वो वाला राउट नहीं लेंगे, हम उस तरफ जाएंगे नहीं. फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि पैसों को समझो, समझो हालातों को, फिर पैसे अपने आप समझ में आ जाएंगे और सही तरीके से मैनेज करना अपने आप आ जाएगा. मगर सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेज इज बेसिकली द सिचुएशन ऑफ इट ऑल. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पैसे सबसे पहले कैसे सेव की जाए, ये स्टूडेंट्स लेवल पर है. दूसरी बात, बजट किस चिड़िया का नाम होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स के जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो कैसे हो सकती हैं, एंड जो जो जो स्कैम्स हैं उनसे कैसे बचें, वो लास्ट वाला आप मुझसे समझदार है, मैं कौन हूं तो बताने वाला, बट आई विल स्टिल ट्राई एंड डू इट फॉर यू. इसके अलावा फ्यूचर को कैसे फाइनेंशियली आप सिक्योर कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी यंग एज. अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस बात से अग्री करेंगे, इनफैक्ट जो बड़े हो चुके हैं वो अग्री करेंगे कि हमने एक ज़माने में पहले बहुत सीरियसली नहीं लिया घर की सिचुएशन को, है ना. और हम लोग जो थे खर्चा करते थे, हमें लगता था माँ बाप हमें ये क्यों नहीं दिला रहे, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिला रहे, और माँ बाप कहते थे अच्छा अगली बार बेटा, अगली बार, अगली बार. हम सोचते थे माँ बाप ना टाल रहे हैं बात को, हमें दिला क्यों नहीं रहे. एंड एज वी ग्रू अप, क्योंकि माँ बाप ने बताया बेटा ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, तुम खुद को समझने लगे अच्छा ये हमारे रेंज में, ये हमारी रेंज नहीं है. और ये जब समझ में आ जाता है तो अपने आप फाइनेंशियल लिटरेसी आपके अंदर पैदा हो जाती है. आपके जो शौक होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, पर उनकी टाइमिंग बदलने लगती है. सो यू रियलाइज कि मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज एक फोन चाहिए, ठीक है, और मैं कॉलेज में हूँ, ऑफकोर्स फोन मेरी नेसेसिटी भी है, कॉलेज में आके आई एग्री इट इज योर नेसेसिटी, पर मैं सीधा अगर 5-6 हज़ार रियाल का फोन मांग रहा हूँ और मुझे पता है कि हालात कैसे हैं, देन इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट. फोन तो आप कैसे भी चला लीजिए, अपने हालात को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बाद में उसका मजा बहुत आता है. मैं टॉपिक से हट के नहीं, टॉपिक से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहता हूँ. जो लोग अपनी स्ट्रगल की कहानियां सुनाते हैं, और पता नहीं क्यों ऐसे सुनाते हैं कि आदमी को रोना है, क्यों सुना रहे हो, स्ट्रगल का अपना मजा है. स्ट्रगल इज समथिंग दैट यू चूज, ये रास्ता आपने चुना है ना, तो कि मैं स्ट्रगल करूंगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे. तो जिन्होंने किया स्ट्रगल उनसे पूछे कितना मजा आता है जब कामयाबी हाथ लगती है. सो ये कामयाबी हाथ लगे उसका मजा है, उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना है कि मेरी सिचुएशन क्या है, मुझे घर पे क्या बताया जा रहा है, क्या किस तरह की चीजें आई जा रही हैं, बजट कैसे कर रहे हैं मेरे माँ बाप, एंड उसके बाद यू डिसाइड कि आपको कैसे बढ़ना है, देन पैसे बचाना, बजटिंग करना, ये सब धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज आने लग जाएगा. तो ये कुछ चीजें हैं जो बताने से पहले मैंने कहा एक बार सेटअप कर दिया जाए, एंड जब सेटअप कर ही दिया है तो आप भी जरा सेटअप हो जाए. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद हैं. सो प्लीज हमसे रब्ता कायम कीजिएगा, एंड शो के दौरान भी आप मैसेज कर सकते हैं जैसे आप करते हैं यूजुअली. सो डू लेट मी नो. अब जरा फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी, सॉरी जुबान स्लिप हो गई थी, मैं भी इंसान हूँ. तो क्या है,
ये समझने के लिए कि लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे, यार मेरी जुबान की स्लिप हो रही है, सॉरी यार, पैसे का मामला ना, इसलिए ऐसा होता है. तो पैसों की जो नॉलेज है उसमें पैसे कैसे कमाए जाएं, मतलब रियाल कैसे कमाए जाएं, डॉलर कैसे कमाए जाएं, या विच एवर करेंसी और अर्निंग यू वांट टू अर्न, सेव कैसे किया जाए, उसे स्पेंड कैसे किया जाए,

जो स्पेंडिंग कंट्रोल है वो आपको आना चाहिए, बजटिंग करना आना चाहिए, इसी से आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। मगर मगर इतना ज्यादा कंजूस नहीं हो जाना है कि आप अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारने लग जाएं। आपके सामने फाइनेंशियली कुछ चीजें ऐसी आएंगी जब आप बड़े हो जाएंगे, आप जो कॉलेज में हैं, जो स्कूल में हैं, आप आगे जाके आपको जब पॉकेट मनी का मायार थोड़ा बढ़ जाएगा, आप खुद थोड़ा बहुत कमाने लग जाएंगे, तो आपके सामने कुछ ख्वाहिशें खड़ी होंगी इस इंतजार में कि आप उनकी तरफ आएंगे, है ना। तो कुछ ख्वाहिशें ऐसी होंगी जहां पे आपको लगेगा कि यार ये मैंने कर दिया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अपने आप से बात करें कि जो दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है क्या मैं उसे झेल सकता हूँ क्या, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है। I'll give you an example, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 7,000 रियाल पड़े, ठीक है। अब मुझे उनमें से मेरी ख्वाहिश रही है बहुत टाइम से कि 5,000 रियाल वाला फोन लेना। अब फोन लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी भर जो है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है खतरे वाली बात है, सारे उड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, बचा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी ख्वाहिश मार दी। पर अगर मैं ये सोचूं कि यार मैंने खुद कमा लिए 2,000 रियाल जो बच रहे हैं 5,000 में से, उनसे मैं चला लूंगा, सब कुछ चल जाएगा, सारा हिसाब किताब कर चुका हूं अपने इर्द गिर्द का, एक ले लेता हूं रिस्क इस बारी। तो ये कोई बैड रिस्क नहीं है, बट यहां तक पहुंचने का सफर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ज्यादा ही उड़ा रहे हैं तो फिर तो हो गया काम, फिर तो आप 7,000 को जो है बिल्कुल ही गायब कर देंगे, तो वो भी नहीं करना। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं है, है ना। इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल महीने के, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 रियाल पॉकेट मनी मिलती है और वो पूरे के पूरे रियाल जो है सिर्फ फास्ट फूड पर उड़ा दें या शॉपिंग पे खर्चा कर दें, तो महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब मान लीजिए उसके पास 200 रियाल हैं, उसने 100 जो है वो खर्च कर दिए, ठीक है, उसमें से 20 रियाल उसने बचा लिए, थोड़े बहुत उसने इमरजेंसी के लिए रख लिए और भूल गया वो। जैसे बड़े लोग कहते हैं ना के बड़े लोग स्टेटस में नहीं, बड़े लोग एज वाइज हमारी जेब से जब बहुत टाइम बाद एक नोट निकल आता है ना पुराना, भले ही वो 20 रियाल का हो 50 रियाल का हो, ऐसी खुशी मिलती है भाई साहब, ऐसी खुशी कर्री वाली, लगता है खजाना मिल गया हो। तो कई मरतबा कुछ अमाउंट जो है वो रख के भूल जाया करो, रख के भूल जाया करो। और आपके घर में, आपके घर में बैंक है, आपकी अम्मी जो है उनसे बढ़िया बैंक कोई नहीं है, अब्बा के लिए भी वही बैंक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बच्चों में जो इम्बाइब होती है वो घर से सबसे पहले शुरू होती है, और माओ से ज्यादा पैसे को कोई नहीं संभाल सकता भाई, संभाल नहीं सकता। हाँ होता है, लोग बोलेंगे खवातीन सबसे ज्यादा खर्चा करती हैं, बट देन अगेन उनसे ज्यादा कोई बचा भी नहीं सकता, बस दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। हम मर्द हजरात उतने केपेबल नहीं होते, ये समवर्ड पता नहीं नेचर है, कुछ लोग होते हैं इसमें एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मगर घर के इस बैंक का फायदा उठाइए। अम्मा को पकड़ा के भूल जाओ, अम्मा ये 3 महीने बाद दूंगा मैं तुमसे। तो इस तरीके का करेंगे ना आप, तो आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे, और ये आपके दिमाग को ट्रेनिंग देगा कि कैसे मैं सेव भी कर रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, मैंने परचेजिंग पावर भी सीखी। तो ये सब कुछ कुल मिला के यही तो है फाइनेंशियल लिटरेसी, और क्या है, यही आपको स्मार्ट बनाएगी और यही बड़े बड़े लेवल पे आपके काम आने वाली है। अब आगे जाके इंजीनियर बने, बिजनेस करें, आर्ट्स करें, कुछ भी करें, यही सब आपका बेस बनने वाला है। अब फाइनेंशियल लिटरेसी अभी स्कूल्स में आने लगी है और ये स्कूल्स में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक कम उम्र के बच्चे को ये बताना कि मनी हैबिट्स कैसे मेंटेन की जाएं, ये अब मार्केट में आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब बच्चे भी अर्न करने लगे हैं। यू सी देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीमर्स एंड ऑल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद खर्च कर रहे हैं, जिम में आ रहा उड़ा रहे हैं, माँ बाप ऑब्वियसली मैनेज करते हैं, बट देन उन्हें एक सेंस आ जाता है कि मैं कमा रहा हूं। तो अभी स्कूल में भी जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड ऑल्सो घर वालों की जिम्मेदारी से बनती है उन्हें बताना कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। घर वालों की जिम्मेदारी क्या है कि वो एक पॉइंट पे आके बच्चे को सिचुएशन बताएं कि उनकी क्या सिचुएशन है, वो कितना कर सकते हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं, और कौन सी वो हद है जिसे वो पुश कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू टेल दिस टू योर चाइल्ड, आपने बच्चे को बता दिया कि बेटा ऐसा है, ये वाला कॉलेज जो है ये थोड़ा सा महंगा है, देख मैं इसमें पुश कर रहा हूं, हां मैं अपनी हद को क्रॉस कर रहा हूं एडमिशन दिलाने के लिए, बिकॉज इट इज योर फेवरेट, बच्चे को आपने बताया तो आप उस पर एहसान नहीं जता रहे, है ना। समटाइम्स वो आप कहते हैं हमें तो, हमने तो पेट काट के पाला है बच्चे को। ऑफ कोर्स हर माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, बट इफ यू टेल देम इन अ गुड वे, इन अ सेंस कि उन्हें पता हो कि हाँ

0: मेरे मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा ने ये जो मेरे लिए चूज किया है दे वेंट वे एंड बियॉन्ड तो उसके दिल में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो फाइनेंस को समझता है वो इमोशनली स्ट्रांग होता है एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मुझे भी ऐसे ही मैनेज करते रहना है ना तो रिच और फाइनेंशियली स्मार्ट में जो जो डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा आपको इस पे आएंगे हम तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं वेरी वेरी जनरल क्वेश्चन क्या आप मान लीजिए 1000 रियाल जीत गए ठीक है आपके हाथ आ गए 1000 रियाल अब आप उसका क्या करने वाले हैं आप उसे खर्च करेंगे इन्वेस्ट कर देंगे बचा लेंगे क्या करेंगे आप ये डिसाइड करके आप बता सकते हैं 666-22107 पर एंड ऑल्सो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो बता ही दें प्लीज प्लीज प्लीज जरा बजट पे आते हैं बिकॉज ये चीज मुझे भी बड़ी हिंडर करती है बजट ना फाइनेंशियल सक्सेस का पहला स्टेप है बजट का मतलब सेविंग नहीं होता लेट्स नॉट मेक देम इनटू वन हम कर देते हैं ऐसा बिकॉज हमारा दिमाग वैसे ट्यून्ड अप है बजट का मतलब और सेविंग का मतलब दोनों अलग अलग बजट का मतलब क्या है कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं ये है बजटिंग सेविंग क्या है इतने आ रहे हैं इतने बचा रहा हूं ये दोनों एक नहीं हो सकते सो कोई अगर आपको बजटिंग का ज्ञान देते थे सेविंग पे आ जाता है ना दोज आर दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट फॉर्मूलाज मगर इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स सिंपल मैथ भाई मुझे तो मैथ भी नहीं आती मैं तो मैथ्स में बहुत ही बुरा रहा हूं मगर ये वाली मैथ्स मुझे आती है तो याद रखिएगा इनकम माइनस एक्सपेंस इज योर सेविंग यहां पे आ जाता है आपका बजट करना जैसे मैंने कहा एक स्टूडेंट जो है लेट्स से चलो उसको स्टूडेंट्स को खुश कर देते हैं 1000 रियाल दे दिए भाई हमने स्टूडेंट को ऐश करो आप 200 रियाल उसका ट्रांसपोर्ट हो गया ठीक है 300 रियाल उसने खाने पे खर्च कर दिए 100 रियाल उसके मोबाइल डेटा वेटा सब उसको पकड़ा दिया आपने और एंटरटेनमेंट भी आपने कहा ले बेटा ऐश कर या ले बेटी ऐश कर 150 रियाल एंटरटेनमेंट के लगा लो तो बचे कितने 250 ये 250 रियाल जो है वो है सेविंग आपके अंदर किसी चीज को पाने की चाह पैदा होना बहुत जरूरी है पहली बात तो ये पता नहीं लोग जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कोई मटेरियलिस्टिक चीज खरीदना चाहते हो तो पता नहीं वो क्यों एक अलग तरीके से रिप्लाई देते हैं नहीं जी मटेरियलिज्म से तो हम दूर ही रहते हैं अरे कोई बुरी चीज थोड़ी है बुरी चीज थोड़ी है अब अगर मुझे कल को एक फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप लेना है तो मैं कुछ गलत थोड़ी सोच रहा हूं मैं उसके लिए धीरे धीरे सेव करूंगा एंड आई लव द फैक्ट बहुत सारे बच्चों से मिला रिसेंटली पहले के शोज में भी जो आए उन्होंने बताया कि वो साल भर से सेव कर रहे हैं एक फोन खरीदने के लिए एंड माँ बाप उन पे बहुत प्राउड फील करते हैं और अब जब वो इतना जोड़ जाड़ के फोन लेंगे ना मैं बता रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ जो मजा आएगा उन्हें जो दिल खुश होगा उनका उसका कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि चीज हल्के में नहीं मिली चीज सिखा भी रही है और चीज की कदर हद से ज्यादा होगी सीने से छाती से लगा के रखेंगे वो जब वो फोन लेंगे यही तो है फाइनेंशियल लिटरेसी और क्या है अब मैं आपको ज्ञान देता रहा हूँ और मैं बोलूँ आपसे कि सेव करो रख लो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग यू डोंट अग्री विद मी अरे मैं नहीं अग्री करूंगा अपने आप से मैं नहीं अपने आप से अग्री करूंगा कोई मुझे बोलेगा कबीर साहब ये आप सेव कर लीजिए अरे भाई मुझे कुछ लेना है मेरा मन है नहीं आप सेव कीजिए सेव करना अच्छी बात होती है तो अब वो दो बातें कर रहा है सेव करना अच्छी बात होती है आई एग्री पर मैं अपने हिसाब से बजटिंग करूंगा ना मुझे अगर लगता है कि कितने भी रियाल फॉर एग्जाम्पल मुझे फोन लेना था भाई 5000 का फोन लेना है मैं जोड़ रहा हूँ हर महीने 1000 भी नहीं 500 जोड़ रहा हूँ मैं है ना तो मैं पूरे तो सेव नहीं कर रहा 500 सेव कर रहा हूँ ठीक है टाइम लग जाएगा थोड़ा सा क्या दिक्कत है बीच में हो सकता है भाई कोई एक्स्ट्रा मिल जाए ईदी दे दे कोई तो थोड़ा बढ़ जाएगा मामला पर मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली उस तक बढ़ूंगा और जब मैं खरीदूंगा तो मुझे समझ आएगी कि यार गुरु ये तो बड़ा बढ़िया फॉर्मूला था मुझ पर स्ट्रेस भी नहीं आया खर्च करने का मैंने अपनी पसंद की चीज ले भी ली मैंने बजटिंग भी सीख ली और मैंने सेव भी कर लिया सब चीजें एक साथ आ गई यही जो है वो स्टूडेंट्स लाइफ में अगर आपने सीख लिया अपनी स्टूडेंट की जिंदगी में जब आप स्टूडेंट है कॉलेज के स्कूल के आपका मामला सेट है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मगर प्लीज कंजूस नहीं बनना मत बनना
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के

0: चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड।
2: अब एक इम्पोर्टेंट एडवाइस है, एडवाइस ले लो, फ्री की है, आपको अच्छे लगे ले लेना, मेरा तो काम है आपको बताना। हर एक स्टूडेंट को एक छोटी सी नोटबुक या मोबाइल ऐप में एक्सपेंस नोट करनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस नोट करिए। डोंट यूज अ नोटबुक, हटाओ, वो होगा भी नहीं होता, मुझे पता है। मोबाइल की ना एक ऐप, बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपके एक्सपेंसेस को बताती हैं, उसमें आप जो है सेटअप करके देखें एक बार, ट्राई करें, इफ दैट रियली वर्क्स, बहुत बढ़िया है, नहीं तो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आज से 7 दिन एक्सपेंस जो आप हैं अपने लिखने की कोशिश कीजिए, ये एक्सरसाइज है, इफ यू डू इट करेक्टली फाइन, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मेंटली आपको याद रहता है, बहुत बढ़िया भाई, माशाल्लाह आपके जहन है भी काफी तेज, तो आजकल के तो भाई बच्चे तो अलग लेवल के, तो अगर आप मेंटली अगले 7 दिन के एक्सपेंस आपके दिमाग में नोट डाउन कर सकते हैं, वेल एंड गुड, ईदर राइट ऑन अ नोटबुक और इन योर फोन। फिर आपको ना क्या पता लगेगा, पता है आपको पता लगेगा कि कहां मैं खामखा खर्चा कर रहा हूं यार, खामखा यहां पे मैंने खर्चा किया है, तो ये पता लगता है, इससे आप सेल्फ अवेयर होते हैं, आप फौरन तो नहीं रुकेंगे, हो सकता है वो जो खामखा खर्चा है वो आपको बड़ा अच्छा लगता है बट यू विल एटलीस्ट रियलाइज कि ये खामखा खर्चा किया है मैंने, वो रियलाइजेशन तो होगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको, आपने आइडेंटिफाई किया ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगती और आप एकदम से रुक गए, ये तो नहीं होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, आपने सुना होगा, पता नहीं पैसे कहाँ गए, मुझे पता ही नहीं तो रियलिटी क्या है, रियलिटी है शॉपिंग में चले गए, बर्गर में चले गए, कॉफी में चले गए, विच इज चिल, चिल कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में करो भाई, खर्चा करो, ऐश करो, मौज करो, ये वक्त नहीं आने वाला है। पर अगर कर लोगे ना 20-10 रियाल हर दिन हर महीने, वो जो आखिरी में इकट्ठा होकर मिलेंगे ना, ओए होए होए होए होए, उसकी खुशी का अंदाजा मैं बता नहीं सकता, मैं सोच के खुश हो गया हूं अभी। एंड मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से एग्री करेंगे, इतना करके देखो, हो सकता है कि आपकी चाहत की जो चीज है, जो आप बहुत टाइम से अम्मा अब्बा का सर खा रहे हैं जिस चीज को लेके, आप खुद ही ले लेंगे, खुद ही ले लेंगे, आप ट्राई तो करके देखिए, और ये आपके आगे काम आएगा। अभी तो ठीक है, एक एक्सरसाइज की तरह है, बट ये आगे काम आ सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेविंग की इंपॉर्टेंस, ये बहुत लोगों का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे आपको। सेविंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होती, लोग बोलते हैं भाई पैसा होगा तब सेव करेंगे ना भाई, अरे स्टूडेंट्स की भी सेविंग होती है भाई, और स्टूडेंट सेविंग करने बैठते हैं बहुत, हमारी अम्मा ने जिंदगी भर जो है थोड़ा ही काम किया, उसके बाद उन्होंने कहा रेस्ट करूंगी, मगर जितना रोकड़ा उन्होंने सेव किया है घर पे, और बहुत सारी माओ ने, वो काम कर काजी लोग भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये ही तो क्वालिटी है। तो आप ये इक्वेट करना कि भाई जब पैसा होगा तभी सेव करूंगा, नॉट राइट, सिर्फ अमीर थोड़ी सेव कर रहा है, स्टूडेंट्स भी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं जब वो चाहें, पहले सेव करो फिर खर्च करो, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं दिल्ली में एक नोएडा जगह वहाँ पे काम करता था, ठीक है, एंड डेली का हो गया था कि भाई एक बर्गर मिलता था और वो उस टाइम पे 20 रुपए का आता था, बढ़िया तला हुआ, मुंह में पानी आ गया सोचिए, उस पे रखता था बंदा बढ़िया आलू टिक्की सेक के, उस पे सफ़ेद प्याज, तबाही चटनी डाल के, 20 रुपए का था, चल रहा था मामला, डेली घर जाते ढलान पे खड़ा रहता था वो ले देते बर्गर अपने घर। फिर क्या हुआ कि थोड़ा लगा कि यार साइड में एक और दुकान खुली है, थोड़ा सेव करके जाएंगे, तो पहले क्या किया, पहले सैलरी नई नई आई तो पहली तारीख को वो नई चीज खाने चले गए, वो बढ़िया चौमिन देते यार, बढ़िया वाली 40-50 रुपए की, तो खर्च करने से डरते थे, फिर हमने कहा अरे काम करते हैं, चौमिन के लिए पैसे ना रखना शुरू कर देते हैं, बीच में कभी खा लेंगे साथ में, पार्टी वार्टी कर लेंगे। अब बीच में फिर ऐसा किया तो वो 10-10, 20-20, 5-5 इकट्ठा होके कहां तक जा सकते हैं यू डोंट नो। एग्जांपल फिर से, एक स्टूडेंट 4 रियाल सेव करता है, एक साल में कितने हो गए, 1200 हो गए, ठीक है, बीच में उसको ईदी वीदी भी मिल जाएगी, घर से बोनस भी मिल जाएगा, 2-3 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो 100-200 ऊपर से और ले लेगा, कुल मिला के 1500-2000 तक तो पहुंच ही जाएगा, है ना। अब बीच में आ गई इमरजेंसी, मोबाइल हो गया डैमेज, अब्बा कह रहे बेटा और चलाओ, अम्मा कह रही मैं तो नहीं, अच्छी बात है फोन से दूर रहेगा, अब आपके पास है, आपके पास तो पड़े हैं, आपने सेव किए थे ना, हो गया मोबाइल ठीक,

और हमारे मुल्क में तो बैक इन इंडिया एंड पाकिस्तान आई एम प्रीटी श्योर लोग बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका मेडिकल इश्यूज में काम आ जाते हैं भाई. यू नेवर नो समटाइम्स यू हैव इमरजेंसी. आपको लगता है यार बताओ ये पैसे यहाँ लग गए बचाए थे. ये सैड होने वाली बात नहीं है. आप सोचिए कितनी खुशनसीबी कि ये पैसे आपके काम आ गए बचाए हुए. एकदम से ट्रैवल करने का मन कर गया. स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कॉलेज से निकले मन कर यार एक काम करते हैं भाई आज मुशारिफ चलते हैं यार भाई आज बढ़िया वाला पिज्जा खाएंगे वहां. वैसे मिलता भी वहां पे वहां बढ़िया वाला पिज्जा खाएंगे. अब चले गए वहां पे अब आपके पास सेविंग है तो आपने कहा यार आज खुल के पार्टी करें. तो वो मजा जो है जिंदगी का वो भी तो जरूरी है. तो ये करें आप बिल्कुल खर्चा करें मगर 10-20-5-10 किधर उधर सेव करते रहे. आप ही काम आना सही बता रहा हूँ आप ही काम आएगा मौज करोगे भाई. एंड इस तरीके से सेविंग हेल्प करती. मैं ये नहीं कह रहा कि जाके स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो. लोग बड़ी बड़ी बातें करते डोंट गो फॉर दैट. पर सेविंग के अलग अलग तरीके जरूर है. मैंने आज भी दिखा है एंड आई रिमेंबर अ चाइल्ड उसका नाम बोल रहा हूँ बच्चे का बहुत प्यारा नाम था बच्चे का यूनिक नाम था. वो आज भी पिगी बैंक में यूज करता पिगी बैंक में डालता रहता वो. कभी 5 रियाल डाल दिए 2 रियाल डाल दिए 10 रियाल डाल दिए बढ़िया भर रहा है उसमें मजा आ रहा है. एंड जब वो उसे तोड़ेगा तो उसके मजे आएंगे है ना. बड़ों के लिए हम कहते हैं सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दो नोट उसमें डाल दो भूल जाओ. करते हैं लोग और करना चाहिए. एक होता है डिजिटल वॉलेट देखा ना आपने. ये बड़ा यूनिक तरीका मैं आपको बताता हूँ उसकी ट्रिक गौर से सुनना. जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में हो कॉलेज में हो जिनके पास फोन है. स्कूल वाले नहीं है फोन यूज नहीं करना ठंडी बात. जो कॉलेज में बच्चे अभी मेरे खिलाफ होने वाले अंकल ने फोन चिनवा दिया मेरा. जिनके पास फोन है स्पेशली कॉलेज में जो है डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करें. यू विल गेट सो मेनी एप्स जहां पे आप डिजिटल वॉलेट रख सकते हैं. स्टार्ट सेविंग इन दोज वॉलेट्स है ना. एंड वो नंबर आपको मोटिवेट करता है. या फिर सब हटा दो गोल रखो अपनी जिंदगी में. यार मुझे जो है ना मैं अभी हूँ लेट्स से चलो बीच का रास्ता पकड़ते हैं. मैं अभी 12th में हाँ और मुझे जो है भाई साहब कॉलेज में जाते के साथ ही बढ़िया एकदम कुछ शॉपिंग करनी है बढ़िया वाली. कॉलेज में आपके भाई से सुंदर कोई लगना नहीं चाहिए. तो घर वाले तो दिलाएंगे ऑफकोर्स घर वाले. पर अपनी मर्जी का जो है ना अपने पैसे से हो सकता है आपने पहले से सेविंग की हो. तो गोल एक होना चाहिए. वो गोल ना आपको अपने आप सेव करवा देगा. पर इतना भारी बोझ नहीं लेना है. लोग जो सेविंग का बोझ देते हैं बोझ नहीं लेने का है कि 100 रियाल हर महीने डालने ही डालने हैं. नहीं कभी 50 कभी 100 कभी 20. स्टूडेंट है ना आप कोई ये लोड नहीं है. बड़े को करने दो इनको करने दो सिर्फ खरीदने दो इन्हें गोल्ड. आप जो है मेरे पे ध्यान दो. तो मोटिवेशनल बहुत जरूरी है. यू नीड टू फाइंड अ सर्टेन गोल. छोटी सेविंग्स फ्यूचर में बहुत आराम देती है. बस छोटी छोटी सेविंग्स. इसलिए मैंने छोटी छोटी सेविंग्स की बात करी. ये भी नहीं कि 1000 आए 500 डाल दिए. ठीक है आप कर सकते हैं तो कीजिए. 1000 आए ना 800 खर्च करो 200 डाल दो. अगली बार 1000 आए ठीक है 900 डाल दो 100 खर्च कर दो 100 सेव कर लो. कई मरतबा ऐसा होगा 1000 आएंगे है ना आप पीछे बैकलॉग में सेव हुए 500 ठीक है यार इस बार 1000 उड़ा दिए. ऐसे क्या होगा ना योर मेंटल बैलेंस विल बी क्रिएटेड कॉन्स्टेंटली. हो सकता है आप 1000 में से सब गए 950 चले गए 50 आपने कहा भाई मैं रोक नहीं पाऊंगा. ये आपने सेव किया. ये स्मॉल सेविंग्स एड अप टू अ वेरी वेरी गुड फ्यूचर. एंड डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन स्कैम से जरूर बचते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको काबू नहीं है कार्ड पे और माँ बाप ने कार्ड दे दिया एक लिमिट लगा के रखें बैंक कार्ड्स पे. बैंक कार्ड्स में ऑप्शन है कतर में भी कि आप लिमिट लगा सकते हैं कि इसके बाद ट्रांजेक्शन नहीं होगा. सब कुछ ऑनलाइन है आई नो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग हो शॉपिंग हो ट्रांसफर्स हो स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका ये कि आपने कार्ड पे लिमिट लगा दीजिए. वो लिमिट आप कभी भी हटा सकते हैं बट टेल द बैंक कि ये मेरी लिमिट है इतना ही खर्चा मैं कर पाऊँ इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. दिस इज अगेन अ वे. कॉमन स्टूडेंट जो स्कैम्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और ये बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकते हैं. इसमें नकली जॉब ऑफर्स हैं OTP वाले स्कैम्स हैं गिव अवे लिंक्स आते हैं ले लो रिचार्ज ले लो भर भर के फोन ले लो. गेमिंग के स्कैम्स होते आते हैं बच्चे जो गेमिंग करते हैं प्लीज स्कैम से बचें. और गेमिंग के लिए कोई भी एडवाइस चाहिए ना सुनो कॉन्टेक्ट मी FM 107 का तरह अपन आप क्यों मेरी बीच की बात. इसके अलावा फेक इन्वेस्टमेंट ऐप से बिल्कुल मत जाइए. लोग आपसे कहेंगे कि अगर आप यंग हैं आप इन्वेस्ट कीजिए क्रिप्टो करेंसी में. नहीं डोंट डू दैट आप

0: अभी आराम करें, मौज करें, छोटी मोटी सेविंग करते रहें, इतने बड़े बड़े सपने नहीं पालिए। इसके अलावा एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने आपको मैसेज भेज दिया, मैसेज आया
1: 7 करोड़ रुपए,
0: नहीं किसी ने 10,000 रियाल का आपको मैसेज दिया, जीत गया, लिंक ओपन कीजिए, ले जाइए सीधा बैंक में, क्लियर स्कैम। और यही बात क्रिएटिवली कहना अब ये स्कैमर सीख चुके हैं, तो इनसे बच के रहना। सेफ्टी टिप्स क्या है, OTP शेयर नहीं करना है, अननोन लिंक्स जिसका आता पता नहीं है क्लिक कर, वैसे तो फोन पे लिंक्स क्लिक किया ही मत करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, एक पासवर्ड हर किसी अकाउंट का मत रखें, और ट्रस्टेड ऐप्स यूज करें। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, पैसा बचाना भी है, ये दोनों के बीच का बैलेंस अगर आपने बिठा लिया, इट्स ऑल सेट, ऑल डन। अब एक बात है इन्वेस्टमेंट की, लोगों की रूह कांप जाती है जब उनसे कहता है इन्वेस्टमेंट, डर जाते हैं वो। बेसिक नॉलेज हर स्टूडेंट को होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। सिंपल डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा ऐसी जगह लगाना जहां पे वो बढ़ सकता है ना। एग्जांपल क्या है, एजुकेशन, अपने स्किल पे, सिर्फ पैसे से पैसा नहीं बन रहा है, स्किल पे क्या हुआ, आपने खर्च किया, कल को भाई मैं गिटार सीखने जाऊंगा, गिटार सीखने चले गए, स्विमिंग सीख ली, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, यू आर पुटिंग आउट मनी टू लर्न समथिंग, है ना। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिटर्न्स होते हैं ना, द स्किल दैट यू आर अक्वायरिंग इज योर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न आया ना आपके पास, तो वो एजुकेशन हो सकता है, कोई डिफरेंट कोर्सेज कर लिया आपने, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स, यू नो, म्यूचुअल फंड्स, ये आगे जाके, मगर इससे पहले जो है अपनी स्किल को रवा कीजिए, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। स्किल जो इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, है ना, फ्रीलांसिंग कर ली थोड़ी बहुत इनकम के लिए, और वो पैसा यहाँ लगा दिया, तो सिर्फ पैसा सेव करना इनफ नहीं है ना, पैसा ग्रो कैसे होगा, अरे स्किल अगर आपने सीख ली, उस स्किल से आप आगे कर सकते हैं। तो इजी एनालॉजी है, बीज जमीन में लगाओ तो पेड़ बन जाएगा, वैसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर जो है इनकम बनाती है। तो पैसा लगा के मेरा पैसा रिटर्न आए, वो भी एक तरीका है, मैंने पैसा स्किल में लगाया, उस स्किल को सीखने के बाद मेरा हुनर बढ़ा, मैंने पैसे बनाए, ये भी एक लॉन्ग गोल है, एंड इट वर्क्स रियली रियली वेल। फाइनेंशियली सक्सेसफुल फ्यूचर बनाने के तरीके बहुत आसान है, सारे मैंने आपको बता दिए। तो बड़े बड़े ज्ञान किसी से लेने का ना है, किसी से नहीं लेने का, तो इन सब बातों का जरा ध्यान रखें, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बजट क्या होता है, सेविंग क्या होती है, सारे हमने बात कर ली है। अब बस याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, और पैसे से स्किल अक्वायर करना और फिर पैसा बनाना, ये भी एक स्किल है ना। तो बस ये मैनेज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बहुत आसान लफ्जों में से तोड़ ताड़ के बताने की कोशिश करी, आई होप इट वुड रियली हेल्प यू। बाकी स्टूडेंट्स गाइड के जितने एपिसोड आपने सुने हैं, विच वन वॉज योर फेवरेट टॉपिक, और कोई मुद्दा आपके पास है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 ये हमारा व्हाट्सएप है, आप प्लीज शो में भी मुझे बताइएगा। एंड अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर आएँ, FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से भी हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। Maasalama.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: سامعین کرام، عربی زبان کی مشہور اور طنزیہ کہاوت ہے، حافظ الحبہ ودافق الدبہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو پیسے پیسے پر بخل کرتا ہے، اپنی ضروریات اور گھر والوں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن جب کسی غیر اہم یا فضول چیز پر آتا ہے تو ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے۔ یہ کہاوت ایسے شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں تنگی کرتا ہے، مگر نمود و نمائش یا غیر ضروری چیزوں پر بے دریغ پیسہ بہا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کئی جملے اور کہاوتیں رائج ہیں جو اس صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں۔ ویسے کہتے ہیں نا، کپڑے کی جیب خالی مگر باتیں لمبی چوڑی، یا پھر گھر میں فاقے باہر دکھاوے، یعنی اہل خانہ بھوکے رہے مگر دنیا کے سامنے شان و شوکت دکھائے۔ دوستوں، یہ سب کہاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سخاوت وہ ہے جو اپنے گھر اور ضرورت مندوں سے شروع ہو، ورنہ جو انسان اپنے اولاد اور اہل خانہ پر بخل کرے مگر غیر ضروری چیزوں پر دل کھول دے، اس کی فیاضی اصل میں تماشا ہی ہے۔
4: اس عید دنیا کے رنگ، روایت اور خوشیاں ایک ساتھ انڈیا سے پاکستان تک، قطر اور

सेक्रीफाइस की इंपॉर्टेंस कितनी होती है. अच्छा मतलब किसी भी फैमिली मतलब एज अ फैमिली आप होल फैमिली देखें तो अगर किसी फैमिली में उनका ईमान उनका बिलीव बहुत स्ट्रांग है और सेक्रीफाइस करने के लिए एक दूसरे के लिए वो तैयार भी रहते हैं और फिर दूसरे लोगों के लिए भी मतलब उनके अंदर जज्बा कुर्बानी पाया जाता है. तो इस हवाले से इंशाल्लाह ताला आज हमने बात करनी है. आप शामिल हो सकते हैं 4433377 पे कॉल कर सकते हैं और 6662107 पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं. तो जैसे आपको आसानी हो आप कॉल कीजिएगा या फिर आप मैसेज कीजिएगा लेकिन शो में ज़रूर शामिल होइएगा. और शो बहुत ईजी है मतलब अगर आप चाहते हैं फेथ और सेक्रीफाइस के हवाले से जिस हाँ मतलब एक हमें पूरी वो मिलती है ना रिवायत मिलती है हमें पता चलता है कि ये जो हज के दिन हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये सब कुछ हम करते हैं जो जो हम रुकन अदा कर रहे होते हैं जो फ़राइज़ है हमारे ऊपर तो ये क्यों है. ये डेफिनेटली हम सब लोगों को पता है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा कर रहे होते हैं और उनकी जो सुन्नत है उसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का क्या रोल रहा किस तरह से अल्लाह के ऊपर यकीन करते हुए वो अपने बेटे तक की कुर्बानी देने को तैयार हो गए. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली मतलब वो तो अम्बिया थे और हमारे और उनमें बहुत फ़र्क है डेफिनेटली. लेकिन अल्लाह ताला ने एक मैसेज देना था कि जब भी बात आती है फोकियत की ना हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी की तो वो कहाँ पे होनी चाहिए. अब हमारी ज़िंदगी में किस तरह से ये चीज़ हो सकती है हम अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए और हमें कॉल कीजिए. और अगर नहीं थोड़ा मसला हो रहा है तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं समझाती हूँ. और लेकिन अभी हम चलते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं. आप लोग कॉल कीजिएगा मैसेज कीजिएगा क्योंकि उसके बगैर ये शो नामुकम्मल है. तो एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: हज के दिन 9 दुल्हिज्जा सन 1447 हिजरी के मुताबिक 26 मई को FM 107 पर सुबह 8 बजे से 11 बजे आरजी सरवर मिर्जा के साथ होंगे एक मौजूद मेहमान हज के खसूसी प्रोग्राम के लिए, और दोपहर 12 बजे सैफ और रहमान अपने मेहमान के साथ FM 107 के स्टूडियो में होंगे और सपहर 3 बजे तक हज का खसूसी प्रोग्राम होस्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक दिन की नेमतों का हकदार बनाए।
3: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउसफुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउसफुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें। Cause you're welcome in our हाउसफुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
4: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगु, ईद की खुशियां, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियां FM।

0: महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार, ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: well, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 एफएम और जल्दी से मैसेजेस पढ़ देती हूं। मैं आपके फिर कॉलर हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड इवनिंग मावशी, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू द शो डियर फैमिली। मोहम्मद यूसुफ खान हैप्पी मंडे कहते हैं, आपको भी है हैप्पी मंडे, भी इसके साथ ही साथ आने वाली ईद मुबारक और आपको कल का इंशाल्लाह ताला हज भी मुबारक। जो जो इबादतें करेंगे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मावश खान बहन ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब और एडवांस में ईद की खुशियां मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी का हर दिन ईद की खुशियों की तरह खूबसूरत और पुरसकून बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला यही दुआएँ आपके हक़ में भी कबूल करें इंशाल्लाह। और मैडम जी, ईद मुबारक दिल से जसविंदर सिंह काला, दिल से देसी, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जसविंदर सिंह काला। और अमजद इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कतर, सबको बहुत सारा नेक दुआएं और इसके साथ ही तमन्नाएं नेक दुआओं के साथ, और सबको एक याद दहानी करानी है, वो ये कि कल के रोज़े का बहुत सवाब है और छुट्टी भी है, और कोशिश कीजिए कि कल के रोज़े के लिए, और इस दफ़ा तो पाकिस्तान में भी और कतर में भी एक ही दिन ईद है तो ज़बरदस्त। और हमारी याद में तो ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ही हो रहा है, जो कि बहुत ही मतलब एक दिन आ रही है और ईद भी हम सब लोग साथ मनाएंगे और कल का रोज़ा भी इंशाल्लाह साथ रखेंगे। कल अरफा का दिन है और अरफा के दिन के रोज़े का बहुत सवाब है, बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम, सबको सलाम और दुआ। बिल्कुल जी, कल का रोज़ा बहुत ज़रूरी है, ज़रूर रखना चाहिए, और जितना हो सकता है कल के दिन ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और वो जो एक हज की लाइव ट्रांसमिशन आ रही होती है ना, सबसे अच्छा ये होता है कि पूरे दिन बैठ के लगा के देखें भी, और उसमें मुसलसल जो है ना आप साथ साथ उसके विर्द भी कर सकते हैं, और वो जो माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त मनाजिर होते हैं, तो एक अच्छी मतलब एक चीज़ है कि आप टीवी पे सुकून से बैठे हुए रोज़ा आपने रखा हुआ है, साथ साथ आप पढ़ने का आपको मौका मिलता रहेगा, तो अच्छा है ये एक। हम हमेशा तकरीबन यही करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि शेयर कर देती हूँ। चलिए जी, इसके साथ कॉलर है हमारे साथ और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं मिस अली, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू,
0: क्या हाल चाल है मिस अली आपके, और माजरत कल के लिए, कल मैंने आपका मैसेज बहुत लेट देखा।
1: जी बात थी, तो उसी से जोड़ेंगे और उसी से तसलसल जो है ना आज की बात तक आएंगे, कोशिश करूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड टू ऑल कतर, और ईद की पेशगी सबको मैं मुबारकबाद दूंगी। और दूसरा ये कि जो लोग जो हुजाज कराम हैं, अल्लाह ताला उनके जो हज है, जो मनासिक हज हैं, वो सही तरह से वो अदा कर सके, और दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों को भी काबा दिखा दे मौला का, सुन सुन के मेरा तो बुरा हाल हो गया रो रो के, ये सुन सुन के पता नहीं कब होगा, कब होगा उस अल्लाह के घर का दीदार। दुआ करें हमारे लिए भी कुछ।
0: आपने उमरा किया है?
1: ना मैंने उमरा किया है, ना मैंने हज किया।
0: अच्छा अच्छा, नहीं इंशाल्लाह ताला, नहीं इंशाल्लाह ताला करवाएगा, जरूर करवाएगा।
1: वैसे एक जमाना था, मैं आपको सच बताऊं क्या नाम है, मैं एज अ ट्रैवल एजेंट काम करती थी, और मेरा जो बेसिक जो मेरा काम होता था ना, वो पैकेजेस बनाना था उमरा और हज के लिए, और ये बड़े बड़े ग्रुप तैयार करने गर्लफ्रेंड के साथ मिलके, और क्या नाम है, फिर पैकेजेस करने सऊदी एयरलाइन, यानी कि सबके साथ, और सबसे यही कहना कि प्लीज मेरे लिए भी दुआ करो कि मुझे भी अल्लाह ताला बुलाए मैं, और मैं अब देखो घर बैठी दुआ सबसे कहती थी करो कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी कुछ सबब वसीला बनाए, तो बस किस्मत की बात होती है। अच्छा जी, कल आपके जो रिश्ते के हवाले से बात मैं सुन रही थी, उसके बड़े अकवाल हैं उस पर, बहुत बात बड़े लोगों ने बात की है, बहुत अच्छी बातें की, तो मुझे तो एक बात बड़ी अच्छी लगी थी जो मैंने पढ़ी थी, और मैं वो शेयर करना चाह रही थी कि अगर रिश्ता निभाना हो ना तो आंखों से सीखो, जो एक साथ हंसती हैं, एक साथ रोती हैं, एक साथ सोती हैं, एक साथ जागती हैं, और जब बंद होती है तो इकट्ठे ही बंद हो जाती हैं। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल महवेश, दुनिया में कोई भी रिश्ता जो है ना वो टिल एंड या अटूट होता है। देखिए कितना अहम है कि पेरेंट्स वो भी जब टाइम हो जाता है तो वो भी चले जाते हैं छोड़ के, बहन भाई है वो भी किसी ना किसी वजह से छोड़ देते हैं, अगर अजवाजी जिंदगी में आए तो वहां पर भी अल्लाह, पहले तो मैं नहीं कहूंगी, वहां पर भी कुछ मसले मसाइक हो जाते हैं, फिर बच्चों का आ जाता है वो भी बदल जाते हैं, कोई भी टिल एंड तक नहीं चलता। तो मेरा तो ख्याल है, मेरे भाई कह रहे थे कि वो भी सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सबसे अच्छा जो रिश्ता है ना वो इंसान का अल्लाह के साथ,
0: बिल्कुल, और सबसे वही है वो
1: उसी
0: हमेशा
1: से जोड़ के रखना चाहिए, उसी से जोड़ के रखना। मैं बड़ी बड़ी उनकी बात से, मैंने कहा बिल्कुल सही है, हम उसी के साथ ही जोड़ कर रखें, और फिर उससे जब हमारा रिश्ता, जो अकीदत, जो हमारा दीन, जो ईमान जो आता है, जो आज का आपका जो आ रही हूँ मैं फेस पे, अकीदा है, ईमान है, उसी पे ठीक है, उसी पर पुख्ता ईमान के साथ ही हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं. देखिए हम गुनहगार लोग हैं, इतने नहीं है, दीनदार भी नहीं है, हमारी तो नमाजें भी ठीक नहीं है, हमारे तो कोई अमाल भी पता नहीं शायद इतने अच्छे हैं कि नहीं, बातें ही कर लेते हैं, बस कोशिश करते हैं कि चलो कुछ बातों का ही खटिया खा लें. यही है कि चलो शायद वही कुछ का खा लें, शायद वो कोई अच्छी बात जो हम तक है वो हम आगे शेयर कर दें, तो चलो ये भी एक सदका जारिया है, अदरवाइज है कुछ भी तुम्हें तो ये हमारा ईमान ही होता है. ये हम देखे ना, हम अंबिया कराम की बात करें तो जो कुर्बानी का जो अहम जो है वो हमें क्या याद दिलाता है कि अपनी सबसे कीमती चीज भी औलाद से बढ़कर कोई चीज कुर्बान नहीं, कोई नहीं कुर्बान कर सकता. तो हमारे नबियों ने तो ये तक भी कर दिया है.
0: बिल्कुल,
1: ये अगर देखे ना जज्बा, अगर इंसान गौर से देखे तो क्यों, मैं जब कुरान के वो अल्फाज पढ़ती हूँ ना, वो आयात पढ़ती हूँ ना, कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हमें आपके मतलब कुर्बानी चाहिए, तो कि पहले दिन जानवरों की कुर्बानी करते, फिर भी वो मतवासर तीन दिन वो ख्वाब आता रहा है, तो पता चल के अल्लाह सबसे कीमती चीज औलाद मांग रहे हैं. तो फिर बेटे से बात की तो फिर हुक्म हुआ कि या बेटे अगर बच्चा छोटा है और वो डर जाता है कि मैं कैसे, तो वो क्या आगे से फरमा रहे हैं हजरत इस्माइल कि या अब तिफल मा तो उमर, कि अल्लाह ए मेरे प्यारे अब्बा जो आपको हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए. देखे ये है सेक्रीफाइस. और इंसान नॉर्मल जिंदगी में अगर सेक्रीफाइस करता है तो वाकई किसी ने अभी बड़ी अच्छी बात की है कि अल्लाह ताला चुन लेता है उस इंसान को, क्योंकि अल्लाह ने उस इंसान को बनाया है. ये जो हम बात परदेसों की है, कभी कभी हमें बहुत सी अपनी जरूरतें, अपनी खुशियां जो है ना मारनी पड़ती हैं अपनों के लिए.
0: बिल्कुल,
1: अपने आप को पीछे रखना पड़ता है. कुर्बानी वही दे सकता है जिसमें ये जज्बा हो.
0: ऐसे ही
1: जो अपना मन मार ले, जो अपनी जरूरतों को एक तरफ रख दे और दूसरों की जरूरत पूरी कर दे. और मेरा तो पहले दिन से ही इस पे ईमान है कि जो अपना, जो दूसरे के मुफाद को अपने मुफाद पर मुकद्दम रखता है, अल्लाह ताला के हाँ उसका बड़ा अजर है. मैं इसी को लेकर चली थी और मेरा इसी पर ईमान है. यहाँ नहीं तो कहीं तो होगा ना इसका
0: इंशाल्लाह ताला. और वो चीजें वही हैं कि जो चीजें नहीं हो रही होती हैं वो अल्लाह ताला आपसे, मतलब जो भी शख्स ऐसा है उससे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो उसको यहाँ नहीं, वो उसको अगली दुनिया में देना चाहता है.
1: ठीक है, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. ये तो चंद साल जिंदगी है, किसी की सुन लेंगे, कहीं बर्दाश्त कर लेंगे, कहीं सुन लेंगे, या मतलब तकलीफ बर्दाश्त हो जाएगी. ये लिमिटेड है फॉर टाइम बीइंग, नॉट फॉर एवर. सो आगे तो ऐसा कुछ नहीं है ना.
0: बिल्कुल,
1: तो जो चीजें, अगर जो चीजें यहाँ नहीं मिल पाई तो हो सकता है आगे ऐसी जगह मिले जहाँ वो हमसे छीनी नहीं जाएंगी, जहाँ वो क्या नाम है, हमसे जुदा नहीं होंगे वो रिश्ते. ठीक है ना. यानी एक यानी कि मैं बात करती हूँ, यानी कि शौहर है, ठीक है, वो आगे वही मिलेगा जो अल्लाह ने मुनासिब. औलाद है वो फर्माबरदार होगी, यहाँ दुनिया की औलादों की तरह नहीं होगी, नाफरमान, एक मिल गया तो दूसरे को छोड़ दिया, ऐसी नहीं होगी, या अपना टाइम निकाला और माँ बाप को छोड़ दिया या बहन भाइयों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा. वहाँ पे सब मिलने वाला ही है,
0: दायमी रिश्ते. बिल्कुल,
1: वो है
0: और मुखलिस. बिल्कुल,
1: वो है अटूट रिश्ते. वो आगे, वो यहाँ नहीं, वो दुनिया के रिश्ते बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं. बस इनको इनको निभाने के लिए हमें थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की जरूरत है, तभी कायम रहते हैं रिश्ते. अदरवाइज, और ये रिश्ते और ये सेक्रीफाइसेस और ये अकीदे, ये सब कुर्बानियां मांगते हैं. ये है हमारा आज का आप लोगों के लिए मैसेज. आई होप कि क्लियर हो गया होगा और मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा.
0: बहुत शुक्रिया मिस अली, थैंक्स अ लॉट.
1: अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे. अल्लाह ताला आपको, आपके बेटे आपके लिए इतने अच्छे साबित हों कि आप के मिसाली बेटे हों और शौहर.
0: आमीन आमीन.
1: मेरी दुआ है आपके लिए बेटा, ये आपके लिए दुआ है मेरी. जितनी आप अच्छी है ना,
0: चले बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे लिए दुआ वाकई, मतलब कोई भी देता है ना, मेरे लिए बहुत, मैं दिल से दुआ कर रही होती हूँ उस वक्त. अल्लाह ताला जो दुआ करे कबूल फरमा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए भी
1: 24 घंटों में कोई ऐसा वक्त होता है जो कबूलियत का वक्त होता है, तो कभी कभी हो जाती है. अल्लाह करे जो मैंने कहा है वो आपको लगे.
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू. आपको भी, और मैं इंतजार करूंगी सुबह 7 से 9 का. ठीक है,
1: इंशाल्लाह मैं जाती हूँ तो मैं जरूर कॉल करूँ।
0: चले ठीक है बिल्कुल।
1: नहीं मैं शायद तो मैं जरूर जागूंगी। नो प्रॉब्लम।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो हमारे साथ ही मिस अली और उसके साथ ही, अच्छा कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे लेकिन वही है कि कॉलर हूँ तो फिर मैं कॉल नहीं ले रही हूँ ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े बहुत देर तक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक प्रोग्राम जाते जाते आप ये भी रखें कि आपकी फैमिली में से अगर कोई टीचर था उससे आपने पढ़ा तो क्या मतलब कुछ ना सख्ती की क्या किया। अच्छा, अब हमारा ना ये डियर फैमिली का अमजद इकबाल साहब लास्ट शो होगा संडे को और उस दिन का मैं वैसे ही मतलब डिसाइडेड हो चुका है कल, बल्कि मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि वो हमने उनके कहने पे अली रज़ा की बात मेरे जहन में थी तो कहानी घर घर की रखा है, तो उसमें आप जो भी बताना चाहें आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा कॉलर को जल्दी से ले लेते हैं फिर मैसेज शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है?
2: मिसेस
0: अफजल, सॉरी। अच्छा, आपकी कॉल काफ़ी देर से मैं ये नंबर देखे जा रही हूँ आ रहा था और मैं सोच रही थी कि आपकी आ जाए कॉल, जिनकी भी कॉल है। सॉरी, कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए।
2: आज मेरे पास मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था तो बहुत अच्छा।
0: अच्छा, तो आपको वो नंबर मैंने बताया था ना? हाँ, मैंने आपको नंबर बताया था 666-22-107। ये नंबर आप नोट कर लें, जब भी कभी ऐसा हो मुझे मतलब मैसेज कर दिया करें हमारे व्हाट्सएप पे, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी।
2: अच्छा, मैं आपका नंबर नोट कर लिया।
0: 666-22-107
2: मेरे पास है, लेकिन मैंने कहा क्या मैं आपको डिस्टर्ब करूं?
0: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आप कॉल कर देती हैं तो फिर मैं आपको पहले कॉल मिला चुकी होती।
2: सही। और आज आपका टॉपिक क्या है? मैं
0: आज हमारा टॉपिक तो है फेथ, फैमिली फेथ एंड सेक्रीफाइस, लेकिन मिसेस अफजल बिल्कुल हमारा आखिरी का टाइम रह गया तो अब हम बात शुरू करेंगे और फिर एंड हो जाएगा, है ना? तो इंशाल्लाह हम वैसे बात करेंगे और आपको बहुत एडवांस मेरी तरफ से मुबारक हो। 7 से 9 में आने वाली हूँ इंशाल्लाह ईद के दिनों में, तो आप अगर जागी भी हो तो जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक है,
2: वैसे आपको बहुत बहुत।
0: हाँ जी जी, ईद के चारों दिन होंगे जी जी, तो आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है,
2: ओके ओके।
0: बहुत बहुत मुबारक हो, माजरत बिल्कुल आखिर में आपकी कॉल लगी है तो इसलिए अभी बात नहीं हो सकती।
2: कोई बात नहीं, फिर सही जिंदगी रही तो फिर सही
0: इंशाल्लाह ताला, ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो इसके साथ ही हमारे पास है मैसेज मोहम्मद यूसुफ खान, कहते हैं जी जरूर, आप सभी को खैर मुबारक, जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम बहन, और मिस अली इंटेलिजेंट है बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और ये किसने कहा? ये कहते हैं रिफत हुसैन, जबरदस्त। और इसके साथ नसीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात, तो आपको भी मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। और इंशाल्लाह 7 से 9 आप सब लोग ही, सबसे दरख्वास्त है कि 7 से 9 हम उठ रहे हैं तो आप भी उठ ही जाइएगा, कोशिश कर लीजिएगा कि सुबह 7 से 9 जो है आ जाएं और आके जो है हमारे साथ शामिल हो ईद की मुबारकबादों में। अपने ईद के किस्से और सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर सुनाइएगा, हम इंतज़ार करेंगे बहुत ही बेताबी के साथ आपका इंशाल्लाह ताला। ये पहली दफ़ा ही हो रहा है मेरा ख्याल है, मैं इतनी सुबह शो करने वाली हूँ, फिर उसके बाद बस ये ईद के 4 दिन के बाद एक दिन आएगा बीच में और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे से मुलाकात होगी। तो ये सुबह की जो है ना रूटीन तो अल्हम्दुलिल्लाह है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं, उठने वाली रूटीन का मसला नहीं है। हाँ, पहले होता तो ज़रा मसला हो सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब तो उठने की आदत हो चुकी है। लेकिन अल्लाह करे कि जिस तरह से ये वाला शो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छी तरीके से निकलवा दिया है, तो इंशाल्लाह ताला अब ये जो नया एक सफ़र शुरू होने वाला है अल्लाह ताला उसमें भी इंशाल्लाह ताला साथ दे। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, और वैसे ही जैसे आपने इस शो में साथ दिया है आगे भी मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से साथ देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल ज़रूर रोज़ा रखिएगा इंशाल्लाह, और जितना हो सके दुआएं मांगिएगा, क्योंकि कल के रोज़े की, कल के दिन की बहुत फजीलत है दुआएं। अल्लाह ताला, मैं अभी कहीं देख रही थी कि जितनी दुआएं अल्लाह ताला इस दिन अरफा के दिन कबूल करता है, और कोई दिन ऐसा नहीं होता जहां इतनी दुआएं कबूल की जाएं। तो इंशाल्लाह ताला दुआएं कीजिएगा अपने लिए, अपने से वाबस्ता लोगों के लिए, हमारे लिए, सबको दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, आपसे मिलते हैं ईद वाले दिन सुबह 7 से 9 ईद क्या नाम है मॉर्निंग मस्ती, हाँ मॉर्निंग मस्ती में। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से आज तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक, टाइम चेक।
2: जी अभी भी टाइम टाइम चेक FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में 5:02 मिनट।
1: यू आर

0: मुझे मीठी मीठी नींद सी आ रही थी दोपहर का खाना खाने के बाद, और एक तो आजकल गर्मी भी, ये वाली गर्मी में और अच्छी नींद आती है कि बस लाश बन के सो ही जाऊं लेकिन लेकिन काम रहता ना, इसी समय पे काम है कि जब सबसे अच्छी सबसे प्यारी नींद होगी। खैर क्या कर सकते हैं, अब ये तो वही है कि काम कर रहे हो तो करते रहो, जिस दिन लेकिन मौका मिल गया भाई साहब मैं खींच दूंगा बहुत लंबा। बाकी ये है कि अभी मैं सुन रहा था महवेश, और महवेश की बात ये थी कि सुबह सुबह आ रही हो पहली बार महवेश कितना कह के गई है कि नहीं देखिए प्रैक्टिस तो है ये मेरी, देखिए प्रैक्टिस आपकी कितनी हो, महवेश अभी सुन भी रही होंगी मेरे भी, हो सकता कार में हो, तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, मजे की बात तो ये है कि आपको उठना पड़ता है 4:30 या 5 के अराउंड, सुबह 6 बजे 7 बजे अगर आपको आना है तो आपको थोड़ा पहले उठना पड़ेगा। और ज़बरदस्त और एक और बात ये हो जाती है कि आप रहते हैं दूर थोड़ा, है ना, आपको यहाँ पहुँचने के लिए आधा घंटा तो चाहिए और उसके लिए 15 मिनट तो पहले निकलेंगे ना भाई, तो सुबह का शो यही होता है, मैं तो कर चुका हूँ, अभी आपको थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। आपकी सबसे बेस्ट जो नींद होती है वो रात के 2:30 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, 4 बजे नहीं, जब आपको उठना पड़ता है तभी सबसे अच्छी नींद होती है। ये तो अभी आपको पता नहीं, कितना भी आप 7 बजे उठते हो, 6 बजे 6:30 बजे उठते हो, बस आधे घंटे पहले ही तो उठना, वही आधे घंटे पहले सबसे प्यारी खुशनुमा ऐसी नींद आती है जैसे माँ की आंचल और माँ के गोद में सर रख के माँ का आंचल सर पे हो, होए होए लोरी सुन रहे हैं बाल अम्मा सहला रही, क्या नींद आती थी नहीं बस वो वाली नींद तभी आती है जब आपको उठना हो। महवेश 2 दिन बाद से सलाम अलैकुम खैर इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे, 5:05 हमारे स्टूडियो के घड़ी में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आएंगे तो मजीद दुनिया भर की जो बातें हैं वो अपन करेंगे, कई अपडेट्स भी हैं उस अपडेट पर भी नजर डालेंगे। सुंदर FM 107, एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

FM 107 पे वाइब्रू हाल हबीबी 5:17 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और सबको ईद उल अदा की पहले से मुबारकबाद, क्योंकि क्या पता कल आप कहीं और बिजी हो, 26 तारीख से तो छुट्टी है, तो आपका रेगुलर हो सकता है काम ना हो। तो मैंने कहा भाई जो भी ऐसे लोग हैं जो अगर ऑफिस से निकलने का जिनका टाइम ही नहीं है कल का, तो उनको पहले से बोल दें ईद उल अदा की बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। और बाकी कई एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिवेशंस हैं, फैमिली फ्रेंडली लाइव थिएटर, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, शॉपिंग एग्जीबिशन, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। उसके अलावा अगर हम धीरे धीरे से शुरू करें बात करना, तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईद उल अदा के इवेंट्स और फायरवर्क्स है कटारा में। सबसे पहले ईदिया, यानी कि ईदी तो मिलनी चाहिए, तो बच्चों के लिए है कटारा ईद गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन, जो कि कटारा कॉर्निश पे होगी। और इसका पहला सेशन होगा शाम को 5:30 बजे, लिख लो या फिर आप याद कर लो, क्योंकि कुछ 5 इवेंट्स हैं ऐसे। पहला जो सेशन है वो 5:30 बजे है, सेकंड जो सेशन है वो 8 बजे रात को है, कतारा ईद गिफ्ट फॉर चिल्ड्रंस। और फिर फायरवर्क्स, जो बहुत ज़्यादा खुशी से लोग देखते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं, बाकायदा बेस्ट स्पॉट सेलेक्ट करते हैं कि किस जगह से सबसे अच्छा व्यू आएगा। इसमें अलग अलग लोगों के अपनी इच्छा है, अपनी मान्यता है, अपने थॉट्स हैं। कुछ लोग दूर से देखना चाहते हैं सुकून से कुर्सी लगाकर, कुछ लोग बहुत करीब से देखना चाहते हैं। दोनों एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो ये फायरवर्क्स का जो डिस्प्ले है वो कटारा कॉर्निश के एरिया में रात को 8:30 बजे होगा।

तो कटारा ईद गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन जो है ये ईदिया जब मिलेगा 8 बजे, आधे घंटे रुकने के बाद 8:30 बजे आपको फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे इसी कटारा कॉर्निश पर। उसके अलावा कटारा कॉर्निश पे शाम को 4 से लेकर 9 बजे तक कतरी अरदा, ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो आप यू नो विटनेस करेंगे। तो कतरी अरदा डांस जो है आप विटनेस कर सकते हैं शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। इसी दरमियान कटारा ईद गिफ्ट्स भी होंगे और इसी दरमियान फायरवर्क्स डिस्प्ले भी होगा। उसके अलावा बिल्डिंग 41 अल थुराया प्लेनेटेरियम शोज भी होंगे शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो देखिए कितना सही तरीके से इसकी टाइमिंग्स की स्केड्यूलिंग जो है वो कर दी गई है। शाम को 5 से 7, फिर आप 7 बजे से लेकर आप कटारा कॉर्निश पे पहुंचेंगे आराम से, 8 बजे के आसपास आप ईद गिफ्ट्स बच्चों को अपने दिलवा सकते हैं, फिर 8:30 बजे फायरवर्क्स हो जाएंगे। उसके अलावा कटारा कॉर्निश पर मिलिट्री परेड भी है शाम को 5:40 पे और फिर एग्जैक्ट 1 घंटे बाद 6:40 पे कटारा कॉर्निश पे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हो गई, कटारा ईद गिफ्ट्स, कटारा कॉर्निश पे फायरवर्क डिस्प्ले, कॉर्निश पे कटारा कॉर्निश है ना, कतरी अरदा जो ट्रेडिशनल डांस है वो भी कॉर्निश पे कटारा के, और फिर अल थुराया प्लेनेटेरियम शोज, बिल्डिंग 41 और मिलिट्री परेड कटारा कॉर्निश पे। सबकी टाइमिंग आपको हमने एक एक करके बता दिए, तो इन जगहों पे जाना तो लाजमी है, बड़ी ही लाजवाबी जगह है। उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इवेंट्स के मुताल्लिक, क्योंकि कई ऐसे इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं। एक तो सबसे ज़बरदस्त हो रहा है अल शकब लीग, यहाँ पर ज़रूर जाइए, ये सेकेंड सीज़न है। लाइव इक्वेस्टियन कंपटीशन हो रहे हैं 22 मई से शुरू हो चुके हैं और जून 6 तक ये जारी रहेंगे। इसकी टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एट दी लॉन्ग आइंस इंडोर अरेना। उसके अलावा फोंताना सर्कस के बारे में तो कई लोगों ने सुन लिया है, 31 मई तक ये होगा और हर हफ्ते चल रहा है, अलग अलग लोकेशन पे ये चल रहा था, सर्कस टेंट एट हयात प्लाजा पे ये होगा। उसके अलावा एक और इवेंट है जो म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, जिनको म्यूज़िक पसंद है, जिनको ऐसे लोग पसंद है जो गिटार लेकर कहीं किनारे बैठ जाएं तो वहां पर चले जाते हैं कि हाँ भाई क्या बजा रहे हैं आप तो लकी अली लाइव इन दोहा, यानी कि लकी अली को आप सुन सकते हैं। 29 मई फ्राइडे का दिन है और गेट जो है वो 5 बजे QNCC का ओपन हो जाएगा, QNCC अल मैयासा थिएटर, और नॉस्टैल्जिक ये वाइब आएगी। कई लोग लकी अली से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इस जनरेशन के, लेकिन जो 90s के हैं, 95 के हैं, 80 के हैं, 85 के हैं, है ना, 2000 के भी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। 2000 थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, लेकिन आसानी से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ लाजवाब जगहें हैं। उसके अलावा जमाल जमाल थिएटर प्ले भी हो रहा है, ये अरबी लैंग्वेज में भी ज़्यादा बेहतर है, अगर आपको अरबी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो। इसके लिए कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर QNCC मई 27 से लेकर 29 मई तक हो रहा है, यानी कि 3 दिन है, तो इन 3 दिन आप पहुँच सकते हैं। फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब अगर हम बात करने पर आए, इतने इवेंट्स हो जाते हैं ईद पर बात करने आए तो वक्त निकल जाएगा, लेकिन हमने मेन तो कवर कर ही लिए। अब हम बात कर लेते हैं जरा क्या रेसिडेंट के लिए अपडेट है। अपडेट है कि माहौल, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म होने वाला है आने वाले वीकेंड में। कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग दी है और ये मैसिव हीट स्पाइक होगा इस हफ्ते और 41 डिग्री से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचने वाला है। 48 यानी कि अभी हम जो बात कर रहे थे इतने दिनों से 37, 38, 40 तक पहुँच रहा था, लेकिन 41 नहीं पहुँचा था। अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा इस वीक और 41 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है 29 मई फ्राइडे के दिन। तो ऐसे में तेज़ वेव्स जो हैं वो होंगी, उसके अलावा लंबी लाइनें ना लगाएं। अगर फिज़िकल आप लाइन लगाते हैं कहीं पर खड़े हो गए अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करवाना चाह रहे हैं तो लंबी लाइनें ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है और ऐसे वक्त में डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएं या बाहर लाइन लगाएं जहां पर एक तो छाएँ हों, एसी हो। उसके अलावा अगर बेहतर है कि आप शाम के वक्त ऐसी जगहों पे जाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ को बहुत लिमिटेड कर दें, आफ्टरनून के पीक आवर्स में, दोपहर के पीक आवर्स में बाहर ना निकलें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स भी, हवाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाली हैं, इसलिए आपको रोड्स पर डस्ट उड़ती हुई दिख जाएगी। तो ये कुछ ख़ास अपडेट थी। उसके अलावा सर्विस सस्पेंशन को लेकर भी एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ऑफिशियली अनाउंस की है न्यूज़। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ इट्स फिजिकल सर्विस डिलीवरी सेंटर्स।

जो डिलीवरी सेंटर्स थे उनकी फिजिकल सर्विस हुआ करती थी। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो यू नो हेल्थ कार्ड हो, कई बार हेल्थ कार्ड भी आपको घर पे मिलता है, उसके अलावा और भी ऐसे कार्ड होते हैं जो आपको घर पे मिल जाते थे, तो वो जो डिलीवरी सेंटर्स हैं उसे बंद कर दिया गया है 5 दिन के लिए, छुट्टी को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि कल से ये बंद रहेंगे 26, 27, 28, 29 और 30 मई। ये 5 दिन पब्लिक हॉलीडेज के लिए, क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज सामने ही है, तो इस वजह से ये बंद है। तो अपने जो भी अर्जेंट फिजिकल एम्प्लॉयमेंट है, स्पॉन्सरशिप है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पहले ही फाइल कर देना है। ऑल दो ये जो है ऑब्वियसली मेरे ख्याल में टाइम तो निकल गया है, कल 26 तारीख है और आज 25 है, तो अगर आज जो काम बाकी है अगर आप कर सकते हैं, वैसे तो टाइम तो निकल चुका है, 5:30 तकरीबन हो रहे हैं। तो ये कुछ खास अपडेट थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और उसके अलावा तो हल्की फुल्की वाली है, बाकी तो आपको पता है ठीक है कि क्या कुछ चल रहा है। अब बात कर लेते हैं अशगाल की तरफ से, कहाँ रास्ता बंद है, कहाँ शुरू है। ये कुछ लोकेशन है, सबसे पहले बनी हाजिर टनल जो कि 8 घंटे के लिए 29 मई को बंद रहेगी, और इसकी टाइमिंग है रात को 2 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक काम हो रहा है इस बनी हाजिर टनल में, इसलिए बनी हाजिर इंटरचेंज जो है वो बंद रहेगा। तो ये एक तो बनी हाजिर की बात हो गई, फिर ये है बनी हाजिर इंटरचेंज इंटर, ये फुल क्लोजर है 31 मई से। पहले तो टनल है 29 मई और फिर बनी हाजिर इंटरचेंज फुल जो बंद रहेगा, फुल क्लोजर जो रहेगा वो 31 मई से रहेगा, और जो खलीफा बुलेवार्ड की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उनके लिए ठीक है। एक तो ये अपडेट हो गई 31 मई से 9 जून तक, और फिर है अल गर्राफा ब्रिज, ये रात को क्लोज होगा 12:30 से लेकर 5 बजे तक सुबह, तो तकरीबन 4.5 घंटे के लिए अल गर्राफा ब्रिज जो कि अच्छा ट्रैफिक यू नो स्मूथली पास करता है, इसके वजह से कुछ काम जरूरी है वहां पर, वो काम कंप्लीट करना है अल गर्राफा ब्रिज। जून 1 से लेकर जून 20 तक ये बंद रहेगा, और फिर सबा अल अहमद कॉरिडोर यू टर्न क्लोजर रहेगा उम लेकवा इंटरचेंज से, और ये रात को होगा जून 2 से लेकर जून 12 तक। तो कुछ यू नो ट्रैफिक की अपडेट्स हो गई, तो ये कुछ जरूरी और काम की अपडेट हो गई। अब जरा लेते हैं सवाल आज का, कि आज का सवाल क्या है FM 107 पे।

5:26 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और कभी कभार ना मुझे झटका चढ़ता है, और झटका ये होता है कि अरे बहुत दिन हो गया यार कहीं पर गए नहीं, तो फिर ऐसे वाले रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ कि महंगा हो तो हो देखी जाएगी, बस हो गया यार, तो वो झटका लगता है मेरे को कि बहुत दिन हो गया अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गए, खाना खाया नहीं, या फिर कोई अच्छी चीज़ खरीदने का सोच रहे हो लेकिन पैसे भी जमा करने हैं क्योंकि दो तीन काम है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ थोड़ी होती है उसकी ख्वाहिश, दो चार ख्वाहिश होती है, तो एक ख्वाहिश के लिए मैं अपने पैसे बचा रहा होता हूँ, फिर ये होता है अरे यार दूसरे ख्वाहिश के लिए पैसे जमा हो गए हैं। होता है, नहीं होता आपके साथ होता होगा, तो ये चार ख्वाहिश है, तो सबसे महंगी वाली ख्वाहिश के लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जो ख्वाहिश है वो थोड़ी सस्ती है, लेकिन क्योंकि पहले नंबर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो पैसे इकट्ठा कर रहे थे वो करते करते दूसरे नंबर वाली ख्वाहिश के लिए पैसे इकट्ठा हो गए तो वो वाला सामान खरीद लेते हैं अपन। मेरे को ये वाला झटका चढ़ता है भाई। मेरा आज का सवाल भी यही है कि आप कौन से वाले शख्स हैं, यू बिलीव इन सेविंग कि नहीं यार मैं सेव करूंगा और वही चीज लूंगा जिसका पहला मैंने थॉट रखा है ना, या फिर ये कि अरे आज उड़ाओ कल की कल देखी जाएगी, हम हटाओ यार नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत से लोगों के साथ ये होता होगा कि कौन कल की परवाह करे, कल की कल देखी। अगर मेरे ख्याल में एशियन जो लोग हैं ना भाई वो ऐसे ही जीते हैं कि अगर होमवर्क नहीं किया कल की कल देखी जाएगी यार, हाँ समझ लेंगे जो होगा देख लेंगे, ठीक है होमवर्क नहीं किया है या फिर कहीं पर अब्बा का कोई सामान गायब कर दिया है, अब्बा के पैसे गायब कर दिए हैं, हमें यार अब्बा को पता चलेगा बहुत मारेंगे, हमें देखी जाएगी, होगी तो देखी जाएगी, पकड़ गए तो देखी जाएगी, तो ये देखी जाएगी वाली में आप भी ऐसे वाले में है ना आप

0: का फॉर्मूला भी ऐसे ही काम करता है। नंबर है 666-22-107, आपको बताना है कि आप कौन से वाले आदमी हैं। आप वो वाले हैं कि आज सेव कर ले भाई, कल को पता नहीं क्या हो क्या ना हो, सेविंग करके चलो, या फिर है कि आज उड़ाओ कल की कल देखी जाएगी, मियाँ बचा तो ठीक है वरना अल्लाह मालिक। अब मैं दोनों तरफ रहता हूँ, लेकिन मुझे झटका लगने की देरी है। एक दिन झटका लग गया तो पहले आइटम के लिए जो मैं सेविंग कर रहा हूँ तो वो सारी सेविंग जो है दूसरे वाले आइटम के लिए ठांस देता हूँ मैं, देखी जाएगी, फिर पहले वाले की दोबारा से इकट्ठा करने लग जाता हूँ, क्योंकि ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए ना। कभी कभार ये वाला झटका भी आ जाता कि अगर कल ही निपट गई तो, कार बहुत तेज चल रही थी आज, थोड़ा थोड़ा बचे हैं आज, कहीं निपट जाते, पैसा इकट्ठा हो गया, ले लो फजील, देगी जाएगी। तो ये वाला झटका जो है मेरे को लगता है, आप बताएं आपका क्या हिसाब है, आप सेविंग पर भरोसा करते हैं या आज उड़ाओ कल की कल देखी जाएगी। 666-22-107-666-22-107 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप हमें बता सकते हैं। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के मैसेज पढ़ना शुरू करेंगे। सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने की पहली जुमेरात को 8 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
4: कतर्स मोस्ट रेडियो स्टेशन एफएम 107 एफएम 107 दिल से देसी।
3: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं। ईद के रंग हजार हैं मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ, इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए। पेश है खास शो घर घर ईद, आपकी फरमाइश आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुनाए। हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए। तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: From 107 pe Vibe True, hala habibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 5:33 स्टूडियो की घड़ी में, और आज का सवाल पूछ लिया कि आप किस बात पे भरोसा करते हैं, कि आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि सेविंग करेंगे, है ना, और या फिर आप इस बात पे कि आज उड़ाओ कल की कल देखी जाएगी, यार आज खर्चा होना चाहिए, आज मजे होने चाहिए, आज पार्टी होगी, घंटों बाद क्या का फायदा। तो आप कौन से वाले, ये बताएं। 666-22-107 मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई का मैसेज पहला, सलाम वालेकुम। सलाम यूसुफ भाई ने कहा है, हैप्पी मंडे इवनिंग, आपको भी हैप्पी मंडे इवनिंग। और फिर है मैसेज हिशाम साहब का, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा भाई, कैसे हैं। फिर ये मैसेज है, सलाम वालेकुम, लोन लेने का भी ऑप्शन है। अरे लोन वाला तो मत ही बताओ मेरा भाई। आज मैंने एक वीडियो देखी, एक बंदे ने, बरेली का एक बंदा है, और उसने 16 लोन लिए हुए हैं, 16 लोन, और वो वीडियो में मतलब अपने एक एक्सपर्ट भाई से, एक्सपर्ट हैं वो, उनकी मैं वीडियो देखा करता था, तो वो किसी ना लोगों की वो परेशानी को हल करते हैं। तो वो परेशानी को हेल्प करते करते जब उन्होंने सुना 16 लोन है, उन्होंने कहा कैसे चुकाओगे भाई, वो बरेली का आदमी, 16 लोन, और उनके घर की इनकम जिसमें एक भाई कमा रहा है, वो खुद भी कमा रहा है, उनके अब्बा के पेंशन भी आ रही है, नौकरी भी कर रहे हैं, अम्मा की भी पेंशन आ रही है, 1-1.5 लाख की इनकम है घर की, और बावजूद उसके क्रेडिट कार्ड का लोन, 8-8 तो नॉर्मल लोन है, फिर घर के भी लोन है, भाई वो एकदम अलग परेशान आदमी है। तो लोन से तो मैं दूर रहने की कोशिश करूंगा। हेलो सलाम वालेकुम, कोई लाइन पर उनसे बात करते हैं। जी कौन बात कर रहा है भाई?
1: रईस बात कर रहा
0: है
1: भाई।
0: ओहो कैसे है रईस साहब? रईस भाई आप क्या कहते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग चलते हैं या फिर आपका ये नहीं भैया कितना भी रईस हूँ सेविंग तो करूंगा मैं?
1: नहीं नहीं सेविंग करके चलते हैं भाई, ये इसी में अपने को आगे बोले तो हाँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अगर तुमको सुकून चाहिए तो थोड़ा सा सेविंग करके चलोगे तो तुम्हारे, कोई जरूरी नहीं बैंक बैलेंस ही हो भाई, कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं पे भी मतलब जो बेहतर तरीका रहे, जो जायज रास्ता है उस पर इन्वेस्ट करके रखो, ताकि फ्यूचर में अगर आपके पास कुछ पैसा हो गया, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, बैंक में हो गया, मतलब ऐसे कुछ करके, या कुछ जेवर भी ऐसे करके भाई, वाइफ भी कुछ, और कभी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ा तो, ताकि हमारे लिए मतलब वो इंक्रीज हो, हाँ जरूरत पे, ताकि हमारे सामने मसला ना बने, अगर ज्यादा जरूरी पड़ गया तो हटा भी सकते, कोई मसला नहीं है, और उसमें फायदे वाला। तो ये आज खाओ कल देखा जाएगा, ये मतलब एक ये मिथ है, लेकिन अगर आदमी, ये इस्लाम ने हमें नहीं रोका है कि अगर आप अपना कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उनके लिए सेविंग ना करो, ये मतलब लोगों का ये तो बहुत चिड़ियों वाला की मतलब वो सब अपने जगह पे सही है, वो भी अपने जगह पे सही है, लेकिन हाँ अब ये दीन ने हमारे दुआ का भी कहा तो उसके साथ में दवा का भी कहा है, और अपने लिए ऊँट को ऊँट को बांध के बांध दो पहले रस्सी से, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। हमारे सामने ये कि भाई ऊँट को तुम छोड़ के रखो, बोलो अल्लाह ने चाहा तो हमें मतलब ये ऊँट नहीं जाएगा,
0: नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा।
1: ये सब चीजें मतलब कुछ आजकल के अपने अपने ही अकल से सोचो, अल्लाह ताला ने हमें अकल दिमाग दिया है, किस लिए किसको कहाँ पे करना है ये भी जरूरी है, ना कि बस खाली वो बन के जोगी बन के चल भैया आज खाओ कल देखा जाएगा, तो फिर वो परेशानी है। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा लोन, इससे अगर बंदा बच के रहा तो उसकी लाइफ हमेशा मतलब सिक्योर है, सबसे बेहतर रहेगी। अगर इसके तरफ गया तो भाई एक दो टाइम में एक टाइम खा लो आप, मतलब बहुत तकलीफ से तकलीफ वाले उसमें जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन लोन के तरफ अगर आप गए तो फिर आपकी जिंदगी
0: खराब है,
1: सुकून नहीं,
0: सुकून नहीं, तो यानी कि इनने हमें भी बता दिया सुकून नहीं है, मेरी भी जिंदगी में सुकून नहीं है भाई। क्या देखो भाई मेरे को भी गाड़ी लेनी थी तो मैंने ले लिया है।
1: सोलह लोन नहीं नहीं जैसे आमदनी की, जैसे ये तो भाई लोन यहाँ यहाँ पे जो है कतर उतर में यहाँ का कुछ हिसाब किताब
0: आसान है, हाँ मैंने यही वाले लिया है। अच्छा एक ये भी होता है ना, देखो लोन तो चलो एक वो अलग चीज है कि आप लोन लेते हो फिर चुकाना है, एक ये है कि आपने एक लिया फिर उसके बाद उसको चुकाने के लिए दूसरा लिया तीसरा लिया, तो जो मैं बरेली वाला किस्सा बता रहा हूँ, उसने 16 लोन लिया और अपने फैमिली मेंबर से लिया, और वो फैमिली मेंबर भी 2-2% चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट। मैं कहूँ अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम, तो वो तो एक अलग ही सीन है यार. मैंने उसको देखा.
1: ये तो बहुत बड़ा समझ लो कि उसके अकल, मतलब अकल समझ लो कि किसी किसी का मत मारी जाती है. हाँ, क्या वो
0: आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? वो तो लिहाज कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं वरना लग चुकी है.
1: बस अल्लाह के करम से आज तक मैंने भाई अपने लाइफ में हमने स्टार्टिंग किया बहुत स्ट्रगल करके, मतलब यहाँ तक पहुँचा सऊदी से लेके कतर तक अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन किसी से कर्ज से भी, बल्कि नॉर्मल कर्ज से भी, जैसे मतलब एक तो लोन होता है कि मतलब उसमें ब्याज और ये तरह तरह के जो होते रिबा होता है, ये सब गैर, उससे भी मैं, उससे भी अगर आप
0: बच के रहे,

0: होंगे तो अगर तो आप सर उठा के जी सकते हो मेरे भाई।
1: क्या बात है, बहुत ही उम्दा। वैसे आप अपने सैलरी का, आप अपने सैलरी का कितना परसेंट खर्च करते हैं? एक रफ अगर हम आपसे मांगे कि अगर आपको महीने में यू नो 10% या 20% आप वैसे एंजॉय करते हैं कि देखी जाएगी यार आज एंजॉय करते हैं, बाकी लेकिन फिर भी 50% हम सेव करके रखते हैं और बाकी की 50% खर्च कर देंगे।
0: तकरीबन हम 75% अपने मतलब फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, अपने उसके लिए
1: सेविंग,
0: हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए हैं, इसे मतलब हम लोग मतलब ये फार्मर हैं तो खेती से अल्हम्दुलिल्लाह हर सारी चीज़ें मतलब ये हो जाती हैं, जो मजदूर लगा के खाने पीने भर का, हालांकि बचत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी खाने पीने के कोई चीज़ें बस ये नमक तेल थोड़ा ये सब चीज़ें हैं कि जो जरूरियात है कुछ खरीदना पड़ता है।
1: कहाँ पर आ गए हम, नमक तेल की बातें हो गई। ठीक है मेरा भाई, आप तो जज्बाती हो गए।
0: नहीं, मेरे कहने का मतलब
1: कि सेव कर लें,
0: अगर प्रदेश में आओ तो भाई उसमें कुछ ये करके रखो, ये ना कि मतलब यार चलो बस फिर अपनी लाइफ तक रह जाओगे, फिर आप हमारे पीछे दस लोग और
1: हैं, उनकी भी तो देखनी है।
0: एयरपोर्ट से जैसे आते हैं जैसे सारे लोगों का, रिश्तेदारों से सारे लोगों का हमारे ऊपर ये हो जाता है, तो कुछ यार कभी किसी के काम भी आ जाओ मेरे ख्याल से
1: सही। ओके मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। और इनका ये कहना है कि लोन लेना बिल्कुल गलत है, और देखो मेरा भी मानना है कि लोन लेना गलत है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया ना कि जितने का लोन लिया उससे दुगने का तो हमने लोन दिया है लोगों को। और मेरा वाला तो हम वापस कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने लोगों को दिया वो वाला वापस नहीं आ रहा भाई। 5:40 स्टूडियो की घड़ी में बाकी लोगों के मैसेज लेते हैं। कैफ साहब ने तो अपनी बात कह दी है, कैफ कहते हैं कि लोन का भी एक ऑप्शन है। चलो ये भी ठीक है। फिर ये मैसेज है, टुडे हैप्पी टुमारो मोर हैप्पी, नीड सेव बट नॉट किल योर टुडे। बाल कृष्णन ने ये बात कही है कि आज अपने आज की हत्या ना करो। आज नहीं खत्म होना चाहिए, इसलिए आज अगर आपका कुछ खाने पीने का दिल कर रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो नीड है जिसकी, तो उसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। टुडे हैप्पी टुमारो मोर हैप्पी, आज खुश है कल और हो जाएगा। सेविंग जरूरी है बट आज को मारना भी नहीं चाहिए, ये वाला थॉट भी मुझे सही लगता है। अच्छा मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि कई बार हम ना, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हैं हमारे सामने, इतनी सारी नीड हमको आजकल लगने लगी है, सही नीड क्या है, फॉल्स नीड क्या है, ये भी पता होना बड़ा ज़रूरी है। कि जैसे फॉल्स अलार्म होता है ना, कई बार अलार्म जो है फॉल्स बज जाता है, तो वैसे ही असल नीड क्या है और फॉल्स नीड क्या है, इसमें डिफरेंशिएट करना आज कल खैर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर वो फॉल्स नीड हट जाए तो हमारी सेविंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और हमारी डेली लाइफ जो है वो थोड़ी आसान भी हो जाएगी, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक और ये भाई हैं, इनका नाम है राशिद साहब ने सलाम किया है और कहते हैं कि भाई मैं सेविंग करने वाला ही आदमी हूँ, घर पर 3 लोग को देखता हूँ। ओके अच्छा हाँ, तो फिर कभी कभार तो वो वाला भी हो जाता है कि मजबूरी हो जाती है, नहीं। इस बात से भी मैं एग्री हूँ कि आपने सेहत के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर अपने ऊपर खर्च करने में आदमी को कंजूसी नहीं करना चाहिए। खान साहब ने ये बात कही। ओके तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में इस तरीके से चलते हैं कि वो अपने सेहत पर भी नहीं खर्च करते, खाने पर भी थोड़ा सा वो रोक लेते हैं। और मेरा मानना है खाना ही तो बेस्ट होना चाहिए, एक खाना और एक रहना। रहना भी एक बार को ठीक है, झेला जा सकता है यार कि दूसरे मुल्क में है, अपने अपनी जगह थोड़ी बन जाएगी, लेकिन खाना तो A1 होना चाहिए कहीं पर भी जाओ। अब ये भी नहीं है 5 स्टार में चले गए, लो भैया पहले दिन की सैलरी नदारद हो गई, गायब हो गई। तो एक बार ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने खूब सेविंग करी, तो अब्बा ने आके बम फाड़ दिया मेरे ऊपर कि अच्छा मेरी सेविंग पता नहीं कितनी थी, मेरे ख्याल से 2015 या 16 की बात होगी, ठीक काम भर की थी मेरी, इतनी सेविंग थी कि मैं खुश, अकाउंट में दिखता है वो अलग खुशी देता है भाई पैसा, आपको पता है आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको भरे हुए दिखते हैं ना अकाउंट में, आपके दिल को ऐसा, आपका दिल कम पैसे में ऐसे करता है, टक टक टक टक टक, ज़्यादा पैसे में करता है धक धक धक धक धक धक। लेकिन अब्बा आए एक दिन, उनने बम फोड़ दिया मेरा, फिर धक धक धक धक धक करने लगा। अब्बा ने कहा ऐसा है कि हमने ना, अब्बा ने ये नहीं कहा कि पैसे चाहिए, उनने कहा अरे हमने एक जगह से लिया था वो घर बनवाने के लिए, तो बस वो चुका देंगे वही। अच्छा ये भी नहीं कर रहे हैं, मेरा अब्बा भूत चला गए।

0: नहीं कह रहे कि हमें चाहिए, क्योंकि अब अपने बेटे के सामने रौला भी तो बनाना है, मांग लेंगे तो रौला नहीं। अब बेटा तो बेटा, दिल तो है ही है, दूसरे को दे दे रहा है तो अब्बा को कहीं नहीं देंगे। तो अब्बा ने पहले बोला जब इस बात को कि हाँ दूसरे से चुकाएंगे, धीरे धीरे चुका देंगे। तो आपने वो देखी है जब भैंस जुगाली करती है, अच्छा जिनको जुगाली नहीं पता मैं बता देता हूँ, वो जो भैंस कुछ खाना खाती है तो मुंह ऊपर उठाती है और फिर चबाती रहती है, जैसे चुंगम चगाते हैं ना कई फीमेल्स, कहीं जो 21-22 साल की उम्र की होती है चुंगम चगाती है एकदम दांत को दाएं बाएं टेढ़ा करके। तो भैंस जैसे जुगाली करती है, जुगाली करते करते कुछ उसको दिमाग में आता, कुछ सोचती है और एकदम से रुक जाती है। उस दिन मेरा एक्सप्रेशन वही था जब अब्बा ने बताया कि हाँ वो पेमेंट एक जगह करनी है, उधारी ले ली थी ना हमने, तो मैं भाई जुगाली करते करते रुक गया, मेरा मुंह वैसे ही भैंस जैसा हो गया था। मेरे को सदमा लगा और मुझे अंदर ही अंदर फील आया, ले बेटा जितनी सेविंग करी थी गया, लग गए लग गए। तो वो उस दिन मेरे को पैसे जो है वो लग गए थे, चले गए थे फिर जेब से। तो ये एहसास मुझे उसी वक्त हुआ जब मैंने कहा हाँ कर देंगे पेमेंट। अब क्या यार, अपना दिल है, देख भी नहीं सकते ना कि अब घर में उधारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे अब्बा भी सही खेलते हैं, लोग मुझसे उधार दे रहे हैं, अब्बा दूसरों से ले ले रहे हैं। मैं तो अब्बा को वो कहने वाला हूँ कि जिसको मैं दूंगा अब से आप उसी के पीछे पड़ जाओ, उन्हीं से ले लो, कि भैया वो जरूरत थी। अरे हम आपके बेटे से कौन ले रहे। आगे बढ़ते भाई, पॉसिबल हो तो कॉल मी। हाँ भाई मैं आपको कॉल करता हूँ भैंस वाली बात पर। भाई उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे सामने आ गई। आ जाती है भाई, मैं क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था ना, मैं जुगाली कर रहा था, जुगाली जुगाली करते एकदम मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये अब्बा कह रहे हैं कि ऐसा है तुमको साइकिल पे आगे बैठाल के मैं इतना ले जाया करता था स्कूल, बेटा चुकाने का वक्त आ गया है। होता नहीं, अब्बा नॉर्मल बात कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता चल जाता है कि अब्बा ने जो एहसान किए हैं वो उतारने का समय आ गया है फजील मियां। और ट्रस्ट में इससे ज़्यादा प्राउड की बात कभी हो ही नहीं सकती है कि आप अपने घर वालों का, अपने फैमिली मेंबर का, अपने करीबियों का कर्ज़ उतार दें। इससे बेहतर, इससे खुशनसीब बात नहीं हो सकती। अगर आपको ये खुशनसीबी मिली है तो हम सब, या वो लोग जिन्होंने कर्ज़ उतारा है, तो हम सब बहुत खुशनसीब हैं। ओके, फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी कौन बात कर रहा है, इतनी भारी आवाज़। हेलो, अरे आसिफ भाई इतने भारी आवाज में बोलेंगे क्या जरूरत है, लेकिन हाँ ठीक है, आप अगर शुरू कर चुके हैं तो आप
1: भाई एक छोटी सी बात जो तुम बोले ना अभी, लग गए उसके आगे बोलो मत।
0: नहीं अरे बेचे।
1: मैं सडनली मैं इतने जोर से आता गाड़ी में, मेरा दोस्त बैठ के क्या बोलता हूँ, क्या हो गया क्या हो गया, मैं बोला भाई एक बंदा लग तो गए बस, उसने आगे नहीं बोला बेचारा, अगर वो बोल देता आगे तो मैं आज से शो को प्रमोट कर दूंगा।
0: हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ मुद्दे की बात पर आते हैं कि आप कौन से वाले शख्स हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, मतलब ऐसा कि अरे आज जो होगा देखी जाएगी, खरीद लेते हैं, खुशी से खा लेते हैं, पी लेते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं, या फिर आप वो वाले नहीं यार सेविंग करके चलेंगे।
1: नहीं भाई मैं तो मतलब मन में आया मेरे को क्या बोलते हैं, मन आया भाया काटे खाया, वही सिनेमा है मेरे मन को भाया,
0: मेरे मन को भाया।
1: मैं ऐसा ही इंसान, मतलब कोई भी चीज पसंद आ गई पहली फुर्सत में उसको पकड़ लो,
0: क्या बात चल रही है। तो अच्छा आपको सेविंग करते हुए कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई चीज पसंद आए, तो वो क्या चीज है जो आपने खरीद ली हो?
1: हुआ है ना भाई,
0: कोई चीज याद है?
1: जी जी मेरे को बहुत सी चीज ऐसी मेरे जहन में आई है, मैं तुम्हारा शो सुनता हूँ ना भाई, तो ऐसे मतलब एक दो बार की बात है, पिछले महीने की बात है, मेरे को ना एक जींस लेने का था और एक टी शर्ट लगी थी, मतलब मैं गया मॉल में खरीदने के लिए, उसके अंदर ऑफर लगा हुआ है 100 रियाल का, अगर तुम शॉपिंग करोगे तो तुमको 100 रियाल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं गया लेने के लिए, बाद में मैं आगे गया लिया, लेके मैं काउंटर तक आया, उसने पंच किया, मैं बोला सॉरी आई डोंट वांट, मैं वापस। वो बोलता है भाई क्या हो गया, मैं बोला यार मैं पैसा घर पे भूल के आ गया।
0: तुम्हारे जैसी पंच हुआ तुम्हारे भी दिल में होगा लग गए चूना लग गए।
1: भाई फिर बाद में मेरे को मालूम एक चीज मालूम पड़ी, मतलब मेरे से गलती क्या हो गई, ये चीज गलती ये हुई, जो चीज मैं इधर 100 रुपए में खरीद रहा हूँ

0: ठीक है वो लोग 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे मेरे को खरीदने के लिए, मगर वही चीज मैं कहीं और जाऊंगा ना, मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, वहाँ पर वो एकदम मतलब चीप से चीप में। तो मैं बोला अच्छा हो मैं बच गया, थैंक गॉड मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं उसको वहाँ रोक दिया।
1: कई बार होता है ऐसे, आपका दिमाग बहुत सटीक जगह पे काम करता हो, कई जगह तो ऐसा होता है कि सटीक जगह काम कर सकता था लेकिन ब्रेन फेड हो जाता है कि है यहाँ तो यार बोलना चाहिए था अपने को, नहीं बोले तो नुकसान हो जाता है
0: भाई। एक बार और एक बात और बोलने का, मतलब जैसा आप जिस दान पुण्य करते हो किसी गरीब को, मेरे पास उस टाइम पे मतलब 50 रियाल जेब में रखे हुए थे मेरे।
1: हाँ।
0: तो एक मतलब गरीब में मतार कदीम गया, तो वहाँ पर मतार कदीम में बेचारा एक गरीब था, समझो मतलब था बस बाहर मुल्क का नहीं था, अपने हाँ। मुल्क का था वो।
1: हाँ।
0: तो वो आके बोलने का भाई मेरे को ऐसे ऐसा हो गया है, तो मेरे को खाने पीने की जरूरत है। तो मेरे दिल में दया आ गई, बहुत दया आ गई, जोर से दया आ गई, मतलब यार चल बहुत जोर से दया आ गई मेरे को। फिर जब मैं जैसी वॉलेट खोला मतलब 50 रियाल है, तो मेरे दिमाग में दो बात चलने लगी, आशीव अगर तू इसको 10 रुपया देगा तो तेरे पास बचेगा 40 रुपया।
1: हाँ।
0: और महीना खत्म होने के तेरे पास बचे पूरे 20 रुपये। मैं उस बेचारे को बोला भाई सच्ची में मुझे माफ कर दे तहे दिल से। हाँ। मेरे पास पैसा नहीं है।
1: अरे यार, तो वो बोला नहीं भाई शवरमे का मुझसे ले लो।
0: अरे भाई अगर मैं उसको खर्चा ही नहीं करना चाह रहा था, मतलब मैं इग्नोर करना चाह रहा था उस टाइम को, मतलब इसको खर्चा ही नहीं करूंगा मैं, मतलब रहन दो इसको, सेफ रहन दो, इसको मनी को सेफ रहन दो, 50 रियाल काम आएंगे। बहुत टाइम ऐसा आया भाई मेरे साथ में, मगर मैं बहुत चीज बोलते ना भाई मन को भाया मैं खा लिया।
1: ये मतलब है कि जब तक सेविंग कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपका दिल है, तो फिर दिल को नहीं रोकते आप, मतलब ये है कि बस दिल खुला है ना। ओके बिल्कुल।
0: और यहाँ पर तो अपने कतर में तो फेमस है शवरमा।
1: हाँ।
0: ये वो तो मतलब सैलरी आते तो हम लोग मतलब मताम वाला हम लोग को बोलता लगता भाई की सैलरी आ गई है।
1: तो टांग के ऊपर टांग रख के पुष्पा की तरह बैठे हूँ। पुष्पा की इतनी अकड़ नहीं आई है करोड़ों का बिजनेस करने के बाद, लेकिन जो आसिफ भाई के पास जो एटीट्यूड आया है भाई सैलरी के बाद, कोई मैच नहीं कर पा रहा है भाई।
0: कुछ नहीं भाई, पिछले महीने की बात है, मेरा मुदीर मेरे को बोलता है कि हाँ पैसा दिया मेरे को।
1: हाँ।
0: बाद में पैसा लिया तो मेरा मुदीर बोलता ओके, मतलब बोला वो।
1: हाँ।
0: कि जाओ ठीक है अभी तुम इंजॉय करो।
1: हाँ।
0: मेरा ठीक है, मैं पैसा गिना, गिनने के बाद बोला सर मैं बोला 200 रियाल कम है।
1: हाँ।
0: तो और 200 रियाल देंगे तो इंजॉय ज्यादा होगा।
1: हाँ।
0: तो बोलता अच्छा ठीक है मुश्किल नहीं है, 200 रियाल दूंगा अगले महीने काट दूंगा। मैं बोला अरे ये मुसीबत है, ये दीजिए फिर मेरे को,
1: ये धमकी नहीं सुनना था,
0: ये धमकी नहीं थी। अगर आप बोल रहे हो इंजॉय करो जाके फिर बोल रहे 200 रियाल अगले महीने काट लूंगा, तो मैं बोला सर एक काम करो वो इंजॉय रहने दो मैं कर लूंगा।
1: देखा कैसे, देखा इंसान को सरेंडर करना भी आता ही है, सरेंडर करना
0: करना पड़ता है,
1: करना पड़ता है, ये है कि अब तो करना ही पड़ेगा। चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, अच्छा लगा बात करके।
0: एक छोटी सी बात, भाई
1: बताइए बोलिए
0: भाई, प्लीज एक बार बोल दो ना भाई
1: क्या। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 5:52 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, सलाम अलैकुम। उसके अलावा मैसेज पर बढ़ते हैं, तबस्सुम का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजील, नाइस टॉपिक, मेरी सैलरी हर महीने इस तरह उड़ती है जैसे पतझड़ में पेड़ उड़ जाते हैं, पेड़ के पत्ते हो सॉरी। उसके बाद लिखा है एक ख्वाहिश के बाद दूसरी, नेक्स्ट मंथ ये वाली चीज लेनी है, ये खाना है, सेविंग बस 20%, आज जिंदगी जियेंगे तो ही कल जाके सेविंग एंजॉय कर पाएंगे ना। नहीं बात तो है कि अच्छा, इन्होंने रिलेट भी बहुत सही कर लिया है, आजकल पतझड़ का मौसम चल भी रहा है ना, ये सैलरी जैसे ही आती है वैसे ही उड़ती है जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते। और काफ़ी हद तक ये बात सही है, जब तक आप नौजवान रहते हैं, जैसे मुझे लगता है कि शादी के पहले जितना मैं उड़ा पाता था अब उतना ही मेरी बेगम उड़ा रही है। ये जो ऊनो रिवर्स हुआ है मेरी ज़िंदगी में भाई, इसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। अब्बा ने कहा 3 बार कबूल कर दो जिंदगी बदल जाती है, बात तो सही है भाई, बदल तो जाती है। लेकिन हमारी नहीं मित्र। खैर, तो ये दुख के साथ आपको जीवन जीना पड़ता है। तो वैसे यही है कि आप जो है नौजवानी में जिस तरह से खर्च करते हैं, अकेलेपन में जिस तरह से खर्च करते हैं, जितनी आज़ादी से करते हैं, फिर आपके पास जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं तो आप खर्चा कम कर देते हैं, आप सेविंग थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, आपका वो जो अक्खड़ जो मिजाज था या फिर वो मिजाज जो

0: एकदम खुल्ला डुल्ला मिजाज था कि अरे यार चलो यहाँ चलते हैं, तुम्हें ये खिलाते हैं, फला जगह ये खाते हैं, तो वो वाला मिजाज आपका नहीं रह जाता, आप थोड़े से संकुचित हो जाते हैं। मर्द मर्द हजरात तो यही करते हैं, और बाकी का तो आपको पता ही है। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आप कैसे वाले शख्स हैं, आप कैसे वाले आदमी हैं, क्या आप सेविंग वाले हैं या फिर अरे उड़ाओ यार कल की कल देखी जाएगी, बताइएगा 666-22107 पे 6-6-6-2-2-107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
1: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समुंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुतालिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती है। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। ऐ अल्लाह, मुझे उस रिज़्क पर क़नात अता फरमा जो तूने मुझे दिया है। अल्लाहुम्मा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी, और उसमें मेरे लिए बरकत डाल दे। वबारिक ली फी, और जो चीज़ मुझसे छूट गई हो या मुझसे दूर हो गई हो उसका मुझे बेहतरीन बदल अता फरमा। वख़्लफ़ अलैया कुल्ल गाइबतिन ली बिख़ैर। सामने किराम, क़नात ये दिल की दौलत है। क़नात का मतलब यानी कम हो तब भी शुक्र, ज्यादा हो तब भी गुरूर नहीं, लोगों की चीज़ों की तरफ नजर न हो और दिल मुतमईन हो। और उसके बाद बरकत की तलब है, थोड़े में ज्यादा खैर। वबारिक ली फी, थोड़ा हो मगर काफी हो, रिज्क हलाल हो, दिल को सुकून दे। और आखिर में नेमल बदल, जो चला गया उस पर गम नहीं बल्कि उसका मुझे नेमल बदल अता फरमा। ये दुआ गम का इलाज है, दिल को तकदीर पर राजी करती है। ये कहना है, या अल्लाह, जो तूने ले लिया वो भी खैर था और जो तू देगा वो इससे भी बेहतर होगा। सामने किराम, चलें प्रोग्राम के इस मरहले में अब हम एक और दुआ सीखेंगे। सामीन, आज की दुआ 45 मतालिब पर मुश्तमिल है, यानी इस दुआ में 45 चीज़ों का सवाल है। इस लंबी दुआ के कुल 5 टुकड़े हैं। पहले टुकड़े में खैर की जामे तलब है। इस पहले टुकड़े का मतन ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर अल-मसअला व खैर अद-दुआ व खैर अन-नजाह وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हर तरह का बेहतरीन खैर मांगता हूँ, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन दुआ, बेहतरीन कामयाबी, बेहतरीन अमल, बेहतरीन बदला, बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन मौत। ज़रा गौर कीजिए सामने कराम, यहाँ बंदा ये नहीं कह रहा मुझे ये दे वो दे, बल्कि कह रहा है अल्लाह जो कुछ भी दे बस बेहतरीन दे। ये आला दर्जे की दुआ है। क्योंकि बंदा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: स्टूडियो की घड़ी में 6:02 और आप सुन रहे हैं खास शो जिसका नाम है ड्राइव थ्रू।

दो मिनट हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब जल्दी से एक बार सवाल जो है वो रिपीट कर देते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि आप कौन से वाले आदमी हैं? आप वाले हैं कि आज लड़ो कल देखी जाएगी, या फिर आप सेविंग करने वालों में से हैं? आप कैसे शख्स हैं ये आपको बताना है। 666-22-107 सेविंग करते हैं तो क्यों? ऑब्वियसली उसका एक रीजन होगा। और अगर ऐसा वाला है कि नहीं यार हम उड़ाना चाहते, तो आपका अच्छा एक कोई थॉट होगा ना, तो उस थॉट को भी हम सुनना चाहते हैं। कोई तो अच्छी बात होगी यार, कह रहे हम बहुत, अरे वो वाले हैं जो शायरी बोलते थे एक कि कमाया भी बहुत उड़ाया भी बहुत, कभी भी हमने नोटों की गड्डी में गेटिस नहीं लगाई। ओ ले रे, ये सब शायरी में अच्छा लगता है भाई, वरना यही शायरी जो है फिर बाद में चेंज हो जाती है कि कमाया भी बहुत उड़ाया भी बहुत, फिर जिनसे जिनसे उधारी ली थी उन्होंने भी उड़ाया बहुत। तो ये वाली शायरी के कमाई करी उड़ाई करी नोटों की गड्डी में गेटिस नहीं लगा, ये सब शायरी बढ़िया हैं, ठीक है। लेकिन आप असल में आपका थॉट प्रोसेस क्या है जब आप खर्च करते हैं और दिल खोल कर करते हैं, क्योंकि हर शख्स का अलग एक थॉट होता है। वो थॉट मैं सुनना चाहता हूँ कि असल उनकी उनकी जो सेविंग

अपने आप को दिखाता है कि देख मैं भाई ये कर चुका हूँ अब, है ना। तो वो आग जो है काफी लंबे वक्त तक लेकर अपने साथ चल रहा है और उसका ये मानना है कि मैं ये तो काम करके दिखाऊंगा, कार लेना हो, घर बनाना हो, बहन की शादी करना हो, अच्छे घर में शादी करना हो, वॉट एवर कुछ भी है, एक सपना हो सकता है, उस सपने को लेकर वो जिया है काफी लंबे वक्त तक। और हर शख्स ऐसे ही जीता है, एक आग लेकर जीता है। तो आपके अंदर ये वाली आग है या फिर आपके अंदर ये वाली आग है कि अरे खर्च करो देखी जाएगी यार, अरे होगा, किसी ने कह दिया तो कह दिया, लोगों का काम है कहना, हम अपना एंजॉयमेंट थोड़ी छोड़ सकते हैं, हमारे अपने ही एंजॉयमेंट में उसको जवाब मिल जाता है। तो आपके अपने आग अलग अलग थॉट प्रोसेस से बुझते हैं तो वो हमें ज़रूर बताइए। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8662107667। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इरफान भाई से लेकर सारे जो मैसेज हैं उन सब के मैसेज हम यहीं पर लेंगे। फिलहाल गजेंद्र वर्मा की आवाज में ये ट्रैक सुने FM 107 दिल से देसी।

एक तो ये वाला कंगना, एक और कंगना है भाई, वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, मतलब छोटा सा होता खो जाता कहीं ना कर दो। ये गाना किसने गाया है मैं वो बता देता हूँ, आबिर अरोड़ा ने गाया है, कंगना तेरानी 2.0 वर्जन। मुझे पहला वाला वर्जन ज्यादा अच्छा लगा। फिलहाल FM 107 पे अस्सलाम वालेकुम, ये शो ड्राइव थ्रू।

FM 107 पे वाइब्रू 6:12 और देखो क्या है कि ईद तो बस करीब में ही है, 27 तारीख से हम ईद को एंजॉय कर लेंगे, लेकिन जब भी आप यू नो अपने घर पे बात करें कि अरे हम लोग सुबह नमाज पढ़ के आएंगे, सबसे पहले कलेजी ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद चापें, अम्मी चाप चाप तैयार करिएगा, बहुत दिन हो गए, बहुत लंबा वक्त हो गया, चाप जो है ना बाहर महंगी मिलती है, अब मौका है तो चाप में 5-6 चापें तो मेरे लिए रख लेना। तो ये सब बातें करते हुए प्लीज़ धीमे बात करें, बहुत ही आराम से। हो सकता है कि थोड़ा सा गैप जो होता है ना गेट और दीवार के बीच, वहाँ से बकरा झाँक रहा हो, तो प्लीज़ उसकी इतनी इज्जत तो कर ही ले। एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था कि मुझे सुबह सुबह कलेजी चाहिए, बकरे ने सुन ली, बकरा ने जब सुना ये बात तो बकरा बहुत करीब में आके मुझसे बोलता कि जॉक्स। 6:13 और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इरफान भाई का मैसेज है। इरफान भाई कहते हैं, सलाम, होप यू आर वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी सैलरी ऐसे ही जैसे हाथ में रखी मिट्टी या पानी। मेरी सैलरी ऐसी है जैसे रेत का पूरा एक गुच्छा, कि कितना भी आप भर लो रेत अपने मुट्ठी में, कितनी ही ताकत से दबा लो, छूटती चली जाती है यार। ऐसी गायब होती है, पता ही नहीं चलता है, और जब हाथ खोलो तो उसमें चिल्लर बचे होते हैं। और वो चिल्लर भी बस शोरमा के टाइप के। तो इरफान साहब, हम सबका ही ये हाल है, और इरफान

0: साहब ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है. पहले लिखा है सलाम, होप यू आर वेल, जैसे लग रहा है ना मेल लिखा है कि डियर फजील, होप यू आर डूइंग वेल, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल. मेरी सैलरी ऐसे ही आती है और आते ही ऐसे हाथ से गायब होती जैसे मिट्टी या पानी. थैंक यू इरफान. बहुत ही उमदा, क्या बात है इरफान अली साहब. आगे मैसेज है और इतना बड़ा है कि मुझे एक घंटा लगेगा. मोहिद्दीन फारूकी नाम है इनका भाई का. और अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. सबसे पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारक. भाई अब तो इतना टाइम हो गया है कि मुझे मेरे ससुराल वाले भी नहीं कहते. आपको पता है मेरे ससुराल वाले वो मुबारक भी नहीं कहते, कहते हाँ. अब मुझे समझ में आया कि ससुराल जाओ तो इतनी आवभगत क्यों होती है. कह रहे बेटा ये खाओ, अरे बेटा ये खाओ. बहुत से हैं बातें, बस टाइम नहीं है. आगे भाई ने लिखा है कि काफ़ी टाइम बाद आज आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. वल्ला आज का टॉपिक फुल रिलेटेबल है. हम सब यहाँ सेविंग के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन भाई अभी तो सिर्फ आपकी बेगम ही पैसे उड़ा रही है. आपकी ही. आपकी नहीं हुई ना अभी तक. सबकी, सब रिलेट करते इस बात से. पता है अभी हमने एक दिन कार्ड और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाला भी किया था. अब उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, तब तो मेरे दिल में सुकून पड़ा है. पता है कि सिर्फ मेरा ही मामला ऐसा नहीं है कि मेरे मर्जी के बगैर खर्च हो रहा है, सबका यही है. आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा है कि लेकिन भाई अभी तक तो सिर्फ ऐसा थोड़ा टाइम बाद जब बच्चे होंगे ना तब असली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट होगा. पहले कपड़े, फिर कपड़ों का कपड़ा, फिर डायपर्स, टॉयज, नानी हाउस टूर पैकेज. अरे यार ये वाला तो मैंने सोचा ही नहीं है. नानी हाउस टूर पैकेज, ये वाला तो कहीं से खत्म करवाना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा नानी हाउस वाला. और जब स्कूल स्टार्ट होगा तब आपको समझ आएगा कि सेविंग नाम की चीज सिर्फ सोशल मीडिया पे होती है. अरे यार, ओ माय गॉड, रियलिटी चेक दे दिया भाई. यार इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं था यार. रुक तो जाते भाई. यार इतनी जल्दी यार फारूकी साहब, यार एक्सेलरेट एकदम से नहीं किया जाता है. पीठ जो है वो गद्दी पर लड़ जाती है यार, और कभी कभार सर लड़ता है यार, तब भी दर्द तो होता है यार. आपने वही दर्द दे दिया. रुको, हौले हौले हो जाएगा. लेकिन एकदम से रियलिटी चेक दिए पड़े हुए और रुक भी नहीं रहे. अभी और भी बातें लिखी है भाई ने, और लिखा है कि भाई जब बच्चों का फुल टिकट अपनी जेब से बुक करोगे ना तब आप खुद कहोगे सेविंग वो क्या होती. अरे यार ये वाली भी बात बता दी इसने तो. ये मेरी अपनी आप बीती है भाई. लास्ट 8 महीने से सेविंग की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सेविंग दूर की बात है. उल्टा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू होता जा रहा है. अल्लाह भी, ये कौन सी घड़ी थी जब मैंने इनकी फारूकी साहब की चैट खोल ली यार. दूर शरीफ पढ़ो फजील. अल्लाह सब मेरिड लोगों के सैलरी के साथ सब्र भी अता फरमाए. ओके, इन सब में मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन मेरे पास है देखो, और मुझे लगता है वो ऑप्शन सबके पास भी है. बेगम को ससुराल में ही छोड़ दो फिर तो. नहीं ठीक है, ये सब बातें मैं भारी आवाज में भी क्या कवर करूं यार इन सब बातों को. मेरे पास नहीं है इसका जवाब. हम इस मैसेज को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा ही सोचेंगे तो दिमाग में हमारे उतरेगी, ठीक है. और बाहर ऐसे लोग हैं जिनके तो बच्चे भी हैं और बेचारे वो तो बड़े भी हो गए. तो अभी हौले हौले, ठीक है. अब्दुल करीम साहब ने सलाम किया. वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई. यूसुफ भाई कहते हैं फजील मैं दोनों कैटेगरी में आता हूँ. मैं अपनी फैमिली पर ज़रूरत के हिसाब से स्पेंड करता हूँ और थोड़ी सी सेविंग भी, लेकिन सेविंग का कुछ हिस्सा या फिक्स नहीं है, बस जो बच जाए वही सेविंग है. जिस हिसाब से फारूकी साहब ने अभी बताया है ना, मुझे लग रहा शौरमा कभी नहीं बचेगा. आगे बढ़ेंगे. फजील आपका मेन मैं गेस करता हूँ कि बैचलर था जब सेविंग थी, अभी मैरिड हैं तो थोड़ा मुश्किल होगी या फिर थोड़ी होती होगी. हाँ मतलब बहुत ही थोड़ी होती है अभी तो. मतलब मैंने एक ट्रिक हल्की सी अपनाई है, वो ये कि खर्चे के लिए बेगम को ही दे दो. जो घर का खर्चा है वॉट एवर, ग्रोसरीज के खर्चे मैं बेगम को दे देता हूँ. तो बाहर के खाने ना, क्योंकि मैंने ये कहा है कि इसमें से जो बचेंगे वो तुम्हारे हो जाएंगे, तो बाहर के खाने को वो थोड़ा लिमिट कर लेती है फिर. फिर अपना बचाने के चक्कर में सारे बच जाते हैं फिर. ऐसे ही वाला सिस्टम है. बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ये सिस्टम भी कोई खास काम नहीं करता दोस्तों. अजान का वक्त है और वापस आएंगे कुछ ही देर में, और फिर हम मजीद आप लोगों के मैसेज लेंगे FM 107 पे. दिल से देसी
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है के दोहा और उसके निवाही इलाकों में مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
2: اللہ

0: Wow. किरण बाजवा की आवाज में ट्रैक सुना आपने FM 107 पे।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वाइप्रू हाला हबीबी 6:31 मिनट स्टूडियो की घड़ी में कैसे वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता दोस्त। उस पे अब सवाल जो है ऐसा होता है ना, फिर सवाल पर लोगों के जो रिएक्शन होते हैं, जो बातें होती हैं, इतनी तेजी से वक्त गुजरता है सही में। मैसेज पे आते जल्दी से, और ये मैसेज करा था पहले तो यूसुफ भाई ने, जो के कहना था कि अभी मैरिड हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा या फिर थोड़ी होती होगी सेविंग, मेरा गेस की है। हाँ मतलब ट्रिक मैंने थोड़ी थोड़ी अपना ली है और मुझे लगता है कि मैं इतनी ही कर पाता हूँ जब तक झटके ना लगे। तो शुरुआत में ही मैंने कहा था मुझे झटके लगने की देरी होती है, एक बार झटका लगता है तो जितनी सेविंग है, अगर मुझे लग रहा है कि कोई ज़रूरी चीज़ खरीदनी है, मेरे लिए नीड है उसकी, लेकिन मुझे पता मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ कि मेरे फॉल्स नीड क्या है जो लगता है ना। आजकल तो हर जगह आप देखें, किसी घर जाएं तो वो फला सामान रखा है तो आपको भी लगता है हाँ ये मेरे घर होना चाहिए, या सोशल मीडिया पे देख लिया कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरा इस्तेमाल उस तरह से नहीं है चीज़ों का। तो वैसे मुझे लगता है कि यार इस चीज़ की इतनी नीड है नहीं, तो मैं फॉल्स और ट्रू वाले नीड को समझ जाता हूँ, अपने उस हिसाब से खरीदारी करता हूँ। बाकी लेकिन झटके लगने की देरी है, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी नीड है तो मैं खरीद लूंगा, देखी जाएगी, फिर शवरमा भी जिंदगी गुजारनी पड़े बाकी के 4 दिन चलेगा। सह लेंगे थोड़ा। बाकी फरद साहब का मैसेज है, और फरद भाई ने लिखा है, फजू भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका शो के टाइम पे चेंज होने वाला है आपका शो। मेरा शो यार 8-10 होगा, ये 4 दिन होगा, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31 तारीख को ये 5 से 7 आएंगे अपन, फिर उसके बाद 1 तारीख से आपका अपना शो चालू होगा जो कि 4 से 5 होगा। उसमें आपके एक्चुअली आप आरजे होंगे एक तरह से, आप अपनी तरह से जो भी मर्जी आपका उस दिन का मूड उसके अकॉर्डिंग मुझसे गाने लगवा सकते हैं। तो ये शो होगा द रिक्वेस्ट शो, क्योंकि हर इंसान की अपनी पसंद होती है, उस पसंद को यहाँ प्ले करना हमारा FM 107 का फर्ज है। तो आप जो गाने कहेंगे वो गाने प्ले होंगे 1 जून से, लेकिन 31 तारीख को हम 5 से 7 आपसे मुलाकात करेंगे। ये तो हो गई भाई बात। और कबीर भाई शाम में आने वाले हैं, आपका शो कब होगा? हाँ कबीर भाई 5 से 7 होंगे, अपन 4 से 5 हो जाएंगे। और आज शादी की मुबारकबाद, सेकंड हुई क्या? नहीं मेरा भाई, कहाँ यार, आप तो उम्मीद दे देते। मतलब फरद साहब ऐसा नहीं है, और फरद भाई ने आगे लिखा है कि दामाद की इज्जत 1 साल होती है, बाद में ईदी भी नहीं मिलती। देखिए फरद साहब, मैं इसमें मेरे पास देखिए बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाता हूँ जिनका अपना हुनर है। हुनर के सामने कोई सवाल नहीं उठता, एक्सपीरियंस के सामने मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है फरद साहब। तो ये है बात। बाकी अपन वाले हैं ना कि मेरे को अपनी अपनी लोकेशन ज़्यादा भाती है, तो उधर जाना होता नहीं है। बिस्किट वाला हिसाब हो जाता है। बाकी अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की फ़ीस हम दे, ट्यूशन की भी अलग से, और घर का खर्चा अलग, फिर भी बोलते हैं कि पैसे नहीं है। नदीम नज़ाकत, क्या नाम मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा। नदीम भाई ने बड़े नज़ाकत से अपनी बात जो है वो कह दी है, और इसमें दर्द भी है, बस दर्द जाहिर नहीं हुआ है। हाँ यार ये सब तो यार मैं आज मुझे झटके लग रहे धीरे धीरे ना, पहले तो मोइनुद्दीन ने झटके दिए, और वो झटके ऐसे कि अरे यहाँ जाओगे तो खर्चा, वहाँ जाओगे तो ऐसा, फिर सेविंग क्या होती है ये सवाल उठ के आएगा, फिर बच्चे की टिकट भी लगती है, अरे फिर तो ऐसे भी खर्चे होता है, अरे यार एक एक चीज़ गिना दी इस आदमी ने, और फिर कुछ जो बचा हुआ था जिसकी सेविंग हो रही थी उसी की ट्यूशन लगवा दी इन्होंने। ओके तो नहीं ठीक भी है, यही तो जिंदगी का नाम ही है दोस्त। फिलहाल 6:35 स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों, अब हम व्हाट इफ के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इफ के बारे में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। वो इसलिए है मज़ेदार क्योंकि हम सबकी लाइफ ऐसी चल रही है, बगैर इसके हो ही नहीं सकती, और ये है सोना। अगर आप सोचें कि सोना अगर काम करना बंद कर दे, गोल्ड की जो कंडक्टिविटी है या नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, अगर वो ख़त्म हो जाए एक दिन, बस गोल्ड का जो काम है ना, टेक्नोलॉजी के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू के मुतालिक नहीं, गोल्ड की कंडक्टिविटी और नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? आपको पता है कई लोग आपके सामने गिरते हुए आपको दिखेंगे, लोगों की बॉडी के अंदर पेसमेकर होता है, वो फेल होंगे,
तो लोग आपको गिरते हुए दिखेंगे, परेशान हाल में दिखेंगे, आपको जंग होते हुए दिखेगी, आपको उड़ती हुई चीज गिरते हुए दिखेगी, डेंजरस सिचुएशन होगी। तो आज व्हाट इफ में हम यही बात करने वाले हैं, व्हाट इफ अगर गोल्ड की यानी कि सोने की कंडक्टिविटी और नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी, सिर्फ ये दो चीज खत्म हो जाए तो कैसे खतरनाक और स्केरी सिचुएशन पैदा होंगे।

107 पे वाइब रू 6:37 स्टूडियो की घड़ी में। और अगर कल से पूरी दुनिया में गोल्ड अपना काम करना बंद कर दे, चाहे वो ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो या कंप्यूटर में हो, तो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम क्रैश हो जाएगा। लेकिन सिर्फ गोल्ड की कंडक्टिविटी और नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी खत्म होने से खतरनाक और स्केरी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले ग्लोबल इंटरनेट और टेक जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स होगा। दुनिया का सारा हाई एंड कंप्यूटर सर्विसेज जो है या सर्वर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट राउटिंग, स्विचेस में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए गोल्ड प्लेटिंग का यूज होता है। गोल्ड के काम ना करने से सारे डेटा सेंटर्स इंस्टेंटली फॉरन डेड हो जाएंगे, जिससे पूरा ग्लोबल इंटरनेट और क्लाउड स्टोरेज एक झटके में बंद हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम्स हैं माइक्रोचिप्स और स्मार्टफोन्स के डेड होने की। आपके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप में और स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर लगने वाले माइक्रोचिप्स के बारीक वायर्स यानी कि बॉन्ड वायर्स गोल्ड के बने होते हैं। कल जैसे कि अगर ऐसा हो कि कल के दिन ही ऐसा हो जाए, तो दुनिया के अरबों स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स सुबह सुबह ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। काम करना, कहीं कॉल नहीं लगेगी, कहीं बात नहीं हो पाएगी, आप अपनी रील नहीं चला पाएंगे, आपके जो फिनेंशियल काम होते हैं, पैसों के काम होते हैं, अगर मोबाइल के थ्रू, वो रुक जाएंगे। कंप्यूटर्स हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएंगे और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट और GPS नेटवर्क का बंद होना भी आप देखेंगे। स्पेस कंडीशन शेटर्ड हो जाएगी। सोलर रेडिएशन से बचने के लिए सारे सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स पर गोल्ड की कोटिंग होती है। इसके अलावा उनके अंदर के सर्किट्स में भी गोल्ड होता है। सारे सैटेलाइट्स डेड हो जाएंगे, जिससे GPS नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप हो जाएगी। ग्लोबल बैंकिंग और स्टॉक मार्केट का भी क्रैश होना शुरू होगा, जहां पर पहले तो ये आपको जब पता चलेगा, बाद में होगा ये कि लोग एक तरफ से बैंक में भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। जहां जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो दौड़ के भाग के आएंगे कि मेरा इस जो पैसा लगा था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो क्रैश कर गया। पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम और स्टॉक मार्केट कंप्यूटर्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। टेक कोलैप्स की वजह से सारे बैंक्स अकाउंट्स फ्रीज स्टेट में चले जाएंगे, ATM बंद हो जाएंगे, डिजिटल मनी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, UPI, क्रिप्टो गायब हो जाएंगे और लोग अपने ही पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में बैंक्स वगैरह में भीड़ लग जाएगी, झगड़ा, मार, कुटाई पिटाई सब होने लग जाएगी। उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट फेलियर से हॉस्पिटल में कई मौतें जो है वो शुरू होना देखने को मिलेगा, आपको शुरू होने लग जाएंगी। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में लगने वाले वेंटिलेटर्स, MRI मशीन्स, पेसमेकर्स और सर्जिकल लेजर्स के प्रोसेसर्स में गोल्ड यूज होता है। इन डिवाइसेस के अचानक बंद होने से ICU में एडमिट लाखों पेशेंट्स की जान इंस्टेंटली फौरन खतरे में आ जाएगी और हेल्थ केयर सिस्टम तबाह हो जाएगा। सेंट्रल बैंक्स और करेंसीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आपके पास जो नोट होगी या जो डिजिटल वैल्यू में मनी होगा आपके पास, वो किसी मायने के नहीं होंगे। दुनिया के बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि US के फेडरल रिजर्व या RBI वगैरह, अपनी करेंसीज की वैल्यू बैक करने के लिए गोल्ड रिजर्व रखते हैं। गोल्ड के यूजलेस होते ही उन पेपर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक कागज की तरह। आपके अपने पैसे कागज की तरह होंगे, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन आएगा और कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। मॉडर्न एयर ट्रैवल और डिफेंस सिस्टम का भी फ्रीज होना शुरू होगा। जो जेट्स वगैरह हैं या फिर आपके एरोप्लेन हैं, फिर गाइडेंस सिस्टम है, कमर्शियल एरोप्लेन्स हैं, इनकी सेफ्टी सेंसर्स जो हैं वो गोल्ड पर डिपेंड करते हैं। इस कोलैप्स के बाद कोई भी प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा और पूरी दुनिया की जो कमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह हैं वो जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। डिजिटल टेक बिल्कुल अंधा और कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा कि फ्लाइट उड़ रही लेकिन उसको पता नहीं किस पाथ पे जाना है, कहाँ जाना है, उनको लैंड करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं होगा। और हो सकता है कुछ फ्लाइट ऐसी भी हों जो डायरेक्ट नीचे आ जाए। शरीर के अंदर जो पेस मेकर हैं वो भी फेल होंगे। लाखों लोग अगर आज जिंदा हैं तो उनके दिल को चलाने के लिए उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेसमेकर लगाए जाते हैं, जिनमें गोल्ड के नॉन कोरोसिव कंपोनेंट्स होते हैं। गोल्ड के फेल होते ही ये पेसमेकर्स बॉडी के अंदर काम करना बंद कर देंगे, जिससे हजारों लोग अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लोग गिरते हुए आपको दिखाई देंगे, हर तरफ
गिरते हुए लोगों को आप देखेंगे जो जो इसके पेशेंट हैं, जिनके दिल में ये पेसमेकर लगे हुए हैं। लूटपाट और शहरों में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री और ऑटोमेशन का परमानेंट फुल स्टॉप हो जाएगा। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सभी ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन पर चलती हैं। इन मशीन के माइक्रो कंट्रोलर्स में गोल्ड होता है। इनके डेड होने से मास प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जिससे आने वाले हफ्तों में पूरी दुनिया में जरूरी चीजों और दवाओं की भारी कमी हो जाएगी। हर चीज, हर छोटी से बड़ी चीज मैनुअल पे आ जाएगी। आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा। आपका बैंकिंग सिस्टम मैनुअल हो जाएगा। उसमें भी आपको कागजों में लिखना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम जो है, जो डिजिटल चल रहा था, जो कंप्यूटर पे चल रहा था, वो कागजों में होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल जो अभी तक आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वो फिर से कागजों में आ जाएगा। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पर बड़े बड़े काम होते हैं, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, चाहे वो दूध की फैक्ट्रीज हो, वो सब मैनुअल होना शुरू हो जाएंगी और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर उसके बाद जो मॉडर्न एयर ट्रैवल है, इसमें भी आपको ट्रैवलिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी। ये लेकिन कभी होगा नहीं, क्योंकि ये है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वेल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें हमने बात करी कि अगर गोल्ड अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि गोल्ड अगर अपने कंडक्टिविटी और नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे या ख़राब हो जाए, उसकी इस क्वालिटी को अगर हम बात करें, अगर किसी तरह से काम ना करें, तो क्या होगा। स्केरी सिचुएशंस, उस पर हमने डिस्कस करा। तो ये थी, या कहें ये था, आज का व्हाट इफ। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। और वैसे भी हम किस बात की फिक्र कर रहे हैं यार, हमारे पास कौन से गोल्ड है। हमारे मोबाइल में ज़रूर गोल्ड है। आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियोस आती भी हैं कि एक शख्स है, उसने वो बहुत सारा मोबाइल, जो आप अपना पुराना मोबाइल फेंक देते हैं, कचरों में डाल देते हैं, वो खूब सारा मोबाइल ख़रीदता है, उनमें से चिप्स निकालता है और उसमें जो गोल्ड लगा है उसको दुनिया भर के केमिकल में डाल के फिर गोल्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है और बहुत सारे गोल्ड उसके पास हो जाते हैं और वो अमीर हो जाता है ना। तो ये भी बहुत बड़े लेवल पर अगर आप करेंगे तो ही हो पाएगा। और वो शख्स ऐसे ही करता है, बहुत बड़े लेवल पर इस तरह का काम करता है, ताकि उसके पास 10,000 रुपए में हजारों लाखों चिप्स खरीद ली, फिर उसको केमिकल में डालना, डिसॉल्व करना, फिर वापस से उसको हार्ड बनाना, फिर गरम करना, ये सारा काम अगर आप करें, वो ये काम करता है। कई ऐसे बंदे हैं वो काम करते हैं और गोल्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं मोबाइलों से। खैर, तो ये था आज का व्हाट इफ, इंटरेस्टिंग। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपके लिए वन ऑफ माई फेवरेट गाना प्ले करता हूँ। ये 2026 का ही गाना है, सतिंदर सरताज और जस्मीन की आवाज़ में।

हाला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है हाल चाल? 6:48, वैसे तो यहाँ से निकलने का वक्त आ गया, लेकिन कुछ मैसेज ले लेते हैं। वेरी गुड सॉन्ग खान साहब ने गाए, शुक्रान हबीबी। वैसे मैं अपने आप को क्यों कह रहा हूँ, या मतलब आपको क्यों कह रहा हूँ, सतिंदर को कहता हूँ शुक्रान, क्योंकि उन्होंने गाया है इस गाने को। सतिंदर और जैस्मिन की आवाज़ में गाना था। बाकी एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम भाईजान, देर हो गई। फिर ये मैसेज है कि मोबाइल से सोना हम दोनों मिलके निकाल सकते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही आपने आगे की सोच तो नहीं ली है। सपने सुहाने लड़कपन के। कैसे ये आपके दिमाग में बात कैसे आई मेरा भाई? एक तो गोल्ड प्लेटिंग होती है उसमें, गोल्ड होता नहीं है, मतलब ऐसा जैसा पेंट करते हैं ना दीवार में, वैसा वाला होता है। तो नाम क्या है आपका? अजहर साहब। बहुत आगे की सोच लेते हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे प्लानिंग से ही तो इंसान आगे बढ़ता है। बहुत ही उम्दा। आगे ये मैसेज किस भाई का है? राहिल का मैसेज है, सलाम वालेकुम भाई, मेरे अभी सोना लिया है। मेरे पास सोना रखा है, अभी सोना लिया, ऐसी बातें मत करो। नहीं नहीं देखो, मैंने कोई डराने वाली बात थोड़ी है, तो हाइपोथेटिकल मैंने बता भी दिया था भाई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। आपका नाम क्या है? सुफियान। ओके मेरा भाई, सोना लिया है सुफियान भाई। अब तो आपकी सेविंग जो है हो गई, ये वाली सेविंग सबसे बेस्ट है ना, कि आपने सोना लिया और आपका पैसा खर्च नहीं हुआ है, वो सेविंग ही तो है जो सोना लिया है आपने, है ना। बस एक ही नुकसान है, अगर आपने वो नेकलेस टाइप का लिया है तो फिर वो लेबर चार्ज में चला जाता है। बीवी आ गई, तो सीख लिया मैंने भाई। कि सोना लेना ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, अगर आपने बना बनाया सोना लिया है तो वो लेबर कॉस्ट भी उसमें लगती है। ये सब अब सीख रहा हूँ मैं। फिलहाल मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। कल तो छुट्टी का दिन है और भी लोग घूमने टहलने निकलेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। अभी आपके लिए गाना प्ले कर रहा हूँ अरिजीत सिंह की आवाज़ में, पद्मावत मूवी का यह ट्रैक है, कॉल्ड बिंत दिल, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट। चलो आशिक भाई चला जाए यार, कुछ खर्चा करो यार, आज देखी जाएगी जो होगी यार। क्या कह रहे हो, वॉशिंग मशीन खरीदनी है? हाथ से कपड़े धो रहे थे अभी तक तुम? इजाजत दे दिल से नहीं सही।

0: FM 107 पर बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: QMC now. अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल बोर्ड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा, ओनली ऑन एफएम 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं कतर इनोवेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफा एफएम 107 पर। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं उन आइडियाज की जो सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि हकीकत बनकर मुल्क की पहचान को नया रंग देते हैं। यहां हम एक्सप्लोर करते हैं इनोवेशन की दुनिया, जहाँ छोटी सी सोच भी एक बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। अगर आपके पास भी कोई भाई जबरदस्त सा आइडिया है ना, या आप किसी इंस्पायरिंग कहानी का हिस्सा हैं, तो भाई एक काम करें, हमें जरूर बताएं। 666-22-107 पर मैसेज कर, या आप चाहें तो आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, जो कि है @FM107Qatar। भाई ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी है। तो साथियों, आपको ये याद दिलाती चलूं कि कतर इनोवेट सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक सफर है, एक मिशन है, जहां हम अनकवर करते हैं वो कहानियां जो अक्सर हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनती लेकिन मुस्तकबिल को शेप कर जाती है। यहाँ बात होगी उन लोगों की जो नए आइडियाज के साथ सिस्टम को चैलेंज कर देते हैं, उन स्टार्टअप्स की जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हैं, और उन नेशनल इनिशिएटिव्स की जो कतर को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये वो दुनिया है भाई, जहाँ क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी मिलकर नए रास्ते बनाते हैं, और हर एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं एक नई सोच की तरफ, एक नई उम्मीद की तरफ, एक नई डायरेक्शन की तरफ, जिसको कतर ने फॉलो किया और माशाल्लाह से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल वाटर एंड फूड सिक्योरिटी इनोवेशंस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है साथियों, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा जरा सोचिए, पानी और खाना दो ऐसी बेसिक जरूरियात हैं जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जब बात आती है ना सस्टेनेबिलिटी की, तो सवाल ये उठता है भाई, क्या हम इन रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा पा रहे हैं? अगर नहीं तो कौन से नए तरीके हैं जो इस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा कतर जैसे मुल्क में जहाँ नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है, वहाँ इनोवेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि जरूरत बन चुका है। देखिए यहाँ डिसैलिनेशन जैसे एडवांस सिस्टम्स पानी को समंदर से निकाल कर यूजेबल बनाते हैं। हाँ लेकिन अब सवाल ये है कि भाई कैसे इस प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। देखिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट दिन रात इस पर काम कर रहे हैं कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो और पानी की सप्लाई सस्टेनेबल तरीके से बढ़ती जाए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि सर्वाइवल का एक नया मोड है भाई। अच्छा इसी तरह जब हम फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो एक और हमें फैसिनेटिंग सी इनोवेशन सामने आती है हमारे, वो है जो कि है हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा इसको कैसे बताया जाए? हाँ सोचिए, बिना मिट्टी के प्लांट्स ग्रो करना हैरानी वाली बात है कि नहीं? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि आज की रियलिटी है। कतर में हाइड्रोपोनिक फार्म्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, जहां कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स में फ्रेश वेजिटेबल्स उगाई जा रही हैं, यानी कि कम पानी के साथ ज्यादा एफिशिएंसी के साथ। अच्छा ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम सिर्फ पानी नहीं बचाता बल्कि अर्बन एरियाज में भी फार्मिंग को मुमकिन बनाता है, यानी कि शहर के बीच भी आप खेती कर सकते हैं। यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट भाई, जो कि फ्यूचर का एग्रीकल्चर डिफाइन कर रहा है। और फिर आता है स्मार्ट एग्रीकल्चर, जहां टेक्नोलॉजी और फार्मिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अच्छा सेंसर्स, डाटा एनालिटिक्स और AI के जरिए फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि कितना पानी देना है, कब फर्टिलाइजर यूज करना है और कैसे क्रॉप यील्ड को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये सब कुछ ना स्मार्ट सिस्टम के थ्रू होता रहता है, जो रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। भाई कतर में ऐसे प्रोजेक्ट्स ना रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जो सिर्फ लोकल डिमांड को मीट नहीं करते बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के जरिए आपको हम उन इनोवेटर्स के बारे में बताएंगे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो इसके पीछे है, उन चैलेंजेस, उन स्ट्रगल्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताएंगे। सब कुछ आपके सामने होगा, बिल्कुल रॉ एंड रियल। भाई आप जानेंगे कि कैसे एक आइडिया, एक विजन और थोड़ी सी मेहनत मिलकर पूरी दुनिया को चेंज कर सकती है। ये सिर्फ कोई मशीन्स और सिस्टम्स की कहानी नहीं है बल्कि इंसानों की कहानी है, उन लोगों की जो बिलीव करते हैं कि भाई बेटर मुस्तकबिल मुमकिन है। तो साथियों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां इनोवेशन सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि मैं कहूंगी एक मूवमेंट है। कतर इनोवेट्स के साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ हर एपिसोड एक नई रोशनी है, एक नई उम्मीद है और एक नया रास्ता है जो हमें ले जाता है एक सस्टेनेबल और सिक्योर फ्यूचर की तरफ। तो भाई मैं हूँ सफा और ये है आपका अपना शो जहाँ आइडियाज जिंदा होते हैं और मुस्तकबिल लिखा जाता है, यानी के कतर इनोवेट्स ऑन FM 107।
0: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी देसी।
1: तो चलिए साथियों अपना ये शो प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं और मैं आपको याद दिलाते चलूं कि आज का एपिसोड सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि एक रियलिटी चेक है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन दो चीजों की जो जिंदगी की बुनियाद है, यानी के पानी और खाना। लेकिन आज हम इन्हें सिर्फ जरूरियात के तौर पर नहीं बल्कि चैलेंज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेंगे। देखिए भाई, अगर आप ये सोचते हैं ना कि बस पानी का मामला ये कि आप नल खोलेंगे और पानी आ जाएगा और खाना सुपरमार्केट से सीधा प्लेट तक पहुंच जाता है, तो आज का शो आपकी सोच को बिल्कुल नया एंगल देने वाला है। देखिए, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल इश्यूज में से एक है। देखिए, वाटर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पानी अवेलेबल हो बल्कि ये भी है कि वो सेफ हो, सस्टेनेबल हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा रहे। अच्छा, इसी तरह फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता बल्कि न्यूट्रिशियस, सेफ और एक्सेसिबल फूड का हर वक्त अवेलेबल होना होता है। और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम आज की जरूरत करते हुए कल के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा, अब अगर हम इस बात को कतर के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें ना, तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। देखिए, कतर को कैसे समझा जाए। कतर ना एक डेजर्ट एनवायरनमेंट में लोकेटेड है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, हम सबको पता है। ग्राउंड वाटर लिमिटेड है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एग्रीकल्चर के लिए नेचुरल चैलेंजेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पानी और खाने का नेचुरल सप्लाई चेन वीक है। अच्छा, इसीलिए हिस्टोरिकली कतर को अपनी फूड नीड्स का बहुत बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन साथियों, दुनिया बदल रही है और कतर भी बदल रहा है, ये हम जानते हैं क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है, जब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो फिर सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? और यहाँ से शुरू होता है इनोवेशन की कहानी का सफर। देखें, आज हम बात करेंगे उन तीन पावरफुल इनोवेशंस की जो कतर जैसे मुल्क के लिए गेम चेंजर बन चुकी हैं। क्या चीजें हैं? डिसैलिनेशन, हाइड्रोपोनिक्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर। अच्छा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं। कैसे? ये जो है ना, डिजाइन की गई है, साइंटिफिकली केयरफुली इम्प्लीमेंट की गई है और कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं, किसको ले लें? डिसैलिनेशन को ले लेते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लिटरली समंदर के पानी को जिंदगी में बदल देता है। नहीं समझे? डिसैलिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सी वाटर से सॉल्ट और इम्प्योरिटीज रिमूव करके उसे ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, लेकिन जो चीज इसे ट्रूली सच में रिमार्केबल बनाती है ना, वो है इसका स्केल ऑफ एफिशिएंसी। देखिए कतर में ना लार्ज स्केल डीसेलिनेशन प्लांट्स ऑपरेट करते हैं जो रोजाना मिलियंस ऑफ लीटर पानी प्रोड्यूस करते हैं। ये पानी सिर्फ घरों के लिए नहीं होता बल्कि इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और हत्ता के एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है। अच्छा अब ना थोड़ा टेक्निकल एंगल समझने की कोशिश करते हैं। यानी मॉडर्न डीसेलिनेशन सिस्टम ज्यादातर रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इस प्रोसेस में हाई प्रेशर के जरिए पानी को एक स्पेशल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जो सॉल्ट और इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है भाई क्लीन पोर्टेबल वाटर, सिंपल। लेकिन पहले ये प्रोसेस एनर्जी इंटेंसिव था जिससे एनवायरमेंट कंसर्न पैदा होते थे, लेकिन आज की इनोवेशन यहाँ भी काम कर रही है, यानी के एनर्जी एफिशिएंट मेम्ब्रेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और ब्रिन मैनेजमेंट सिस्टम्स के जरिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा रहा है। यानी कि अब डीसेलिनेशन सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बल्कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन रहा है। अच्छा अब आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। अच्छा क्योंकि पानी के बाद अगला सवाल होता है खाना कहाँ से गा? सबका सवाल ये होता है। देखिए ट्रेडिशनल फार्मिंग कतर जैसे क्लाइमेट में मुश्किल होती है, यानी कि आप यूँ समझ लेना हाई टेम्परेचर हैं, सैंडी सॉइल है और लिमिटेड फ्रेश वाटर है। यहाँ हाइड्रोपोनिक्स एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच के तौर पर सामने आता है। अब आप कहेंगे सफा ये हाइड्रोपोनिक्स किस किस्म का नाम है? देखिए हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है बिना मिट्टी के प्लांट्स ग्रो करना। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, बिना सॉइल के। इस सिस्टम में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन दिया जाता है जो उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड तमाम एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। देखें हाइड्रोपोनिक्स का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कैसे बताऊं कि हाइड्रोपोनिक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिस्टम पानी को रिसाइकल करता है। यानी कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले में 70-90% यानी 70-90% तक कम पानी यूज होता है। और क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है जैसे कि ग्रीन हाउसेस या इंडोर फार्म्स, इसीलिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? फास्टर ग्रोथ, हायर यील्ड और राउंड प्रोडक्शन। मतलब के आपके पास दिसंबर हो या जुलाई फ्रेश लेटस, टोमेटोज, हर्ब्स हर वक्त अवेलेबल भाई। अच्छा एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम सिर्फ वाटर एफिशिएंट नहीं बल्कि लैंड एफिशिएंट भी होते हैं। अर्बन फार्मिंग के कॉन्सेप्ट के जरिए शहर के अंदर ही वर्टिकल फार्म्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जहां लिमिटेड स्पेस में मल्टीपल लेयर्स पर क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। अच्छा भाई ये अप्रोच ना बड़ी कमाल की है। ये अप्रोच इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करती है और लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? ये फार्मिंग सिस्टम क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट से भी रिलेटिवली प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा अब बात करते हैं तीसरी इनोवेशन की, स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये वो पॉइंट है जहाँ फार्मिंग और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट हो जाते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब है डाटा ड्रिवन फार्मिंग जहाँ सेंसर्स, IoT डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करके हर चीज मॉनिटर की जा सकती है। सॉइल मॉइस्चर कितनी है, टेम्परेचर क्या है, प्लांट हेल्थ कैसी है, कितना पानी और फर्टिलाइजर देना चाहिए, ये सब डिसीजंस गेस वर्क से नहीं बल्कि रियल टाइम डाटा से लिए जाते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा एफिशिएंसी है भाई। जब फार्मर्स को एग्जैक्टली पता होता है ना कि प्लांट को आखिर चाहिए क्या ग्रो करने के लिए, तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती, पानी का यूज ऑप्टिमाइज होता है, फर्टिलाइजर्स कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज किए जाते हैं और क्रॉप यील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है भाई। कुछ एडवांस सिस्टम्स में तो ऑटोमेशन इतनी ज्यादा है कि इंटीग्रेशन और न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी का नेक्स्ट लेवल है भाई। और हाँ ये सब इनोवेशंस अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये भाई एक इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। देखिए ये बात तो हम सब जानते हैं कि कतर ने पिछले कुछ सालों में वाटर और फूड सिक्योरिटी को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप्स और एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां इनोवेशन थ्राइव करती है। ये अप्रोच सिर्फ लोकल नीड्स को एड्रेस नहीं करती बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस के लिए भी ये सॉल्यूशंस डेवलप करती है। अच्छा आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि कैसे पानी और खाना जो बेसिक जरूरियात हैं इनोवेशन के जरिए एक एडवांस्ड सस्टेनेबल सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। डीसेलिनेशन ने समंदर को रिसोर्स बना दिया, हाइड्रोपोनिक्स ने फार्मिंग को रीडिफाइन कर दिया। ये सब मिलकर एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं जहां मुश्किलों का जवाब टेक्नोलॉजी के पास है। तो साथियों, अगर आप भी किसी आइडिया के साथ इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपके पास कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन है तो हमें जरूर बताएं। हमें चाहे तो मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, या हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, जो कि है FM 107 कतर। मैं हूं सफा और ये है कतर इनोवेट्स, जहां सोच एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है।
0: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो चलिए दोस्तों, अपना आगे का सफर शुरू करते हैं और चलते हैं आइडिया टू इम्पैक्ट पर, जहां हम बात करेंगे उन जबरदस्त इनोवेशंस की जो सिर्फ आइडिया नहीं रहते बल्कि रियल लाइफ सॉल्यूशन बन चुके हैं, और ये सॉल्यूशन डायरेक्टली हमारी जिंदगी, हमारे पानी और हमारे खाने से जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आप कभी सोचते हैं ना कि डेजर्ट जैसी जगह पर जहाँ ना रिवर्स हैं, ना हैवी रेनफॉल है, वहाँ फ्रेश पानी और फ्रेश फूड का सिस्टम कैसे चल रहा है, तो जवाब है इनोवेशन प्लस साइंस प्लस स्मार्ट प्लानिंग। देखिए, आज हम तीन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिसेलिनेशन, हाइड्रोपोनिक्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो भाई चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जो लिटरली पानी को जिंदगी में कन्वर्ट करता है, यानी कि बात करते हैं स्पेसिफिकली डिसेलिनेशन की। देखिए, सिंपल अल्फाज में डिसेलिनेशन का मतलब है समंदर के नमकीन पानी को मीठा और पीने के लायक बनाना। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, तो भाई इसका जो मेजर मेथड होता है ना वो है थर्मल डिसेलिनेशन, जहां पानी को बॉयल करके स्टीम बनाया जाता है और फिर उसे कंडेंस करके फ्रेश वाटर बनाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, जिसे कहा जाता है RO, जहां हाई टेम्परेचर प्रेशर से पानी को एक स्पेशल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जो सॉल्ट और इम्प्योरिटीज को रोक लेता है। देखिए, कतर जैसे मुल्क ने इन टेक्नोलॉजीज को सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया बल्कि ऑप्टिमाइज किया है। यहाँ के डिसेलिनेशन प्लांट्स दुनिया के एडवांस्ड प्लांट्स में से एक हैं। ये प्लांट्स सिर्फ पानी नहीं बना रहे, ये एफिशिएंट पानी बना रहे हैं भाई। मतलब ये कि कम एनर्जी यूज करते हैं, कम वेस्टेज होता है, ज्यादा आउटपुट होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, पता है क्या, मॉडर्न डिसेलिनेशन प्लांट्स अब रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। भाई सोचिए, सूरज की रोशनी, एनर्जी, डिसेलिनेशन इज इक्वल्स टू फ्रेश पानी। भाई ये कंप्लीट सस्टेनेबल साइकिल बन जाता है। अच्छा, लेकिन एक चैलेंज भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हर चीज इतनी स्मूथ चल रही है। देखिए, डिसेलिनेशन का प्रोसेस ना एनर्जी इंटेंसिव होता है, इसीलिए कतर और दूसरे ममालिक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे एनर्जी कंजम्पशन कम की जाए, यानी कि जो सॉल्टी वेस्ट होता है ना उसको एनवायरमेंटली सेफ तरीके से हैंडल किया जाए। और आज हम देख रहे हैं कि डिसेलिनेशन सिर्फ नेसेसिटी नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन बन चुका है। अच्छा भैया, आते हैं अपने हाइड्रोपोनिक्स यानी कि मिट्टी के बगैर खेती के पर। जरा सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि पौधे बिना मिट्टी के ग्रो कर सकते हैं तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, मेरी तरह, मैं भी ऐसे हैरान हुई थी। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं, ये हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स सिंपली एक ऐसा सिस्टम होता है जहां प्लांट्स को मिट्टी के बजाय न्यूट्रिएंट रिच पानी दिया जाता है। मतलब ये नो सॉइल, नो ट्रेडिशनल फार्मिंग, सिर्फ पानी प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और यहां सबसे जबरदस्त बात ये है कि हाइड्रोपोनिक्स में 90% तक पानी बचाया जा सकता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब आप समझ रहे हैं कि ये कतर जैसे मुल्क के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ के हाइड्रोपोनिक फार्म्स यूजुअली ग्रीन हाउस के अंदर होते हैं, जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, लाइट कंट्रोल होती है, यानी एक परफेक्ट एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ प्लांट्स स्ट्रेस फ्री ग्रो करते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, ग्रोथ होती है, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस, लेस पेस्टिसाइड यूज, ईयर फार्मिंग। मतलब अब आपको टोमेटोज, लेटस, क्यूकम्बर के लिए दूसरे मुल्कों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। कतर में हाइड्रोपोनिक फार्म्स ने लोकल फूड प्रोडक्शन को बूस्ट किया है साथियों, और ये सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये फूड इंडिपेंडेंस की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। और एक और इंटरेस्टिंग एंगल इसका ये है कि हाइड्रोपोनिक्स अर्बन एरियाज में भी पॉसिबल है, रूफटॉप्स, वेयरहाउसेस, हद तक के कंटेनर्स के अंदर भी। सो फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग के ऊपर ही एक मिनी फार्म हो, पता हो सकता है। अच्छा भाई, अगर आगे बात करें तो अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी और सबसे एक्साइटिंग इनोवेशन की, यानी कि स्मार्ट एग्रीकल्चर की। जब हम वर्ड सुनते हैं ना स्मार्ट, तो दिमाग में आ जाता है कि कुछ अच्छी सी बात होने वाली है, टेक्नोलॉजी की बात होने वाली है। ये वो जगह है जहां फार्मिंग और टेक्नोलॉजी मिलकर एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट करते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर का कोर है ये, डाटा प्लस सेंसर्स प्लस ऑटोमेशन, मतलब ये कि फार्मर्स अब गेस वर्क पे नहीं चलते, वो डाटा की बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आईओटी सेंसर सॉइल मेजर चेक करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स क्लाइमेट मॉनिटर करते हैं, ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन सिस्टम्स जो हैं वो पानी सिर्फ तब देते हैं जब जरूरत हो, यानी ना ज्यादा पानी वेस्ट होता है ना कम पानी से क्रॉप्स सफर करते हैं। ये सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है भाई, मतलब फार्मर अपने मोबाइल से ये देख सकता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना पानी चाहिए, क्रॉप हेल्थ कैसी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एआई और मशीन लर्निंग भी यूज हो रही है भाई क्रॉप डिजीजेस प्रिडिक्ट करने के लिए, यील्ड इंप्रूव करने के लिए, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करने के लिए। और एक जबरदस्त चीज पता है क्या है, ड्रिप इंटीग्रेशन सिस्टम, जहां पानी डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स तक दिया जाता है। इससे क्या होता है, वाटर वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ग्रोथ इंप्रूव होती है, जहां हर ड्रॉप और हर सीड का हिसाब होता है। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है सफा, देखो बहुत अच्छा फील आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी? चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इसका क्या है। पहली चीज है कंसिस्टेंट फूड प्रोडक्शन। देखिये, अब सीजनल डिपेंडेंसी कम हो रही है, ग्रीन हाउसेज और स्मार्ट सिस्टम की वजह से हर सीजन में फार्मिंग पॉसिबल है। दूसरी चीज आती है वाटर प्रिजर्वेशन, मतलब डिसैलिनेशन प्लस स्मार्ट इंटीग्रेशन प्लस हाइड्रोपोनिक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एफिशिएंसी मिनिमम वेस्ट। अच्छा, इसी के साथ फिर तीसरी चीज पर आ जाते हैं, तो तीसरी चीज मेरे दिमाग में क्या आ रही है, इसको सुनकर मेरे दिमाग में आ रहा है रिड्यूस्ड इम्पोर्ट्स, यानी कि लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाती है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथी चीज इसी के साथ आती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, केमिकल कम यूज होगा, कम पानी जो है ना वो यूज होगा, कंट्रोल्ड सिस्टम्स होंगे, उसका नतीजा क्या होगा, इको फ्रेंडली फार्मिंग होगी ना। और फिर आखिरी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। ये टेक्नोलॉजीज नई इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रही है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स, टेक बेस्ड फार्मिंग जॉब्स, मतलब इकोनॉमी सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड नहीं कर रही बल्कि डाइवर्सिफाई हो रही है। अच्छा, अब थोड़ा ना फ्यूचर की तरफ देखते हैं, फ्यूचर की तरफ जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्यूचर में क्या नजर आता है। इमेजिन कीजिए फुल्ली ऑटोमेटेड फार्म्स, एआई ड्रिवन क्रॉप मैनेजमेंट, सोलर पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट्स, वर्टिकल फार्मिंग स्काइपर्स। ओ भाई, ये सब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है भाई। और भाई, कतर जैसे मुल्क ना इस रेस में आगे ही चल रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज मिलकर ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो सिर्फ लोकल नहीं ग्लोबल लेवल पर अप्लाई हो सकते हैं। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंसानी जरूरत की कहानी है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना, तब इनोवेशन पैदा होती है, और कतर इसका परफेक्ट एग्जांपल है भाई। अच्छा साथियों, अगर मैं इस पूरे जो मैंने आपसे बातें की हैं उनको एक लाइन में समराइज करूँ ना इन सारी बातों को, तो पता है क्या होगी, जहाँ पानी और खाना चैलेंज बन जाए ना, वहाँ साइंस सोल्यूशन बन जाती है। देखिए, डिसैलिनेशन ने पानी दिया, हाइड्रोपोनिक्स ने फार्मिंग बदली, स्मार्ट एग्रीकल्चर ने एफिशिएंसी लाई, और इन सब ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्रिएट किया जो फ्यूचर को सिक्योर करता है भाई। तो भाई साथियों, अब वक्त है एक्साइटिंग सी बात का, जो कि है बिहाइंड द इनोवेशंस का। अब तक हमने टेक्नोलॉजी समझी, लेकिन अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि इन इनोवेशंस के पीछे हैं, क्योंकि हर मशीन के पीछे एक माइंड होता है भाई, और हर सिस्टम के पीछे एक विजन होता है। देखें, अगर बात की जाए तो ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, और उन्हीं के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स। ये वो लोग हैं जो प्रॉब्लम को देखकर कहते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन जरूर होगा। डिसैलिनेशन प्लांट्स डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स, उन्हें पता होता है कि एक छोटी सी एफिशिएंसी इंप्रूव में मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी सेव कर सकते हैं वो। ये जो हमारे हाइड्रोपोनिक फार्म्स बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं जैसे कि साइंटिस्ट लैब में एनवायरमेंट कंट्रोल करते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर डेवलपर्स जो होते हैं, वो कोडिंग और फार्मिंग को कंबाइन करते हैं, यानी ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट है। अच्छा, अब सच ये है कि ये सब इतना इजी नहीं होता जितना सुनने में आपको लग रहा है। हर इनोवेशन के साथ चैलेंजेस आते हैं, डिसैलिनेशन चैलेंजेस, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये जो हम बात कर रहे थे ब्राइन डिस्पोजल्स की, हाइड्रोपोनिक्स चैलेंजेस ये थे कि हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, क्लाइमेट कंट्रोल इन एक्सट्रीम हीट। फिर अगर बात करें स्मार्ट एग्रीकल्चर चैलेंजेस की, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत थी। लेकिन यहाँ जो चीज इम्पोर्टेंट है ना, वो पता है क्या है, इन लोगों ने गिव अप नहीं किया, उन्होंने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए और सॉल्यूशंस फाइंड किए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो सक्सेस का, जो मेरे ख्याल से हर जगह सक्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट या मैं कह लूँ बैकबोन जो होती है ना, वो टीम वर्क होता है। ये इनोवेशन किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये टीम वर्क का रिजल्ट होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट करती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन डेवलप करती हैं, प्राइवेट कंपनीज इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। ये कोलैबोरेशन एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जहां आइडियाज ग्रो करते हैं, और जब रिसोर्स शेयर होती है ना तो प्रोग्रेस फास्ट होती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पता है क्या है, ये लोग ये सब क्यों करते हैं, इनका मोटिवेशन क्या है? जवाब बड़ा सिंपल है, फ्यूचर सिक्योर करना है, रिसोर्सेज बचानी है, सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है। ये लोग सिर्फ आज के लिए नहीं सोचते बल्कि कल के लिए भी काम कर रहे होते हैं। उनका एक ही गोल होता है, ऐसा सिस्टम बनाए जो जनरेशंस तक चल सके। तो साथियों, अगर हम इस पूरी कहानी को एक सिंपल एंगल से देखें ना, समझने की कोशिश करें, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये एक इंसानी कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो प्रॉब्लम्स से डरते नहीं है बल्कि उन्हें सॉल्व करने का जज्बा रखते हैं। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं जहां सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये इनोवेशन सिर्फ कतर के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। आज दुनिया के बहुत से हिस्से, चाहे वो अफ्रीका के ड्राई रीजन्स हो, मिडल ईस्ट के डेजर्ट्स हो या दूसरे एरिड ज़ोन्स हो, सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ये सब। यानी कतर सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन साथियों रुके जरा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल है जिसे इग्नोर नहीं किया जाता, ज्यादा बेहतर है, और वो है हमारी जिम्मेदारी। देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पावरफुल है, बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन अगर हम उसे इर्रिस्पॉन्सिबली यूज करें ना तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड रह जाता है। साथियों, मैं और आप, हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। जब हम पानी वेस्ट नहीं करते, जब हम फूड को रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, तब हम भी इस इनोवेशन जर्नी का पार्ट बन जाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ मिलियन डॉलर डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं और दूसरी तरफ एक छोटा सा एक्शन जैसे आपका टैप बंद करना जब आप यूज ना कर रहे हो, तो दोनों का गोल सेम है, पानी बचाना। एक तरफ एडवांस्ड हाइड्रोपोनिक फार्म्स हैं और दूसरी तरफ हमारी डेली चॉइसेस कि हम फूड वेस्ट ना करें। एक तरफ स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं और दूसरी तरफ हमारी अवेयरनेस कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली चॉइसेस करें। यानी इनोवेशन सिर्फ लैब्स और फार्म्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। और यही बात तो इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मैसेज है, फ्यूचर सिर्फ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट नहीं बनाते बल्कि हम सब मिलकर बनाते हैं। आज जो डिसीजंस हम लेते हैं वो कल की दुनिया को शेप देते हैं, और अगर हमने आज सस्टेनेबिलिटी को अपने लिए नहीं अपनाया तो कल की जनरेशन एक सिक्योर और हेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं जी पाएगी। साथियों, कतर की जर्नी हमें ये भी सिखाती है कि जब डिटर्मिनेशन हो ना तो डेजर्ट भी ग्रीन बन सकता है, जब विजन हो ना तो समंदर भी पानी का सोल्यूशन बन जाता है, और जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट कंबाइन हो जाए तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। और ये एक मुल्क की कहानी नहीं है, ये एक इंस्पायरेशन है कि हम भी अपनी जिंदगी में इनोवेशन ला सकते हैं, चाहे वो छोटी सी हैबिट चेंज करना ही क्यों ना हो या कोई नया आइडिया हो, हर स्टेप मैटर करता है। और इसी सोच के साथ हम अपने आज के सफर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये शो पसंद आया हो या आपके पास भी कोई आइडिया हो तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जो कि है @FM107Qatar, या चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं 666-22107 पर। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे कतर इनोवेट्स, जहां हमने ये जाना कि कैसे आइडियाज रियलिटी बनते हैं और कैसे इनोवेशन हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। अपना ख्याल रखिए, पानी की कदर कीजिए, खाने की इज्जत कीजिए, और हमेशा याद रखिए, इनोवेशन सिर्फ फ्यूचर का हिस्सा नहीं है बाबू बल्कि आज का फैसला है। अल्लाह हाफिज, और फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked with RJ Ved,
1: only on FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AI Unlocked के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल AI एजेंट्स की। ये सिर्फ चैट नहीं, काम करने वाले AI हेल्पर्स हैं। ईमेल शेड्यूल करना, नोट से समरीज बनाना, रिसर्च कंपाइल करना, रिमाइंडर सेट करना, सब ऑटोमेटिकली ये कर देते हैं। इंडस्ट्री में एजेंट्स का बढ़िया वेव आ रहा है। ओपन AI ने नया एजेंट्स रियल टाइम स्टैक पुश किया, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट स्टूडियो ने मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन लॉन्च की, और गूगल नोटबुक LM ने क्रिएटर्स के लिए नई फ्लैश कार्ड पावर्स ऐड की। मतलब 2025 में अब आपका काम और आसान हो जाएगा। इन AI एजेंट्स को काम सौंपो और बाकी टाइम आप आराम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का AI Unlocked वेद के साथ।
3: AI Unlocked
4: RJ वेद के साथ
3: एवरी संडे फ्रॉम 5 PM सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: तो आखिरकार एजेंट काम कैसे करते हैं? एजेंट को आप गोल देते हैं, वो स्टेप्स प्लान करता है, टूल्स को कॉल करता है और रिजल्ट देता है, सारी एक्टिविटी लॉक्स के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड 2025 पर को पायलट स्टूडियो में मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन दिखाया। ईमेल एजेंट, कैलेंडर एजेंट, रिसर्च एजेंट, ये मिलकर काम बांट लेते हैं। क्रिएटर के लिए इसका मतलब है ब्रांड ब्रीफ, एजेंट असेट्स रीड करे, टॉकिंग पॉइंट्स निकाले, ड्राफ्ट कैप्शन और POV स्क्रिप्ट बना दे, उसके बाद कैलेंडर में स्केड्यूल सजेस्ट करे, ऑफिस में मीटिंग नोट्स, एक्शन आइटम्स, फॉलो अप, CRM अपडेट, ऑटो पायलट जैसा है भाई, पर अप्रूवल्स होंगे उसमें आपके, बिना आपके अप्रूवल्स के नथिंग। यहाँ तक कि न्यूज रूम और एंटरप्राइजेस भी एजेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस कहती है कि हमको पायलट से ऑटो पायलट में शिफ्ट हो रहे हैं, पर ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी मस्ट है। अभी एप्पल, गूगल, ओपन AI सब ने आपके हाथ में सुपर पावर दे दी। एप्पल इंटेलिजेंस 2025 में लैंग्वेजेस एंड रीजन एक्सपांड, राइटिंग टूल्स, इमेज प्लेग्राउंड, लाइव ट्रांसलेशन ज्यादा मार्केट में अब अवेलेबल है। गूगल नोटबुक LM अब वीडियो को आप 80 जबानों में देख सकते हैं और ऑडियो ओवरव्यूज और भी ज्यादा डिटेल्ड ले सकते हैं। एजुकेशन के लिए फ्लैश कार्ड्स और क्विजेस ऑटो जनरेट करने के लिए ये कमाल की चीज है। तो दोस्तों ट्राई करके देखिए, अगर आप एजेंट को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, जब भी आप चैट GPT में न्यू चैट खोलते हैं तो आपको प्लस का ऑप्शन नजर आएगा, जहां पे आप चैट टाइप करते हैं उसके वहां पे प्लस का ऑप्शन, उसमें क्लिक कीजिए और आपको ऐड फोटोज एंड फाइल्स, डीप रिसर्च, क्रिएट इमेज, ऐड सोर्सेज, ये सब। तो एजेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको एजेंट मोड में जाना पड़ेगा। ट्राई करके देखिए, मजा ना आए तो पैसे वापस है सर। फिलहाल चलते हैं हमारे शो के दूसरे सेगमेंट की तरफ और ये है AI अराउंड द वर्ल्ड। कौन कौन सी AI की खबरें हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है?
5: AI अराउंड द वर्ल्ड।
2: मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अनाउंस किया है कि वो अपने AI यूनिट्स, फेयर रिसर्च लैब और प्रोडक्ट टीम से तकरीबन 600 लोगों को हटा रहा है, लेकिन नए TBD लैब के लिए एग्रेसिवली हायरिंग चल रही है, जहां का फोकस होगा लार्ज LLM पर, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर। ये एक बड़ा सिग्नल है कि बड़े टेक प्लेयर्स अपनी AI स्ट्रेटेजी रीथिंक कर रहे हैं। अगर इसकी थोड़ा और डिटेल देखें तो मेटा शायद फील कर रहा है कि ब्रॉड AI रिसर्च से ROI इमीडिएट नहीं आ रहा, इसलिए अब सिलेक्टिव स्मार्ट बेट्स पे फोकस करेगा। ये तो वही बात हो गई कि भाई 600 रोबोट्स बनाए, फिर बाद में बोला नहीं कैंसिल करो, अभी काम करते हैं, अब एक बड़ा रोबोट बनाते हैं। तो उसी दिशा में मेटा बढ़ रहा है। एक ग्लोबल कोएलिशन जिसमें प्रिंस हैरी, मेगन मार्कल और कई AI एक्सपर्ट्स शामिल हैं, ने एक ओपन लेटर साइन किया है डिमांडिंग अ पॉज ऑन सुपर इंटेलिजेंट AI डेवलपमेंट जब तक सेफ्टी कंफर्म नहीं होती। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI सिर्फ टेक टॉपिक नहीं रहा, ये कल्चरल, एथिकल और पॉलिटिकल डिबेट भी बन गया है। जब सेलिब्रिटीज बोलते हैं तो गवर्नमेंट सुनते हैं। ये पुशबैक दिखाता है कि लोग AI और कंट्रोल के बारे में सीरियस हो रहे हैं। तो क्या AI हमसे ज्यादा समझदार बन जाएगा? ओरिडो ने NVIDIA GPU के साथ मिलकर सोवेनियन AI क्लाउड लॉन्च किया है। सब कुछ लोकली होस्टेड होगा, सब कुछ लोकली होस्ट किया जाएगा, मतलब डेटा कंट्री का कंट्री में ही रहेगा। ये सोवेनियन AI ट्रेंड का हिस्सा है, हर देश अपना डेटा और AI

फ्लो में डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। वहीं एक बड़ी खबर में एलन मस्क ने कहा है कि एआई और रोबोट्स आखिर में सब जॉब्स रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उन्होंने इसे एक पॉजिटिव फ्यूचर के रूप में देखा है जहां काम करना ऑप्शन हो जाएगा। उनके हिसाब से जब एआई रिपीटेटिव जॉब्स संभालेंगे तब ह्यूमंस अपना टाइम क्रिएटिविटी, हॉबीज और लर्निंग में लगा सकते हैं। इस विजन को उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल हाई इनकम, मतलब हर इंसान के पास बेसिक से ऊपर इनकम होगी चाहे वो काम करे या ना करे। एक नए स्टडी में पता चला है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जब बार बार लो क्वालिटी सोशल मीडिया कंटेंट और क्लिक बेट से ट्रेन होते हैं तो उनका दिमाग कमजोर पड़ने लगता है। इसे रिसर्चर्स ने LLM ब्रेन रॉट बोला है। रिजल्ट इन मॉडल्स की रीजनिंग, मेमोरी और एथिकल एक्यूरेसी बिगड़ जाती है और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है, मतलब क्लीन डेटा से भी ठीक नहीं होता। मतलब भाई AI भी रील्स और क्लिक बेट देख देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है। AI भी बोल रहा होगा भाई मुझे भी तो एंगेजमेंट चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल और AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक के बीच एक मल्टी बिलियन डॉलर डील फंड हो रही है। इस डील के अंदर एंथ्रोपिक को मिलेगी गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग पावर और कस्टम चिप्स का एक्सेस, जिसका वैल्यू टेंस ऑफ बिलियंस में है। प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 21% अमेरिकन वर्कर्स अपने जॉब में AI इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिछले साल सिर्फ 16% था। एडॉप्शन बढ़ रहे हैं लेकिन मेजोरिटी लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, स्पेशली एज और एजुकेशन के बेसिस पे डिवाइड हो रखा है। मतलब हाइप तो हाई है पर ग्राउंड रियलिटी में AI अभी इंटर्न लेवल पे है, मैनेजर लेवल पे नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के हिसाब से रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर अब AI का इस्तेमाल कर रहे हैं फेक कॉन्टेंट बनाने, फिशिंग ईमेल्स ट्रांसलेट करने और ऑफिशियल्स के डिजिटल क्लोन्स क्रिएट करने के लिए ये लगातार AI यूज कर रहे हैं। AI अब साइंस के हर फील्ड में रिवोल्यूशन ला रहा है। लाइफ साइंस, AI से ड्रग डिस्कवरी और mRNA वैक्सीन्स फास्टर हो रहे हैं। AI ने हजारों नए बैटरी और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स प्रेडिक्ट किए हैं। AI वेदर मॉडल ग्राफकास्ट ट्रेडिशनल सिस्टम से ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट क्लाइमेट बता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक OpenAI ने ChatGPT Atlas नाम का AI पावर्ड वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जो ChatGPT को डायरेक्टली इंटरनेट के साथ मर्ज करेगा। मतलब अब ब्राउजिंग और चैटिंग एक ही जगह, प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट जुगाड़ हो गया है भाई। और अगली खबरों में एक रिसर्च के मुताबिक कई अमेरिकन सब AI चैटबॉट्स के साथ रोमांटिक अटैचमेंट डेवलप कर रहे हैं। यूजर्स कहते हैं कि AI उन्हें समझाता है, जज नहीं करता और हमेशा अवेलेबल रहता है, अनलाइक ह्यूमंस। ये डिजिटल लोनलीनेस और इमोशनल डिपेंडेंसी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनाता हूँ आपको एक प्यारा सा गाना।

0: AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
1: Only on FM 107, दिल से देसी.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं
1: AI Unlock.
2: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में AI Unlocked with RJ Ved.
1: Only on FM 107 दिल से देसी.
0: और अब बात करते हैं आज के AI वर्ड ऑफ द वीक.
3: AI वर्ड ऑफ द वीक.
0: आज का AI वर्ड ऑफ द वीक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बिना कोई भी AI एजेंट अधूरा है, और वो है फंक्शन कॉलिंग. नाम बड़ा टेक्निकल सा लगता है, पर आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब समझो, जब हम AI को सिर्फ बातें नहीं काम करने के लिए बोलते, जैसे आप बोलते हो hey AI मेरा कैलेंडर अपडेट कर दो, या वेदर बताओ, या ईमेल भेज. अब यहां AI सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि डिसाइड करता है कि कौन सी फंक्शन कॉल करनी है, क्या पैरामीटर्स देने हैं, और फिर आपकी ऐप वो एक्शन क्यूट करती है. समझ लो कि ये AI के स्केलेटन की जैसा है, यही उसकी हड्डी असली है. अगर ये नहीं होगा तो AI बस एक चैटर बॉक्स होता है. और हाँ, प्रॉम्प्ट डिजाइन यहाँ बहुत मैटर करता है. मतलब AI से सही काम करवाना है तो उससे सही तरीके से बात करनी पड़ेगी, सही तरीके से बोलना पड़ेगा. गूगल के जेमिनी लाइव API में भी यही पैटर्न फॉलो होता है. सो बेसिकली सब बड़े प्लेयर अब एक ही लाइन पे हैं, AI जो बोलता भी है और करता भी है. अब अगर आप डेवलपर नहीं हो तो भी ये समझना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के बिना कोई भी AI सिर्फ बोलता है, लेकिन फंक्शन कॉलिंग के साथ AI काम करता है. इमेजिन करो तुम्हारे फोन का AI ऑटोमेटिकली मीटिंग शेड्यूल कर दे, या कोई फाइल समराइज करके रेडी कर दे. ये सब हो सकता है फंक्शन कॉलिंग से. तो जब अगली बार आपका AI असिस्टेंट आपके

0: कहने से पहले काम कर दे, याद रखना उसके पीछे छुपा है एक स्मार्ट फंक्शन कॉल। अब बात करते हैं दोस्तों आज के AI टूल ऑफ द वीक। और आज जो टूल मैं लेकर आया हूँ उसे सुन के आपका इनर कंटेंट क्रिएटर बोलेगा, भाई ये तो मेरे दिमाग का सीवर है। नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, जहाँ AI सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं पूरा टीम बन जाता है, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन बॉस। अब सोचो आप एक रेडियो प्रेजेंटर है मेरी तरह या कॉन्टेंट क्रिएटर है, आपके पास ब्रांड ब्रीफ अलग फोल्डर में है, प्राइज लिस्ट किसी और मेल में, डेडलाइंस व्हाट्सएप में और पुराने रील्स कहीं वन ड्राइव में घूम रहे हैं। रिजल्ट, दिमाग फ्राइड हो जाएगा, डेडलाइन समझ में नहीं आएगी क्या हो जाएगा। यही एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो की। एक ऐसा AI टूल है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है और आपके लिए काम करने वाले मिनी एजेंट्स क्रिएट करता है। तो चलो समझते हैं कि कैसे स्टार्ट करें कोपायलट स्टूडियो के साथ सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। नंबर 1, स्टार्टर कोपायलट चूज करो। सबसे पहले एक स्टार्टर कोपायलट सेलेक्ट करो और अपने डेटा कनेक्शंस जोड़ो, जैसे शेयरपॉइंट, वन ड्राइव, वेबसाइट या नॉलेज बेस, मतलब सारे स्कैटर डॉक्स, ब्रांड ब्रीफ्स और रेट कार्ड्स एक ही जगह आ जाएंगे। अब कोपायलट तुम्हारे कंटेंट का इंसाइक्लोपीडिया भी बन गया है। नंबर 2, स्किल्स और एक्शन ऐड करो। इस कोपायलट को सिखाओ क्या करना है, जैसे ईमेल भेजना, कैलेंडर अपडेट करना, CRM फिल करना या स्प्रेडशीट लिखना। सो बेसिकली हर रिपीटेटिव टास्क जो आप मैनुअली करते थे अब AI करेगा। कह सकते हैं कि अब आपका जो इंटर्न है वो छुट चला गया, अब ये काम कर लेगा। नंबर 3, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन मैजिक। अब आता है सबसे कूल पार्ट, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन। आप अपने कोपायलट में अलग अलग एजेंट्स असाइन कर सकते हैं, जैसे रिसर्च एजेंट, कंटेंट एजेंट, कैलेंडर एजेंट। फिर आप एक सिंगल गोल देते हैं, आज 7 बजे 30 सेकंड की रील प्लस कैप्शन प्लस पोस्ट शेड्यूल कर दो और बस एजेंट्स मिल बैठकर पूरा काम कर देते हैं। वाह यार, कमाल की चीज है यार, ये तो कितना मजा आएगा। मतलब आपके इतने सारे असिस्टेंट हैं आपके अंडर काम करने वाले, वो अलग बात है, ह्यूमन कोई नहीं है, फील तो एकदम मैनेजर वाली आ रही है यार। बस एक बात, अप्रूवल्स ऑन रखना, क्योंकि AI भी कभी कभी ओवर क्रिएटिव हो जाता है। और जैसे ब्रांड ने बोला कॉफी तो वो लिख सकता है करक चाय, या दैट्स व्हाई ब्रांड अप्रूवल ऑन रखोगे तो हर चीज होने के पहले आपके पास अप्रूवल के लिए पूछा जाएगा और फिर आप चेक करके उसे अप्रूव कर सकते हैं।
1: AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में। AI Unlocked with RJ Ved.
2: Only on FM 107, दिल से देसी।
0: दोस्तों ये था आज का AI Unlocked। पर्सनल AI एजेंट्स का फंडा सिंपल है, काम उनसे करवाओ, कंट्रोल अपने पास रखो। आज का वर्ड फंक्शन कॉलिंग टूल था कोपायलट स्टूडियो और नेक्स्ट एपिसोड में होगी मुलाकात बहुत सी नई चीजों के साथ, बहुत सारे नए AI अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। मी वेद साइनिंग आउट एंड सेइंग मा सलामा।

0: चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियां, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियां FM 107 के साथ। दिल से देसी। FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल। सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से तो सुनना मत भूलिएगा। और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाए सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर आरजे सफा के साथ। दिल से देसी FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए जो सूरत लेकर आई हूँ वो है सूरह शरा और इसकी हम आयत शामिल कर रहे हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरा मक्का मुकर्रमा में उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त आजमाइशों और जहनी और जिस्मानी परेशानियों से गुजर रहे थे। कुरैश की तरफ से मुखालफत, तजहीक और दावत हक में मुसलसल रुकावटों ने माहौल को बहुत भारी बना दिया था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। इससे पहले की आयात में भी अल्लाह ने फरमाया था, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया और आपसे वो बोझ नहीं उतार दिया? फिर इसी तसल्ली को आगे बढ़ाते हुए ये अजीम उसूल बयान किया गया कि मुश्किल के साथ आसानी जरूर आती है। और इस बात को मजीद मजबूत करने के लिए कि जुमला दो बार दोहराया गया ताकि दिल में यकीन मुकम्मल हो जाए। मुश्किल कभी मुस्तकिल नहीं होती और अल्लाह के साथ हर तंगी के बाद वुसअत जरूर आती है। यह आयात सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए है। एक आलमगीर उसूल है कि जिंदगी में हर मुश्किल अपने अंदर आसानी का दरवाजा भी रखती है, चाहे वो फौरन नजर आए या कुछ वक्त के बाद। सूरह शरा की आयत नंबर 5 और 6 कुरान मजीद की उन अजीम आयात में से हैं जो इंसान के दिल में उम्मीद, हौसला और यकीन पैदा करती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये दो मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर जुमले हैं जो बज़ाहिर सादा लगते हैं लेकिन इनके अंदर एक मुकम्मल जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है। अगर इंसान इन आयात को गहराई से समझ ले तो उसकी सोच, उसका रवैया, उसका सब्र मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कुरान मजीद का अंदाज बयां सिर्फ मालूमात देना नहीं होता बल्कि दिल को तब्दील करना होता है। इन आयात में भी अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं बता रहे कि मुश्किल के बाद आसानी आएगी बल्कि वो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुश्किल और आसानी एक साथ जुड़ी हुई हकीकतें हैं। इंसान जब जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजरता है तो उसका पहला रदमल अक्सर घबराहट, मायूसी या बेयकीनी होता है। वो समझता है कि ये मुश्किल शायद कभी खत्म नहीं होगी लेकिन अल्लाह ताला इस सोच को बदलते हैं और फरमाते हैं कि हर मुश्किल के अंदर ही आसानी का निजाम मौजूद है, यानी मुश्किल कभी तन्हा नहीं आती, उसके साथ ही राहत का रास्ता भी पैदा होता है। یہ آیت انسان کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون

ज्यादा गहरा और हिकमत से भरपूर होता है। यहां तकरार सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि दिलों की तामीर की है। इंसान फितरी तौर पर शक करने वाला होता है, खास तौर पर जब वो मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है तो उसका जहन फौरन ये सवाल करता है, क्या वाकई ये मुश्किल कभी खत्म होगी, क्या वाकई इसके बाद आसानी आएगी। यही है वो लम्हा जहां ईमान और शक के दरमियान कश्मकश शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला इस कश्मकश को खत्म करने के लिए एक ही जुमला दो बार दोहराते हैं। ये तकरार इंसान के दिल में यकीन को इस हद तक मजबूत करती है कि शक के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। गोया अल्लाह ताला बार बार दिल को ये यकीन दिला रहे हैं कि कोई इम्कान नहीं, ये एक यकीनी हकीकत है। कुरान में तकरार हमेशा एक मकसद के तहत आती है। यहां मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी कैफियत को बदलना है। जब कोई बात बार बार सुनी जाए तो वो सिर्फ जहन में नहीं रहती बल्कि दिल में उतर जाती है। यही वजह है कि यह आयत एक बार सुनने के बाद भी इंसान के अंदर उम्मीद पैदा करती है और जब बार बार पढ़ी जाए तो ये उम्मीद यकीन में बदल जाती है। इस तकरार का एक और अहम पहलू ये भी है कि इंसान की मायूसी को तोड़ती है। जब इंसान मुसलसल मुश्किलात में होता है तो समझने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी हमेशा इसी हालत में रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला उस सोच को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और कहते हैं कि मुश्किल कभी मुस्तकिल नहीं होती। यहां एक गहरा नुक्ता समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने उसर को एक बार भी अलग से जिक्र नहीं किया बल्कि हमेशा उससे यसर यानी आसानी के साथ जोड़ा। इसका मतलब यह है कि मुश्किल को कभी तन्हा हैसियत दी ही नहीं गई बल्कि आसानी को हमेशा उसके साथ रखा गया है। एक नफ्सियाती और रूहानी हकीकत है कि इंसान को यह एहसास दिलाया जाए कि उसकी मुश्किल अकेली नहीं है। अब अगर हम इंसानी जिंदगी के तजुर्बात देखें तो हमें ये बात वाज़े तौर पे नजर आती है कि हर मुश्किल के अंदर वाकई कोई ना कोई आसानी छुपी होती है। मिसाल के तौर पर एक तालिबिल जब इम्तिहान की तैयारी करता है तो उसे शुरू में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो मेहनत करता है उसकी समझ बेहतर होती जाती है और आखिरकार वो कामयाबी हासिल करता है। शुरू की मुश्किल उसकी कामयाबी का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह जिंदगी के हर शोबे में ये उसूल काम करता है, चाहे वो बीमारी हो, माली मुश्किलात हो या जहनी दबाव। हर हालत में वक्त के साथ बेहतरी का कोई ना कोई पहलू सामने आता है, लेकिन इंसान अक्सर सिर्फ इब्तदाई दर्द को देखता है और उसके साथ आने वाली आसानी को महसूस नहीं करता। तकरार का एक और अहम फायदा यह है कि इंसान के दिल में सब्र पैदा करती है। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं बल्कि ये यकीन रखने का नाम है कि हालात बेहतर होंगे। जब इंसान बार बार सुनता है कि मुश्किल के साथ आसानी है तो उसका दिल मजबूत होता है और वो हालात का मुकाबला बेहतर तरीके से करता है। क्या आयत हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह का वादा वक्त के ताबे नहीं होता। आसानी का आना यकीनी है लेकिन उसका वक्त अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है। इंसान की कमजोरी ये होती है कि वो फौरी नतीजा चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे सिखाते हैं कि हर चीज अपने वक्त पे मुकम्मल होती है। यह तकरार एक तरह से इंसान के दिल की तरबियत भी करती है। ये उसे जल्दबाजी से निकाल कर एतमाद की तरफ ले जाती है। जब इंसान ये यकीन कर लेता है कि हर मुश्किल के बाद

आसानी जरूर आएगी, तो वो मायूसी के बजाय इंतजार और सब्र के साथ आगे बढ़ने लगता है। ये भी एक हकीकत है कि कुरान का स्लूप सिर्फ अक्ल को नहीं बल्कि दिल को भी मुखातिब करता है। अगर यह आयत सिर्फ एक बार आती तो शायद इंसान इसे एक आम जुमला समझ लेता, लेकिन जब ये दो बार दोहराई जाती है तो दिल में गूंज की तरह बैठ जाती है। ये गूंज इंसान को हर मुश्किल वक्त में याद दिलाती है कि वो अकेला नहीं है और उसकी हालत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। मजीद ये किस तकरार में एक लतीफ नफ्सियाती पहलू भी है, जब कोई बात बार बार सुनी जाए तो इंसान का जहन इस हकीकत के तौर पे कबूल करता शुरू कर देता है। इसीलिए ये आयात इंसान के अंदर मनफी सोच को कम करती हैं और मुस्बत सोच को मजबूत करती हैं। अगर हम रूहानी लिहाज से देखें तो ये तकरार अल्लाह की रहमत की वसत को भी जाहिर करती हैं। अल्लाह ताला एक बार कह के मुतमईन नहीं हुए, फिर बार बार याद दिलाया ताकि बंदा कभी ना उम्मीद ना हो। इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपने बंदे को मायूस नहीं देखना चाहता। इस तकरार का असल मकसद इंसान के अंदर एक ऐसा यकीन पैदा करना है जो हालात से मुतासिर ना हो, ऐसा यकीन जो उसे हर मुश्किल में ये याद दिलाए कि आसानी उसके साथ है, उसके करीब है और उसका हिस्सा है। मुश्किल और आसानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इन दोनों के दरमियान एक गहरा रब्त कनेक्शन मौजूद है जिसे आम तौर पर इंसान महसूस नहीं कर पाता। इंसानी सोच अमूमन ये होती है कि मुश्किल एक मुकम्मल तौर पर मनफी हालत है और आसानी एक मुकम्मल तौर पर मुस्बत हालत, लेकिन कुरान इस तसव्वुर को बदल देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुश्किल और आसानी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही निज़ाम का हिस्सा है। एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुश्किल खुद आसानी के दरवाजे खोलती है। अगर हम गौर करें तो जिंदगी में हर बड़ी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई मुश्किल जरूर होती है। कोई भी आसानी बगैर जद्दोजहद के मुकम्मल नहीं होती। यही हकीकत इस आयत का बुनियादी पैगाम है कि आसानी हमेशा मुश्किल के अंदर परवान चढ़ती है। इंसान जब किसी मुश्किल में होता है तो उसे लगता है कि ये एक अलग और मुस्तकिल हालत है, लेकिन हकीकत यह है कि मुश्किल खुद एक अमल का हिस्सा होती है। ये अमल इंसान को तैयार करता है, मजबूत बनाता है और इस काबिल बनाता है कि वो आने वाली आसानी को संभल सके। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिब इल्म को इम्तिहान की तैयारी में मुश्किल महसूस होती है तो वही मुश्किल बाद में उसकी कामयाबी की बुनियाद बनती है। अगर वो मुश्किल ना हो तो वो आसानी भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए मुश्किल दरअसल आसानी का रास्ता है, रुकावट नहीं। आयत में लफ्ज माँ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है साथ, और ये एक बहुत गहरा लफ्ज है। इसका मतलब है कि आसानी किसी दूर मुस्तकबिल में नहीं बल्कि मुश्किल के साथ ही मौजूद होती है। यहाँ एक गलत फहमी जो है जो आमतौर पर लोगों को होती है वो दूर हो जाती है। इंसान समझता है कि पहले मुश्किल मुकम्मल खत्म होगी फिर आसानी आएगी, लेकिन कुरान कहता है कि आसानी मुश्किल के साथ ही शुरू हो जाती है चाहे वो नजर ना आ रही हो। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरे में सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती है। इंसान को मुकम्मल दिन फौरन नहीं मिलता, मगर रोशनी का आगाज अंधेरे के साथ ही हो जाता है। नफ्सियाती तौर पर यह आयत एक बहुत बड़ी हकीकत बयान करती है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसका जहन महदूद हो जाता है, वो सिर्फ मसला देखता है, हल नहीं देख पाता। लेकिन अगर वो ये यकीन रखे कि मुश्किल के साथ आसानी भी मौजूद है तो उसका जहन खुल जाता है। ये यकीन इंसान को दो फायदे देता है।

0: वो मायूसी से बच जाता है, वो हल तलाश करने की कोशिश जारी रखता है। यानी मुश्किल खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान का रवैया बदल जाता है और यही रवैया तब्दीली का आगाज होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया को एक मुतवाजन निजाम पर कायम किया है। यहाँ कोई चीज बेमकसद नहीं, हर मुश्किल के पीछे एक हिकमत होती है। बाज़ औक़ात इंसान इस हिकमत को फौरन नहीं समझता, लेकिन वक्त के साथ वो वाज़े हो जाती है। मिसाल के तौर पर बीमारी इंसान को सेहत की कदर सिखाती है, गुर्बत इंसान को सब्र और मेहनत सिखाती है, नाकामी इंसान को बेहतर हिकमत अमली सिखाती है। ये सब मिसालें इस बात को वाज़े करती हैं कि मुश्किल खुद एक उस्ताद है जो इंसान को आसानी के काबिल बना देती है। कुरान ये नहीं कहता कि आसानी मुश्किल के बाद कहीं बाहर से आती है, बल्कि ये कहता है कि वो इसी मुश्किल के अंदर मौजूद होती है। ये एक बहुत अहम फर्क है। इसका मतलब ये है कि हर मुश्किल के अंदर हल मौजूद है, हर बंद दरवाजे के साथ कोई खिड़की भी होती है, हर अंधेरे में रोशनी का इम्कान होता है। इंसान का काम सिर्फ ये है कि वो इस छुपी हुई आसानी को तलाश करे। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो मुश्किल को ना मुकम्मल नाकामी समझ लेता है। वो भूल जाता है कि यही मुश्किल उसके लिए तरक्की का जरिया भी बन सकती है। जब इंसान ये सोच बदल लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो रोने के बजाय सोचने लगता है, घबराने के बजाय अमल करने लगता है, और रुकने के बजाय आगे बढ़ने लगता है। ये आयत हमें भी ये सिखाती हैं कि तकदीर और कोशिश साथ साथ चलते हैं। अल्लाह ने आसानी मुकर्रर की है, लेकिन इंसान को उस तक पहुंचने के लिए अमल करना पड़ता है। मुश्किल इंसान को रोकती नहीं, बल्कि हरकत में लाती है। अगर इंसान इस हरकत को सही समझे तो वो आसानी तक पहुंच जाता है। रूहानी तौर पर ये आयात इंसान के दिल को अल्लाह के करीब करती हैं। जब इंसान ये समझता है कि उसकी मुश्किल बेमकसद नहीं, बल्कि उसके साथ आसानी जुड़ी हुई है, तो उसका दिल अल्लाह पर और ज्यादा भरोसा करने लगता है। ये भरोसा उसे तन्हाई से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले जाता है। मुश्किल और आसानी दो अलग हकीकतें नहीं, बल्कि एक ही सफर के दो हिस्से हैं। मुश्किल वो दरवाजा है जिसके अंदर से आसानी जन्म लेती है। इंसान अगर सब्र करे, समझने की कोशिश करे और अल्लाह पे भरोसा रखे, तो वो देखेगा कि उसकी मुश्किल ही उसकी कामयाबी का जरिया बन गई। क्या याद उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में शदीद आजमाइशों, मुखालफतों, ताने और तशने और ज़हनी दबाव से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक के जवाब में कुरैश ना सिर्फ इनकार कर रहे थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ भी पहुंचा रहे थे। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करने के लिए ये अजीम वादा फरमाया।
1: आइए आज महविश खान के साथ सुनिए Pearls of the Quran, सिर्फ FM 107 पर।
0: ये समझना जरूरी है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियां आसान नहीं होती, बल्कि उनकी आजमाइशें आम इंसानों से ज्यादा सख्त होती हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े मिशन के हामिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत इस्लाम के आगाज में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुरैश की सख्त मुखालफत, ताइफ में तकलीफ दे रद्द अमल, अपने करीबी लोगों की मुखालफत, माशी और समाजी दबाव, मुसलसल जहनी और जज्बाती आजमाइश, इन हालात में एक आम इंसान शायद मायूस हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा।

कि हर मुश्किल एक मकसद के तहत आती है। ये मकसद सिर्फ तकलीफ देना नहीं बल्कि इंसान को बेहतर बनाता है। ये उसूल हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के पीछे कोई फायदा छुपा हुआ है, हर आजमाइश के पीछे कोई बेहतरी है और हर तंगी के पीछे कोई कुशादगी मौजूद है। मुश्किल खुद इतनी अहम नहीं जितना इंसान का रद्द अमल अहम होता है। एक ही मुश्किल दो मुख्तलिफ इंसानों को दो मुख्तलिफ नताइज दे सकती है। एक इंसान मायूस हो जाता है, दूसरा इंसान मजबूत हो जाता है। ये फर्क सिर्फ इस बात पर है कि वो मुश्किल को कैसे लेता है। मुश्किल सिर्फ एक हालत नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियती निजाम है। इसके अंदर अल्लाह ताला इंसान को बेहतर, मजबूत और ज्यादा बायतमाद बनाते हैं। मुश्किल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आती है और इसी मुश्किल के साथ आसानी का वादा इस बात का सबूत है कि हर आजमाइश के अंदर बेहतरी का रास्ता जरूर मौजूद होता है। ये वादा सिर्फ उम्मीद नहीं देता बल्कि इंसान के अंदर एक मजबूत जहनी कैफियत यानी मेंटल स्ट्रेंथ भी पैदा करता है। इस जहनी मजबूती की बुनियाद सबर है। अगर सबर ना हो तो इंसान आसानी के वादे को समझ भी ले तो भी मुश्किल के दौरान टूट सकता है। सबर का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, सबर एक मुकम्मल जहनी और रूहानी कैफियत है जिसमें मुश्किल को कबूल करता है, मायूसी से बचता है, अल्लाह पर एतमाद रखता है और हालात के बेहतर होने का इंतजार करता है। सब्र दरअसल वो ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है जब बाहर के हालात उसे हिला रहे हों। जब इंसान किसी मुश्किल में होता है तो उसका जहन फौरन नताइज चाहता है। वो चाहता है कि तकलीफ फौरन खत्म हो जाए लेकिन जिंदगी हमेशा फौरी हल नहीं देती। ऐसे में सब्र ही वो चीज है जो इंसान को टूटने से बचाती है। कुरान हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है लेकिन इस आसानी तक पहुंचने का रास्ता सब्र से गुजरता है। सब्र इंसान की जहनी ताकत को बढ़ाता है। जब इंसान सब्र करता है तो अपनी सोच को काबू में रखता है, वो जज्बाती फैसले करने के बजाय सोच समझ के अमल करता है। जहनी मजबूती के कुछ अहम नकात हैं। इंसान दबाव में भी पुरसकून रहता है, वो मुश्किल हालात में भी सही फैसले करता है, वो जल्दबाजी से बचता है और वो उम्मीद को बरकरार रखता है। ये सब खुसूसियात एक मजबूत शख्सियत की अलामत हैं। कुरान मजीद में सबर को बार बार एक बड़ी फजीलत के तौर पे बयान किया गया क्योंकि सबर सिर्फ मुश्किल बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले पर एतमाद करने का नाम है। सूरह शुरा की यह आयत सबर को मजीद मजबूत करती है क्योंकि यकीन दिलाती हैं कि मुश्किल कभी आखिरी हालत नहीं होती। अगर इंसान सबर ना करे तो वो जल्दी मायूस हो जाता है, गलत फैसले करता है और हालात को मजीद खराब कर देता है। लेकिन अगर वो सबर करे तो वक्त के साथ हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी सोच साफ हो जाती है और वो बेहतर मौके देख पाता है। मुश्किल और सबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां मुश्किल होती है वहां सबर की जरूरत भी बढ़ जाती है। दरअसल मुश्किल सबर को पैदा करती है और सबर इंसान को मुश्किल से बाहर निकालता है। ये एक मुकम्मल साइकिल है। मुश्किल

0: है वहाँ उम्मीद पैदा हो जाती है और ये एक किस्म की ज़हनी तब्दीली यानी माइंड शिफ्ट है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। क्या याद हमें सिखाती है कि मायूसी कभी आखिरी हकीकत नहीं होती, हर अंधेरे के अंदर रोशनी छुपी होती है और हर मुश्किल के अंदर आसानी मौजूद होती है। यह आयत इंसान के दिल में उम्मीद का चिराग जलाती है जो उसे हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो पल्स ऑफ कुरान। हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के जो शो में बातें हुई हैं आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशियाँ।

विद आरजे फजील ईद के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे जहां होगी ईद की मस्ती कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स मजेदार ईद डिशेस का सफर एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम

0: ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं, इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आज तला अशरफ उज़मान सिर्फ FM 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने किराम प्रोग्राम लर्न अरबिक विद अस्मे हिकमत फिर आप सबका खैर मकदम है। कभी आपने किसी दोस्त को किसी खूबसूरत जगह के बारे में बताया हो या किसी शख्स को डिस्क्राइब किया हो, मसलन वो बहुत लंबा है, उसकी मुस्कराहट खूबसूरत है, वो जगह बहुत पुरसकून थी। यही होता है वस्फ यानी डिस्क्रिप्शन। समझ कर अरबी जबान में वस्फ यानी किसी चीज़, शख्स या जगह को अल्फाज के ज़रिए इस तरह बयान करना कि सुनने वाले के जहन में तस्वीर बन जाए। आसान अल्फाज में वस्फ का मतलब है अल्फाज से तस्वीर बनाना। जैसे मुसव्विर रंगों से तस्वीर बनाता है, वैसे ही राइटर और स्पीकर अल्फाज से तस्वीर बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है अल-वस्फ रस्मुन बिल कलिमात, वस्फ अल्फाज से तस्वीर कशी है। अब वस्फ में क्या शामिल होता है यानी डिस्क्राइब में? अच्छे वस्फ में मंजर, एहसास, जज्बात, हरकत सब शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ कहूँ अर-रजुल तवील, वो आदमी लंबा है, तो ये आम जुमला है। लेकिन अगर मैं कहूँ अर-रजुल तवील यल्बिसु थौबन अबयद ويبتسم دائما، वो आदमी लंबा है, सफेद लिबास पहनता है और हमेशा मुस्कराता रहता है, अब जहन में तस्वीर बनने लगती है। इसी तरह एक होता है डिस्क्राइबिंग पीपल वस्फ शख्सियात। जब हम किसी शख्स का वस्फ करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, तो हम चंद चीजों पर तवज्जो देते हैं। एक तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन जिस्मानी वस्फ यानी चेहरा, कद, लिबास, बाल, शक्ल। जैसे मिसाल के तौर पर लहू शारुन अस्वद, उसके बाल काले हैं। हिया कसीरतुल कामा, वो छोटे कद की है। यल्बिस मलाबिस अनीका, वो खूबसूरत कपड़े पहनता है। तो यहाँ हम अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है नफसियाती वस्फ, पर्सनालिटी, जो फीलिंग्स वगैरह है। सिर्फ शक्ल नहीं, इंसान की तबीयत भी अहम होती है बाज़ दफ़ा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यूँ कह सकते हैं वो शख्सुन हादीउन, वो पुरसकून इंसान है यानी कूल पर्सन है। ही असबिया अहयानन, वो कभी कभी गुस्सा करती है। هو كريم ويحب مساعدة الناس, वो बड़ा सखी बंदा है, करीम है और लोगों की मदद पसंद करता है। तो ये वस्फ जो है इसका ताल्लुक पर्सनैलिटी से है। और एक है सोशल डिस्क्रिप्शन यानी नाम, उम्र, खानदानी हालत, काम। मिसाल के तौर पर आप पहले नाम का जिक्र करते हैं इस्मुहु अहमद या इस्मी अहमद, फिर कहते हैं उम्री 30 सना, मेरी उम्र 30 साल है। हुआ मुतज़व्विज या अना मुतज़व्विज, मैं शादीशुदा हूँ, वो शादीशुदा है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये मालूमात इंसान की सोशल आइडेंटिटी बताती हैं। मज़ीद इंसान को उसके एक्शन से भी डिस्क्राइब किया जाता है। मिसाल के तौर पर यमशी बिसुरा, वो तेज़ी से चलता है। يضحك كثيرا, वो बहुत हंसता है। يتحدث بهدوء, वो सुकून से बात करता है, यानी बंदा बड़ा कूल है और वो बड़ी खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता बातें करता है। तो ये एक्शंस इंसान की शख्सियत को मजीद वाजह करते हैं। अब मजीद आगे बढ़ें तो है डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, जगह का वस्फ।

निक्रम, जगहों का वस्फ इसमें लोकेशन की बात आ जाती है. मिसाल के तौर पर अलबैत करीब मिन अलबहर, घर ये मौसूफ है. उसके बाद जो है ना ये वस्फ है कि वो समंदर के करीब है. अलमदरसा फी वसत अलमदीना, स्कूल शहर के दरमियान में है. इसी तरह डिज़ाइन और शेप की बात आ जाती है. मिसाल के तौर पर अलबैत ये मौसूफ है. इसके बाद सिफत कबीरुन व जमीलुन, घर बड़ा और खूबसूरत है. अलगुरफा वासिया, कमरा कुशादा है. मजीद फर्नीचर और डेकोरेशन

आंसू कहना ये सब शायरी की खूबसूरती है। हर शायर अपने माहौल से अल्फाज लेता है। सहरा में रहने वाला शायर रेत, हवा और ऊंट की मिसालें देगा और समंदर के किनारे रहने वाला शायर लहरों और कश्तियों की मिसालें देगा। अलबारूदी कभी कभी पुराने अरब शुआरा के अंदाज भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन साथ ही नए ख्यालात, नई तस्वीरें और जदीद एहसासात भी शामिल करते थे। चलें मैं आज आपको बारूदी का एक कसीदा ही सुना दूं। मतलब ये कसीदा यूं है, वलैलतिन ذاتي تهتان وأندية كأنما البرق فيها صارم سلط। शायर यहाँ एक ऐसी रात का नक्शा खींचते हैं जो बारिश, गरज और खौफ से भरी हुई है। वो कहते हैं ये एक ऐसी रात थी जिसमें बारिश मुसलसल बरस रही थी और बिजली इस तरह चमक रही थी जैसे किसी के हाथ में खिंची हुई तेज तलवार हो। لف الغمام أقاصيها ببردته وانهل في حجرتيها وابل سبط। बादलों ने आसमान के किनारों को अपनी चादर में लपेट लिया था और बारिश के नरम और मुसलसल कतरे हर सिमत बहते जा रहे थे। बहमा अला यहतदि सारी बिकौकबिहा मिन अलगमामि वला यबदु बिहा नमतु। रात इतनी तारीक थी कि मुसाफिर सितारों के जरिए भी रास्ता न पहचान सके क्योंकि बादलों ने हर रोशनी को छुपा लिया था। यकाद यजहल फीहा القوم امرهم لولا صهيل جياد الخيل واللغط। लोग अपने रास्ते भूलने लगते अगर घोड़ों की हनहनाहट और लोगों की आवाजें उन्हें रास्ते का एहसास न दिलातीं। يطغى بها البرق احيانا فيسجره مخرنطم زجل من رعدها خمط। कभी बिजली पूरी ताकत से चमकती लेकिन फौरन ही बादलों की खौफनाक गरज उसे दबा देती है। كأنما البرق صوت والحياة نجب يلوح في جسمها من مسه حبق। ऐसा लगता था जैसे बिजली एक कोड़ा हो और बारिश तेज रफ्तार घोड़े हों जो अंधेरी रात के जिस्म पर दौड़ रहे हों। तो सामिन इकराम ये है कसीदा बारूदी का, बहुत ही मारूफ कसीदा है। और यहाँ देखें आप वस्क का फन यानी मंजर को कितनी खूबसूरती से बयान किया जा रहा है कि सुनने वाला उसे अपने आँखों के सामने महसूस करे। अरबों को वस्फ और मंजर निगारी में गैर मामूली महारत हासिल थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं कहते थे बल्कि हर हुसन के लिए अलग लफ्ज, अलग अंदाज और अलग तशबीह इस्तेमाल करते थे। अरब शुआरा इंसानी हुसन को बहुत बारीकी से बयान करते थे, खासतौर पर चेहरा, आंखें, बाल, कद-ओ-क़ामत और शख्सियत। अरबी अदब में खूबसूरत औरत के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते थे, मसलन अल-गैदा यानी नरम मिजाज, नाजुक और दिलकश औरत, अलममशूका यानी मुतवाजन और खूबसूरत कद-ओ-क़ामत वाली औरत। इसी तरह आंखों के औसाफ के हवाले से बात करें तो अरब शुआरा आंखों के हुसन पर बहुत तवज्जो देते थे, अन-नजला यानी बड़ी और कुशादा आंखें, अल-हौरा यानी ऐसी आंखें जिनमें सफ़ेदी बहुत साफ और स्याही बहुत गहरी हो। इसी तरह बालों के वस्फ के हवाले से भी है, सबित यानी हल्के लहरदार और नरम बाल जिसे हम सिल्की कह सकते हैं, तो उसके लिए अरबी का वस्फ है असबित। चेहरे के औसाफ में भी अरब शुआरा चेहरे की बारीकियों को भी बयान करते थे, अज़ल्फा यानी बारीक और सीधी नाक वाली, अलखाल यानी चेहरे पर खूबसूरत तिल या सियाह निशान। इस तरह तशबीहात भी इस्तेमाल करते थे औसाफ में, जैसे गर्दन की मिसाल में वो खूबसूरत गर्दन को हिरन की गर्दन से तशबीह देते थे, सफ़ेद दांतों को उखवान के फूल या मोतियों की लड़ी से तशबीह दी जाती थी, खूबसूरत आँखों को हिरन की आँखों जैसा कहा जाता था, घोड़े के वस्फ़ के

0: हवाले से अगर बात करें तो उसमें रफ्तार, गर्दन, ताकत, दौड़ने का अंदाज सब तफसील से बयान किया जाता था। रात को कभी सियाह चादर और कभी सितारों का समंदर कहा जाता था। तो यहाँ वस्त में सिर्फ शक्ल मकसूद नहीं बल्कि एहसासात, जज्बात, माहौल, ये भी शख्सियत को जाहिर करता है। मसलन अगर कोई शख्स खामोश हो तो शायर कहता है उसकी आंखें बोल रही थी, या अगर कोई बहुत बहादुर हो तो कह रहा है वो शेर की तरह खड़ा था। तो सामने कराम अहले अरब वस्फ में बहुत माहिर थे। हुस्न के लिए वो मखसूस अरबी अल्फाज इस्तेमाल करते थे। अरबी अदब में तशबीहात की बड़ी अहमियत है, और जैसे कि हमने कहा कि अरबी अदब में वस्फ ये सिर्फ शक्ल पर मुनहसर नहीं एहसासात को भी अपने अहाते में लेता है। तो ओवरऑल बात यह है कि खूबसूरत जबान वो होती है जो सिर्फ चीज़ों के नाम ना बताए बल्कि उनके रूह को महसूस करवाए, और अरबी जबान इसी हुस्न बयानी की एक शानदार मिसाल है। उसी के साथ सामने कराम प्रोग्राम के इस मरहले में लेते हैं छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक।
0: वेलकम बैक सामिन इकराम, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम लर्न अरबिक विद अस में उस्ताद तलहा के साथ आप सीख रहे हैं अरबी अल्फाज, या फिर आप अरबी में दूसरों को कैसे डिस्क्राइब करें। जैसे अगर कभी आप किसी अरबी दोस्त से मिलते हैं और आपसे पूछा गया हो अपने दोस्त का तारुफ करवाएं, या अपने भाई, बहन या उस्ताद के बारे में बताएं, आप सोच में पड़ गए हो कि कहां से शुरू करेंगे, अरबी में किसी शख्स को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, यही है आज हमारा मौजू। और इस पर हमने काफ़ी अदबी, तारीखी और बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर पेश की है। ओवरऑल मकसद तो है कि आप आसानी से अपने आप को डिस्क्राइब कर सकें, ज़ाहरी शक्ल के हवाले से बात करें, या शख्सियत, या कोई ख़ास खूबियाँ हों, या कोई हैबिट्स या कोई स्किल्स के बारे में हो, तो ये तमाम तर पहलू काफ़ी ज़रूरी होते हैं किसी के हुलिये के बारे में बताने के लिए। किसी की शख्सियत के हवाले से आपने अगर किसी को बताना है तो आपको ज़रूर ये आना चाहिए कि आप कैसे उसके बारे में उसका वस्फ बयान करेंगे। ये मौजू नहायत दिलचस्प और रोज़मर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पहले एक छोटा सा कायदा समाज कीजिए। अरबी में तो पहले मौसूफ आता है फिर सिफत, जैसे अलबैतु जमीलुन, घर खूबसूरत है, ठीक है। तो डिस्क्राइब करते वक्त एक खूबसूरत तरतीब होती है, और वो ये कि पहले ज़ाहरी शक्ल के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसान की शक्ल सूरत, जैसे बाल के बारे में बात करें हेयर, तो शार अस्वद काले बाल, शार मुजाहद घंगरियाले बाल, शार नाइम नरम बाल, ठीक है। तो ये बाल की तीन किस्म हो गए, और इनको अगर आप जुमले में पिरोना चाहते हैं जिस तरह कह सकते हैं हुवा लदैही शारुन अस्वद, उसके बाल काले हैं, हिया लदैहा शार मुजाहद, उसके बाल घंगरियाले हैं। इसी तरह आंखों के हवाले से बात करें आईस, तो आई में अयून जरका नीली आंखें, अयून बुनिया यानी ब्राउन आंखें, भूरी आंखें, इस तरह अगर जुमला में हम इनको परोना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि अलदैहा अयून जमीला, उसकी आंखें खूबसूरत हैं। कद को हाइट के लिए कद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो कद तवील कहेंगे लंबे के लिए, और अगर छोटा हो तो उसके लिए कसीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वेट के लिए अरबी लफ्ज है वजन, या उर्दू में भी सेम यही लफ्ज है। हाँ, अगर दुबला हो तो उसके लिए अरबी का लफ्ज है नहीफ, और अगर हेल्दी हो तो उसके लिए है समीन। अब आते हैं असल चीज की तरफ, यानी शख्सियत। किसी की शख्सियत के हवाले से अगर आप बताना चाहते हैं तो आप क्या सिफत, कौन सी सिफत आप इख्तियार करेंगे? तो इसमें तय्यब है, तय्यब का मतलब है अच्छा, दोस्ताना यानी वदूद, जहीन, किसी के हवाले से आप कहना चाहते हैं कि वो जहीन है तो आपने अरबी में क्या कहना है, जकी। सखी के लिए आवर में कहेंगे करी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान सिर्फ FM 107 पर।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू रेडियो कतर के हफ्तावार खुसूसी प्रोग्राम कससुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम कुरान मजीद की हसीन और ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचाते हैं, कहानियां जो महज तारीख नहीं बल्कि आज भी जिंदा सबक और हिदायत का चिराग हैं। आज के इस हलके में हम चलेंगे सूरह यासीन की तरफ, जहां अल्लाह सुबहानहु व तआला ने एक बस्ती की कहानी बयान फरमाई है जिसे कुरान ने अस्हाबुल करिया कहा है। ये किस्सा एक मिसाल है जो अल्लाह ने उन लोगों के लिए बयान की जो शिर्क के असीर थे, यानी शिर्क में मुब्तला थे। मकसद ये था कि उन्हें खबरदार किया जाए कि अगर वो हक को झुटलाएंगे तो उनका अंजाम भी वही होगा जो इस बस्ती वालों का हुआ। सामीन किराम, सूरह यासीन की इब्तदाई आयात में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वही रिसालत, कियामत और हिसाब की बात बड़ी मुअक्कद और अकली अंदाज में बयान फरमाई, लेकिन चूंकि दिल और दिमाग दोनों को मुतासर करना जरूरी है, इसलिए कुरान ने इन्हीं हकायक को किस्से के कालब में पेश किया ताकि इसे सुनने वाला इबरत हासिल करे और एक वाकई मिसाल के जरिया हक को पहचाने। इसी रोशनी में समीन, आज के इस हलके में हम मुतअद्दिद मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे जिनमें अहले करिया का अपने रब के रसूलों के साथ रवैया, कुरान ने किस खूबसूरत अंदाज में खैर और शर की लड़ाई के हवाले से मौकिफ की वजाहत की, इस सिरा का अंजाम, अहले बातिल की बर्बादी और अहले ईमान की सरबुलंदी, मजीद रसूलों का सब्र, इस्तकामत और उनका पुरउम्मीद जवाब, मजीद गुफ्तगू होगी आसर हाजर में दावत इस्लामी को किस अंदाज में

पेश किया जाना चाहिए। इसी तरह रसूलों का असल मिशन क्या है, इबलाग, हिदायत और लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना वगैरह। समीन कराम, आज का ये किस्सा हमें बताता है कि हकीकी तब्दीली और समाजी व तहजीबी तरक्की का आगाज कहाँ से होता है। यह आगाज हमेशा दावत इल्लाह और खैर की तबलीग से होता है। कुरान हमें सिखाता है कि नेकी को दूसरों तक पहुंचाना ही दरअसल माशरे के बदलने की बुनियाद है। इसी जिमन में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह बस्ती वालों में कुछ लोग मुतफाइल और मुस्बत सोच रखने वाले थे और कुछ मायूस और मनफी सोच के असीर थे। ये हमें सिखाता है कि सोहबत का इंतखाब हमारी जिंदगी और मुस्तकबिल पर गहरा असर डालता है। अच्छी सोहबत इंसान को खैर की तरफ ले जाती है और बुरी सोहबत इंसान को हलाकत की तरफ। सामिन किराम, आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे कि कैसे तीन रसूल अल्लाह के पैगाम को लेकर एक बस्ती में आए। बस्ती वालों ने उनका इनकार किया, लेकिन एक मर्द मोमिन जो बस्ती के कोने से दौड़ता हुआ आया, उसने हक की हिमायत की। उसके ईमान और इखलास ने उसे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया, जबकि मुनकरीन एक ही चीख से हलाक कर दिए गए। ये किस्सा सिर्फ माजी की तारीख नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए आईना है। तो आइए हमारे साथ रहिए, सुनते हैं सूरह यासीन के बस्ती वालों के वाकयात, जिसमें वो रोशन पैगाम है जो आज भी हमारी जिंदगियों को बदल सकता है।

तीन और शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों का कहना मान लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, इन लोगों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे और वो सही रास्ते पर हैं। फिर उन्होंने अपनी बात दलायल से समझाई। वमा लिय ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, यानी आखिर मैं अपने पैदा करने वाले की इबादत क्यों ना करूं और सबका लौटना भी उसी की तरफ है। फिर कहा, अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिदुर ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम। समीन, यही तौहीद का सबसे मजबूत दलील है। अगर रहमान मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे तो ये माबूदान बातिल न कुछ बचा सकते हैं न शफात कर सकते हैं। फिर उसने ऐलान किया, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, तुम भी सुन लो। कौम ने उनके इखलास और नसीहत को कबूल न किया बल्कि कत्ल कर दिया। जामे शहादत नोश फरमाते हुए उस नेक मर्द की सूरत हाल ये थी, या लैत कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, काश कि मेरी कौम ये जानती कि अल्लाह सुभान व तआला ने मेरी मगफरत फरमा दी है और मुझे अपने बड़े एहसास वालों में शामिल कर लिया है। और कौम की हलाकत के हवाले से अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, आसमान से लश्कर उतारने की जरूरत न थी, सिर्फ एक चीख काफी थी जिसने पूरी बस्ती को खत्म कर दिया। कुरान ने इस पर तबसरा किया और कहा, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, क्या अफसोस और हसरत ऐसे लोगों पर जब भी कोई रसूल आया तो उन्होंने मजाक उड़ाया और झुटला दिया। सामने वाक़ हमें यह सिखाता है कि हक की राह हमेशा आसान नहीं, रसूल भी झुटलाए गए, ईमान वाले मारे गए, लेकिन अंजाम हमेशा अहले ईमान के हक में रहा। हबीबुन नज्जार अपने पूरी कौम के खिलाफ उसी कौम का एक जुजू एक हिस्सा वो नेक मर्द, उसका किरदार हमें ये सबक देता है कि कभी कभी एक फर्द भी तारीख बदल सकता है। उसने अपनी कौम के सामने हक का ऐलान किया और अकेला सच्चाई का अलम बुलंद किया। जमीन ये था बस्ती वालों का वाकया कुरान करीम की रोशनी में। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे इस कहानी के पीछे छुपी हुई हिकमतें और तफसीरी निकात क्या हैं और आज की जिंदगी में हम इनसे क्या सबक ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: FM 107.
1: दिल से देसी।
2: सामिन किराम, अरब जबान की विलेज कल्चर की एक मशहूर कहावत है, अद्दौ मा तिरिस इल्ला रमाद, यानी आग अपना वारिस सिर्फ राख छोड़ती है। ये कहावत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कोई बाइज्जत करीम मेहमान नवाज और अजीम अखलाक वाला शख्स दुनिया से चला जाए, मगर उसके बाद उसकी औलाद में वो औसाफ, वो इज्जत, वो अखलाक बाकी न रहे। जब रात को कोई मुसाफिर दूर से आग की रोशनी देखता तो समझ लेता कि यहाँ कोई करीम शख्स रहता है, जहाँ गर्म जोशी, इस्तकबाल और मेहमान नवाजी मिलेगी। लेकिन जब वो अजीम और मेहमान नवाज इंसान मर जाता है और उसके बाद आने वाली नस्ल में न सखावत रहती है, न अखलाक, न करम, तो अरब अफसोस के साथ कहते हैं, अब्बौ मा तिरिस इल्ला रमाद, यानी आग तो राख ही छोड़ती है। आज की कहावत उस अफसोसनाक हकीकत को बयान करती है कि अक्सर बड़ी शख्सियात के बाद छोटे लोग ही उनके वारिस बन जाते हैं। आज की कहावत उस अफसोसनाक हकीकत की तरफ इशारा करती है कि कभी कभार बड़ी शख्सियात के बाद छोटे और नाअहल लोग ही उनके वारिस बन जाते हैं। गोया के शेर के पीछे बकरियां, यानी अजीम बाप के बाद कमजोर औलाद। सामिन किराम, आज की कहावत हमें ये याद दिलाती है कि सिर्फ नसब काफी नहीं, बल्कि अपने बुजुर्गों की खूबियों को अमल से जिंदा रखना जरूरी है, वरना अंजाम वही होगा, अब्बौ मा तिरिस इल्ला रमाद, आग के बुझने के बाद सिर्फ राख ही रह जाती है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।
3: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दिल की सेहत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारी दुनिया में सबसे बड़ी वजह हो रही है मौत की, मगर सही खुराक और छोटी छोटी आदत से हम इस खतरे को बहुत कम कर सकते हैं। तभी आपने सोचा कि आज हमने क्या खाया, या ये कि हमारे खाने में सब्जियां और फल शामिल थे या ज्यादा तली हुई और प्रोसेस्ड चीजें शामिल थी। ये सवाल जब हमसे किया जाता है तो फिर हमने अपनी खुराक पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज हमने क्या खाया है, क्या हमने किस तरह से खाया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे दिल के लिए मुफीद हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट से वो भरपूर होते हैं, तो उन्हें लेना हमारे दिल के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह से नट्स हैं, जैसे कि गिरीदार मेवे और जो सीड्स हैं वो भी हमारे लिए बेहतरीन हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो फिर हमारा जो दिल है वो ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो दिल के लिए बेहद मुफीद हैं, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश है उसमें पाए जाते हैं और बेहतरीन प्रोटीन भी हैं। मगर ये भी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं और हमें उन्हें कुछ दूर रखना है अपनी खुराक से, इससे बहुत ज़्यादा नमक जो है वो, तली हुई चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं या फास्ट फूड हैं, और इस तरह से जो बहुत ज़्यादा नमक वाली अशिया हों और जो बहुत ज़्यादा फ्राइड हों उनसे आपको दूर रहना है। एक शख्स रोज़ाना बर्गर और फ्राई चिप्स जो हैं वो खाता था। एक दिन वो डॉक्टर के पास गया तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल की भी वार्निंग उन्हें उसे मिली। तो फिर उस शख्स ने सब्जियां, फिश और नट्स अपनी खुराक में शामिल किए गए। 3 महीने के बाद जब दोबारा उसका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक किया गया तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी थी। दिल की जो दोस्त ग़िज़ाएँ हैं, यानी दिल को जो पसंद हैं बहुत, उसमें दालें हैं, दलिया है, ब्राउन राइस है, हरी सब्जियां हैं, फल और ऑलिव ऑयल उसमें शामिल है। छोटी छोटी जो बातें हैं वो किस तरह से हम अपनाएं कि अपने दिल को सेहतमंद रख सकें। हर खाने में एक जो वेजिटेबल है वो ज़रूर शामिल कर लीजिए। हफ्ते में 2

0: से तीन बार आप फिश अपने खाने में शामिल कीजिए। नमक और चीनी कम कीजिए। बहुत ज़्यादा जो फ्राइड चीज़ें हैं और प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो कम खाइए। रोज़ाना 30 मिनट वॉक या फिर जो लाइट एक्सरसाइज है वो कीजिए, क्योंकि सेहतमंद दिल लंबी जिंदगी और तवानाई की जमानत है। आज से हम अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल आर वैल्यूज। दोस्तों देखिए, ईद आने वाली है और आप लोगों ने अपने जहन में बहुत सारी प्लानिंग्स करनी स्टार्ट करती होंगी। कुछ लोगों ने जहनों में नहीं, प्रैक्टिकल भी अपनी प्लानिंग स्टार्ट करती होगी। मैं कहूंगी कि एक शख्स ऐसा है जिस पर ईद के दौरान बड़ा लोड आता है। एक्चुअली एक नहीं, हम कह सकते हैं कि दो शख्स ऐसे हैं घर के जिन पर जो है ना ईद के दौरान बड़ा लोड आ जाता है। एक तो आप खुद हैं, मेरा मतलब है जो हमारी फीमेल मेंबर्स होती है ना, जो खातीन होती हैं, उन पर लोड आता है। और दूसरे आपके हाउस हेल्प के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि आप अपने हाउस हेल्प के साथ क्या मोहब्बत और रहम दिली से पेश आते हैं, क्योंकि इंसानियत का असल रूप तो यही आपका नज़र आता है। ईद हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी, इंसान का

हमारे हाउस हेल्प, चाहे वो मेड हो, ड्राइवर हो या कोई और मदद करने वाला शख्स, वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर हम अपने फैमिली, अपने घर के फैमिली मेंबर्स की, रिलेटिव्स की, इन सब के कपड़े लाते हैं, इनका ख्याल करते हैं, इनके कंफर्ट का ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर हम हमारी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं या जो हाउस हेल्प हैं उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। देखिए, हाउस हेल्प वो लोग हैं जो हमारे घर को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज बना रहे होते हैं। इसलिए उनके साथ काइंडनेस और कंपैशन दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ईद हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसका पैगाम भी यही है कि हम शेयरिंग और केयरिंग करें। जब हम अपने हाउस हेल्प को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, उनके लिए नए कपड़े लाते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, उनके साथ एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा हमारा एटीट्यूड होता है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा रहती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी आना चाहिए, किसी से पोलाइटली बात करना, उसे इज्जत देना है, उनके काम की तारीफ करना बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इसका असर बड़ा गहरा होता है। कभी कभी सिर्फ एक थैंक यू कह देना या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कह देना किसी का दिन बना देता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों रिलक्टेंट हो जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमें दूसरों के वेलबींग का भी ख्याल रखना है। देखिए, हम समझते हैं कि हम सब के ऊपर लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन क्या वो स्ट्रेस और टेंशन हम इन लोगों पर निकाल रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हमें और आपको खुद को थोड़ी देर जो है वो बैठा के समझाने की जरूरत है। कई घरों में मैंने देखा है कि ऐसा भी माहौल होता है कि खुद तो फ्रेश और अच्छा खाना खाया जाता है, लेकिन हाउस हेल्प को खराब या शायद खराब होने वाला हो इस तरह का खाना दिया जाता है। उनके लिए पहले प्रॉपर फूड निकालिए, जो भी आपने बनाया है, उनका रेस्ट हो टाइम, उनके साथ जो है वो नरमी से बात करना, चीखना चिल्लाना नहीं, गलतियां हर एक से होती हैं, नज़रअंदाज करना, प्यार से समझाना, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। अगर हम अपने हाउस हेल्प को भी अपने साथ बिठा कर खाने की टेबल पर साथ में खाना खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं, और ये इज्जत देने का जो एटीट्यूड है ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो भी इसे चाहके ना चाहके अडॉप्ट करते हैं। एक और

चीज है एम्पैथी, यानी दूसरे के जज्बात को भी समझना। सोचिए कि वो अपने घर वालों से दूर हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। अगर हम उनसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके हालात समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि उनके अकेलेपन को हम महसूस करके दूर कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें कहने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब हम किसी के साथ काइंडनेस से पेश आते हैं तो वो भी पॉजिटिव फील करता है और अपने काम में और ज्यादा डेडिकेशन लेकर आता है। इससे ना सिर्फ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि घर का एनवायरमेंट भी पीसफुल बन जाता है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने हाउस हेल्प के साथ मोहब्बत और रहमदिली से पेश आए तो ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाता है। रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस और पोलाइटली बात करना, ये हर एक इंसान का बुनियादी हक है, चाहे बड़ा हो या छोटा, शायद आपसे ताकतवर, शायद आपसे कमजोर, फाइनेंशियली आपसे स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली आपसे वीक। लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें हर इंसान की फंडामेंटल राइट है और हमें और आपको उस शख्स को उस राइट से डिप्राइव रखने का कोई भी हक नहीं बनता। दोस्तों, याद रखिए कि असल खुशी जो है वो दूसरों की खुशी में तलाश करने में है। कोशिश कीजिए कि अपने असल सुकून को, अपने असल खुशी को दूसरों की खुशियों के साथ भी जोड़कर देखा जाए। आज मैं आपको सिर्फ यही इस थॉटफुल क्वेश्चन, इस थॉटफुल पॉइंट पर छोड़ रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। जब नेक्स्ट टाइम आपसे मेरी बात होगी तो मुझे बताइएगा कि कितना डीपली आप इस टॉपिक को सोच पाए, समझ पाए। कहने को वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी कोशिश है कि आज उस पॉइंट को लेकर आया जाए जिस पॉइंट को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं या फिर इस पर बात ही नहीं करना चाहते। इस टॉपिक को जब भी वक्त मिले, थोड़ी देर के लिए रात में सही मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त,

0: पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता है तो कोशिश कल से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी सी कोशिश बड़ी तब्दीली लेकर आती है। मुझे नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: हज के दिन 9 जुलहिज्जा सन 1447 हिजरी के मुताबिक 26 मई को एफएम 107 पर सुबह 8 बजे से 11 बजे आरजी सरवर मिर्जा के साथ होंगे एक मुअज्जत मेहमान हज की खुसूसी प्रोग्राम के लिए, और दोपहर 12 बजे सैफुर रहमान अपने मेहमान के साथ एफएम 107 के स्टूडियो में होंगे और सपहर 3 बजे तक हज का खुसूसी प्रोग्राम होस्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक दिन की नेमतों का हकदार

लोगो, तुम ही अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तो गनी व हमीद है। वो चाहे तो तुम्हें हटाकर कोई नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बार का एक अदना हिस्सा भी हटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को मुतनब्बे कर सकते हो जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। जो शख्स भी पाकीजगी इख्तियार करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है, और पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ है। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है, न तारीकियां और रोशनी यकसां हैं, न ठंडी छांव और धूप की तपिश एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे मुसावी हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है। मगर ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून हैं। तुम तो बस एक खबरदार करने वाले हो। हमने तुमको हक के साथ भेजा है, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर। और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें कोई मुतनब्बह करने वाला न आया हो। अब अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुटला चुके हैं। उनके पास उनके रसूल खुले दलाइल और सहीफे और रोशन हिदायत

क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और फिर उसके जरिए से हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ों में भी सफेद, सुर्ख और गहरी स्याह धारियां पाई जाती हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं। बेशक अल्लाह जबरदस्त और दरगुजर फरमाने वाला है। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिज्क दिया है उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत के मुतवक्के हैं जिसमें हरगिज खसारा ना होगा। इस तिजारत में उन्होंने अपना सब कुछ इसलिए खपाया है ताकि अल्लाह उनके अजर पूरे के पूरे उनको दे और मजीद अपने फजल से उनको अता फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदरदान है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने तुम्हारे तरफ वही के जरिए से भेजी है वही हक है, तस्दीक करती हुई आई है उन किताबों की जो इससे पहले आई थीं। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल से बाखबर है और हर चीज पर निगाह रखने वाला है। फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। अब कोई तो उनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है और कोई बीज की रास है और कोई अल्लाह की इज्जत से नेकियों में सबकत करने वाला है। यही बहुत बड़ा फजल है। हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे। वहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। वहां उनका लिबास रेशम होगा और वो कहेंगे कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमसे गम दूर कर दिया। यकीनन हमारा रब माफ करने वाला और कदर फरमाने वाला है जिसने हमें अपने फजल से अबदी कयाम की जगह ठहरा दिया। अब यहाँ न हमें कोई मुशक्कत पेश आती है और न थकान लाहक होती है।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसलाए आजाब के मुस्तहक हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इनके लिए यकसां है तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, ये न मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बे देखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मगफिरत और अजरे करीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनके तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संगसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो।